मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 मई सन 2026 सुबह के 5:55 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

मीडियम ये 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह का समय है, उठिए जागिए, नींद को त्यागिए, बिस्तर को त्यागिए, उठिए, अपनी दैनिक नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर प्रभु का स्मरण कीजिए और आकाशवाणी लखनऊ ट्यून इन कीजिए, क्योंकि प्रतिदिन हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसे कार्यक्रम जो आपके जीवन में खुशहाली तो लाते ही हैं बल्कि आपको अंदर तक प्रसन्न और एकदम ऊर्जावान बना देते हैं। तो जल्दी जल्दी

आंखें खोलिए और स्वागत कीजिए इस नई सुबह का, जो आपके लिए अनंत संभावनाएं और न जाने कितनी सारी तोहफे लेकर आया है। आज की ये सुबह, तो उठिए और इस दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद कीजिए और सुनते रहिए हमारे कार्यक्रमों को। फिलहाल सुबह के 6 बजने वाले हैं, कार्यक्रम आरंभ हो गया है। नमस्ते लखनऊ, और सबसे पहले आपको सुनवाते हैं हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताज़ा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई SOP जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, PPE किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोप वे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं।

0: IPL क्रिकेट के क्वालिफायर वन मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दोस्तों, कार्यक्रम आरंभ हो गया है नमस्ते लखनऊ, और आज नमस्ते लखनऊ में आपके साथ हूँ मैं नंदिनी मिश्रा। स्वीकार कीजिए नमस्कार नंदिनी का। और जैसे कि आप जानते हैं, अपने कार्यक्रमों में हम आपके लिए प्रतिदिन लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, यही तो ध्येय है हमारा। तो सबसे पहले कृषि से जुड़ी बातें। कृषि चर्चा में आज की चर्चा का विषय है सब्जियों में फसल सुरक्षा कार्य। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी।
2: शुभ प्रभात। कद्दू वर्गीय सब्जियां अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं इस मौसम में। कारण यह है कि यही एक मौसम है जिसमें हम बहुतायत से इसकी खेती करते हैं। करने को तो इसको रबी में भी करते हैं, खरीफ में भी करते हैं, लेकिन जायद की बात ही कुछ और होती है। कद्दू वर्गीय जो हमारी सब्जियां हैं, उनकी देखभाल में यह कहा जाता है कि हमें कुछ विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ती है। कारण यह है कि इस समय कीट पतंगे या जो भी रोग के कारक हैं वह खुले में रहते हैं, फसलें उतनी रहती रहीं, उनके लिए आश्रय स्थल उतना रहता नहीं, इसलिए इनके सुरक्षा कार्य को संपादित करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। कद्दू वर्गीय सब्जियों में हम देखते तो रबी मौसम में हैं कि जो चोड़िल फफूदी होती है वह ज़्यादा लगती है, लेकिन गर्मी के मौसम में जो इसमें हम खीरा, परवल, खरबूजा और करेला विशेष रूप से उगाते हैं, उस पर ये पाई जाती है मृदरोमिल आसिता। रोग वर्षा ऋतु के उपरांत जब तापमान 20 से 22 सेंटीग्रेड होता है तब विकराल रूप धारण करता है। इस रोग के मुख्य लक्षण पत्तियों पर कोणीय धब्बे जो शिराओं द्वारा सीमित होते हैं, पत्ती के ऊपरी पृष्ठ पर पीले रंग के होते हैं, अधिक नमी जो है उसकी उपस्थिति में इन भागों के नीचे पत्ती की निचली सतह पर मृदरोमिल कवक की वृद्धि दिखाई देती है। इसके प्रबंधन के लिए भी वही सामान्य सी जो प्रक्रिया है उसको अपनाना चाहिए, जैसे कि बोने के लिए रोगरोधी किस्म

0: ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने से भी नियंत्रण के लिए एक उपयोगी साधन के रूप में देखा गया है। पूरी तरह रोगग्रस्त लताओं को निकालकर जला देना चाहिए, क्योंकि वहां छोड़ेंगे तो फिर ये दूसरी जगह फैलाएंगे। रोग रहित बीज उत्पादन करने के लिए गर्मी की फसल से बीज उत्पादन करना बेहतर होता है, इसलिए इसी मौसम को आप चुनें जिससे कि बीज आपका स्वस्थ मिले और अच्छा रहे। एक मलानी रोग होता है और साथ ही साथ जड़ सड़न जिसे हम कह लेते हैं, दोनों को एक साथ जोड़ करके देखा जाता है। यह आमतौर पर खीरा और खरबूजा में पाया जाता है। रोग ग्रसित एवं पूरा पौधा मुरझा जाता है, पौधे की जड़ भी सड़ जाती है, जिसके कारण पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है और सूख ही जाता है। इसके प्रबंधन के लिए भी जैसा कि एक सामान्य सी प्रक्रिया में अपनाया जाता है, रोग ग्रसित पौधों को खेत से निकालकर जला देना, बीज को कार्बंडेजिम 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से अगर उपचारित करके बोए हैं तो फिर कोई चिंता नहीं। धान एवं मक्का के साथ अगर हम इसे देखें तो 4 से 5 साल तक का फसल चक्र अपनाया जाता है, जब तो स्थिति बेहतर हो जाती है। खेत की गर्मी में जुताई करें और हरी खाद का प्रयोग करके ट्राइकोडर्मा 3 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालना अगली आने वाली फसल के लिए बेहतर स्थिति उत्पन्न करता है। कद्दू वर्गीय फसलों की बात हम करते हैं तो उसमें फल गलन रोग भी बहुत ही अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। मुख्य रूप से घिया तोरी, चिचिंडा, परवल, लौकी के साथ साथ करेला के फलों पर कवक की अत्यधिक वृद्धि हो जाने से फल सड़ने लगते हैं। धरातल पर पड़े फलों का छिलका नरम गहरे हरे रंग का हो जाता है और जब नम वायुमंडल होती है तो उस स्थिति में सड़े हुए भाग पर रुई के समान घने कवक जाल विकसित हो जाते हैं, एक सामान्य से इसकी पहचान है। भंडारण और परिवहन के समय भी फलों में यह रोग फैलता है और फिर बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। कारण ये होता है कि पूरी फसल तैयार रहती है, केवल मार्केट में ले जाकर के बेचने की स्थिति जो होती है उस बीच यह नुकसान पहुँचा देता है, तो पूरे किए किराए पर पानी फेर देता है। इसके लिए जरूरी यह है कि खेत में उचित जल निकास की व्यवस्था रखें, ज्यादा पानी न लगाएं। खेत की गर्मी में जुताई अगर की गई रही है, अगर ऐसी स्थिति रही है तो फिर मान करके चलें कि इससे आपको काफी हद तक सुरक्षा मिलेगी। और ये सुरक्षा अगर इस साल नहीं मिल पा रही है तो अगले साल के लिए ध्यान रखें कि खेत की गहरी खोप गर्मी की जुताई जिस खेत में लगाना है उसे अभी से कर दें। हरी खाद का प्रयोग करके ट्राइकोडर्मा 3 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालना भी बेहतर सी स्थिति उत्पन्न करता है। फलों को भूमि के स्पर्श से बचाने का प्रयत्न तो बिल्कुल समसामयिक बात है, उसको आपको अभी करना ही करना है। भंडारण एवं परिवहन के समय फलों में चोट लगने से नुकसान होता है, हवादार एवं खुली जगह पर रखें। बेहतर होगा क्रेट्स का प्रयोग करें, वह सुरक्षा प्रदान करता है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, एंथ्रेक्नोज हो या फिर इसी तरीके के कुछ और होते हैं, लेकिन जो हमारी रोकथाम की प्रक्रिया है कद्दू वर्गीय फसलों में, बस इतने तक का ही रखेंगे ध्यान तो कोई भी फसल जो कद्दू वर्गीय है इस समय की हमारी जायद की, वह विशेष रूप से सुरक्षित रहेगी।
1: तो आज की कृषि चर्चा में विषय था सब्जियों में फसल सुरक्षा कार्य। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। और इसी के साथ नमस्ते लखनऊ में श्रोता हम आगे बढ़ते हैं और आपके लिए लेकर आए हैं आज सुविचार में एक बहुत ही प्यारा सा विषय, जिज्ञासा। स्वर एवं मालिक डॉक्टर शीबा राकेश का।
2: जिज्ञासा में स्वयं अपनी एक ज्ञान शक्ति होती है। जिज्ञासा के जागते ही किसी बात को जान सकने का सहायक ज्ञान स्वयं ही विकसित होने लगता है। जो जो जिज्ञासा गहरी होती जाती है, ज्ञान भी बढ़ता जाता है। मनुष्य की जिज्ञासु वृत्ति ने ही उसे दार्शनिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक एवं अन्वेषक बनाया है। यदि जिज्ञासा न होती तो मनुष्य में इस प्रकार के प्रश्न ही क्यों जागते कि वह क्या है, ये विराट विश्व क्या है, इसका रचयिता कौन है और इस संपूर्ण प्रपंच का प्रयोजन क्या है, इन सब का आदि कहां से होता है, अंत कहां होगा और भला क्यों इन प्रश्नों के उत्तर खोजने में वह परिश्रम करता। जिज्ञासा के अभाव में मनुष्य आज जिस ज्ञानपूर्ण स्थिति में आया हुआ है कभी ना पाता। आज मनुष्य के ज्ञान भंडार में जो कुछ संचय है वह आगे भी जो वृद्धि होगी उसका भी मुख्य हेतु उसकी जिज्ञासा ही होगी। आज यदि मनुष्य की जिज्ञासु वृत्ति कुंठित अथवा तिरोहित हो जाए तो उसका ज्ञान अभिमान जहां का तहां ठप हो जाए और तब आगे भी ये जान सकने की संभावना सदा सर्वदा के लिए समाप्त

0: हो जाए कि आखिर इन मंगल, चंद्र अथवा बुध ग्रहों पर क्या है, इनका वास्तविक अस्तित्व क्या है, क्या इन पर भी उसी प्रकार जीवन का अस्तित्व हो सकता है जिस प्रकार की हमारी पृथ्वी पर। यदि इनमें जीवन है तो वहाँ के जीव किस प्रकार के हैं, मनुष्य की भांति उनके परम लक्ष्य मोक्ष की क्या परिभाषा होगी, और न जाने उनका साहित्य, सभ्यता, संस्कृति, कला कौशल, शिल्प व रहन सहन किस प्रकार का होगा। जिज्ञासा के आधार पर ही तो मनुष्य एक दूसरे से ज्ञान ग्रहण कर आगे बढ़ता है। जब किसी में कुछ जानने अथवा सीखने की उत्सुकता ही न रहेगी, तब वे क्यों व्यर्थ में किसी विषय पर ज्ञानोपार्जन करेगा। जो जिज्ञासु है वही गहरे पैठता है। जिज्ञासु की दृष्टि सामान्य लोगों से कुछ अधिक पैनी और खोजक होती है। किसी एक दृश्य या घटना को कोई सामान्य व्यक्ति देखता है तो वे उसके लिए एक साधारण बात होती है, किंतु जब उसी विषय पर किसी जिज्ञासु व्यक्ति की दृष्टि पड़ती है तो वही साधारण बात कोई दार्शनिक अथवा कवित्वपूर्ण अभिव्यक्ति पाकर असाधारण बन जाती है। जिज्ञासु के लिए संसार की हर घटना एक रहस्य एवं एक महत्व लिए रहती है। एक रसोई के लिए भाप से बटलोई का ढक्कन उछलना सामान्य बात होती है, किंतु स्टीवेंसन के लिए भाप से ढक्कन का उठना गिरना एक असाधारण रहस्य की बात बनकर इंजन के आविष्कार का कारण बनी। एक माली के लिए पेड़ से फल गिरना एक सामान्यतम घटना है, किंतु उसके आधार पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के सिद्धांत के ज्ञाता न्यूटन के लिए वह असाधारण महत्व की बात थी। इतनी असाधारण कि आगे चलकर उसी आधार सूत्र के बल पर अधर में लटके इस ब्रह्मांड के हर ग्रह नक्षत्र की चाल तथा अवस्था का रहस्य मालूम कर लिया गया। जिज्ञासा ज्ञान की महान जननी है। मनुष्य की जिज्ञासु बुद्धि उस चींटी की तरह सतत प्रयत्नरत रहती है जो 7 पर्दों में छिपी हुई शक्कर को भी खोज कर दम लेती है। जिज्ञासु बुद्धि का सहज गुण होता है कि जब तक वह अज्ञात रहस्य को खोज नहीं लेती, संतुष्ट नहीं होती, दिन रात उसी के पीछे लगी रहती है। जिज्ञासु की बुद्धि बड़ी ग्रहणीय होती है। वे एक बार में ही कोई बातें देख सुनकर ग्रहण कर लेती है और फिर कभी नहीं उसे भूलती। अजिज्ञासु बुद्धि कुंद एवं कुंठित होती है। 1000 बार देखने, सुनने और पढ़ने पर भी वह ना तो किसी बात को ठीक से समझ पाती है न ही याद रख पाती है। जिज्ञासा का अभाव मनुष्य को मंदबुद्धि बना देता है। जिज्ञासु व्यक्ति किसी भी बात की तह तक बैठकर उसमें से किसी न किसी प्रकार की उपयोगिता खोज लाता है। जिज्ञासा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक चारों उन्नतियों की हेतु होती है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी जिज्ञासा को प्रमाद पूर्वक नष्ट न करे, उसे विकसित एवं प्रयुक्त करे, और यदि जिज्ञासा नहीं है तो उसे चाहिए कि वह तन्मयता एवं गहरे पैठने के अभ्यास से उसे पैदा करे, क्योंकि जिज्ञासा ही भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों महान क्षेत्रों में प्रगति का आधार बनती है।
1: तो श्रोताओं, आपने जाना कि जिज्ञासा हमारे जीवन को कितनी उन्नति प्रदान करती है। इसलिए जिज्ञासा होना मनुष्य का एक स्वाभाविक स्वभाव है और इसको स्वाभाविक रूप से जीवित रहने दीजिए। और इसी के साथ कार्यक्रम नमस्ते लखनऊ में हम आगे बढ़ते हैं और प्रवाहित करते हैं अपनी आज की भक्ति धारा को। आरंभ करते हैं आज की आराधना।

सच्ची भक्ति वो है जो किसी स्वार्थ या इच्छा के बिना की जाए। जब मन में केवल प्रभु के प्रति प्रेम हो तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है।

जहाँ भगवान की भक्ति है वहाँ शांति और सुकून है। ईश्वर पर भरोसा रखिए, वो आपके हर मार्ग को आसान बना देते हैं।

इसी भक्ति रचना के साथ और इस शुभेच्छा के साथ कि हमारे सभी श्रोताओं का आज का दिन अति उत्तम बीते, आप सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहें, आपको अपनों का साथ मिले और आप

तो एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करने में अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करते रहें। इसी शुभकामना के साथ हमारी आज की आराधना यहीं संपन्न होती है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज इसमें लीजिए सुनिए मंत्री सुमंत से श्री राम लक्ष्मण और सीता के वन गमन का वृतांत सुनकर राजा दशरथ के मूर्छित होने का वर्णन। यह है अयोध्या कांड का भाग 183।

सुमंत्र से राम लक्ष्मण और सीता के वनगमन का वृत्तांत सुनकर राजा दशरथ के हृदय में हूक उठती है और वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। रानियां विलाप कर उठती हैं। रानी कौशल्या अंतस में उठती व्यथा और सजल नेत्रों से सूर्यकुल का अंत होता देख रही है। महाराज को वो धीरज बंधा रही हैं। राम वियोग के अथाह सागर में डूबते अयोध्या रूपी जहाज के वे ही एकमात्र कर्णधार हैं। यदि उन्होंने भी धैर्य छोड़ दिया तो सबका डूब जाना निश्चित है। रानी के सांत्वना भरे वचन सुनकर महाराज आंखें खोलते हैं। उनकी जिह्वा पर मात्र एक ही रट है, राम कहाँ हैं? कहाँ हैं लक्ष्मण और उनकी प्रिय बहू जानकी? उनके सजल नेत्रों में वर्षों पहले का चित्र उभरता है, श्रवण कुमार के पिता अंधे तपस्वी का अभिशाप। रानी कौशल्या को वो दुखद कथा सुनाते हुए पुत्र विरह में शरीर त्याग महाराज दशरथ सुरलोक सिधार जाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। आज आपने सुना इसका भाग 183। इसी के साथ श्री रामचरितमानस से गान संपन्न हुआ। मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ, और आज नमस्ते लखनऊ में आपके साथ हूँ मैं, नंदिनी मिश्रा। फिलहाल सुबह के 6:55 होने वाले हैं। आइए आपको सुनवाते हैं संस्कृत में समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: प्रदत्ता। अत्रावधेयस्पदं वर्तते यत् विमानेषु अनिवार्यरूपेण पदक्षेपाः विहितव्याः भविष्यन्ति। यथा इबोला संकटं दृष्ट्वा यदि कस्यापि यात्रिणः ज्वरः, दौर्बल्यं, पीडा, शिरोवेदना, कण्ठदाहः, वमनमित्यादीनि लक्षणानि दृश्यन्ते तर्हि सः सद्यः एव विमानकर्मचारिभ्यः आगमानन्तरं चिकित्साविभागेभ्यः सूचयेत्। महानिदेशालयेन स्पष्टीकृतं यत् भारते आगमनात् एकविंशतिदिनानां मध्ये यदि एतादृशानि लक्षणानि उत्पद्यन्ते तर्हि यात्रिणः निर्दिष्टचिकित्सालयेभ्यः चिकित्सासाहाय्यं प्राप्नुयुः। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य यावत् मध्यप्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तरप्रदेश, विदर्भ क्षेत्रेषु उष्णस्थितिमुद्दिश्य रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीय सञ्चेतना प्रसारिता। विभागेन आगामि द्वित्रिदिनेषु हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तरप्रदेश, राजस्थान राज्येषु तीव्र उष्णतरंगस्य पूर्वसूचना प्रख्यापिता। एतादृशी एव स्थितिः अद्य यावत् छत्तीसगढ़, तटीय आन्ध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखण्ड, उत्तराखण्ड राज्येषु अपि भवितुं सम्भाव्यते। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधवः अवदत् यत् सर्वकारः योग प्राकृतिक चिकित्सा माध्यमेन कृत्स्नेहि देशे निवारक स्वास्थ्य सेवाः सुदृढीकरोति। नवदिल्ल्याम् आयुष मंत्रालयस्य संसदीय परामर्शदात्री समित्याः चतुर्थ उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्री जाधवः अवचत् यत् योगः, प्राकृतिक चिकित्सा च समग्र निवारक स्वास्थ्य सेवायै भारतस्य शाश्वतं योगदानं वर्तते। अस्मिन् उपवेशने भारते योग प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रस्य विस्तारे, स्वास्थ्य संवर्धन सम्बद्धेषु प्रयासेषु च तथा च पारंपरिक चिकित्सा पद्धतीनां वैश्विक प्रसारे च विस्तरेण चर्चा अभवत्। सः अग्रे सूचितवान् यत् सम्प्रति विश्वस्य 90+ देशेषु अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः समारोहः आचर्यते। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ, और नमस्ते लखनऊ में अब बारी हो गई है कि हम आपको स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां दे दें। तो आइए सुनते हैं आज की स्वास्थ्य चर्चा।
2: नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पेड़ की जो भारत की धरती पर सदियों से पाया जाता है और जो हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में एक विशेष स्थान रखता है। हम बात कर रहे हैं बबूल की। एक ऐसा पेड़ जो हमें छांव भी देता है, दवा भी देता है और दैनिक जीवन की अनेक छोटी बड़ी समस्याओं का सहज समाधान भी। बबूल का नाम आते ही बहुत से लोगों के मन में इसके कांटों की छवि उभरती है। लेकिन श्रोताओं, अगर इसकी शाखाओं पर कांटे हैं तो उसके भीतर असंख्य औषधीय गुणों का भंडार भी छिपा है। बबूल को संस्कृत में खदिर कहा जाता है, जिसका अर्थ ही होता है वो जो शरीर को शुद्ध करे। इसकी पत्तियां, छाल, गोंद, बीज, यहाँ तक कि इसकी जड़ें भी औषधीय दृष्टि से भी उपयोगी मानी जाती हैं। बबूल सबसे पहले याद आता है दांतों की देखभाल में। पुराने जमाने में जब टूथपेस्ट और ब्रश नहीं होते थे, तब बबूल की दातुन ही सबसे प्रभावी उपाय मानी जाती थी। आज भी कई लोग इसकी टहनी से दातुन करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये न केवल दांतों को साफ करती है बल्कि मसूड़ों को मजबूती भी देती है, सांसों की दुर्गंध को दूर करती है और मुंह के भीतर के कीटाणुओं का भी नाश करती है। बबूल की छाल में टैनिन नामक यौगिक पाया जाता है, जो एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर होता है और मसूड़ों की सूजन या खून बहने जैसी समस्याओं में राहत देता है। बबूल का गोंद भी उतना ही लाभकारी है। आयुर्वेद में इसे बबूल गोंद के नाम से जाना जाता है और ये खासतौर पर स्त्रियों की कमजोरी, गर्भावस्था के बाद की थकावट और बच्चों की हड्डियों की मजबूती के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सर्दियों में बनाए जाने वाले पिंडी या गोंद के लड्डुओं में इसका उपयोग आम है, जो शरीर को ताकत देने के साथ ही रोग प्रतिरोधक

0: क्षमता को भी बढ़ाता है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। पाचन से जुड़ी समस्याओं की बात करें तो बबूल की छाल का काढ़ा गैस, अपच, दस्त और आंतों की सूजन में राहत देता है। ये आंतरिक अंगों को साफ करने और संक्रमण से लड़ने में सहायक होता है। यदि किसी को बार बार मुंह में छाले हो रहे हो या गले में खराश बनी रहती हो तो बबूल की छाल को उबालकर गरारा करने से बहुत लाभ होता है। ये गले के कीटाणुओं को नष्ट करता है और शांति पहुँचाता है। बबूल का पेड़ सूखा सहन कर सकता है। ये बहुत कम पानी में भी जीवित रहता है और शायद यही विशेषता इसे हमारी त्वचा और बालों के लिए भी उपयुक्त बनाती है। बबूल की छाल को पीसकर चेहरे पर लेप करने से मुहासे, फुंसियाँ और त्वचा के अन्य संक्रमणों में आराम मिलता है। इसके गोंद का उपयोग बालों को जड़ से मजबूत करने वाले तेलों और लेपों में भी किया जाता है। बाल झड़ने की समस्या हो या रूसी हो, बबूल के नुस्खे अक्सर दादी नानी के घरेलू ज्ञान में पाए जाते हैं। बबूल का महत्व केवल शरीर तक सीमित नहीं है, ये मन को भी स्थिर करने वाला होता है। आयुर्वेद के अनुसार ये वात और पित्त को संतुलित करता है। विशेष रूप से वात जन्य रोग जैसे कि जोड़ों का दर्द, गठिया और स्नायविक कमजोरी में बबूल के तेल और काढ़े का उपयोग किया जाता है। इसका नियमित सेवन शरीर की जड़ों को मजबूती देता है। जैसे पेड़ की जड़ें मजबूत हो तो तना और शाखाएं भी स्थिर रहती हैं, वैसे ही शरीर भी अंदर से सुदृढ़ रहता है। ग्रामीण भारत में बबूल का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। इसे ईंधन के रूप में, छाया देने वाले वृक्ष के रूप में और खेतों की मेड़ पर बांध की तरह भी लगाया जाता है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम इसे केवल एक कांटेदार पेड़ के रूप में ना देखें, बल्कि इसे अपने जीवन में एक औषधि के रूप में स्थान दें। आधुनिक जीवन में हम हर समस्या का हल दवाओं और सप्लीमेंट्स में खोजते हैं, लेकिन हमारे आसपास बबूल जैसे प्राकृतिक वैद्य मौजूद हैं, जो बिना किसी साइड इफेक्ट्स के शरीर को धीरे धीरे ठीक करने की शक्ति रखते हैं। हमें बस थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ी जिज्ञासा रखनी है और फिर हमारे घर, हमारी गली, हमारे खेत सब कुछ औषधालय बन सकता है। तो श्रोताओं, अगली बार जब आप बबूल के पेड़ के पास से गुजरें तो बस उसके कांटों को न देखें, उसके भीतर छिपी सेहत की उस मिठास को पहचानिए जो न तो बोतल में बंद है, न गोली की शक्ल में, बल्कि प्रकृति की गोद से सीधा हम तक पहुंचने वाला उपहार है। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: श्रोताओ, आज की स्वास्थ्य चर्चा में आपने जाना कि प्रकृति ने हमें कितने उपहार दिए हैं। बस आवश्यकता है अपने अंदर की जिज्ञासा को बनाए रखने की और उन चीज़ों को जानने की और अपनी सेहत को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए उनके उपयोग की। और नमस्ते लखनऊ में, अब वक्त हो गया है कि हम आपको बता दें कि आज कौन कौन से कार्यक्रम हम अपनी विभिन्न सभाओं में आपके लिए लेकर आए हैं। आज रात 10 बजे राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत सुनिएगा खेल दर्पण, ये आज आकाशवाणी प्रयागराज की पेशकश होगा। रात 9:30 पर फिल्म संगीत का फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो मेरी पसंद। रात 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में आज सुनेगा चंद्रशेखर वर्मा की कहानी फूल तोड़ना मना है। सुबह 9:15 पर जिले की हलचल में आज सुनिएगा हाथरस और रायबरेली जिलों के बारे में। सुबह 9:30 पर वक्त होगा उर्दू कार्यक्रम का, आज इसमें सुनिएगा आकाशवाणी रामपुर की पेशकश जिसमें रेडियो के 90 साल पूरे होने पर बेमिसाल 90 साल इस मौजू पर बातचीत होगी डॉक्टर जहीर अली सिद्दीकी से। आपसे मुलाकात करेंगे फरीदुल्ला खां। अब से थोड़ी देर में यानी 7:10 पर विविधा में मेरे यानी नंदिनी मिश्रा के साथ आज का विषय होगा सोशल मीडिया से बढ़ती व्यापार की संभावनाएं। सुबह 7:30 पर श्रोता सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम आज सुबह।

दिन में 1:15 पर बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम अपराजिता। इसमें पर्यावरण संरक्षण मिशन लाइफ पर केंद्रित रूपक सुनिएगा। विषय होगा पुकारती धरा हमें, आलेख शिवानी श्वेतांबरा श्रीवास्तव का। दिन में 2:30 पर विज्ञान और किसान कार्यक्रम में मिथिलेश कुमार झा से की गई भेंटवार्ता सुनिएगा। धान की सीधी बुवाई तकनीक, आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय।

वार्ता सुनिएगा, धान की सीधी बुवाई तकनीक। आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है शाम 5 बजे और शाम 5:10 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा तरंग। शाम 5:45 पर कार्यक्रम होगा नई उड़ान। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में गौरी त्रिवेदी की वार्ता सुनिएगा, सहकारी समितियों से सशक्तिकरण। किसान भाई सुनिए अपना कार्यक्रम खेती किसानी शाम 6:50 पर। इसमें डॉक्टर दिनेश सिंह से की गई भेंट वार्ता सुनिएगा, विषय होगा गन्ने की फसल में समन्वित रोग प्रबंधन। आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर आज सुनिए का ख्याल गायन, कलाकार होंगे जगदीश प्रसाद। रात 8:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिए का नितिन मुकेश के गाए कुछ भजन, और लोकगीत के कार्यक्रम लोक रंग में सुबह 9:50 पर और लोक माधुरी में दिन में 2:45 पर आज सुनिए का पूजा द्विवेदी के गाए कुछ अवधि लोकगीत। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की, और अब से कुछ ही देर में श्रोताओं आप सुनेंगे आज की विविधा।

एक समय था जब व्यापार बढ़ाने के लिए बड़े बड़े पोस्टर, अखबारों में विज्ञापन और टीवी पर महंगे एड्स की जरूरत होती थी। लेकिन आज का दौर डिजिटल हो चुका है। अब एक छोटा दुकानदार भी अपने मोबाइल फोन से लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। विविधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को नंदिनी मिश्रा का नमस्कार। जी हाँ, सोशल मीडिया आज केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा, बल्कि व्यापार बढ़ाने का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। आज भारत में करोड़ों लोग हर दिन विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि छोटे से छोटा व्यवसाय भी अब ऑनलाइन अपनी पहचान बना रहा है। मान लीजिए किसी महिला ने घर से ही अचार, पापड़ या कपड़ों का छोटा व्यवसाय शुरू किया। पहले उसे केवल अपने मोहल्ले तक ग्राहक मिलते थे, लेकिन आज वही महिला सोशल मीडिया पर अपने उत्पाद की फोटो और वीडियो डालकर पूरे शहर, पूरे राज्य और यहाँ तक के पूरे देश से ऑर्डर प्राप्त कर सकती है। यानी सोशल मीडिया ने व्यापार की सीमाओं को खत्म कर दिया है। अब मन में सवाल उठता है कि सोशल मीडिया व्यापार के लिए इतना प्रभावी क्यों है और इसके फायदे क्या हो सकते हैं। पहला फायदा, कम खर्च में प्रचार। पहले विज्ञापन करवाना बहुत महंगा था, लेकिन आज एक छोटा व्यापारी भी अपने मोबाइल से मुफ्त में अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार कर सकता है। अगर कंटेंट अच्छा हो तो वीडियो या पोस्ट हजारों लोगों तक अपने

अब पहुंच जाती है, यानी कम लागत में ज्यादा प्रचार। दूसरा फायदा, सीधे ग्राहकों से जुड़ाव। सोशल मीडिया व्यापारियों को अपने ग्राहकों से सीधे बात करने का मौका देता है। ग्राहक कमेंट करते हैं, सवाल पूछते और तुरंत जवाब भी पा लेते हैं। इससे भरोसा बढ़ता है और ग्राहक लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। अब बात करते हैं तीसरे फायदे की। नए ग्राहकों तक सोशल मीडिया पहुंच बनाता है। आज लोग खरीदारी से पहले सोशल मीडिया पर चीजें देखते हैं। अगर आपका व्यापार ऑनलाइन मौजूद है तो नए ग्राहक आसानी से आपको ढूंढ सकते हैं। यानी सोशल मीडिया सिर्फ प्रचार नहीं करता बल्कि ग्राहक भी लाता है। आज बड़े बड़े ब्रांड ही नहीं बल्कि छोटे दुकानदार, किसान, शिक्षक, कलाकार और गृहिणियां भी सोशल मीडिया का उपयोग करके आत्मनिर्भर बन रहे हैं। कई युवा आज सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग के दम पर अपना स्टार्टअप चला रहे हैं। कई ऑनलाइन कपड़े बेच रहे हैं, कोई फूड ब्लॉगिंग कर रहा है तो कोई ऑनलाइन क्लासेस के जरिए कमाई कर रहा है। ये डिजिटल क्रांति रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रही है। लेकिन जहां फायदे होते हैं वहां कुछ चुनौतियां भी होती हैं। सबसे बड़ी चुनौती, भरोसा बनाए रखना। सोशल मीडिया पर लोग उसी व्यापार पर भरोसा करते हैं जो ईमानदारी और गुणवत्ता बनाए रखता है। अगर कोई गलत जानकारी देता है या खराब सामान बेचता है तो उसकी नकारात्मक प्रतिक्रिया बहुत जल्दी फैल जाती है। इसलिए ऑनलाइन व्यापार में विश्वास और पारदर्शिता बहुत जरूरी है।

दूसरी चुनौती लगातार सक्रिय रहना। सोशल मीडिया पर सफल होने के लिए नियमित रूप से अच्छा कंटेंट डालना पड़ता है, ग्राहकों के सवालों का जवाब देना पड़ता है और नए ट्रेंड्स को समझना पड़ता है। यानी ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि मेहनत और समझदारी का काम भी है। दोस्तों, आने वाले समय पूरी तरह डिजिटल होने वाला है। जो लोग आज सोशल मीडिया की ताकत को समझ लेंगे वही भविष्य में आगे बढ़ पाएंगे। सरकार भी डिजिटल इंडिया और ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा दे रही है। छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने की कोशिशें लगातार बढ़ रही हैं। इसलिए अगर आपके पास कोई हुनर है, कोई उत्पाद है या कोई छोटा व्यवसाय है तो सोशल मीडिया आपके लिए एक सुनहरा अवसर बन सकता है। याद रखिए, आज मोबाइल सिर्फ बात करने का साधन नहीं बल्कि सफलता का रास्ता बन चुका है। तो दोस्तों, सोशल मीडिया ने व्यापार की दुनिया को बदल दिया है। इसने छोटे व्यापारियों को नई पहचान दी है, नए ग्राहकों से जोड़ा है और सफलता के नए दरवाजे खोले हैं। जरूरत है सही सोच, मेहनत और डिजिटल समझ की। इसी उम्मीद के साथ कि आप भी डिजिटल दुनिया का सही उपयोग करेंगे और अपने जीवन को और बेहतरीन बनाएंगे, इसी कामना के साथ अब आज की विविधा से अपनी दोस्त नंदिनी मिश्रा को दीजिए अनुमति। विविधा के एक और अंक में एक नवीन विषय के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार नंदिनी का। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आपसे थोड़ी ही देर में।

0: सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वे खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेत अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की 7 विभूतियों सहित देश भर के 66 लोगों को दिए पद्म पुरस्कार। वाराणसी की डॉक्टर एन राजम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, जबकि प्रदेश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित 6 अन्य लोगों को मिला पद्मश्री पुरस्कार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारागार विभाग और कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा की। जेलों को सुधार, पुनर्वास और कौशल विकास के प्रभावी केंद्र के रूप में विकसित करने का दिया निर्देश। जून माह से विकास खंडों में प्रस्तावित साप्ताहिक चौपाल के साथ किसान मेले लगाने पर दिया जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार, स्मारक की सुंदरता को जमकर सराहा। और ग्राम पंचायतों के प्रशासक की भूमिका निभाएंगे निवर्तमान ग्राम प्रधान। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वहीं वायलिन वादक और उत्तर प्रदेश से जुड़ी एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदेश के 6 अन्य लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश से 7 विभूतियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें कला के क्षेत्र में डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, डॉक्टर केवल कृष्ण ककराल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर श्याम सुंदर को चिकित्सा, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, प्रोफेसर बुद्ध रश्मि मणि को पुरातत्व विज्ञान और प्रवीण कुमार को खेल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
2: समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पद्म पुरस्कार पाने वाली विभूतियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में कारागार विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की जेलों को सुधार, पुनर्वास और कौशल विकास के प्रभावी केंद्र के रूप में विकसित करने

0: निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक और सुधारात्मक गतिविधियों के माध्यम से कारागारों को नई पहचान दी जाए। उन्होंने ओपन जेल की परिकल्पना को उपयोगी बताते हुए विशेष कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। श्री योगी ने 75 वर्ष से अधिक आयु के कैदियों, असाध्य रोगों से ग्रस्त बंदियों, बच्चों के साथ जेल में रह रही महिला बंदियों तथा जमानत राशि जमा न कर पाने वाले कैदियों की सूची तैयार करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेलों की सुरक्षा व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कल ही कृषि विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि खरीफ 2026 की सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं और किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और तकनीकी सहायता समय पर उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते मौसम और जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए दलहन, तिलहन और श्री अन्न की खेती को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाए, साथ ही सूखा संभावित क्षेत्रों के लिए अग्रिम कार्य योजना तैयार कर ली जाए और आवश्यकता पड़ने पर किसानों को वैकल्पिक फसलों के बीज उपलब्ध कराए जाए। श्री योगी ने जून माह से सभी विकास खंडों में प्रस्तावित साप्ताहिक चौपालों के साथ किसान मेले के भी आयोजन के निर्देश दिए, ताकि किसानों को योजनाओं, आधुनिक तकनीकों और प्रगतिशील खेती की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर कल चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय परीक्षा जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पी एस नरसिम्हा और आलोक आराध्य की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल आगरा पहुंचकर ताजमहल देखा। उनके साथ उनकी पत्नी और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहा। आगरा पहुंचने पर अमेरिकी विदेश मंत्री का स्वागत जिलाधिकारी मनीष बंसल और पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने किया। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने करीब 40 मिनट तक ताजमहल का दीदार किया। ताजमहल भ्रमण के दौरान उन्होंने पत्नी के साथ डायना बेंच पर फोटो सेशन कराया, साथ ही गाइड से ताजमहल के इतिहास, निर्माण और पच्चीकारी के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने स्मारक की खूबसूरती की जमकर प्रशंसा की। श्री रूबियो ने विजिटर बुक पर इस इमारत की खूबसूरती देखने का अवसर दिए जाने पर आभार जताया। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
0: प्रदेश सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को नई ग्राम पंचायतों के गठन तक अथवा अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार सभी जिलाधिकारियों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रशासकों को केवल सामान्य और नियमित कार्य करने की अनुमति होगी, उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। इस बीच प्रदेश सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी आपात स्थिति में या विशेष परिस्थितियों में कोई नीतिगत निर्णय लेना आवश्यक हो तो प्रस्ताव पर जिलाधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होगी। केंद्र सरकार ईंधन की आपूर्ति बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। सरकार के प्रयासों से देश में उर्वरक का भंडार भी बना हुआ है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर कल नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
2: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन

0: बोर्ड के साथ की गई है।
1: उर्वरक विभाग की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर आज वहां विशेष अनुष्ठान होंगे। एक रिपोर्ट।
2: पिछले वर्ष गंगा दशहरा के मौके पर शेषावतार व परकोटे में बने 6 मंदिरों की स्थापना हुई थी, जिसकी पहली वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस मौके पर राम मंदिर यज्ञशाला में विशेष धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किया जाएगा। साथ ही भगवान राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र पहनाए जाएंगे और 56 भोग लगाए जाएंगे। इस अवसर पर वाल्मीकि रामायण का पारायण भी होगा। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: कल पूरे प्रदेश में दिनभर की तेज धूप, भीषण गर्मी और लू के बीच रात में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। प्रदेश के गोरखपुर और अयोध्या सहित कई अन्य जिलों में बीती रात तेज आंधी के साथ हुई बारिश ने लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी से राहत दे दी। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज भी लू चलने की आशंका बनी हुई है। प्रचंड गर्मी और हीट स्ट्रोक के मामलों को देखते हुए अलग अलग जिलों में स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की 7 विभूतियों सहित देशभर के 66 लोगों को दिए पद्म पुरस्कार। वाराणसी की डॉक्टर एन राजम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, जबकि प्रदेश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित 6 अन्य लोगों को मिला पद्मश्री पुरस्कार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारागार विभाग और कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा की। जेलों को सुधार, पुनर्वास और कौशल विकास के प्रभावी केंद्र के रूप में विकसित करने का दिया निर्देश। जून माह से विकास खंडों में प्रस्तावित साप्ताहिक चौपाल के साथ किसान मेले लगाने पर दिया जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार। स्मारक की सुंदरता को जमकर सराहा। और ग्राम पंचायतों के प्रशासक की भूमिका निभाएंगे निवर्तमान ग्राम प्रधान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को समझना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ, और नमस्ते लखनऊ में जैसा कि आप जानते हैं आज मंगलवार है, तो दिन है आपके मनपसंद कार्यक्रम आज सुबह का। तो आज की ये पेशकश आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी दोस्त मैं नंदिनी मिश्रा, और मेरे साथ हैं
1: प्रीति श्रीवास्तव।
0: स्वीकार करें हमारा नमस्कार। प्रीति, बहुत ही खूबसूरत सी सुबह है, मंगलवार का दिन है और ज्येष्ठ माह का
1: चौथा मंगलवार है।
0: आज चौथा मंगलवार है और इस दिन हम अपने मंगलवार और शनिवार को उनका पसंदीदा कार्यक्रम आज सुबह लेकर आते हैं। और सबसे पहले बात, एक बहुत ही प्यारी सी बात
1: नंदिनी, बात यह है कि दूसरों को अपने बारे में सफाई देकर अपना वक्त बर्बाद ना करें। लोग उतना ही समझते हैं जितनी उनकी समझ होती
0: है। क्या बात है, कितनी सुंदर बात आपने कही प्रीति।

0: कि आदमी अपने आप से ही दूसरे का आकलन करता है, सब
1: आकलन
0: उसको
1: करता है,
0: देख के
1: बिल्कुल
0: आकलन करता है, अपनी समझ के हिसाब से ही उसके बारे में समझता है, सोचता है। और क्योंकि हम लोग बहुत जजमेंटल हो जाते हैं,
1: जजमेंटल
0: किसी को
1: होते हैं।
0: देखते ही, उसकी बातें सुनते ही उसको जज करने लगते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगी, पैरों
1: बिल्कुल
0: से कांटा निकलने के बाद चलने में जो मज़ा आता है, वही मज़ा मन से अहंकार निकलने के बाद जीवन जीने में आता है।
1: क्या बात है नंदिनी, सुबह सुबह इतनी बढ़िया बात आपने बता दी हम लोगों को और हमारे श्रोताओं को कि मन से अहंकार का कांटा निकल जाए। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है,
0: बहुत मुश्किल है, बहुत
1: अहंकार निकलना
0: मुश्किल।
1: दूसरों के सामने आप अपने आप को
0: बिल्कुल
1: छोटा नहीं
0: अपने
1: समझना,
0: मैं को
1: मैं को खत्म
0: छोड़
1: करना
0: देना, खत्म कर देना बड़ा
1: बहुत
0: मुश्किल है। लेकिन अगर इस पे प्रयास किया जाए तो व्यक्ति निसंदेह अपने मैं को पीछे रख कर, अगर अपने संबंधों को, अपनी सूझबूझ
1: सूझ
0: को
1: रख के
0: आगे
1: रखे।
0: रखे, तो जीवन बहुत ही खुशहाल और सुंदर बन जाएगा।
1: बिल्कुल सही बात है।

0: ये खूबसूरत गीत नंदिनी है फिल्म खोटे सिक्के का, और जिसे गाया किशोर कुमार ने, संगीत है आर डी बर्मन साहब का और गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी।
1: और ये गीत राग खमाज पर आधारित है। जल्दी से राग खमाज के बारे में भी बता देते हैं। खमाज थाट का आश्रय राग है ये। इसके आरोह में ऋषभ रे वर्जित होता है और दोनों निषाद शुद्ध और कोमल का प्रयोग होता है, जबकि
2: अवरोह में सातों स्वर लगते हैं।

0: देखो प्रीति, आदमी को लोग चाहे जैसे भी जज करें, लेकिन उसको जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए।
1: और देखो, आगे बढ़ने की बात से आया कि 2026 बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है हमारे लिए। हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है और हर जानकारी मूल्यवान है।
0: बिल्कुल।
1: तो चूंकि 2026 में जन जन की गिनती से देश की प्रगति तक का

0: ये सफर एक आंकड़ा ही नहीं होगा बल्कि हर नागरिक की पहचान और भागीदारी का भी प्रतीक होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो जनगणना वो आईना है जिसमें देश अपनी वर्तमान तस्वीर और भविष्य की संभावनाएं देखता है। तो आइए इसी विषय पर सुनते हैं एक बातचीत अजीत प्रताप सिंह से रमनप्रीत सिंह की।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम विशेष चर्चा करने वाले हैं जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान पर जो देश की विकास योजनाओं और नीतियों की आधारशिला मानी जाती है। इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अजीत प्रताप सिंह जी, जो कि जनपद बाराबंकी में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, परंतु जनगणना जैसे इस महत्वपूर्ण विषय पर उनको पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। तो आइए सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद। और आकाशवाणी लखनऊ के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: सर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर जनगणना करने की आवश्यकता क्या है और ये किस लिए इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है।
3: देखिए, किसी भी देश की जो सरकार है या जनता है तो उसके बारे में जो योजनाएं बनती हैं और किसको किस चीज की आवश्यकता है, इसके लिए सबको पता होना चाहिए कि एक परिवार है या देश है तो कितनी आबादी वहाँ पे है, क्या संसाधन है वहाँ पे हैं और किस तरह के वहाँ पे लोग रहते हैं और क्या क्या उनको चाहिए और क्या कमियां उनके पास में है और कौन चीज उपलब्ध है। तो इसकी गणना के लिए जनगणना का ये कॉन्सेप्ट लाया गया है।
2: मतलब देश के विकास के लिए जनगणना आवश्यक है।
3: जी जी।
2: आप हमारे श्रोताओं को अजीत जी ये बताइए कि जनगणना 2027 के कितने चरण हैं और ये कब से कब तक चलने वाले हैं।
3: देखिए, जो जनगणना 2027 है इसके मुख्यतः दो चरण हैं। पहला चरण हमारा शुरू हो गया है और ये 7 मई से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो मकान गणना होनी है 22 मई से 22 जून तक। उसके पहले एक अवसर दिया गया है, एक व्यवस्था की गई है कि सभी लोग जो परिवार के लोग हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मकानों की गणना स्वगणना के माध्यम से कर सकता है। तो वो गणना खुद करना है, उसको एंड्रॉयड फोन होना चाहिए या स्मार्टफोन होना चाहिए। उसमें आप जब पूछेंगे गूगल से कि स्वगणना करना है तो अपने आप बड़े सामान्य ढंग से वो दे देगा।
2: तो वेबसाइट पे जाना है,
3: वेबसाइट का नाम है se.census.gov.in। इस पे लॉगिन करेंगे तो सब कुछ खुल के आ जाएगा।
2: ठीक है।
3: और अगर बहुत जानकार कोई नहीं है, सामान्य जनता है, तो केवल इसे गूगल पे या क्रोम पे जाके पूछ ले कि मुझे स्वगणना करना है कैसे करें, तो तुरंत खुल के आ जाएगा, डिटेल बता देगा।
2: ठीक है। मतलब इसके लिए आपके पास स्मार्टफोन होना जरूरी
3: है। स्मार्टफोन होना ये पहली शर्त।
2: तो अगर जनगणना 2027 में आपको भाग लेना है तो सबसे पहले आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, यानी स्मार्टफोन जरूरी है। अभी आपने एक शब्द का प्रयोग किया मकान गणना
3: जी,
2: इसी को स्वगणना भी कहते हैं।
3: नहीं, देखिए, जो पूरी जनगणना 2027 है इसके दो चरण हैं
2: जी।
3: पहले चरण में हमें मकानों की गणना करना है
2: जी,
3: और मकानों की गणना तो प्रगणक करेंगे
2: जी जी,
3: जो प्रगणक के पॉइंट है उस क्षेत्र के, एक निश्चित क्षेत्र होगा उसके प्रगणक करेंगे आके 22 मई से 22 जून तक। लेकिन उसके पहले एक व्यवस्था दी गई है जनगणना में पहली बार, क्योंकि ये डिजिटल जनगणना है और ये पेपरलेस है, पहली बार की गई है, तो इसमें एक ऑप्शन और दिया गया है लोगों को कि आप अपने मकानों की गणना का स्वगणना भी कर सकते हैं।
2: इस स्वगणना के बारे में हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताइए
3: जी। ऐसा मैंने बताया कि स्मार्टफोन एक जरूरी है इसके लिए, ये उस परिवार के व्यक्ति का भी हो सकता है, वो किसी से मांग सकता है, दूसरे के फोन से भी कर सकता है, लेकिन एक मोबाइल नंबर, परिवार के किसी सदस्य का मोबाइल नंबर जरूरी है इसकी स्वगणना के लिए। क्योंकि जब इसमें लॉगिन किया जाएगा तो एक ओटीपी आएगी, ओटीपी उसी नंबर पे आएगी जो मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा, तो उस ओटीपी से फिर आगे के चरण खुलते जाएंगे इसमें, और उसमें धीरे धीरे करके वो जो भी सूचनाएं मांगेंगे तो परिवार का जो मुखिया होगा उसका पहला नाम होगा, नाम पड़ेगा, और उसके बाद में फिर जो भी 34 प्रश्न इसमें आएंगे उसमें बहुविकल्पीय होंगे, हर प्रश्न के आगे जो है विकल्प होंगे कि क्या चीज है आपके पास में।
2: मतलब श्रोताओं को यहां बता दें कि 34 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए ऑप्शंस आपके पास होंगे।
3: हाँ, उसमें ऑप्शन आएगा।
2: ठीक है। तो जनगणना यानी लोगों की गणना कब से प्रारंभ हो रही है?
3: देखिए, जो पहला चरण है ये मकान गणना हमारा 22 जून को पूरा हो जाएगा, और उसके बाद में जो लोगों की गणना होगी, व्यक्तियों की गणना की जाएगी, वो फरवरी में होगी, फरवरी 2027 में, और उसका जो अंतिम तिथि होगी वो 31 मार्च का रात का 12 बजे का समय होगा। उस समय बिल्कुल जो वास्तविक संख्या होगी उसको दर्ज करके और उसके बाद में इसको क्लोज कर दिया जाएगा।
2: अजीत जी, आप ये बताइए कि आपके अनुसार जनगणना में आम जन की क्या भूमिका है?
3: देखिए, जैसा मैंने बताया कि हमारा जो भारत देश है दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाला देश है आज की तारीख, तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है अपने देश के प्रति और दुनिया के प्रति। जो भी हमारे कार्यक्रम है, ये तो बहुत ही राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम है जनगणना, इससे गवर्नमेंट को बहुत मदद मिलती है योजनाएं बनाने के बारे में, और उन्हें पता है इससे कि क्या संसाधन हमारे देशवासियों के पास में है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर हम लोग इसमें भाग लेंगे, और जैसे आपकी पहली बार व्यवस्था की है, अभी तक क्या होता था कि प्रगणक आए, सुपरवाइजर्स आए और उन्होंने आपसे पूछा और कर लिया और चले गए, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है अभी मकान गणना की पहले भी स्वगणना का, और मुझे लगता है कि अगला जो चरण होगा उसमें भी स्वगणना का एक समय दिया जाएगा। तो स्वगणना से होता क्या है कि एक्यूरेसी बढ़ती है, हमको पता है कि हमारे

0: परिवार में क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि मेरा मकान बना हुआ है तो उसकी दीवार किस चीज की है, हमें ज्यादा पता है। दूसरा कोई अगर आएगा तो हो सकता है उस समय मैं घर में ना उपस्थित हूँ, जानकार व्यक्ति ना हो, कोई दूसरा होगा तो उस समय हो सकता है वो कुछ जानकारी उतनी अच्छी ना दे पाए,
1: या जितने लोग नियुक्त भी किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, हो सकता है वो सभी जगह ना पहुंच पाए।
0: नहीं नहीं, एक भी मकान नहीं छूटेगा, एक भी व्यक्ति नहीं छूटेगा, लेकिन एक्यूरेसी के लिए हम घर के मुखिया अगर हैं, हम जवाब दे रहे हैं तो हमारे घर के बारे में, हमारे जो परिवार में संख्या है, लोग हैं, उनके बारे में हम सटीक जानकारी दे पाएंगे। तो वो सटीक जानकारी जब हम उसमें इन्वॉल्व होंगे तो ज्यादा बेहतर डेटा मिल जाएगा जनगणना के लिए और उसका उपयोग बहुत बेहतर ढंग से आगे हो सकेगा।
1: श्रोताओं, आपने सुना कि आम जन की क्या भूमिका जनगणना में हो सकती है। उम्मीद है आप इस चीज को फॉलो करेंगे। अजीत जी, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, संदेश तो यही है कि बहुत बड़ा कार्यक्रम है, हमारा देश सबसे ज्यादा आबादी वाला है और गणना अगर एक्यूरेट होगी, उसमें सबका योगदान रहेगा, बिल्कुल सही तथ्य सामने आएंगे, तो हमारी जो सरकार है वो 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेके चल रही है, तो उस आधार पर ये जनगणना बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अब हमारे पास 2027 के बाद 47 का 20 वर्ष बचा है और 20 वर्ष में जो डेटा आ जाएंगे उस डेटा के माध्यम से गवर्नमेंट को नीतियां बनाने का, उनको लागू करने का बहुत ही सरल उपाय गवर्नमेंट के पास रहेगा और बहुत बेहतर तरीके से लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। मेरा अनुरोध है सभी जितने देशवासी हैं कि ये जनगणना में जो भी जानकारी आप देंगे प्रगणक को, ये आप पूरी तरह से गोपनीय रहेगी, इसका ना तो पुलिस इस्तेमाल कर सकती है ना किसी कोर्ट में ये साक्ष्य के तौर पे हो सकता है, तो इसमें कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है, आपकी जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रहेगी, इसको कहीं से भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, इसलिए आप सही से सही जानकारी दें, अच्छी से अच्छी जानकारी दें, जिससे कि बेहतरीन डेटा बन सके और जनगणना का कार्य पूरा हो सके।
1: तो श्रोताओं, अजीत जी ने जनगणना 2027 के विषय में हमें आज बहुत ही ज्यादा उपयोगी जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस जानकारी से काफी फायदा पहुंचेगा। आप हमारे कार्यक्रम को इसी प्रकार सुनते रहिए। अजीत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जनगणना 2026 पर अजीत प्रताप सिंह से रमन प्रीत सिंह की बातचीत। और प्रीति, बात तो बिल्कुल सही है जैसा इन्होंने कहा कि सहयोग कीजिए और जो भी जानकारी आपके घर लेने आए, जनगणना अधिकारी जो भी आए, उनको सही और सटीक जानकारी दीजिए।
3: सटीक जानकारी, और आपकी ये जानकारियां हमारे और आपके भविष्य के लिए ही लाभकारी होगी। हम सही सही आंकड़ों का से अपना आकलन कर सकते हैं। और अब आकलन भाई मौसम का भी होना चाहिए।
2: बहुत जरूरी है,
3: बहुत गर्मी बेहाल है पूरा लखनऊ, क्या पूरा आधा देश बेहाल हो रखा है।
2: बिल्कुल बिल्कुल बेहाल हो रहे हैं। और मोहम्मद दानिश जी की तरफ हम बड़ी आशा से देखते हैं, उनसे बात करते हैं,
3: अच्छी बात बताएं,
2: कुछ अच्छी बात वो देंगे, खबर बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी, आइए उनसे करते हैं बातचीत। दानिश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया हमारे श्रोताओं को बताएं कि अगले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश का मौसम का हाल कैसा रहेगा।
4: बात करें तो जैसा कि मौसम अभी साफ रहेगा, थोड़ा रहेगा, मौसम में तब्दीली आएगी, जैसे कि पश्चिमी शत्र है, परसों से तापमान धीरे धीरे कमी आएगी और परसों से ही वर्षा की संभावना अच्छा है, मतलब कहीं ना कहीं अब यहाँ से आने वाले अच्छी।
2: अच्छा, मतलब अब मौसम में काफी हमें राहत मिलने वाली है। और जी जी जी जी, चलिए दानी जी, आप जुड़े कार्यक्रम में और इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
3: चलिए, एक राहत की बात की दानिश जी ने बता दी कि इंतजार करिए, तापमान में कमी आएगी और जून में अच्छी बारिश
2: भी मिलेगी,
3: तो थोड़ा अब तब के ही तो मजा मिलता है, तो
2: तपने के बाद ही देखो निखरता है, सोना बनता है, तो हम लोग सोना बन जाएंगे।

0: श्रोता, आप ये जो गीत सुन रहे हैं इसे हमने लिया है फिल्म रजनीकांता से, जो 1974 में आई थी। गायिका लता मंगेशकर, संगीत सलिल चौधरी का और गीतकार राजेंद्र कृष्ण।
1: आंटी, आप कहानी सुनाओगी?
2: जरूर सुनाऊंगी, इधर आओ। बोलो, कौन सी कहानी सुनोगे?
1: तोते और बंदर की।
2: अच्छा, जरूर सुनाऊंगी।

0: और नंदिनी, ये राग मिश्र पीलू पर आधारित था ये खूबसूरत गीत। और मिश्र पीलू मुख्य रूप से ठुपरनरी, टप्पा, दादरा और गजल जैसी उप शास्त्रीय विधाओं में गाया जाता है, जिसमें अन्य रागों के स्वर का हल्का मिश्रण करके इसे अधिक भावपूर्ण बनाया जाता है।
1: और प्रीति, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी हमारे श्रोताओं को। और अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इतिहास हर दिन का बहुत अलग होता है, बड़ा रोचक होता है, तो कुछ बातें इतिहास की बताइए हमारे श्रोताओं को। सबसे पहले आप क्या बताना चाहेंगे?
0: सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि 1999 में भारत की अंतरिक्ष रिसर्च संस्थान इसरो ने भारत, जर्मनी और दक्षिण कोरिया के 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्षी कक्षा में स्थापित किया गया था।
1: उसके अलावा 1969 में अपोलो 10 के अंतरिक्ष यात्री 8 दिनों की सफल अंतरिक्ष यात्रा के बाद सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए। ये मिशन चंद्रमा पर पहली मानव लैंडिंग से पहले किया गया अंतिम ड्रेस रिहर्सल था पृथ्वी पर, ये जो लौटे थे लोग।
0: और क्रिकेट वाले तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं इस दिन को याद करके। साल 1999 में ही इंग्लैंड के टाटन में खेले गए आईसीसी क्रिकेट विश्व कप मुकाबले में सौरभ गांगुली और राहुल द्रविड़ ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे विकेट के लिए 318 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी की थी। और नंदिनी, यह एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में किसी भी विकेट के लिए पहली 300 से अधिक रनों की साझेदारी थी।
1: क्या बात है।

0: 1994 में गायिका थी कविता कृष्णमूर्ति, संगीत था आर डी बर्मन का और गीतकार थे जावेद अख्तर। रागदेश में बना था ये गीत।
1: और रागदेश के बारे में बता दें कि ये खमाज थाट का प्रयोग होता है इसमें, जिससे इसकी जाति औड़व संपूर्ण बनती है और इसका वादी ऋषभ रे और संवादी पंचम प है। और जैसे कि प्रीति हमने बात की, हमारे शहर में भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती है, तो कार्यक्रम होते रहते हैं और हम अपने श्रोताओं को हमेशा कहते रहते हैं कि जाइए, इनमें भाग लीजिए, घर से बाहर निकलिए और अपने सोशल लाइफ को खूब इन्जॉय कीजिए।
0: लेकिन आज एक और ख़ास बात है, आज का दिन बहुत अच्छा है लखनऊ के लिए कि आज ही हमारे शहर के राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर के ठकराल जी को पद्मश्री सम्मान से नवाजा
1: गया है।
0: और ये खबर आज की पहली खबर है पृष्ठ में लखनऊ के।
1: बिल्कुल, और ये हम सभी के लिए बड़ा ही गौरव का पल है कि एक और
0: लखनऊ में
1: पद्म पुरस्कार हमारे शहर में आया है।
0: और दूसरी चीज की आज है ज्येष्ठ मास का चौथा मंगलवार, और जैसा हम सब जानते हैं कि ये पर्व ही नहीं बल्कि सेवा श्रद्धा और लखनऊ की गंगा जमुनी तहजीब संस्कृति का प्रतीक बन चुका है। और लखनऊ से बाहर जाने वाले भी नंदनी इसको बहुत मिस करते हैं और पूरा शहर इस आयोजन में आज मगन हो रहता है। सुबह से हमें दिख भी रहा था।
1: बिल्कुल, और एक अलग माहौल होता है वो भक्ति में, और जो एक शक्ति है ना वो आपको यहाँ की हवा में, आपको जहाँ भी जाएंगे वहाँ वो महसूस होगी, वो एहसास आपको जरूर मिलेगा।
0: धर्म केवल पूजा से नहीं होता बल्कि दूसरों की मदद
1: बिल्कुल
0: में भी बसता है।
1: ये जो भंडारे लगते हैं, ये आयोजन होते हैं, इसके पीछे का भाव तो यही है कि दूसरों की सहायता
0: की जाए,
1: पेट भोजन खिलाना। हमारे सनातन में तो इसको बहुत पुण्य का, बल्कि किसी में भी
0: किसी को भी भोजन कराना
1: पानी पिलाना, तो
0: और इतनी चलचलाती गर्मी में अगर आप ज्येष्ठ माह में,
1: बिल्कुल
0: तो ये पर्व सेवा प्रेम और मानवता का उत्सव तो है ही, जहाँ हर हाथ सेवा में जुड़ता है और दिल में उमड़ती है बजरंग बली की भक्ति और उनका नाम।
1: बिल्कुल, बहुत प्यारी बात बताई आपने।
0: और इसके साथ एक और बात हम बता दें, आज का जो कार्यक्रम है ग्राम पंचायत दरियापुर इंटौजा में दोपहर 12 बजे यहाँ पर नव निर्मित पंचायत का जो अन्नपूर्णा भवन है उसका उद्घाटन है, तो जो लोग आसपास के हैं ऐसी जगह जरूर जाएं, आप शामिल हो सकते हैं इस कार्यक्रम में। और दूसरा कि आकांक्षा थिएटर आर्ट्स लखनऊ और श्रद्धा मानव सेवा कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में नाटक द सिडिक्शन का मंचन का आनंद भी आप लखनऊ के नागरिक ले सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान गोमती नगर में शाम 7 बजे से।
1: तो बिल्कुल इन आयोजनों में जाइए, अपनी भागीदारी बिल्कुल दर्ज कराइए और इंजॉय कीजिए इन कार्यक्रमों को,
0: और हमें भी सुनते रहिए और आगे भी सुनिए।
1: बिल्कुल,

0: श्रोताओ, आप ये जो गीत सुन रहे हैं इसे हमने लिया है फिल्म नायक से, जो 2001 में आई थी। गायक उदित नारायण और अलका याग्निक, गीतकार आनंद बख्शी और संगीत दिया है एआर रहमान ने।
1: और मैं आपको बता दूं, ये राग भूपेश्वरी पर आधारित है। ये ऑर्डर 5 स्वरों वाला राग है जिसमें स्वरों का प्रयोग सूक्ष्म होता है, इससे इसकी कठिन सटीक सरगम तय करना भी कठिन होता है।

0: और श्रोताओं, अब समय हो गया है कि चला जाए, आपको नमस्कार कहा जाए। लेकिन चलने से पहले, जाने से पहले, हम आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे कि इस मौसम में अपनी सेहत का पूरा पूरा ध्यान रखें, पानी पीते रहें, हाइड्रेटेड रहें, घर से बाहर निकले तो खाली पेट ना निकले, कुछ ना कुछ खा के अवश्य निकले और स्वस्थ रहें और जुड़े रहें
1: हम लखनऊ से साथ, और हमारे साथ भी आगे के कार्यक्रमों में। समय समाप्त होता है, नमस्कार।
0: आज सुबह कार्यक्रम यही संपन्न हुआ, साथ ही समाप्त हुआ हमारा आज का नमस्ते लखनऊ। फिलहाल सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचार प्रभात सुनवाने के लिए आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। DGCA ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम CNG की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
3: राष्ट्रपति

0: द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटोक।
1: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, PPE किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: दिल्ली में CNG के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में CNG की नई कीमत 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। NDRF, SDRF, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतों गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्य

के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है।

0: पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
1: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे, जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
0: अमरीकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमरीका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है, जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61 करोड़ 75 लाख अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए, प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाई 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स्ड डबल्स में तनीषा क्रस्टो, ध्रुव कपिला और रोहन कपूर, रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं, ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, NTA ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्य ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट प्रकाशित की है।

0: Green card seekers left U.S. in state of anxiety, writes the Economic Times. City swelters, warmest May night in 14 years, says the Times of India. And finally, the Tribune cites Chhattisgarh government turns former Naxal-hit areas into tourist hubs, with tribal culture helping the communities develop a sense of ownership while generating income. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Quad Foreign Ministers meeting to be held in New Delhi today. President Draupadi Murmu to embark on a three-day visit to Sikkim beginning today. More than 300 tourists stranded in Gulmarg Gondola in Jammu and Kashmir rescued after technical snag halted its operations. DGCA issues directives for airlines after Ebola outbreak declared health emergency by WHO. CNG price hiked by 2 rupees per kg in Delhi. India thrashed Maldives 11-0 in their opening Group B match of SAF Women's Football Championship. And in IPL cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru to take on Gujarat Titans this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कली मेहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। क्वाड मुल्कों के उजराए खारजा की मीटिंग आज नई दिल्ली में होने वाली है। सदरे जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी की वजह से इसके रुक जाने के बाद से वहां फंसे हुए 300 से ज्यादा सयाहों को बचा लिया गया है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टोरेट जनरल ने आलमी सेहत तंजीम की जानिब से इबोला वबा को सेहत इमरजेंसी करार दिए जाने के बाद एयरलाइंस के लिए हिदायत जारी की हैं। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा किया गया है। गोवा के मारगांव में ख्वातीन की सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने ग्रुप बी के अपने पहले मैच में मालदीव को 11 गोल से करारी शिकस्त दी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड मुल्कों के उजराए खारजा की मीटिंग की मेजबानी करेंगे। इसमें ऑस्ट्रेलिया की वजीर खारजा पेनी ओंग, जापान के वजीर खारजा तोशीमित्सु मोतेगी और अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो शिरकत करेंगे। ये उजरा मुख्तलिफ तरजीही शोबों में क्वाड इश्तराक को आगे ले जाने पर तबादला ख्याल करेंगे, मौजूदा क्वाड इकदामात की पेशरफ्त का जायजा लेंगे और भारत बहरुलकाहिल खित्ते के हालात व वाकयात नीज बाहमी दिलचस्पी के दीगर बैनुलअक्वामी उमूर पर गौर व फिक्र करेंगे। आज़ाद और खुले भारत बहरुलकाहिल खित्ते के क्वाड के नज़रिए के आइन मुताबिक ये उजराए खारजा पिछले साल 1 जुलाई को वाशिंगटन DC में मुनक़िदा बातचीत पर आगे कदम बढ़ाएंगे। ऑस्ट्रेलिया और जापान के उजराए खारजा कल नई दिल्ली पहुंचे हैं, जबकि अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भारत के 4 दिन के दौरे पर इस महीने की 23 तारीख को यहां आ गए थे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: क्वाड के वज़राए खारजा की ये मीटिंग एक ऐसे वक्त हो रही है कि जब आलमी सतह पर गैर यकीनी के हालात हैं और मगरबी एशिया का बहरान भी जारी है। भारत, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान पर मुश्तमिल क्वाड ग्रुप भारत बहरुलकाहिल खित्ते में अमनो सलामती और इस्तेहकाम पर तवज्जो मरकूस करते हुए एक कलीदी ग्रुप के तौर पर उभरा है। भारत क्वाड के मौजूदा सदरनशीं होने के नाते इसकी मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। क्वाड के मुल्क आलमी सतह पर फलाह बहबूद के लिए एक ताकत के तौर पर काम करने और खुले, आजाद और जामे भारत बहरुलकाहिल खित्ते की हिमायत के तई अहद के साथ यकजा हो रहे हैं। क्वाड ने एक मुसबत और अमली एजेंडा इख्तियार किया है, जिसमें सेहत की यकीनी फराहमी, आबो हवा की तब्दीली, अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों, नीज बहरी निज़ाम को मुस्तहकम बनाने जैसे मौजूदा मामलात और चैलेंजों पर तवज्जो मरकूस की गई है। दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
2: सदरे जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज

0: से सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी और कई मुकामात का दौरा करेंगी। सिक्किम सरकार ने उनका इस्तकबाल करने के लिए वसी इंतजाम किए हैं। सदर जमहूरिया शाम को गंगटोक में तिब्बती उलूम के नामग्याल इदारे में जाएंगी। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू कल नाथुला पास का दौरा करेंगे, जहां वो तैनात सिपाहियों के साथ गुफ्तगू करेंगी। कल ही वो गंगटोक में सिक्किम यूनिवर्सिटी के तकसीम असनाद तकरीब में शिरकत करेंगी। इस मौके पर तकरीबन 14,000 डिग्रियां पेश की जाएंगी। अपने दौरे के आखिरी दिन मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में एक तकरीब में सिक्किम पुलिस को सदर जमहूरिया के पुलिस परचम से सरफराज करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मुल्क के सरहदी इलाकों का दौरा करेंगे और सिक्योरिटी से मुतालिक मीटिंगें करेंगे। जनाब अमित शाह कल राजस्थान में बीकानेर पहुंचे। वजीर दाखिला आज सुबह बीएसएफ की सांचू सरहदी चौकी पर जाएंगे, जहां वो तैनात सिक्योरिटी फोर्सेज के अहलकारों से गुफ्तगू करेंगे और उनके लिए बहबूद की स्कीमों का इफ्तिताह करेंगे। दोपहर को जनाब अमित शाह बीकानेर में सरहदी खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे। जम्मू कश्मीर में मशहूर सियाहती मुकाम गुलमर्ग में बड़ी तकनीकी खराबी की वजह से गोंडोला रोपवे के रुक जाने के बाद से केबिन में फंसे हुए सभी सयाहों को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है। हुकाम ने बताया है कि केबल कार के 65 केबिन्स के अंदर 300 से ज्यादा सयाह फंसकर रह गए थे, जिनमें कुछ जमीन से तकरीबन 500 फीट की बुलंदी पर केबिन में मौजूद थे, जिससे ख्वातीन और बच्चों समेत सयाहों में बेचैनी फैल गई। फौरन ही इमरजेंसी इकदामात किए गए। SDRF, NDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज की चनार कोर और मुकामी इंतजामिया की टीमों ने मिलकर बचाव और इमदादी कार्रवाई अंजाम दी, जो 7 घंटे तक चली। सभी मुसाफिरों को बहिफाजत उतार लिया गया और किसी को कोई चोट नहीं आई। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने तकनीकी खराबी की वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात का ऐलान किया है और कहा है कि किसी तरह की कोताही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में डोरीमल इलाके के घने जंगलात में छुपे हुए मुश्तबह इंतहा पसंदों का पता लगाने के लिए तलाश की कार्रवाई आज चौथे दिन भी जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तसर फायरिंग के बाद दहशतगर्दों के एक ठिकाने का पता लगाया है। हफ्ते के रोज़ वहां दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान तसादुम शुरू हुआ था। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल ने कांगो और युगेंडा में इबोला बीमारी फैलने को आलमी सेहत तंजीम की जानिब से बैनुल अक्वामी तशवीश की सेहत आम्मा से मुतालिक इमरजेंसी करार दिए जाने के तनाजुर में एयरलाइंस के लिए हिदायत जारी की हैं। DGCA ने कहा है कि युगेंडा और कांगो के लिए परवाजें चलाने वाली फिजाई कंपनियों को मुसाफिरों के उतरने से पहले सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लाजमी तौर पर दाखिल करने और उन्हें वसूल करने को यकीनी बनाना होगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: DGCA ने फजाई कंपनियों के लिए ये लाजमी बना दिया है कि वो परवाजों के दौरान सेहत से मुतालिक मखसूस ऐलान नशर करें, ताकि मुमकिन एबोला केसों की जल्द निशानदेही हो सके और इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। मुसाफिरों से कहा गया है कि वो बुखार, कमजोरी, दर्द होने, सर में दर्द, गले में खराश और कह होने या खून बहने जैसी अलामतों के बारे में हवाई जहाज के अमले के अहलकारों के साथ साथ इमिग्रेशन या तिब्बी हुक्काम को पहुंचने पर इसकी इत्तला बिला ताखीर दें। DGCA ने कहा है कि अगर भारत पहुंचने के 21 दिन के अंदर इस तरह की अलामतें जाहिर होती हैं तो मुसाफिरों को मखसूस अस्पतालों से तिब्बी इमदाद हासिल करनी चाहिए और हवाई अड्डे के सेहत हुक्काम को मुत्तला करना चाहिए। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: दिल्ली में CNG की कीमत में 2 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा किया गया है। दिल्ली में CNG की कीमत 83 रुपये 9 पैसे फी किलोग्राम हो गई है, जिसका इतलाक आज सुबह 6 बजे से हो गया है। पंजाब में म्यूनिसिपल इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। रियासत में 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों, 75 म्यूनिसिपल कौंसिलों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: पंजाब के साल 2027 के असेंबली इंतखाबात से पहले इन म्यूनिसिपल इंतखाबात को एक अहम सियासी इशारे के तौर पर देखा जा रहा है। रियासत में हुक्मरां आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम बड़ी सियासी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। रियासती इंतखाब

0: आबाद रियासती इंतखाबी कमीशन के मुताबिक रियासत भर के कुल 1896 वार्ड से 7555 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। सख्त पुलिस इंतजाम के तहत वोट डाले जा रहे हैं। यहां 32,000 पुलिस अहलकारों को तैनात किया गया है। वोटरों की शिरकत बढ़ाने के लिए पंजाब हुकूमत ने एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। वोटों की गिनती 29 मई बरोज जुमा की जाएगी। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी से कोई राहत नहीं मिली है। कई मुकामात पर दर्जे हरारत 43 से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस के दरमियान चल रहा है। बुंदेलखंड खित्ता सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। वहां करीब करीब हर जिले में पारा 45 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है। जुनूब मगरबी मानसून के आज केरलम पहुंचने का इम्कान है। आमतौर पर मानसून 1 जून को केरलम पहुंचता है। मौसमियात महकमे ने केरलम के 14 में से 4 जिलों में कहीं कहीं शदीद बारिश होने के इम्कान के मद्देनज़र येलो अलर्ट जारी किया है। भारत समेत दुनिया भर के लाखों आजमीन आज सऊदी अरब में फरीज हज अदा कर रहे हैं। कल मनासिक हज के आगाज के मौके पर आजमीन हज मीना में जमा हुए और फजर की नमाज अदा करने के बाद आज वो तलबिया का विर्द करते हुए मैदान अराफात जा रहे हैं, जहां हज का रुकन आजम अदा किया जाएगा। ये आजमीन वहां तौबा इस्तगफार में दिन गुजारेंगे। आजमीन हज मस्जिद निमरा में खुतबे हज सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा रवाना होने से पहले जहर और असर की नमाज एक साथ अदा करेंगे। हुज्जाज इकराम कल सुबह मीना वापस आ जाएंगे, जहां वो शैतान को कंकरियां मारेंगे और जानवरों की कुर्बानी पेश करेंगे। अमरीकी फौज ने ईरान के साथ जंगबंदी के तनाजुर में आबनाए हुरमुज के नज़दीक ईरान के मिज़ाइल लॉन्च करने के ठिकानों और कश्तियों को निशाना बनाते हुए अपने दिफा में हमले किए हैं। अमरीका की सेंट्रल कमान के तर्जुमान तिमोथी हॉकिंस ने कहा कि इन हमलों में ईरान की उन कश्तियों को निशाना बनाया गया जिनके जरिए वहाँ बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिशें की जा रही थीं। उसने ये भी कहा कि अमरीकी फोर्सेज जंगबंदी के दौरान अपने फौजियों का दिफा करते हुए जब्तो तहमुल से काम लेती रही हैं। इस हमले के चंद घंटे कबल अमरीका ने ईरान के साथ जंगबंदी मुजाकरात में पेशरफ्त होने की बात कही थी। ईरान के सदर मसूद पेजिश्कियान ने मुल्क में इंटरनेट खिदमात बहाल करने का हुक्म दिया है। ईरानी हुकाम ने 87 से ज़्यादा दिन के लिए मुल्क में इंटरनेट खिदमात पर तकरीबन मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी थी। गोवा के मारगांव में ख्वातीन की सैफ चैंपियनशिप में भारत ने ग्रुप बी के अपने पहले मैच में मालदीप को 11 गोल से करारी शिकस्त दी। मालदीप की टीम कोई भी गोल नहीं कर सकी। अविका सिंह ने 4 गोल किए जबकि प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल किए। भारत अब इतवार को अपने अगले मैच में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश का सामना करेगा। भारत ख्वातीन की सैफ चैंपियनशिप 5 मरतबा जीत चुका है। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मैच में जीतने वाली टीम सीधे आईपीएल के फाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 खेलने का मौका मिलेगा। कल शाम 7:30 बजे मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में इलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसमें हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जबकि जीतने वाली टीम क्वालिफायर 2 में पहुंच जाएगी। भारत के सरकर्दा खिलाड़ी लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में भारत की क्यादत करेंगे। दीगर भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी, किदांबी श्रीकांत और एचएस प्रणॉय भी इस टूर्नामेंट में खेलेंगे। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
2: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनाकिदा तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता किए। अदाकार धर्मेंद्र को बाद अज मर्ग पद्म विभूषण से नवाजा गया। इस खबर को कई अखबारात ने अपने पहले सफ़े पर अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, मनासिक हज का बाकायदा आगाज, रुकन आजम वकूफ अरफा आज। हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो आगरा पहुंचे और अपनी अहलिया के साथ ताजमहल का दीदार किया। इसी अखबार की एक और अहम सुर्खी है, वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अफ्रीका डे पर मुबारकबाद पेश की।

0: शराकत दारी को मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। इसके अलावा आज के अखबारात की अहम बैनुल अक्वामी खबरों की सुर्खियां इस तरह हैं, ईरान से मुआहदा न हुआ तो जंग दोबारा शुरू होगी, सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, रूस का कीव पर फिर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला, 4 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी।
1: खास खास खबरें एक बार फिर, क्वाड मुल्कों के वज़राए खारजा की मीटिंग आज नई दिल्ली में होने वाली है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी की वजह से इसके रुक जाने के बाद से वहां फंसे हुए 300 से ज्यादा सयाहों को बचा लिया गया है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल ने आलमी सेहत तंजीम की जानिब से इबोला वबा को सेहत इमरजेंसी करार दिए जाने के बाद एयरलाइंस के लिए हिदायत जारी की हैं। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा किया गया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्र एवं ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नंदिनी मिश्रा का नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम में आपको भेज देना है अपना मेल, अपनी फरमाइश उसमें लिख भेजनी है कि कौन सा फिल्मी नगमा आप सुनना चाहते हैं और हम आपको सुनवाएंगे आपके पसंदीदा नगमे। अब जल्दी से हमारा ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। तो बस फटाफट लिख भेजिए अपनी इलेक्ट्रॉनिक पाती और हम आपको आपके पसंदीदा गीत सुनवाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फरमाइश जो हमारे पास आई है वो आई है मेरठ कैंट से। दिग्दर्शन कविता राधा नामदेव, संजय ढिंगिया, संदीप मक्कड़, अनिल जैन और दर्शन भाई की फरमाइश आई है। इसके अलावा हमारे पास गांव नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा, राहुल शर्मा की फरमाइश आई है। और हमारे पास फरमाइश आई है ग्राम पिपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा की आपने अपनी फरमाइश भेजी है। इसके अलावा हमारे पास आई है फरमाइश चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा की। और हमारे पास फरमाइश आई है गांव टोरोवाल जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी की। और फरमाइश आई है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी की फरमाइश आई है। ये फरमाइश है जिला नांदेड़ यातामाला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल और दुर्गेश्वरी जायसवाल की ये फरमाइश आई है। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज की। आप सब सुनना चाहते हैं सुरेश वाडकर की आवाज़ में फिल्म सदमा का ये गीत।

और कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आई है नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस डाक बाबू बेगम इशरत अकरम वसीम अकरम रुबीना वसीम आरिस वसीम।

0: श्रोता, आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत अपनी दोस्त नंदिनी मिश्रा के साथ। और कार्यक्रम में अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है वो आई है अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाकठक की फरमाइश आई है। इसके अलावा हमारे पास मेल आया है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकोस्टो, रोजी डिकोस्टो, पर्ल डिकोस्टो और विलियंस डिकोस्टो की आप सबने फरमाइश भेजी है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रसीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी, सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी, इशरत परवीन, आप सबने अपनी फरमाइश भेजी है और आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और हमारे पास फरमाइश आई है बाराबंकी से राजा कटरा तालिब अंसारी की, ये फरमाइश आई है। अगली फरमाइश है नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी और पायल जोशी जी, गुजरात गांधी ग्राम प्रवीण सोनी कलावती सोनी की फरमाइश आई है। ये फरमाइश है गांव जाखुद से शंभु दयाल खटक, विमला देवी, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक की। अगली फरमाइश है बुलडाढ़ा वटशिंगडी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार की। बुलडाढ़ा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमेध कुमार की। आप सब सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म कोरा कागज़ का ये गीत।
1: मेरा

0: नमस्ते प्रिंसिपल साहब हैं घर में?
1: पापा तो मम्मी के साथ बाहर गए हैं।
0: ये किताब उन्हें दे दीजिएगा और कह दीजिएगा कि मैं आया था।
1: दीदी से नहीं मिलेंगे? ऊपर है।

और धीरे धीरे कार्यक्रम के अंतिम पायदान की ओर हम बढ़ रहे हैं श्रोताओं, और लगातार आपकी ढेर सारे मेल्स हमें प्राप्त हो रहे हैं और हम प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों के मेल्स हम शामिल कर सकें कार्यक्रम में। अगली फरमाइश हमारे पास आई है नेहा वर्मा की। अर्पिता, हर्षिता, अंजलि, सुधाकर, कोमल, सियाराम, गैरपुर, बमनाखेड़ा, ज़िला हरदोई से आपने अपनी फरमाइश भेजी है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है जलालाबाद वेस्ट से, सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा की फरमाइश आई है। और ये मेल आया है जबलपुर मध्य प्रदेश से, अशोक सिंह, सुनीता सिंह, प्यारी गुड़िया, वेदा सिंह, रितु सिंह और प्रीति सिंह की। ये फरमाइश है ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलबीर सिंह की। आप सब ने अपनी फरमाइश कार्यक्रम में भेजी है। बघेल दुर्ग से संतोष नामदेव,

सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव की भी फरमाइश आई है हमारे पास। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा की फरमाइश आई है। और दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखे लाल वर्मा की। आप सब सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म बैराग का ये गीत।

पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा की। आप सब सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म बैराग का ये गीत।

लता मंगेशकर के गाए फिल्म बेरा के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, अब आपका मनपसंद कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत यही संपन्न होता है। अपनी दोस्त नंदिनी मिश्रा को दीजिए अनुमति फिर किसी और दिन नए गीतों के साथ नई फरमाइश के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। NCRT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

0: सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
0: 8700001-4242।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम अब से थोड़ी देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
4: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए हाथरस और रायबरेली जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं हाथरस जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश कुमार सिंघल का।
5: जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण कार्य की शुरुआत से हाथरस में हो गई है। इस अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी आवास से किया गया, जहां पर्यवेक्षक और प्रांगणकों ने जिलाधिकारी अतुल बस के आवास का सूचीकरण करते हुए मकान संख्या अंकित की। प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिले में मकान सूचीकरण जनगणना कार्य के लिए 3607 प्रांगणक और 472 पर्यवेक्षक तैनात किए गए। यह अभियान 22 मई से 20 जून तक चलाया जाएगा, जिसके तहत जिले के सभी मकानों और परिवारों का विवरण दर्ज किया जाएगा। जिले में पुलिस लाइन ऑडिटोरियल में जिले की प्रभारी मंत्री और महिला कल्याण बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य की अध्यक्षता में आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित हुए। इस मौके पर BLS इंटरनेशनल स्कूल की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया और BLS इंटरनेशनल स्कूल की छात्राओं ने नारी सशक्तिकरण पर आधारित नाटक कृष्ण लीला पर आधारित मनमोहक नृत्य व छात्र छात्राओं ने नारी शक्ति पर आधारित नुक्कड़ नाटक पर प्रस्तुति दी। प्रभारी मंत्री ने नवनियुक्त 225 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित कर बधाई एवं शुभकामनाओं के साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विकास भवन सभागार में अध्यक्ष उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग श्याम बिहारी गुप्ता की अध्यक्षता एवं सदस्य उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग रमाकांत उपाध्याय की उपस्थिति में गौ संरक्षण एवं अनुश्रवण समिति की बैठक अधिकारियों पदाधिकारियों के साथ करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि गौवंश संरक्षण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। जनपद में सिंचाई व्यवस्थाओं को सुदृढ़, सुचारू एवं प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से सिंचाई विभाग के अंतर्गत आने वाले समस्त खंडों के कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्टर सभागार में करते हुए जिलाधिकारी अतुल बस ने संबंधित अधिकारियों को कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में नहरों, नालों एवं नदियों की वर्तमान स्थिति, उनकी सफाई मरम्मत, जल प्रवाह अधिष्ठान में कार्यरत कर्मियों की स्थिति तथा नगर क्षेत्रों में नहरों, नदियों में गिरने वाली दूषित जल की समस्या पर गहनता से विचार करने के साथ ही जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को समस्त आवश्यक कार्यों व टेंडर प्रक्रियाओं को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार से समस्या का सामना न करना पड़े। जनपद में औद्योगिक विकास को गति देने एवं उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से कलेक्टर सभागार में जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति की बैठक करते हुए जिलाधिकारी अतुल बस ने उद्यमियों की समस्या का निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता पर समयबद्ध एवं गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित करने को कहा। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि उद्योग बंधु समिति केवल औपचारिक मंच नहीं, बल्कि उद्यमियों और प्रशासन के बीच प्रभावी संवाद एवं समाधान का सशक्त माध्यम है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल बस ने EVM BVPAT वेयर हाउस के मासिक निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लिया। EVM BVPAT वेयर हाउस के मासिक निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारियों ने CCTV कैमरे, सशस्त्र बलों की तैनाती, अग्निशमन उपकरणों आदि व्यवस्थाओं को निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जल निगम ग्रामीण के अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक कलेक्टर सभागार में मुख्य विकास अधिकारी PN दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि ग्रामीण पेयजल योजना का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। उन्होंने नामित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति, पूर्ण या अपूर्ण कार्यों

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और

0: को अनारंभ परियोजना की बिंदुवार समीक्षा की। विश्व हिंदू परिषद जनपद हाथरस द्वारा तालाब चौराहे स्थित कार्यक्रम स्थल पर 101 पानी की टंकियों का लोकार्पण, कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी अतुल भट्ट, पुलिस अधीक्षक चंजीव नाथ सिन्हा, मुख्य विकास अधिकारी एवं अन्य अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने कहा, भीषण गर्मी के दृष्टिगत पशु पंछियों एवं गौवंशों के लिए पेयजल की व्यवस्था करना एक पूर्ण एवं मानवीय कार्य है। जल संरक्षण एवं जीव जंतुओं की सेवा के उद्देश्य से स्थापित की जा रही पानी की टंकियां नान समाज में सेवा संवेदनशीलता ये माननीय मूल्यों को का संदेश देंगी।
1: हाथरस जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं रायबरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है पंकज सिंह का।
2: जिलाधिकारी सरनीत कौर रोका की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में सुचारू एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से बैठक आयोजित की गई। बैठक में विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा आंधी तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हुई विद्युत लाइनों को रिस्टोर कर विद्युत आपूर्ति बहाल किए जाने की प्रगति की तहसीलवार समीक्षा प्रस्तुत की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जिन क्षेत्रों में आंधी तूफान के कारण विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं वहां मरम्मत कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए विद्युत विभाग पूरी तरह तत्परता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील महाराजगंज में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जनसामान्य की शिकायतों का स्थानीय स्तर पर समाधान किया जाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके क्रम में तहसील व थानों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। इसमें स्थानीय नागरिक उपस्थित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी जनता की इन शिकायतों का निस्तारण त्वरित एवं समयबद्ध तरीके से कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में यदि कोई समस्या है तो उसका कारण स्पष्ट करते हुए अवगत कराना सुनिश्चित किया जाए। मंत्री खाद्य एवं रसद विभाग तथा नागरिक आपूर्ति उत्तर प्रदेश डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने बीते 24 मई को एनटीपीसी उजाहर में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा तथा नागरिक आपूर्ति विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री जी ने जनपद में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, राशन कार्ड सत्यापन, पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध खाद्यान्न उपलब्ध कराने तथा विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र लाभार्थियों को शासन की योजनाओं का लाभ पारदर्शिता एवं सुगमता के साथ उपलब्ध कराया जाए। मंत्री जी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि गरीब एवं जरूरतमंद लोगों तक खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो तथा किसी भी स्तर पर अनियमितता एवं शिकायत की स्थिति उत्पन्न न होने पाए। जनपद में बढ़ रहे तापमान एवं भीषण गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी सरनीत कौर रोका द्वारा जनहित में हीट वेव लू से बचाव हेतु एडवाइजरी जारी की गई। जिलाधिकारी ने आम जन से सतर्कता बरतने तथा आवश्यक सावधानियां अपनाने की अपील की है। जिलाधिकारी ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार लगातार कई दिनों तक सामान्य से अधिक तापमान रहने पर हीट वेव की स्थिति उत्पन्न होती है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत गंभीर एवं खतरनाक साबित हो सकती है। विशेष रूप से वृद्धजन, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं तथा हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा एवं अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। खुले में कार्य करने वाले श्रमिकों एवं कामगारों को सिर एवं शरीर को गीले कपड़े से ढककर रखने तथा समय समय पर छायादार स्थान पर विश्राम करने के निर्देश दिए गए हैं। एडवाइजरी में दोपहर 12 से 3 तक अनावश्यक रूप से धूप में बाहर निकलने से बचने की विशेष अपील की गई है। जिलाधिकारी सरनीत कौर बोकर ने बताया कि भारत जनगणना 2027 के अंतर्गत प्रथम चरण में जनपद रायबरेली में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य विधिवत रूप से प्रारंभ कर दिया गया है। इस अभियान के तहत नियुक्त प्रगणक एवं सुपरवाइजर घर घर जाकर मकानों का सर्वेक्षण करते हुए सूचीकरण और गणना का कार्य कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने इस कार्य को गंभीरता एवं 100% सफलता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी मकान गणना से वंचित न रह जाए। जिला प्रशासन के अनुसार जनगणना देश के विकास की आधारभूत प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से जनसंख्या, आवासीय स्थिति, संसाधनों एवं सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े संकलित किए जाते हैं। इन आंकड़ों का उपयोग भविष्य की योजनाओं, सरकारी नीतियों तथा जनहितकारी कार्यक्रमों के निर्माण में किया जाता है। ऐसे में मकान सूचीकरण एवं गणना कार्य की सटीकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनपद में नियुक्त प्रगणक और सुपरवाइजरों ने आज से अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों में पहुंचकर मकानों का सत्यापन, सूचीकरण एवं गणना का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस दौरान टीम द्वारा प्रत्येक मकान की स्थिति, उपयोग, संरचना सहित निर्धारित प्रारूप के अनुसार आवश्यक विवरण संकलित किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सर्वेक्षण के दौरान कोई भी मकान छूटने न पाए, प्रक्रिया पारदर्शी, व्यवस्थित एवं समयबद्ध तरीके से संपन्न हो। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि
3: जनगणना 2027 है, उसका द्वितीय चरण हुआ है, जिसमें जो हमारे एन्यूमरेटर्स हैं वो डोर टू डोर जाकर हाउस की लिस्टिंग करेंगे। हाउस की लिस्टिंग यानी घर पर नंबर डालेंगे और उनको ब्लॉक के रूप में संगठित करेंगे, जिससे कि जब वो फिर से घर में जाएं तो वो प्रति घर जा पाए और कोई भी घर छूटने ना पाए। सभी से अनुरोध है कि इनके साथ सहयोग करें और जो इनके द्वारा दिए गए नंबर वगैरह हैं उसको

0: मिटाए ना, उसको मिटाना एक अपराध भी है।
1: जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने बीते 21 मई को विकास कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति का जायजा लेने हेतु निर्माणाधीन मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय बेलाभिला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता, निर्धारित मानकों एवं समयबद्ध प्रगति की जानकारी संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों से प्राप्त की।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: जिले की हलचल समाप्त हुई। प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देशगान। मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। हमारा अगला कार्यक्रम बस अब से थोड़ी ही देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू कार्यक्रम।
1: आपके बेहद पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान फरीदुल्ला खान आकाशवाणी रामपुर के मरकज़ से हाजिर है। सलाम मोहब्बत कबूल कीजिए। आप सबका तह दिल से खैर मकदम करते हैं। सामीन बज़्म, ये हमारे लिए खुशनसीबी है, आज हम बात कर रहे हैं रेडियो की बेमिसाल 90 साल। आज हमारे लिए एक और खुशनसीबी की बात यह है कि हमारे स्टूडियो में रामपुर की मौजिज़ शख्सियत और रामपुर क्या पूरे रोहिलखंड और पूरा उत्तर प्रदेश में एक जानी मानी शख्सियत के मालिक। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम आपको आपका तारुफ कराना चाहेंगे। आज हमारे साथ आकाशवाणी रामपुर के स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ज़हीर अली सिद्दीकी साहब। डॉक्टर ज़हीर अली सिद्दीकी साहब, आपका हमारे स्टूडियो में समीम कल्ब से खैर मकदम है।
2: शुक्रिया। मैं ये अर्ज़ करूँ अपनी बात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए
1: जी
2: कि हमारे वहाँ रियासत में जो नवाबीन रहे हैं
1: जी
2: उन नवाबीन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने जब कभी भी कोई प्रोग्राम किया या कोई नई ईजाद उन्होंने की या कोई चीज़ यहाँ कायम की तो उन्होंने अपनी उस डिग्निटी और उस नवाबी शान को भी कायम रखा और उसमें असर उनका और पैसा और वक्त जो कुछ भी सर्फ हुआ उन्होंने उसकी परवाह नहीं की और बहुत बेदरेक काम किया। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मेरी यह खुशकिस्मती है कि मैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर के खानवादे से हूँ
1: जी, बिल्कुल
2: मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नवासों में हूँ। ये दूसरी मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे जो उस्ताद मोहतरम थे डॉक्टर मलिकज़ादा मंसूर अहमद, जो बेताज बादशाह थे मुशायरों के,
1: जी बिल्कुल,
2: ये बहुत बड़ी बात है कि मैं उनके शागिर्दों में, और ये खुशकिस्मती है कि ऐसे शागिर्दों में कि मैं उनके फैमिली मेंबर की हैसियत से उन्हीं के घर रहता था।
1: क्या बात है, बहुत
2: ये
1: अच्छी बात।
2: तो नतीजा ये है, बल्कि मैं ज़िमनी तौर पर यह भी जिक्र करूं उनके खानवादे का कि उनकी वाइफ को हम सब बाजी कहते थे, चुनाचे मैंने भी बाजी कहना शुरू किया। तो बाजी जो थी वो ख़ुद बहुत पढ़ी लिखी खातून थी। दूसरी बात यह है, मोहम्मद अली ने जो सबसे बड़ा कारनामा अंजाम दिया वो ये अंजाम दिया कि उन्होंने ये दावा किया, अंग्रेज़ों से ये कहा कि जब आप इस मुल्क को छोड़ कर जाएंगे तो आपने चूँकि ये मुल्क हमसे लिया था
1: जी,
2: इसलिए जब जाएंगे आप ये छोड़कर तो ये हमें सौंप कर जाएंगे।
1: बेशक, बहुत अच्छी बात,
2: ये आप हमें सौंप कर जाएंगे। चुनाचे उन्होंने ऐसा ही किया और उन्होंने जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद अली गए तो उन्होंने कहा मैं यहाँ पर भीख मांगने नहीं आया हूँ।
1: क्या बात है,
2: मेरे सामने दो चीज़ें हैं, या तो मौत और यह आज़ादी का परवाना।
1: आज़ादी का परवाना,
2: मैं उसी वक्त अपने मुल्क को वापस जाऊंगा जब मेरे हाथ में आज़ादी का परवाना होगा।
1: क्या जज्बा था
2: ये। यही हुआ कि मौलाना मोहम्मद अली जब वहाँ से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्हें उनकी मर्ज़ी के मुताबिक

0: आज़ादी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने मौत को सीने से लगा लिया।
1: क्या
0: ये
1: बात
0: बहुत बड़ी शान की बात है।
1: जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि ऐसे मुजाहिद आज़ादी यहाँ पर पैदा हुए और उनकी परवरिश हुई बी अम्मा जो थीं, उनकी वालदा मोहतरमा, उनके हाथों से और उनके ही तेरे सरपरस्ती उन्होंने परवरिश पाई और ऐसा जज्बा पाया कि वो देखें आपके वो आज़ादी का परवाना मांगते थे या फिर मौत को गले लगाना,
0: हाँ,
1: लेकिन मौत को ही गले लगाया और शहीद हुए वहां पर। आपकी परवरिश रामपुर में हुई और रामपुर में आपने बहुत अच्छा दौर, बहुत अच्छा वक्त देखा है।
0: नवाबीन के
1: अच्छा, निकल
0: मैंने
1: चुका।
0: खास बाग में मुझे जाने का शर्फ मिला।
1: अच्छा
0: और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे बेगम साहब, नवाब रज़ा अली ख़ान साहब की जो बेगम साहिबा थी,
1: जी जी जी
0: उनसे गुफ्तगू करने का मौका मिला।
1: जी जी
0: ये बहुत बड़ी बात
1: बड़ी
0: है
1: बात है
0: कि नजियाबाद ख़त्म हो चुका था,
1: जी।
0: लखनऊ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा था
1: जी
0: और रियासतें भी मर्ज हो रही थी।
1: जी बिल्कुल
0: तो अब रामपुर में सिर्फ राजमाता ही हमारी गोया
1: नवाबों
0: नवाब
1: में बची
0: जहाँ
1: थी
0: जहाँ
1: जो
0: वो
1: संभाले हुए थी रामपुर
0: जहाँ
1: को
0: जहाँ
1: जी,
0: उनसे
1: उनसे गुफ्तगू आपकी रहती थी है।
0: रौनक थी और
1: जी
0: उनके पास बैठकर मैंने उनसे गुफ्तगू की है।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ
1: तो डॉक्टर साहब, ये तो रही बात आपकी और आपके जो सिलसिला चल रहा है खानवादे का, आपने जिक्र किया मोहम्मद अली जौहर का, मौलाना मोहम्मद अली शौकत अली का, बी अम्मा का, और इसी तरह से आपने जिक्र किया नवाबों में मोहतरमा राजमाता साहिबा का। अब बात चलती है रामपुर की और देखें डॉक्टर साहब के एक जो हम बात कर रहे हैं बेमिसाल 90 साल, यानी रेडियो के 90 साल, तो वो होने जा रहे हैं हमारे हमारे लिए बहुत खुशनसीबी है कि हम मतलब जो जनरेशन हमारी वाली जनरेशन है उसने वो देखा, वो वक्त भी देखा और हमने 80 का दौर और 90 का दौर भी देखा कि मतलब क्या रेडियो की चाहत थी और क्या रेडियो का एक क्रेज़ था और बहुत शौक से लोग सुना करते थे। तो डॉक्टर साहब, जब आपकी यानी जब आप होश में होंगे उस टाइम, जब समझदार हुए होंगे आप माशाल्लाह बचपन से हट के, तो उस वक्त का दौर आप थोड़ा सा रेडियो के बारे में बताइए हमारे सामीन को कि रेडियो का क्या क्रेज़ था, क्या शौक से सुना करते थे लोग।
0: रेडियो का यह था क्रेज़ कि सुबह को उठने के बाद
1: जी
0: माँ फरमाना, नमाज के बाद तिलावत याद रहे या नहीं रहे, लेकिन रेडियो को लगा दिया करते थे लोग।
1: जी
0: मुझे कहना नहीं
1: जी
0: चाहिए
1: जी जी
0: ये
1: बिल्कुल
0: लफ्ज़,
1: जी जी जी बिल्कुल
0: मैं माजरा
1: जी
0: चाहूँगा,
1: जी कोई बात
0: लेकिन
1: नहीं,
0: असल मसला यही है
1: यही है
0: कि रेडियो लगा दिया करते थे और रेडियो को सुनते रहते थे। लोग अपना अपना काम भी करते थे, ख्वातीन घर में काम भी कर रही हैं,
1: जी जी
0: और पूरी आवाज़ से रेडियो था जो था वो बजता रहता था
1: जी
0: और रेडियो को सुनाया जाया करता था, लोग काम भी करते रहते थे।
1: जी
0: दूसरी बात ये मैं अर्ज़ करूं कि ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मेरी मुख्तलिफ किताबों पर
1: जी
0: लोग, मैं माफ़ फरमाना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ
1: जी
0: किसी
1: जी
0: को,
1: बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं, वो
0: मैं
1: एडवर्टाइजमेंट की
0: असल
1: बात नहीं, ये आप
0: असल
1: अपनी शौक की
0: आ
1: चीजें बता रहे
0: असल
1: हैं
0: असल बात बता रहा हूँ।
1: जी।
0: वो ये है कि जो मौजूदा दौर है, इस मौजूदा दौर को बाज़ लोग अफवाहों पर यकीन करके मालूम नहीं किस किस तरह के प्रोपेगेंडे करते हैं,
1: जी जी बिल्कुल
0: लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ, मुझे इस दौर में उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी से मौजूदा गवर्नमेंट की जानिब से बाकायदा एक स्कॉलरशिप मिलता है,
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात,
0: बल्कि
1: ये तो खुशनसीबी की
0: हकीकत
1: बात है,
0: हाँ जी हाँ, कि मुझे
1: ये सरकार आपको वजीफे के तौर पे,
0: वजीफे के तौर पर मुझे दे रही
1: और
0: है।
1: जो राइटर होते हैं, जो स्कॉलर होते हैं, उनके लिए ये चीज़ है कि उनको नवाजा जाता है, आपको
0: जी हाँ
1: एजाज से नवाजा
0: जी
1: जा
0: हाँ
1: रहा
0: जी
1: है।
0: हाँ, 15 किताबें मेरी कम से कम आ चुकी हैं
1: क्या
0: जो
1: बात है।
0: मुख्तलिफ मौजूआत पर हैं। दूसरी बात यह है कि उन किताबों में उन बातों का भी मैंने जिक्र किया है
1: जी
0: कि जो मैंने कभी रेडियो पर सुनकर अपनी गिरह में मान ली थी।
1: क्या बात है
0: देखिए, रेडियो पर ऐसी मालूमाती तकरीरें आती थी
1: जी
0: और तकरीरें आती हैं आज भी
1: जी जी बिल्कुल
0: कि जिसे हम अगर सुने और अपनी गिरह में बांधे तो हमारी मालूमात कहीं से कहीं पहुंच जाती हैं।
1: बिल्कुल यही बात,
0: यह है।
1: यही बात है। कुछ

0: चीजें हमने आपसे सीखी हैं, जब आपसे बातचीत हुआ करती थी, अब तो आप थोड़े से कमजोर लग रहे हैं, लेकिन उस दौर में जब आपके पास हम जाया करते थे और स्टूडेंट लाइफ थी, उस टाइम पे भी आपसे रूबरू होते थे और आपसे कुछ सीखते थे हम, तो हमने बहुत कुछ आपसे सीखा है। और आप जिक्र किया करते थे रेडियो, देखें आप कैसा है महकमा है, कि रेडियो में जो चीज़ होती है वो सच्ची और पक्की होती है।
1: बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आंखों देखा हाल
0: जी
1: बिल्कुल बयान करते हैं रेडियो वाले।
0: जी बिल्कुल
1: और जब वो बाहर भी अगर निकलते हैं तो चारों तरफ ये देखते हुए कि कहाँ क्या हो रहा है,
0: जी
1: और बिल्कुल सही शहर की सब पोजीशन क्या है।
0: जी बिल्कुल
1: बाज़ हजरात ने यहाँ पर एक ज़माना ऐसा गुज़रा, एक इनकलाबी का,
0: जी
1: के तैयारी ये कर दी थी कि शायद यहाँ पर कर्फ्यू लग जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
0: नहीं हुआ।
1: रेडियो वालों ने ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया। उन्होंने जो असल बात थी वो बताई, और ये बताया कि यहाँ पर क्या क्या पोजीशन है, और सब
0: हाँ,
1: लोग
0: माहौल
1: सुकून
0: जो है
1: से
0: और
1: नॉर्मल
0: यहाँ
1: है,
0: नॉर्मल है और खुशगवार है, कोई
1: खुशगवार
0: ऐसी वारदात नहीं घटी है
1: नहीं
0: जिससे
1: है।
0: एक माहौल ख़राब हो।
1: हाँ
0: तो ये बहुत अच्छी बात है ये तो, कि जो चीज़ है वो क्लियर होना चाहिए, जो साफ़ सुथरी बात है वही
1: जा
0: होनी चाहिए। डॉक्टर
1: जी
0: साहब,
1: जी
0: डॉक्टर साहब ये बताइए मुझे आप, जब शायद हमने भी अपने बचपन में देखा है और सुना भी है कि रेडियो पर फरमाइश आया करती थी, और उसमें जैसे खत आता था, जो चिट्ठियां होती थी, पत्र होते थे, वो डाक के जरिए इसमें यहाँ पे फरमाइश भेजी जाया करती थी, यानी कि जैसे मेरा नाम आ रहा है तो हम उस नाम को सुनने के लिए, फैमिली के नाम सुनने के लिए रेडियो बीच में रखा होता था, और आसपास सारे लोग घर के बैठे हुआ करते थे और वो नाम आया करता था कि ये गाना सुनना चाहते हैं, यानी कोई भी एक्स वाई जेड, मान लिया आपका नाम ही लिया जा रहा है, तो वो नाम मतलब खुशनसीबी की बात समझी जाती थी कि आज हमारा नाम रेडियो पर आया,
1: हमारा नाम रेडियो पर आया, और हमारी फैमिली के लोगों का भी
0: फैमिली
1: नाम,
0: का
1: हमारे
0: नाम
1: पास
0: आया।
1: नाम आया,
0: जी
1: और बाकायदा जो खतूत भेजे जाते थे उन खतूत के हिस्से पढ़कर सुनाए जाते
0: सुनाए
1: थे
0: जाते थे बिल्कुल।
1: रेडियो पर,
0: जी जी
1: और उन हिस्सों में वो नाम भी होते थे
0: जी
1: जो घर वालों के होते
0: जी
1: थे।
0: जी
1: तो ये बहुत बड़ी बात है।
0: डॉक्टर साहब, ये 90 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो हम जिक्र करेंगे उस दौर का भी, जब जैसे किले के आसपास या बाजारों में, जब आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में होंगे, स्टूडेंट लाइफ आपकी पूरी हुई थी, कॉलेज में भी आए होंगे, उस दौर में भी आपने देखा होगा कि होटलों पे रेडियो रखे होते थे और आसपास लोग उसको बैठकर सुना करते थे, तो कोई किस्सा मुझे ऐसा बताइए।
1: साहब मैं एक किस्सा बताऊं जिसे अब तहसील कहा जाता है,
0: जी
1: इन्फॉर्मेशन ऑफिस वहीं पर था
0: क्या बात है,
1: उस
0: मतलब
1: जमाने।
0: वहां पर क्रीम बैठा करती थी।
1: जी हाँ, इन्फॉर्मेशन ऑफिस वहीं था,
0: जी
1: और इन्फॉर्मेशन ऑफिस के अलावा भी वहाँ पर एक गैलरी थी। उस गैलरी के अंदर लोग बैठा करते थे, गुफ्तगू करते थे, उस चबूतरे के ऊपर गुफ्तगू करते थे,
0: जी
1: और फिर बाकायदा उसे लिखा करते थे, और लिखने के बाद फिर ख़त की शक्ल में रेडियो स्टेशन को भेजा करते थे, और उसमें तफसील लिखते थे कि ये हमने फला जगह बैठकर लिखा है,
0: यानी जो शहर की मौजिद शख्सियात होती थी वो वहां पर मौजूद होती थी
1: मौजूद होती थी
0: पूरे शहर रामपुर की,
1: शहर राम।
0: और वो दौर क्या दौर होगा, आप रामपुर का इतना डेवलपमेंट नहीं था रामपुर में उस वक्त जब आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपने जिक्र किया रेडियो का, और रेडियो का आपने जिक्र किया कि सारी चीज़ें जो होती थी वहाँ पर, जो बातचीत हो रही है, सारी मालूमाती, तो उसको खत की शक्ल में
1: खत की
0: आकाशवाणी
1: शक्ल,
0: को भेजा जाता था
1: जा
0: रेडियो
1: जा
0: पर।
1: जा खत की शक्ल में जा करते थे, और नाम उसमें सुना करते थे कि
0: क्या
1: हम
0: बात।
1: लोगों के नाम आ रहे हैं और हमारी फैमिली के नाम आ रहे हैं। पिछले दिनों में यहाँ पर एक महफिल में मुराद रामपुरी साहब से
0: मुलाकात हुई आपकी?
1: मुलाकात क्या हुई, मैंने बैठ के गुफ्तगू की उनसे, तो
0: अच्छा,
1: मैंने उनसे कहा कि फिल्में हमने बहुत सारी देखी, लेकिन मैं ये अर्ज़ करूं कि कोई ऐसा आर्टिस्ट करीब से मैंने नहीं देखा जो बाकायदा फिल्मों में अदालत की डिग्निटी और उसके मेयार को कायम रख सके। वो
0: जी
1: आपकी ज़ात है कि आप अदालत में हमेशा बहैसियत जज
0: जी जी
1: बैठते हैं और हमेशा ये कहते हैं

0: मुकदमे को मुकदमा नहीं कहा, आपने मुकदमा कहा।
1: क्या बात है, आपने बहुत मतलब बारीकी से उस चीज को देखा और उसको आपने जिक्र
0: जी
1: किया। रजा मुराद साहब से, उनके वालिद की
0: हाँ
1: बात कर रहे हैं हम,
0: रजा मुराद साहब की, रजा
1: उनके
0: मुराद साहब का,
1: रजा
0: जहाँ
1: मुराद साहब के वालिद,
0: वाली
1: वो
0: साहब
1: जज
0: की,
1: का रोल अदा करते थे,
0: जहाँ
1: और
0: जज
1: उनपे
0: का,
1: वो जज का रोल बहुत ही खूबसूरत लगा करता था। वो जज का
0: जहाँ
1: रोल ऐसा
0: जहाँ
1: लगता था कि असलियत में शायद जज हैं ये।
0: वाकई ऐसा ही था।
1: जी
0: उन्होंने मुझसे खुद यह कहा कि भाई ऐसा है कि मुझे कहीं कहीं तलफ़ुज़ सही कराना पड़ता है दूसरे लोगों का, इसलिए कि बेहतरीन किस्म के वो उर्दू नवाज भी थे
1: जी
0: और उर्दू जानने वाले भी थे।
1: जी बिल्कुल
0: अच्छा, जहाँ तक आपने मुराद रामपुरी का नाम लिया,
1: जी
0: तो रज़ा साहब के सिलसिले में मैं अर्ज़ करूँ कि उनकी ज़िंदगी का पहला स्टेज ड्रामा रामपुर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन घेर नज्जू
1: घेर
0: खां
1: नज्जू।
0: में हुआ।
1: डॉक्टर साहब ये तो रही बात, बात कर रहे हैं हम रेडियो की। डॉक्टर साहब आपने रेडियो पर कुछ फीचर भी लिखे।
0: जी हाँ,
1: जी
0: ड्रामों में मैंने बाकायदा बोला भी हूँ
1: अच्छा
0: और ड्रामे लिखे भी हैं,
1: अच्छा
0: और ड्रामे में आवाज़ भी आपने दी है
1: जी बिल्कुल।
0: कहीं कहीं किरदार की हैसियत से।
1: तो हमारे लिए डॉक्टर जहीर अली साहब, यानी कि खुशनसीबी की बात यह है कि आपने रामपुर में वो दौर देखा जब ये स्टेशन कायम हुआ।
0: जी हाँ, मैंने वो दौर देखा जब वो पनवड़िया में
1: जी
0: सबसे पहली बार जब वहाँ पर कायम हुआ, तो अशफाक आलम खां इंजीनियर,
1: अच्छा, यानी
0: उन्होंने
1: उस दौर में जो पनवड़िया में, यहाँ रामपुर में स्टेशन जो कायम हुआ पनवड़िया, तो
0: पनवड़िया में हुआ पर
1: उसमें वहाँ पर इंजीनियर थे वो जिनका जिक्र कर रहे हैं
0: नहीं,
1: आप।
0: वो इंजीनियर की हैसियत से उन्होंने वहाँ पर कायम किया
1: कायम किया था।
0: उन्हें। वो तो शायद उस वक्त बनारस में या किसी और जगह थे, तो
1: अच्छा,
0: उन्हें बुलाया गया
1: बुलाया
0: था
1: गया था।
0: नवाब साहब ने अपने असर रसूख से
1: जी।
0: और अपने ताल्लुक़ से उन्हें बुलवाया था, और बुलवाने के बाद यहाँ पर यह कहा था कि भाई अब आप इसे देखें और इस पर अब काम करें।
1: वो स्टेशन कायम कराया,
0: वो स्टेशन कायम
1: यानी
0: कराया।
1: रामपुर वालों को ये खुशनसीबी हासिल थी कि वो रेडियो जो थे वो सुना करते थे और कायम हुआ। आसपास के जिले थे, यानी मुरादाबाद और बरेली भी बड़े जिले थे, लेकिन रामपुर में स्टेट था, नवाबी थी यहाँ पर, तो इसलिए नवाब साहब ने वो स्टेशन यहाँ कायम कराया और आसपास के जो जिले थे वो सब कवर किया करते थे,
0: या
1: सुनते थे लोग रेडियो।
0: मुरादाबाद के लोग तो बहुत, मैंने खुद देखा कि वहाँ एक जगह है पाटा नाला,
1: अच्छा
0: तो नाले के पास लोग खड़े होकर बाकायदा रेडियो को यहाँ के सुना करते थे। मैंने
1: जी,
0: अपनी आंखों
1: बिल्कुल।
0: से देखा।
1: डॉक्टर साहब आपने दौर देखा और यहाँ पे जो अनाउंसर रहे, यानी पिछले दौर की बात कर रहा हूँ, जो मशहूर हुआ करते थे, मोहम्मद अली मौज साहब थे, अंजलि
0: हाँ
1: वाजपेयी जी थीं, और भी बहुत सारे थे, तो थोड़ा सा हमें ही बताइए कि आपने वो दौर देखा तो सुना होगा उनको, लोग रहे हैं यहाँ पर, अनाउंसर रहे हैं, फिर उसके बाद वो अफसरान भी रहे।
0: देखिए, अंजलि वाजपेयी जी तो बहुत अच्छा अनाउंसमेंट करती थी,
1: जी
0: और मौज साहब जो थे वो तो खुद बतौर खुद शायर भी थे।
1: जी बिल्कुल
0: उनका एक बड़ा मशहूर शेर था
1: जी
0: जो उन्होंने किसी ड्रामे में खुद कहा था
1: जी
0: कि जिल्ले सुभानी आज भी ताली बजा के देखते हैं,
1: जिल्ले सुभानी, आज भी
0: आज
1: ताली
0: भी
1: बजा के
0: ताली
1: देखते
0: बजा के
1: हैं।
0: देखते
1: जी
0: हैं, कि वो ये समझते हैं कि मैं आज भी बादशाह हूँ। ये उनका शेर जो है, ये ज़रबुल मिसाल है
1: जी
0: जो मुझे आज तक याद है।
1: मैंने सुनी है बचपन में कि उनकी आवाज में ऐसा था कि लोग खींचे चले आते थे, जैसे
0: बिल्कुल खींचे चले आते।
1: अगर वो कहीं महफिल में हैं तो भीड़ लग जाया करती थी। मैंने देखा है कि रेडियो का कोई भी बंदा, एक्स वाई जेड कोई भी हो, मैंने बचपन में, मुझे याद है कि किसी जगह अगर महफिल में कोई आ गया है, रेडियो स्टेशन पे है भाई, रेडियो पे है, तो उनके आसपास भीड़ लग जाया करती थी, जैसे कोई बहुत बड़ी हस्ती आ गई।
0: ऐसा ही था कि उनकी आवाज़ को सुनकर लोग खींचे चले आते थे।
1: जी बहुत अच्छा रहा हमारे साथ में, अच्छी गुफ्तगू रही आपकी। आप यूं ही हमारे सामने को अपनी दुआओं में याद रखें, और कुछ पैगाम देना चाहेंगे कि 90 साल हुए हैं, बेमिसाल 90 साल, उसके बारे में हमारे सामीन को कोई पैगाम

0: दीजिए।
1: पैगाम यह है कि रेडियो को लाजमी सुना करें। इसमें तरह तरह के प्रोग्राम आते हैं, उससे मालूमात में इजाफा होता है और बोलने का तरीका भी आता है कि किस बात को अदा हम किस अंदाज से करें। बहुत बड़ी बात है।
0: शुक्रिया। बेमिसाल 90 साल। इस उन्वान के तहत आज हमने मुलाकात की डॉक्टर ज़हीर अली सिद्दीकी साहब से। अब अपने मेज़बान फरीदुल्ला खान को आकाशवाणी रामपुर के मरकज़ से दीजिए इजाज़त।
2: उर्दू कार्यक्रम समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग। कार्यक्रम में आज लीजिए सुनिए पूजा द्विवेदी के गाए कुछ अवधी लोकगीत। सबसे पहले प्रस्तुत है उनके स्वर में ये देवी गीत।

लोकगीत के कार्यक्रम लोक रंग में श्रोताओं, आज आप सुन रहे हैं पूजा द्विवेदी के गाए अवधी लोकगीत। अभी आप सुन रहे थे इनके स्वर में ये देवी गीत, और आइए अब आपको सुनवाते हैं इन्हीं की आवाज में ये लोक भजन।

लोकगीत के कार्यक्रम लोकरंग में श्रोताओं आज आप सुन रहे थे पूजा द्विवेदी के गाये अवधि लोकगीत। हम आपको बताते चले कि दिन में 2:45 पर एक बार पुनः लोक माथुरी कार्यक्रम में आप पूजा द्विवेदी के गाये अवधि लोकगीत सुन सकेंगे। इसी के साथ अब आज का लोकगीत का कार्यक्रम लोकरंग यही संपन्न हुआ। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

0: ज्ञान विकास और अवसरों का मधुर संगम है कार्यक्रम नई उड़ान, जहां समय की अर्थपूर्ण चर्चाएं, देश के विकास से जुड़ी ताजा झलकियां, युवाओं के लिए मार्गदर्शक करियर सूत्र और धरातल से लाई गई सच्ची आवाजें, हर रोज शाम 5:45 पर आकाशवाणी प्राइमरी चैनल 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव पर सुनना ना भूलिए कार्यक्रम नई उड़ान।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
4: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 आकाशवाणी लखनऊ पर।
5: मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो।
6: सुनिए कहानी, कविताएं, नाटक, मिलिए बाल प्रतिभाओं से और रूबरू होइए बाल दोस्तों की कला से। साथ ही खुलेगा मनोरंजन जानकारियों का पिटारा, होगा बाल दोस्तों की बातों का चटखारा। सुनिए हर रविवार दोपहर 12:00 आकाशवाणी लखनऊ के मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज़ न्यूज ऑन AIR और DTH के द्वारा। तो सुनना ना भूलिएगा अपना ये कार्यक्रम प्यारा बाल मंच।

0: घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है।

0: बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आनंद बख्शी के बोलों को। गीत को स्वर दिया है मोहम्मद रफ़ी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी।

लुत्फी की आवाज़ में फिल्म महबूब की मेहंदी का ये गीत। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:10 होने वाले हैं। आइए अब आपको न्यूज़ बुलेटिन विश्व दर्पण सुनवाने के लिए अपने दिल्ली केंद्र लिए चल रहे हैं।

0: और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में जारी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के बाद डीजीसीए ने एयरलाइंस को निर्देश जारी किए। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों पर हमले किए। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। और भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी बैठक में भाग ले रहे हैं। अपने उद्घाटन भाषण में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक में साझा गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान मुख्य रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र पर चर्चा होगी। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर विचार विमर्श में आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, विनिर्माण संसाधन की उपयोगिता और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में कमियों जैसे मुद्दों पर चर्चा निर्धारित है। श्री जयशंकर ने कहा कि वे बहुत आशान्वित हैं कि क्वाड बैठक उपयोगी और सफल होगी। इससे जुड़ी और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर भी आज दोपहर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: अमेरिकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया। ये घटनाक्रम तब सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान का समृद्ध यूरेनियम अमरीका को सौंपा जाएगा, जिसे नष्ट किया जाएगा या अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की निगरानी में उपयुक्त स्थान पर नष्ट किया जाएगा। रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने भी अमरीकी नेतृत्व वाले ढांचे के तहत अपने समृद्ध यूरेनियम भंडार को छोड़ने पर सहमति जताई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी है कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। उन्होंने सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन देशों से अब्राहम समझौते में शामिल होने की अपील की। अब्राहम समझौता अमेरिका की मध्यस्थता में वर्ष 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है, जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच

0: संबंध सामान्य बनाना है। उधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने देश भर में इंटरनेट सेवा बहाल करने का आदेश दिया है। ईरान के अधिकारियों ने 87 दिनों से अधिक समय से देश भर में इंटरनेट बंद कर दिया था। खबरों के अनुसार अमेरिका ईरान संघर्ष के दौरान इन प्रतिबंधों ने आम नागरिकों की सूचना तक पहुंच को बाधित किया, साथ ही इंटरनेट पर निर्भर व्यवसायों को भी बुरी तरह प्रभावित किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के हिजबुल्ला पर हमले तेज करने की घोषणा के बाद इसराइल की सेना ने लेबनान में हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइली रक्षा बलों ने बताया कि उन्होंने पूर्वी लेबनान में बेका घाटी और कुछ अन्य क्षेत्रों में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दावा किया है कि इसराइली सैन्य अभियानों में 600 से अधिक हिजबुल्ला लड़ाके मारे गए हैं। ये ताजा हमले दोनों देशों द्वारा 45 दिनों के युद्ध विराम को बढ़ाने पर सहमति के बावजूद हुए हैं। हालांकि लड़ाई मुख्य रूप से दक्षिणी लेबनान में जारी है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ से बातचीत की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इस संबंध में जानकारी दी है। रूस के विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया है कि यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हालिया रूसी हमले, यूक्रेन सरकार द्वारा रूसी क्षेत्र में शांतिपूर्ण आबादी और नागरिक स्थलों पर लगातार हमलों का सीधा जवाब है। अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ बातचीत में श्री लावरोफ ने रूसी विदेश मंत्रालय की ओर से बारिश को भी दोहराया, जिसमें अमेरिका सहित सभी देशों को यूक्रेन की राजधानी कीव से अपने राजनयिकों को तुरंत निकालने को कहा गया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन की हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
1: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे, जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
0: और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए, प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स डबल्स में तनीषा क्रस्टो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर ऋत्विका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: धन्यवाद मुकेश। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने से द्विपक्षीय मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इस दौरान भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61.75 करोड़ अमेरिकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। इस निवेश का उपयोग सतत पर्यटन, बुनियादी ढांचे और जैव अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों में किया जाएगा। इको इन्वेस्ट कार्यक्रम के अंतर्गत ब्राजील का राष्ट्रीय राजकोष निजी और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए बैंकों को कम ब्याज दरों पर ऋण देगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में जारी। WHO के इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के बाद DGCA ने एयरलाइंस को निर्देश जारी किए। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नाव पर हमले किए। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। और भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
4: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
5: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
6: मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो।
7: सुनिए कहानी, कविताएं, नाटक, मिलिए बाल प्रतिभाओं से और रूबरू होइए बाल दोस्तों की कला से। साथ ही खुलेगा मनोरंजन जानकारियों का पिटारा, होगा बाल दोस्तों की बातों का चटखारा। सुनिए हर रविवार दोपहर 12 बजे आकाशवाणी लखनऊ के मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज़, न्यूज ऑन AIR और DTH के द्वारा। तो सुनना ना भूलिएगा अपना ये कार्यक्रम प्यारा बाल मंच।

0: घर आंगन माहे बहार कहानी कविता और बतकही के फुहार आपन बोली बानी संग लोकगीतन के बहे बयार खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार घर आंगन संग होई के तैयार चलो विकास के रफ्तार सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी लीवर हार्ट कॉर्निया इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है बढ़ रही है जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है व्यर्थ मनुष्य डरता है एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: सपनों को देना है नई रफ्तार तो सुनिए आकाशवाणी प्राइमरी चैनल का बेहतरीन प्रोग्राम। यूथ के लिए जरूरी जानकारी, सामयिक चर्चा, फील्ड से OB रिपोर्ट्स और गीत संगीत।

0: सब कुछ एक ही मंच पर हर दिन शाम 5:45 पर रेडियो ऑन रखिए और जुड़िए नई उड़ान से।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है चित्रपट से कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए अब आपको सुनवाते हैं कुछ नए फिल्मी तराने। सबसे पहले आइए सुनिए अलका याग्निक, कुमार सानू और उदित नारायण की आवाजों में नदीम श्रवण की धुन पर समीर के बोलों को। फिल्म का नाम है दिल है तुम्हारा।

0: पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यहीं करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहाँ सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
5: तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया।
4: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।

0: घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: श्रोता और चित्रपट से कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे हैं नए फिल्मी तराने। आइए अब आपको सुनवाते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में संजीव दर्शन की धुन पर समीर के बोलों को। फिल्म का नाम है मन।

आइए अब आपको सुनवाते हैं उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में जावेद अख्तर के बोलों को। संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने और फिल्म का नाम है कुछ ना कहो।

आइए अब आपको सुनवाते हैं श्रेया घोषाल की आवाज़ में इरशाद कामिल के बोलों को। संगीतकार हैं प्रीतम और फिल्म का नाम है जब वी मेट।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं चित्रपट से, कार्यक्रम में कुछ नए फिल्मी तराने। आइए अब आपको सुनवाते हैं कौसर मुनीर के बोलों को साजिद वाजिद की धुन पर। गीत को स्वर दिया है जावेद अली और सुनिधि चौहान ने, और फिल्म का नाम है दावते इश्क।

श्रोताओ, चित्रपट से कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं अंतिम गीत, जिसकी धुन बनाई है इस्माइल दरबार ने, गीत को स्वर दिया है कविता कृष्णमूर्ति ने, और फिल्म का नाम है हम दिल दे चुके सनम।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। श्रोता मित्रों नमस्कार, पूर्वाह्न के 11 बजे हैं और अब शुरू होने जा रहा है आपका अपना कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। फिल्म संगीत के इस फोनिंग इंटरैक्टिव प्रोग्राम में आप हमें फोन करिए। हमारा फोन नंबर है 0522-223-8825। कार्यक्रम में आज आप हैं अपनी रेडियो दोस्त शिखा दुबे के साथ। आपकी कॉल्स मिलनी हमें शुरू हो गई हैं, तो आइए बात करते हैं हम अपने पहले रेगुलर कॉलर से। जी हाँ, हमारे रेगुलर कॉलर हैं मांगीलाल जी। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार बहन जी।
0: जी जी मांगीलाल जी, क्या हाल हैं?
1: बस बहन जी, आपकी दुआ से बढ़िया हाल है और ईश्वर की कृपा से बढ़िया हाल है। और आपसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके भी बढ़िया हाल हो।
0: जी हाँ, हम सबके बढ़िया हाल होंगे। और गर्मी कैसी पड़ रही है भाई आपकी तरफ?
1: गर्मी तो कुछ मत पूछो बहन जी, 45 के लगभग दिन का टेम्परेचर जा रहा है।
0: जी जी, तो इस समय घर में है
1: रखे आप जी, मान लीजिए।
0: हाँ, हम कह रहे हैं मांगीलाल जी इस समय घर में होंगे फिर?
1: मैं घर पर ही हूँ बहन जी। हाँ, बस ये 10-11 बजे से घूमना फिरना आना जाना बंद है कि हमके फिर अपन कहीं जरूरी काम है तो 4 बजे के बाद ही जाएंगे।
0: जी हाँ, नहीं बिल्कुल सही है कि इतनी धूप में जहाँ तक हो बहुत जरूरी ना हो तो ना निकला जाए, है ना?
1: ना काम हो तो फिर जाना आना भी पड़ता
0: जी
1: है। तो काम फिजूल कहीं मत जाओ, मेरा कहना तो जी है।
0: जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बताइए कि अब घर में बैठे हैं तो आपको बैठे बैठे कौन सा गाना सुनवा दिया जाए?
1: आज मुझे एक बहुत पुराना गाना याद आ गया बहन जी। फिल्म का नाम तो है चोर मचाए शोर, और गाने के बोल हैं, एक डाल पर तोता बोले, एक पे बोले मैना, दूर दूर बैठे हैं फिर भी प्यार है ना, ऐसा
0: जी,
1: ही कुछ
0: जी
1: गाना।
0: हाँ जी हाँ, ऐसा ही गाना है। ठीक है, एक डाल पे जो है तोता बैठा है, एक डाल पे मैना बैठी है। और अगर आप गर्मी में घर में बैठे हो और सामने पेड़ पे इस तरह दिखाई पड़ जाए तो कितना अच्छा लगे
1: जी,
0: है ना?
1: जी,
0: तो है। तो मांगीलाल जी सुनवा देते हैं आपको ये गाना।
1: तो
0: ठीक है,
1: मैं कुछ मित्रों को याद कर सकता हूँ?
0: जी आपके मित्र हैं तो थोड़ा याद ही कर लीजिए फिर।
1: हाँ, नरेश प्रजापति जी हैं, गजराज लोधी जी हैं, बसंती लाल जी हैं, बेटा सिंह यादव जी हैं, दिनकर सिंह जी हैं, चित्रकूट धाम से फूलचंद पाल जी हैं, मनकारी से प्रेमदास बाबा जी हैं, केसरी सिंह राजपूत जी हैं, रामबाबू शर्मा जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, विजय कुमार पांडे जी हैं, रमेश प्रजापति जी हैं, गोपाल ओझा जी हैं, मिंटू लाल तिवारी जी हैं, और इटावा से हमारे मित्र हैं, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा।
0: अच्छा अच्छा, तो ये सारे रेडियो मित्र हैं, कुछ नए नए वैसे भी मित्र बनाइए और हमारे कार्यक्रम से उनको भी जोड़िए।
1: सब रेडियो मित्र हैं
0: जी, हम कह रहे हैं
1: जी है, राहुल कुमार जी।
0: जी हम कह रहे हैं
1: सब रेडियो मित्र हैं
0: जी। मांगीलाल जी कुछ नए नए
1: के माध्यम से बने हुए हैं, आपस में बातचीत हो जाती है जब समय मिल जाता है तो, और क्या है, प्रेम ही है।
0: जी हाँ, प्रेम है। और कुछ और नए मित्रों को भी जोड़िए और हमारे इस कार्यक्रम से, है ना?
1: जी
0: तो जी, और भी हमें अच्छा भी लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए आपकी पसंद का, हाँ आपकी पसंद जी, फोन करने के लिए शुक्रिया। और आपकी पसंद का गाना अब हम बजाने जा रहे हैं, तो लीजिए आनंद उठाइए इस गाने का।

0: और आइए बात करते हैं अपने एक और कॉलर से जो सतना से हमें फोन कर रहे हैं और उनका नाम जान लेते हैं। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार मैडम जी, दीदी जान को मैं बता दूं कि रब जाने किस दामन के लिए कौन सा गुल खिलता है और ना जाने किस दामन के लिए कौन सा गुल चुनता है। सच्चे दिल की दुआएं जल्द खुदा सुनता है। तो ये मान के चलिए बड़ी उम्मीद के साथ आपको फोन लग गया तो मजा आ गया। मैं बता दूं, ग्राम कल्पा जिला सतना से चांद मोहम्मद खान, मजनू दीवाना, ईडन गार्डन, अशोक वाटिका से हाउस हाफ पेंट बोल रहा हूँ।
0: अरे इतना लंबा आपने अपना परिचय दे दिया कि समझ में नहीं आ रहा है कि किस नाम से आपको बुलाया जाए।
1: दीदी जान बहुत लंबा पता है मेरा, समझ लीजिए 100 सेंटीमीटर का। और आप शायद जानती होंगी मैं मजनू दीवाना हूँ आपके लखनऊ का। और मैं बता दूं कि हमारे यहाँ इतनी शीत लहर चल रही है हमारे कल्पा ग्राम में कि मैं क्या बताऊं। यहाँ पर अगर कभी आने की कोशिश करिए इस गर्मी के मौसम में तो अपनी जो है तो जर्किन की व्यवस्था करके आइएगा।
0: मतलब इतनी सर्दी हो रही है वहाँ पे?
1: हाँ हाँ जी, ठंड मौसम रहता है, चारों तरफ से नाले हैं और बाग बगीचे हैं, तो समझ लो जम्मू कश्मीर का टुकड़ा है कल्पा।
0: अरे वाह, हम सब लोग तो यहाँ पे यही कल्पना करते हैं कि शिमला, मसूरी, नैनीताल और जम्मू कश्मीर में ही ठंड हो रही होगी, लेकिन आपके सतना में जो है इतना अच्छा मौसम है तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो आप आनंद उठा रहे हैं मौसम का और हम लोग यहाँ गर्मी का आनंद उठा रहे हैं।
1: जी भाभी जान से बात कर लो, इन्होंने आज बहुत गर्व के छक्के मारे हैं। नमस्कार
0: जी
1: दीदी जान।
0: जी नमस्ते नमस्ते, और बताइए क्या हाल है?
2: अच्छे दीदी जान, आप कैसी हैं?
0: जी हम बहुत अच्छे हैं, और अपना नाम भी बता दीजिए।

0: जी हाँ, आज तो दीदी जान छक्का मारे हैं।
1: अच्छा,
0: हमारी दीदी जान सितारा नाम है।
1: अच्छा सितारा जी, सितारा जी गाना बताइए कौन सा सुनेंगी?
2: ये इनका सितारा जी नाम है और वैसे श्रोता लोग इन्हें लैला दीवानी कहते हैं। और मैडम जी एक थोड़ी सी सुझाव है, मैं बता दूं फिर गाना बता दूं,
1: फिर
2: आपको नाराज ना हो तो माफ कर देना, क्योंकि श्रोताओं से मेरा कहना है कि इसे जो है फरमाशी कार्यक्रम ना बनाए, फोन इन कार्यक्रम ही रहने दे। एकदम पुथाना बातना चालू कर देते हैं, श्रोताओं के नाम लेना मजा नहीं आता, समय जाया होता है और उन्हीं श्रोताओं के नाम लेना भी उचित नहीं रहता जिनके फोन लगते हैं। जैसे अब प्रेमदास बाबा जी है, उनका नाम सही है, और मैं गाना बता दूं समय ना जाया करते हुए दीदी जान, फिल्म का नाम है कामचोर।
1: कामचोर
2: और गीत के बोल हैं, तुझ संग प्रीति लगाई सजना सजना हो रहा।
1: चलिए चांद मोहम्मद जी,
0: प्रीति लगाई सजना हो रहा।
1: आप दोनों ही बहुत अच्छा गाते हैं

0: कर देना, क्योंकि श्रोताओं से मेरा कहना है कि इसे जो है फरमाइशी कार्यक्रम ना बनाए, फोन इन कार्यक्रम ही रहने दे। एकदम पुथाना बांटना चालू कर देते हैं, श्रोताओं के नाम लेना मजा नहीं आता, समय जाया होता है और उन्हीं उन्हीं श्रोताओं के नाम लेना भी उचित नहीं रहता जिनके फोन लगते हैं। जैसे अब प्रेमदास बाबा जी है, उनका नाम सही है, और मैं गाना बता दूं समय ना जाया करते हुए दीदी जान, फिल्म का नाम है कामचोर,
1: कामचोर,
0: और गीत के बोल हैं तुझे संग प्रीति लगाई सजना सजना हो रहा।
1: चलिए चांद मोहम्मद जी,
0: प्रीति लगाई सजना हो रहा।
1: आप दोनों ही बहुत अच्छा गाते हैं और आपकी पसंद का गीत चांद मोहम्मद जी हम आपको सुनवा दे रहे हैं।
0: जी, जब दोनों लोग गुनगुना लेते हैं और आप आइए, आपका स्वागत है देश में पूरे आकाशवाणी परिवार को, मैं फिर से नमस्कार करता हूँ पूरे ऑल वर्ल्ड के श्रोताओं को।
1: जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अपनी पसंद का गाना सुनिए।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। और इस कार्यक्रम में अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और अपनी पसंद का गीत भी सुनना चाहते हैं तो करिए हमें फ़ोन। हमारा फ़ोन नंबर है 0522-223-8825। और आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते, मैं अभय कुमार मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट बिहार से बोल रहा हूँ।
0: अभय जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: जी धन्यवाद मैम
0: जी। और अभय जी, क्या हाल है?
1: ठीक है मैम, इधर तो कल रात से इधर बारिश हो रहा है।
0: अच्छा अच्छा बारिश हो रही है तो मौसम सुहावना हो गया इसका मतलब?
1: हमारे इधर बारिश हो रहा है कल रात से मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में।
0: अच्छा अच्छा तो मौसम मतलब सुहावना हो गया।
1: हाँ मौसम बहुत बहुत गर्मी पड़ रहा था।
0: तो बताइए सुहावने मौसम में कौन सा गाना आपको सुनवा दें?
1: पापा का चूड़ी मजा न देगी।
0: चूड़ी मजा न देगी तो सुनवा दें अभय जी गाना आपको।
1: मेरा कुछ दोस्त के नाम ले सकता हूँ क्या?
0: अभी देखिए, उससे पहले चांद मोहम्मद जी ने कहा था कि आप लोग दोस्तों के बहुत नाम ले लेते हैं।
1: जी मैं पहली बार मैम मेरा फोन लगा।
0: अच्छा पहली बार लगाया, तब तो ये नहीं, तब तो हम आपसे जरूर कहेंगे कि आप नाम ले ही लीजिए। बताइए।
1: अब देश का माता है नीतीश है, सोमा, मनीष, सुनील, नवीन कुमार
0: जी। अभय जी, हमें बहुत अच्छा लगा कि आज आपका पहली बार फोन लगा और हमसे नए नए कॉलर जुड़ते हैं तो हमें और भी अच्छा लगता है।
1: से आपका प्रोग्राम सुनता हूं, लेकिन फोन मेरा आज पहली बार लगा है, बहुत खुशी हो रहा है फोन लगा तो।
0: हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो चलिए आपकी पसंद का गाना हम आपको सुनवा देते हैं। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ठीक है मैम, धन्यवाद।

0: और इस वक्त लाइन पर हमारे साथ हैं भगवान सिंह परमार जी, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो।
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं दीदी। ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी भगवान सिंह जी, आपकी आवाज़ तो हम सुनते ही रहते हैं। जी और बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे
1: दीदी? फिल्म का नाम है, मैं भूल गया, गाना बताया था आपको, तू पागल प्रेमी आवारा, हाँ, ये वाला गीत
0: जी
1: जी दीदी आपको।
0: जी शोला और शबनम फिल्म का।
1: जी मैं भूल गया था, बता।
0: कोई बात नहीं, हमने आपका गाना निकाल लिया है।
1: कुछ दोस्तों को याद करना चाहेंगे दीदी?
0: चलिए कुछ नए नए दोस्तों को याद करिए लेकिन अब।
1: हाँ दीदी, पूनम दीदी हैं कानपुर से, और गुंजन तिवारी जी अयोध्या से, अविनाश जी, आशुतोष जी, मांगीलाल जी हैं, प्रेमदेव सिसोदिया जी, सावनकर गंगाधर जी हैं, सुनील झा जी हैं, केसर सिंह राजपूत जी हैं, तारुण अंसारी जी हैं, और राजन गंगवार जी, इन सबके साथ सुनना चाहेंगे दीदी। और जो दोस्त लाइव सुन रहे हैं सभी को डेडिकेट रहेगा।
0: चलिए सबको हम सुनवा देते हैं आपकी पसंद का।
1: प्रजापति जी बायां से।
0: अच्छा, वो छूट गए थे। चलिए ठीक है, तो भगवान सिंह परमार जी आपकी पसंद का ये गाना हम सबको सुनवा दे रहे हैं। फोन करने के लिए शुक्रिया।

0: और इस वक्त कौन श्रोता हमसे बात कर रहे हैं, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो
1: दोस्तों, इस समय आपने ट्यून कर रखा है आकाशवाणी लखनऊ के अंदर और प्रोग्राम जारी है, कुछ तुम कहो कुछ हम कहे, और प्रोग्राम पेश कर रही है आरजे शेखा दुबे, और मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंशमहल बुगला से। अब पूर्ण वर्मा की आवाज डीटीएच के माध्यम से नहीं, न्यूज एआईआर ऐप के माध्यम से भी लाइव पहुंच रही है।
0: आपने तो पूरा ही अच्छे से पूरा बता दिया सब श्रोताओं को, तो आप फोन नंबर भी बता देते।
1: जी मैडम, फोन नंबर भी है। अगर आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं और अपनी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं तो अभी डायल करें 05 और चार बार लगाना पड़ेगा, यानी डबल बार 22 और 388-25।
0: अच्छा 2238825। पूरन जी, आपने मेरा मतलब काम जो है बहुत हल्का कर दिया, सब श्रोताओं को आपने बता दिया कि इस फोन नंबर पे वो कॉल कर सकते हैं, है ना।
1: थैंक यू मैडम, क्योंकि मैडम ये हमारा कुछ भी नहीं है, सब आकाशवाणी के माध्यम से हमने जो भी सीखा वो आकाशवाणी के माध्यम से सीखा मैडम।
0: नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आपने जो सीखा है उसका श्रेय आप आकाशवाणी को दे रहे हैं, तो हम भी आप जैसे श्रोताओं के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं, पसंद करते हैं, है ना। तो पूरन जी बता दीजिए गाना कौन सा सुनवा दें आपको।
1: जी मैडम, आज फिल्म का नाम रहेगा किस्मत और गाने के बोले हुआ रे हंगामा।

0: कैसे
1: अच्छा।
0: हुआ ऐसा कुछ गाना है, और आप इजाजत दे रहे थे मैं दो तीन मित्रों को याद कर लूँ।
1: चलिए याद कर लीजिए।
0: जी मैडम, सबसे पहले तो आप है
1: धन्यवाद।
0: और मेरा दोस्त है राकेश है, भगवान सिंह जी है, अविनाश जी है, रमेश प्रजापति जी है, और गोल्डी बाई है, और जितने कॉलर आकाशवाणी लखनऊ के चाहने वालों को लिए, और इटावा से राहुल है, और तमाम श्रोता।
1: अच्छा, तो पूरन वर्मा जी ने जो गाना आज पसंद किया है हम बजाने जा रहे हैं, और जिनका नाम उन्होंने लिया है वो लोग ये गाना ज़रूर सुने। ठीक है पूरन जी,
0: थैंक यू मैडम,
1: जी
0: धन्यवाद।

0: और अब देखते हैं कौन से कॉलर हमसे जुड़े हैं। हेलो
1: हाँ सर, नमस्ते सर।
0: जी। नमस्ते, अपना नाम बताइए।
1: हमारा नाम मुन्ना बहेलिया है सर।
0: जी मुन्ना बहेलिया जी, पहली बार कॉल लगी है आपकी।
1: हाँ, एक बार और लगा था। ठीक
0: अच्छा, तो और बताइए क्या हाल है आपके।
1: है सर।
0: ठीक है, तो
1: हाँ,
0: बताइए कौन सा
1: उसी
0: गाना सुनवाएं आपको।
1: चल उड़ जा रे पंछी की अब ये देश हुआ बेगाना।
0: अरे बहुत अच्छा गाना है भाभी पिक्चर का। जी, तो
1: पुराना गाना है। हाँ
0: हाँ पुराना गाना है और बहुत ही अच्छा गाना है, तो सुनवा दें आपको।
1: सर, सुनवा दीजिए। अभी हमने इसके पहले फोन लगाया था, आपने उठाया नहीं।
0: अच्छा, नहीं, वो लगातार इंगेज रहता है ना फोन, और आपका कॉल करी होगी हमने, जिसकी भी लगी हमने उसका उठाया ज़रूर फ़ोन। ठीक है
1: ठीक
0: जी।
1: है सर,
0: ठीक, तो चलिए
1: नमस्ते।
0: मुन्ना जी, आपको आपकी पसंद का गाना हम सुनवा दे रहे हैं। फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते।

0: कार्यक्रम में अब हमारे साथ जुड़े हैं मनी रामपाल जी, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ मनी रामपाल जी। जी जी, अपना पूरा परिचय दे दीजिए।
1: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश से मनी रामपाल
0: जी। मनी रामपाल जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद जी।
0: और क्या कर रहे थे?
1: बस खाना खा के लेटे हुए थे और आपका अच्छा, प्रोग्राम सुन रहे थे।
0: अरे वाह, गर्मी में खाना खा के इत्मीनान से लेटे हैं ठंडी ठंडी हवा के नीचे।
1: हाँ, थोड़ी देर के लिए बस, इसके बाद थोड़ी देर बाद हाँ। जैसे आपका प्रोग्राम खत्म होता है
0: जी जी,
1: तो अपना निकल जाएंगे हर तरफ, खेतों तरफ।
0: अच्छा, खेतों की तरफ निकल जाएंगे। तो इस समय तो क्या लगा हुआ है आपके खेतों में?
1: खेतों में तो थोड़ा सब्जी लगी है और अपने पास गाय भैंस वगैरह है तो उनको चराने जाते हैं हम लोग।
0: अच्छा अच्छा, बहुत मेहनत का काम है ये भी, है ना जी। तो चलिए आप बता दीजिए, आपको देर हम नहीं करवाएंगे, गाना बता दीजिए अपना।
1: जी, फिल्म का नाम है दिलवाले और कितना हसीन चेहरा, ये वाला गीत सुनना है
0: तो सुनवा दें आपको।
1: जी थोड़ा दोस्त हैं, दो तीन लोग।
0: अच्छा, ले लीजिए नाम।
1: जी बलरामपुर से विजय पांडे जी हैं और फतेहपुर से हमारे देवी शंकर शुक्ला जी हैं, मनकारी से फूलचंद पाल जी हैं।
0: अच्छा, तो चलिए सुनवा देते हैं आपको, आपकी पसंद।

0: कर गए ना।
1: साथ
0: अच्छा, मेरी तरफ से
1: और
0: तो
1: सभी सुनने वालों को भी
0: जी, सबकी तरफ
1: ये गाना
0: से
1: डेडिकेट।
0: हाँ, हम ही आपको धन्यवाद बोल दे रहे हैं। ठीक है,
1: जी,
0: लीजिए सुनिए। जी, अपनी पसंद का गाना सुनिए। नमस्कार।
1: नमस्ते।

0: और इस समय हमारे साथ हैं राम बाबू शर्मा जी। हेलो
1: जी, दीदी को नमस्कार।
0: जी नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी दीदी, मैं ग्राम नरेला दामोदर भोपाल मध्य प्रदेश से राम बाबू शर्मा बात कर रहा हूँ।
0: जी राम बाबू जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम में। और बताइए, कार्यक्रम ही सुन रहे थे कि कुछ और काम भी साथ में चल रहा था?
1: जी दीदी बिल्कुल, प्रोग्राम ही सुन रहा था और बस बैठा बैठा प्रोग्राम सुन रहा था। गाने बहुत ही शानदार बज रहे हैं
0: जी,
1: प्रोग्राम
0: जी।
1: अच्छा जा रहा है, लाजवाब बिल्कुल। और डायल भी कर रहा था और आपसे बात हो रही है तो और भी अच्छा लग रहा है।
0: हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये प्रोग्राम जो अच्छे गाने सुनने को आपको मिलते हैं, ये सब आप जैसे श्रोताओं की पसंद है।
1: बहुत धीमी आ रही है
0: आवाज, धीमी आ रही है, आप देखिए ठीक आ रही है।
1: हाँ अब ठीक आ रहा
0: है ना। ये जो प्रोग्राम है ना, इसको अच्छा बनाने में सब आप लोग का सहयोग रहता है ना?
1: हाँ दीदी, नहीं दीदी, हमारा श्रोताओं का तो रहता भी है, आपका भी उतना ही सहयोग रहता है, क्योंकि अगर वहाँ पर आप लोग नहीं बैठोगे तो हम फोन किसको लगाएंगे।
0: बात तो सही है, फोन किसको लगाएंगे।
1: हाँ, जी, बिल्कुल, बिल्कुल।
0: जी तो राम बाबू जी, आपने फोन लगाया, हमें बहुत अच्छा लगा। और बता दीजिए गाना कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: जी दीदी, मेरे मित्र हैं जो मांगी लाल जी, उनकी एक पसंद का गाना अक्सर सुना करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं।
0: अच्छा, मांगी लाल जी की पसंद का गाना आप सुनवाएंगे?
1: हाँ जी बिल्कुल, एक महीने में वो एक बार जरूर सुनते हैं, पुराने गाने तो सुनते ही सुनते हैं, लेकिन एक

0: महीने में ये गाना जरूर सुनते हैं।
1: और आज
0: दो तीन मित्रों को और याद करना चाहूंगा, ज्यादा नहीं। ये दीदी केसरी सिंह राजपूत जी सुन रहे हैं, गजराज सिंह लोधी जी और पूनम जी हैं कानपुर से, और आशुतोष देवनाथ जी, संगीता देवनाथ जी और भगवान सिंह परमार
1: जी। राम बाबू जी,
0: दीदी आपके लिए रहेगा और सारी लखनऊ टीम के लिए
1: जी, सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। और राम बाबू जी, आज के हमारे पहले कॉलर, अगर आपने शुरू से प्रोग्राम सुना होता तो पता चल जाता
0: जी,
1: तो उन्होंने अपनी पसंद का गाना सुन लिया, लेकिन आप फिर भी उनको उनकी पसंद का एक गाना और सुनवाना चाहते हैं तो हम जरूर सुनवा देते हैं।
0: एक महीने में एक बार जरूर सुनते हैं।
1: अच्छा, चलिए लीजिए, सुनिए सबकी पसंद का ये गाना।

0: और इस समय हम बात करने जा रहे हैं फूलचंद जी से। हेलो।
1: हेलो सखा जी, राधे राधे।
0: राधे राधे फूलचंद जी, क्या हाल हैं आपके?
1: हाल तो बेहाल है सखा जी, बहुत गर्मी हो रही है हमारे बुंदेलखंड में।
0: जी हाँ, बुंदेलखंड में तो वैसे भी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और जगह की अपेक्षा तो, लेकिन ठीक है, हर मौसम को हम झेलना सीख गए हैं, है ना? और खूब पेड़
1: बिल्कुल।
0: पौधे लगाए जाएं और थोड़ा सा वातावरण को अच्छा किया जाए तो हो सकता है कि गर्मी तो पड़ेगी लेकिन जैसे बेहाल हम लोग हो जाते हैं ये नहीं
1: बिल्कुल
0: होगा।
1: बेहाल है सखा जी, और पसीना ही पसीना बिल्कुल जो है का परेशान है पसीना के मारे।
0: अरे तो जल्दी से बता दीजिए, हम आपका जो आप पसीने के बीच आप ये गाना सुन लेंगे तो हो सकता है आपको कुछ राहत मिल जाए।
1: लेकिन जो है फोन लग गया तो पसीना सब कुछ बिलम गया, बढ़िया आनंद आ गया, खुशहाली छा गई।
0: चलिए बहुत अच्छा है, आप कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बता दीजिए यार सबको।
1: सखा जी मैं फूलचंद।

0: पाल छतरपुर जिले के मनकारी गांव से बोल रहा हूँ।
1: जी
0: बिल्कुल,
1: जी
0: खजुराहो का टेम्परेचर तो आप जानते ही हैं,
1: हाँ
0: खजुराहो का
1: हाँ हाँ
0: टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता
1: बहुत
0: है।
1: ज्यादा रहता है, सही बात है। तो चलिए आप बता दीजिए गाना सबको, हम आपको गाना सुनवा दें।
0: जी जी बिल्कुल, फिल्म का नाम है खतरों के खिलाड़ी और गीत की बोले कि तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे जुदा ना होना, कभी मुझसे वफा ना होना। और ये गीत जो है प्रेमदास बाबा जी, दिनकर सिंह, बेटा सिंह यादव, जितेंद्र पाल, मणिराम पाल और मांगीलाल चंदेल जी और विजय कुमार पांडे जी, देवी शंकर शुक्ला जी, सभी को डेडिकेट रहेगा। ओमकार
1: चलिए।
0: भैया हैं और जो है राहुल कुमार जी हैं, अमित तिवारी जी हैं, और आपको भी डेडिकेट रहेगा।
1: जी शुक्रिया। और ये गाना आपको एक ठंडी
0: और
1: फुहार की
0: हमारी
1: तरह
0: पूनम
1: लगे,
0: दीदी है कानपुर से, पूनम जी को भी डेडिकेट रहेगा ये
1: ठीक
0: गीत।
1: है भूलचंद जी, ये गाना एक ठंडी फुहार की तरह आपके ऊपर असर करे, है ना? तो चलिए आनंद
0: जी
1: लीजिए
0: जी
1: इस गाने का, फोन करने के लिए शुक्रिया।
0: जी जी

0: कार्यक्रम के हमारे अंतिम कॉलर हैं सुनील जी, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो।
1: हेलो, नमस्ते दीदी, राधे राधे।
0: नमस्ते, राधे राधे। सुनील जी, अपना पूरा परिचय दे दीजिए।
1: दीदी, मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ, ग्राम गोकुलपुर लहरपुर सीतापुर से।
0: जी, सीतापुर से सुनील जी, आपका बहुत

0: का स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। आप
1: जी,
0: हमारे आखिरी कॉलर हैं, बताइए क्या
1: जी जी
0: हाल है।
1: काफी देर से ट्राई कर रहा था, अब जाके लास्ट में जाके फोन मेरा लगा तो काफी अच्छा लग रहा है हमें। हमारा फोन भी लग गया तो आपसे बात भी हो गई।
0: जी हाँ, बहुत अच्छी बात है कि आपकी कॉल लग गई। और सुनील जी, बताइए कि क्या करते हैं आप।
1: दीदी खेती बाड़ी का काम करता हूँ,
0: अच्छा
1: किसान हूँ
0: अच्छा
1: तो खेती बाड़ी करता हूँ।
0: अच्छा अच्छा बहुत अच्छी बात है। तो अब गाना भी बता दीजिए, कौन सा सुनवा दें आपको।
1: दीदी गाना ये आदमी खिलौना का टाइटल सॉन्ग को सुनना है, और ये गाना आपको और हमारे जितेंद्र पाल और संजय जी हरदोई से और अविनाश तेली जी और पूनम जी को डेडिकेट रहे। जी
0: चलिए, सबकी तरफ से मैं शुक्रिया मैं ही बोल दे रही हूँ, ठीक है।
1: जी
0: जी
1: धन्यवाद।
0: हाँ, सुनील जी लीजिए, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें समाप्त करने की अपनी रेडियो दोस्त शिखा दुबे को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से। देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया।
2: जी।
3: योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
2: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
3: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
2: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
3: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
2: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओ, आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
3: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
3: जी मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
2: बिल्कुल।
3: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
3: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
2: जी श्रोताओं, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
3: जी विमलेश जी, ठीक वैसे ही ना जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
2: बिल्कुल सही। जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
3: विमलेश जी, आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा।
2: जी।
3: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
2: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
3: विमलेश जी, एक और बेहद रोचक बात मैंने फूलों के विषय में पढ़ी थी, और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
2: जी बिल्कुल सही। और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं, आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
3: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
2: जी
3: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
2: इस समय शहरों, गाँवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
3: और वो ये है कि

0: इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
1: जी।
0: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
1: जी, दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं
0: जी,
1: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं, जिनमें विशेष है सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
0: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
1: जी।
0: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
1: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही हैं। इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसकी पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
0: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं।
1: जी।
0: ये एक से दो सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं, कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
1: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है।
0: जी।
1: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
0: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें।
1: जी।
0: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है, और हाँ, वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है।
1: जी बिल्कुल। तो श्रोताओ, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
1: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की। सुनते हैं कार्यक्रम।
0: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू। सिंगिंग द पोएम श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत में मजेदार ढंग से बच्चों की चिड़ियाघर की यात्रा का वर्णन है। पशु पक्षियों की आवाजों को शामिल करके गीत को और भी अधिक रोचक बनाया गया है।
2: चिल्ड्रन, हैव यू एवर विजिटेड अ जू?
3: अ जू?
2: यस, अ जू।
3: Oh yes.
2: All right. So tell me, what do you see in a zoo?
3: Tiger. Lion.
2: Yes.
3: Monkey. Birds of different kind.
2: Very nice.
3: Camel. Giraffe. And so on.
2: Oh wow. So, here is a child like you. Who wants to go to a zoo? Now, let's recite this poem and you all repeat after me. Ready?
3: Ready!
2: The poem goes like this. We are going to the zoo to see a kangaroo.
3: We are going to the zoo to see a kangaroo.
2: And a lion too.
3: And a lion too.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The monkeys swing and climb.
3: The monkeys swing and climb.
2: They know it's feeding time.
3: They know it's feeding time.
2: The polar bear and seals.
3: The polar bear and seals.
2: Enjoy their fishy meals.
3: Enjoy their fishy meals.
2: Yes, we are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The snakes all slide along.
3: The snakes all slide along.
2: The skunk just makes a pong.

0: Pets and animals are very important part of our lives and the environment as well. But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
2: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी,
3: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
4: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
5: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है।
6: बिल्कुल
7: ठीक है।
5: आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
8: वीर जोरावर की
9: जय!
8: वीर जोरावर की
9: जय!
8: जय जेरापुर, जय भारत!
9: जय जेरापुर, जय भारत!
4: राजा जोरावर सिंह, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
10: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
4: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
10: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया, ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
11: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा, ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
5: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
11: जी।
5: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
11: जी महाराज, महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
5: बिल्कुल,
11: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
5: जी मंत्री जी।
11: जी महाराज।
4: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
8: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज।

0: 마라 쌤 나잖아 이네 마라 쪼라 쌤
1: 아이에 하마레 도스트 तहे दिल से आपका इस्तकबाल है तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की क्या खिदमत की जाए आपकी
2: निजाम साहब हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं
1: जी जरूर हुक्म करें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं
2: देखिए निजाम साहब
1: जी फरमाइए
2: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं
1: जी
2: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए
1: राजा जोरावर हम भी ऐसा ही चाहते हैं हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
2: जी
1: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे
3: जो हुक्म मेरे आका हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे आइए महाराज
4: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही खैर निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे
5: जी हाँ जीरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे
3: ए, सुनो सारी तैयारियां पूरी है ना
6: बिल्कुल
3: देखो कोई गलती नहीं होनी चाहिए एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है दूसरे उसके अंगरक्षक साय की तरह उसके साथ रहते हैं और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत
6: हुजूर आप फिक्र ना करें सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है
3: लेकिन जरा होशियारी से
6: जो हुकुम सरकार

0: John Armour!
1: Good
0: home! Tum charo taraf se gir chuke ho.
1: Ye kya hai?
0: You are under arrest.
1: Ek sote hue nihatthe insaan ko aadhi raat mein aise kaayron ki tarah giraftar karte ho? Sharm nahi aati tumhe? Himmat hai to humse lad kar dikhao. Aao samne.
0: Bout ho gayi tumhari bahaduri. Fauji
2: huzoor.
0: बांधो इस बच्चे को जंजीर से।
2: जी
3: हाँ। छोड़ो मुझे।
0: हाथ
3: मत लगाओ मुझे। मुझसे हाथ हटाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे। हटो यहाँ से।
0: शाबाश, शाबाश, सालार जंग। मैं खुश हुआ। तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा।
4: हुजूर।
1: अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है। एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है। लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है। लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था।
0: जाओ, ले चलो इसको।
3: छोड़ो मुझे,
0: चलो,
3: हाथ हटाओ, छोड़ो मुझे।
5: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए। उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए।

0: किए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों न गंवानी पड़े।
1: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
2: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
3: अप्पा, ये नहीं हो सकता।
2: देखो तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
3: ये नामुमकिन है।
2: व्हाई?
3: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे। अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
2: तो नहीं मानोगे। देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा,
3: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
2: एक्चुअली यू आर अ फूल।
0: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
1: काला पानी की सजा?
0: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
1: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
0: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
3: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
1: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
4: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अब आप सुनेंगे दिल की आवाज बने नगमों को सदाबहार नगमी कार्यक्रम में। कार्यक्रम का आगाज करते हैं सरस्वती चंद्र फिल्म के इस गीत से जिसे आवाज दी है मुकेश ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, बोल इंदिवर के।

0: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर पर संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
2: तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया।
1: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है उम्मीद फिल्म से। आवाज मोहम्मद रफी की, संगीत रवि का, बोल शकील बदायूनी के।

अब जो गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है रात और दिन फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की, संगीत शंकर जयकिशन का, बोल शैलेंद्र के।

अब आप सुनने जा रहे हैं होली आई डे फिल्म का गीत मुकेश की आवाज़ में, बोल इंदिवर के संगीत, कल्याण जी आनंद जी का।

हाथ की सफाई फिल्म का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत कल्याण जी आनंद जी का, शब्द रचना गुलशन बावरा की।

कुदरत फिल्म के इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीरों पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: Economic resilience should be promoted.
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। संयुक्त प्रेस बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश को प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 76,327 जबकि निफ्टी 19 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर था। ओस्लो में नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा और डी कुकेश ने क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ रहने के बाद

बेहद रोमांचक टाई ब्रेकर में जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में प्रज्ञानंद ने टाई ब्रेकर में वेस्ली सो को हराया। गुकेश ने विंसेंट कीमर को पराजित किया। आईपीएल क्रिकेट में आज क्लासिक क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने कहा कि इस साल मिजोरम, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। कलावती पत्नी बाबूलाल, निवासी कंचर, थाना विश्वेश्वरगंज, जिला बहराइच ने सूचित किया है कि उनकी बेटी निराली दिनांक 2 सितंबर 2024 से लापता है। निराली की आयु 19 वर्ष, कद 5 फीट, रंग सांवला, चेहरा गोल और इकहरा शरीर है। ये मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। इन्होंने काला कुर्ता और नीली सलवार पहन रखी थी। इनके संबंध में कोई भी सूचना इस मोबाइल नंबर पर दें 6307230836। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लें 6307230836। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
5: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
6: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
7: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

0: श्रोताओं, हम आपको बता दें, NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। मीडियम वेव के मीटर पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। दिन के 1:10 होने को हैं। अब इलाकाई खबरें नश्र की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल प्रेसिडेंट हाउस में मुनक़िद नागरिक अलंकरण जलसे में साल 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म अवार्ड से नवाजा। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सरफराज किया गया। जाने माने फिल्म अदाकार धर्मेंद्र सिंह देओल को फन के शोबे में उनके ताउन के लिए बाद अजमर्क पद्म विभूषण से सरफराज किया गया। फिल्म अदाकार की अहल्या और लोकसभा रुक्न हेमा मालिनी ने यह अवार्ड हासिल किया। वायलिन बजाने वाले डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सरफराज किया गया। पद्म विभूषण गैर मामूली और खुसूसी खिदमत के लिए, पद्म भूषण खुसूसी खिदमत के लिए और पद्मश्री किसी भी शोबे में खुसूसी खिदमत के लिए दिया जाता है। साल 2026 के लिए सदर जमहूरिया ने 131 पद्म अवार्डों को मंजूरी दी है। बकिया पद्म अवार्ड फातेहीन को बाद में मुनक़िद होने वाले जलसे के दूसरे मरहले में अवार्ड से नवाजा जाएगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज नगर निगम लखनऊ की 342 अवामी बहबूदी प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। 413 करोड़ रुपए के लागत वाले इन प्रोजेक्टों की शुरुआत स्वच्छ सुंदर समर्थ लखनऊ से मुतालिक पुस्तिमक्का का इजरा भी किया। प्रोग्राम में वजीर आला ने अपने खिताब में कहा कि लखनऊ नगर निगम को सफाई रैंकिंग में मुल्क में तीसरा मकाम मिलना एक बड़ी हुसूलियाबी है। उन्होंने कहा कि हमें अब लखनऊ को अव्वल नंबर पर लाना है। वजीर आला ने कहा कि नगर

0: सफाई रैंकिंग में मुल्क में तीसरा मकाम मिलना एक बड़ी हुसूलियाबी है। उन्होंने कहा कि हमें अब लखनऊ को अव्वल नंबर पर लाना है। वजीर आला ने कहा कि नगर निगम के साथ आवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो लखनऊ को साफ और खूबसूरत बनाने में अपना किरदार अदा करें। वजीर आला ने कहा,
1: मैं आभारी हूँ उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का, जिन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में 17 नगर निगम में चुनाव हुए थे और 17 की 17 नगर निगम की सीट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाली थी। सभी 17 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का अपना पूरा बोर्ड बना और उसी का परिणाम है कि नगर निगम ने इन 3 वर्ष में कुछ प्रतिमान भी स्थापित किए।
0: हुकूमत मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की हमवार फराहमी यकीनी करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मगरबी एशिया तनाज़ों पर कल नई दिल्ली में मुनक़िद बैन वजारती प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस वजारत की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने ये बात कही
2: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: वज़ीर बराए तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने सभी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों को ख़त लिखकर 21 जून को होने वाले NEET UG 2026 के री एग्ज़ाम को महफूज, हमवार और कामयाबी के साथ मुनक़िद करने की अपील की है। जनाब प्रधान ने पूरे मुल्क के सभी वज़राए आला, नायब गवर्नरों और हुकूमतों से इस मुतालिक तआवुन तलब किया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने गांव पंचायतों की नई बॉडी तश्कील होने तक या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की मुद्दत के लिए आउटगोइंग गांव प्रधानों को गांव पंचायतों का इंतजामिया मुकर्रर किया है। रियासत के गांव पंचायतों के प्रधानों की मुद्दतकार आज खत्म हो रही है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के अहकाम के मुताबिक सभी जिला मजिस्ट्रेटों को गांव पंचायतों में आउटगोइंग प्रधानों को इंतजामिया के तौर पर नामजद करने का हक दिया गया है। ये सभी कल से इंतजामिया के तौर पर कामकाज संभालेंगे। इन सभी को सिर्फ मामूल के मुताबिक और रोजाना के कामों को करने की इजाजत होगी और उन्हें कोई भी हिकमत अमली का फैसला करने की इजाजत नहीं होगी। हुकूमत ने यह भी वाज़े किया है कि अगर किसी भी हालत में कोई हिकमत अमली का फैसला जरूरी हो तो जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बाद ही यह फैसला किया जा सकता है। हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के लाखों लोग आज सऊदी अरब में हज करेंगे। 5 रोजा हज के पहले दिन कल आजमीन हज मिना के टेंट सिटी में जमा हुए। आजमीन हज आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर पेश आए एक शदीद सड़क हादसे में औरास थाना हलके के किलोमीटर 262 पर दिल्ली से गोरखपुर जा रही मुसाफिरों से भरी एक डबल डेकर बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। इस हादसे में 5 अफराद मौके पर ही जहां बहक हो गए जबकि एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही मकामी इंतजामिया ने फौरन मौके पर पहुंचकर राहत और रसानी का काम शुरू कर दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर पेश आए सड़क हादसे में जानोमाल के हुए नुकसान पर रंज का इजहार किया है। साथ ही मरने वालों के लवाहिकीन के तई सब्र की दुआ की है। दरियासना गुज़िश्ता शब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पेश आए एक हादसे में कैची धाम जा रहे 4 अकीदतमंद जा बहक हो गए और 3 जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार खड़े ट्रेलर से टकरा गई। और कल पूरी रियासत में दिन भर की तेज धूप, शदीद गर्मी और लू के दरमियान रात में अचानक मौसम का मिजाज तब्दील हो गया। रियासत के गोरखपुर और अयोध्या समेत कई दीगर अजला में गुज़िश्ता शब तेज आंधी के साथ हुई बारिश ने लोगों को फिलहाल शदीद गर्मी से कुछ राहत दी। अयोध्या और जौनपुर में भी आज सुबह तेज हवाओं और बारिश से मौसम तब्दील होने की खबर है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
3: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अब शहरी महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम अपराजिता।

0: का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ भरी जाए। सखियों आज है मंगलवार और हर मंगलवार और शुक्रवार हम लेकर आते हैं आपके लिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम अपराजिता, जिसे आज लेकर मैं हाजिर हूँ आपकी सखी आंचल
1: और साथ में मैं हूँ आपकी रेडियो सखी सीमा। सखियों
0: नमस्कार। दीदी जी, रेडियो के माध्यम से हमारा हमारी सखियों के साथ ये रिश्ता जुड़ा है ना, हमारी ईश्वर से कामना है कि ये हमेशा ऐसे ही बना रहे।
1: हाँ भाई, भाई बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी बात कही। और हमारा रिश्ता ऐसे ही हंसते मुस्कुराते स्वस्थ रहे। और आंचल, सबसे पहली बड़ी बात ये है कि रिश्ते जो होते हैं ना, बेहद खूबसूरत एहसास होते हैं, जिनकी खनक हमेशा हमारे आसपास होती है। और रिश्तों के ताने बाने में जीवन का हर एक तार बुना होता है।
0: बिल्कुल,
1: कभी हम जीते हैं कुछ रिश्तों में, कुछ हमसे जी जाते हैं रिश्तों में। जैसे कि जब बेटी शादी के बाद आती है ना, तो माँ जो होती है ना, वो देखकर बेटी को खुश हो जाती है।
0: बिल्कुल।
1: और अपनी माँ को देखकर बेटी भी खुश हो जाती है।
0: भाई, रिश्ता चाहे माँ बेटी का हो, माता पिता का हो, भाई बहन का हो, नंद भाभी का हो, बुआ का हो, मौसी का हो, कोई भी रिश्ता हो, है ना, रिश्तों में भाई तभी मिठास तब बनी रहती है या फिर हंसी ठिठोली होती है, जब रिश्तों में संवाद, विश्वास और सम्मान बना रहे। और भाई, रिश्तों में छोटी छोटी नोकझोंक भी होती रहती है, उसमें कोई भाई बुरा मानने वाली बात होती नहीं है।
1: बिना नोकझोंक के रिश्ते कहाँ हमारे मजबूत होते हैं
0: भाई। बिल्कुल, और क्या,
1: बिल्कुल सही कहा। देखो, जब आंचल पांच उंगलियां एक बराबर नहीं है, तो हम कैसे स्वभाव से एक हो सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जहाँ रिश्तों में बड़े छोटों का सम्मान हो, आपसी मेल मिलाप के साथ अपनों से बातचीत और संवाद होता रहता है ना, तो दिलों में प्रेम हमारे बढ़ता रहता है।
0: बिल्कुल।
1: अब देखो ना, स्कूलों में छुट्टियां हो गई गर्मी की, तो दादी नानी के घरों में नाती पोतों का आगमन उनके चेहरों पर मुस्कान ले ही आती है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल भाई। और जानती है दीदी, जो ये मई जून का महीना होता है ना, ये महीना रिश्तों की जो मिठास होती है, आपसी जो मेल मिलाप होता है ना, उसके लिए बेहद खास होता है, है ना, क्योंकि इसी टाइम हम खुलकर हंसते मुस्कुराते हैं, है ना।
1: बिल्कुल भाई, तो जो व्यस्तता होती है उससे हम दूरी होकर के अपना हमारा मन जो होता है ना, स्वस्थ हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और आपसी रिश्ते जो हमारे होते हैं वो और भी मजबूत हों, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब हम एक दूसरे के घर जाते हैं तो कभी कभी बहस पड़ हो जाती है, या कहते हैं हमने तो उसके साथ अच्छा किया, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों रिश्ता बिगड़ गया। तो देखिए, कुछ खास बातों का ख्याल यदि हम रखेंगे ना, तो हमारी जो प्यार की डोर है वो और भी मजबूत रहेगी।
0: बिल्कुल।
1: तो सुनना चाहोगे कैसे,
0: बताइए
1: भाई। यदि हम किसी के घर जाए ना, तो अपनापन लेकर जाए, और भाभी बुआ यानी जो रिश्ते तुमने बताए, किसी भी रिश्तों में मिलजुल कर एक साथ उनका आपस में हम सब हाथ बटाएं, तो बहुत अच्छा रहेगा।
0: बिल्कुल। और कभी ऐसा भी होता है कि हम पिकनिक पर जा रहे हैं, उनके साथ पार्टी वार्टी कर रहे हैं भाई, तो थोड़ा कंट्रीब्यूट वगैरह कर लें, ताकि बोझ किसी एक के कंधे पर ना आए, है ना।
1: बिल्कुल भाई, दबाव एक दूसरे पर ना आए। और आजकल सबसे बड़ी बात कि बच्चों बच्चों में जो छुट्टियों में नोकझोंक हो जाती है, तो पक्षपात जो बड़े करते हैं वो नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें हिल मिल कर रहने को कहना चाहिए, ईगो नहीं आना चाहिए, है ना।
0: बिल्कुल।
1: और घर में भाई जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो कितनी अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं ना
0: भाई, कभी, हाँ। उनकी बातें सुनते सुनने भी लगता है कि कितनी सारी एक्साइटमेंट है उनके अंदर, हाँ। है ना, चीजों को लेकर।
1: और भाई ये मामियां जो नानी लोग जो अच्छे अच्छे खाना बनाती
0: हैं, अरे भाई बिल्कुल। और उसकी हम जो तारीफ कर देते हैं, मान लीजिए उन्होंने कुछ अच्छा सा बनाया हमारे लिए, है ना, कई सारी डिशेस ट्राई होती है गर्मी में जो हम लोग जाते हैं, है ना, नई नई डिशेस देख के, तो उसकी अगर हम तारीफ कर दें तो भाई उनका चेहरा खिल जाता है, क्यों, है ना
1: भाई। भाई तारीफ करने में कंजूसी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तारीफ से हमारा हौसला और भी बढ़ जाता है। और छुट्टियों में सबसे बड़ी बात कि मोबाइल से हमें दूरी बनानी चाहिए, इंडोर गेम खेलना चाहिए, हाउसी खेले, अंताक्षरी है, चेस कैरम खेले, और हंसने हंसाने के लिए एक दूसरों की मिमिक्री करें, और अपने बचपन की बातें सुनाएं, किससे कहानी कहें, सुने और सुनाए, हंसे और मुस्कुराए।
0: बिल्कुल भाई, आपकी ये बातें सुन के ना, सच में मुझे ना अपनी नानी का घर याद आ गया। जानती हैं दीदी, वहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही माहौल होता था जब हम एक साथ इकट्ठा होते थे।
1: तो भाई रिश्ते जो हमारे होते हैं ना, वो फिर से जी जाते हैं, और एकाकीपन से दूर होकर रिश्तों में खिल जाने और मुस्कुराने को हम फिर से बेताब हो जाते हैं।
0: भाई जिस घर में बड़े बुजुर्ग, बच्चे, महिला पुरुष

0: मिलकर हंसते मुस्कुराते हैं ना, वो घर भी एकदम किसी खिले हुए फूल के बगिया जैसा हो जाता है दीदी।
1: बिल्कुल यार, हम सभी पहले भी कुछ ऐसे ही गीत पहेलियां बूझते थे, हमारे माता पिता हम सब ऐसे बड़े लोग हम लोग से पूछते थे कि अब ये पहेली बताओ कैसी है,
0: हाँ, या फिर ये बोल के दिखाओ ये कैसे बोलना है।
1: तो कुछ ऐसे ही गीत पहेली सुनते हैं,
0: चलिए फिर।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: पता है आंचल, हमारे घर में ना उधम चौकड़ी मची होगी बच्चों की और ये आज वो गाना सुने होंगे तो वो भी बड़े खुश हो गए होंगे। देखो गर्मी की जो तपिश है ना उससे हम देखो दुपट्टे से छाते से अपनी बचाव कर सकते हैं।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: लेकिन भाई शीतलता तो स्वच्छ वातावरण शुद्ध पर्यावरण से ही आता है। और पता है पंचवटी वृक्ष तुम्हें पता है क्या होता है? पीपल, बरगद, आंवला, अशोक और बेल, ये हमें ना आरोग्य प्रदान करते हैं और ऑक्सीजन भी हमें देते हैं, रक्तचाप को हमारे संतुलित रखने में कारगर होते हैं।
1: बिल्कुल। और दीदी वैसे भी हम सब का यही दायित्व है कि हम सब वृक्षारोपण करें।
0: बिल्कुल।
1: और भाई एक दूसरे को महंगे तोहफे देने के बजाय एक दूसरे को हम तोहफे में पौधे दे सकते हैं। और जब हम ऐसा कुछ करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमें देखेंगे, हमें देखकर वो सीखेंगे भी, है ना?

देखो हमारी जो धरा है हरियाली पर निर्भर है, बिना पेड़ पौधों से हमारा जीवन अधूरा है। तो क्या कहती है बात आज ये हमसे, इसके लिए आइए सुनते हैं रूपक पुकारती धरा हमें। आलेख शिवानी श्वेतांबरा श्रीवास्तव का है, प्रस्तुति ममता उपाध्याय का।

0: उफ, इतनी गर्मी, हे ईश्वर, तरस गई हूँ किसी वृक्ष की छांव को, झुलस रही हूँ इतनी तेज धूप, कहीं कोई वृक्ष तो दिखाई दे तो थोड़ा सुस्ता लूं। लगातार ये बढ़ता हुआ तापमान बहुत ही कष्टकारी होता जा रहा है। वो दूर एक वृक्ष तो दिखाई दिया। हे वृक्ष, तुम्हारी छाया कितनी शीतल है, इस तेज धूप में हर व्यक्ति तुम्हारे नीचे कितनी राहत पा रहा है। लेकिन तुम तो बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है?
1: धरती माँ, आप तो हम सब की माँ हैं। देखिए ना, मेरे आसपास के सारे वृक्ष कट चुके हैं और उनके साथ ही चले गए हैं सारे वानर, कोयल, गौरैया, बुलबुल, कौवा, तोता, सभी तो बेघर होकर दूर किसी और वृक्ष की तलाश में चले गए। मेरी डालियों पर जो पक्षी अभी तक रुके हुए हैं ना, वो भी इस प्रदूषित हवा के कारण सुरक्षित नहीं है। मैं यहाँ सड़क के किनारे अकेला बचा हूँ। आज तक मैंने हमेशा लोगों को ठंडी छांव दी, शुद्ध वायु और फल दिए, लेकिन आज कम वर्षा और प्रदूषित वायु से मैं भी सूखने लगा हूँ। उफ, प्रकृति का ये विनाश अब देखा नहीं जाता।
0: हाँ रे तरु, मेरा मन भी यही सोच कर व्यथित है। तुम सब भी तो धीरे धीरे दूर होते जा रहे हो, बिना तुम सब के धरती पर जीवन कैसे और कब तक रह सकेगा? मनुष्य विकास की कितनी बड़ी कीमत चुका रहा है वो नहीं जानता। वृक्ष, तुम सब तो धरती के श्रृंगार हो, तुम्हारे बिना सब सूना, जीवन की सारी मूलभूत आवश्यकताएं तुम्ही से तो होती हैं पूरी। तुमने तो देना ही सीखा है, लेते तो कुछ भी नहीं, फल फूल ऑक्सीजन और हाँ, वर्षा भी तो तुम्हारे ही कारण होती है। नदी की मिट्टी को मजबूती से पकड़कर बाढ़ से भी तो तुम ही बचाते हो। पुत्र, मानव को तुम्हारे महत्व को याद रखना चाहिए, उसका अस्तित्व तुम वृक्षों से ही तो है और मेरा भी। चलो अब मैं आगे बढ़ती हूँ, मेरा हलक तो प्यास से सूखा जा रहा है। नदी, ओरी नदी, कहाँ गुमसुम सी बही जा रही हो, माँ की पुकार भी नहीं सुनाई दे रही।
2: ओह धरती माँ, आप आज आप किस भ्रमण पे निकली हुई हैं?
0: क्या बताऊं बेटी, इस प्रकृति पर्यावरण का दिन पर दिन बिगड़ता हाल देखा नहीं जाता। मनुष्य इस प्रकृति का आवश्यकता से अधिक दोहन कर रहा है, जिसके कारण भविष्य में मनुष्य और अन्य जीव जंतुओं के लिए जीवन बहुत ही दुष्कर हो जाएगा।
2: हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं। अब मेरा ही स्वरूप देख लीजिए, मेरा जल कितना प्रदूषित हो चुका है। इतने नियम कानून बचाव अभियान होने के बाद भी मुझ में गंदगी डालना कम नहीं हुआ है माँ। फैक्ट्रीज और शहरों की सीवर लाइनें मुझ में प्रतिदिन खतरनाक अवयवों का जहर घोलते हैं माँ। मुझ में रहने वाले जलीय जीव उस जहर के कारण मरते जा रहे हैं। नदियों में पैदा होने वाली वनस्पतियां भी लुप्त होती जा रही हैं माँ। बढ़ती जनसंख्या के आवास पूर्ति के लिए मेरे बहने के स्थान तक को मनुष्यों ने छीन लिया है माँ। मानव ये भूल गया है कि मानव की सभी सभ्यताओं का विकास नदियों के ही सानिध्य में संभव हो सका है। यदि समय रहते मनुष्य सचेत नहीं हुआ

0: तो नदियों के न रहने पर स्वयं मनुष्य का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा।
1: ठीक कहती हो नदी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मनुष्य को अपने सुरक्षित भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को भी संरक्षित रखना ही होगा, उन्हें बचाना ही होगा। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। चलो नदी में चलती हूँ, आगे बढ़ती हूँ। तुम अपना काम करो, बाकी अपना काम करेंगे। अरे ये क्या, ये एक स्त्री अत्यंत दयनीय दशा में, जिसके चेहरे पर चोट के निशान हैं, चेहरा भी आंसुओं से भीगा हुआ। चलो देखती हूँ, मैं उससे मिलती हूँ, पूछती हूँ उसका दर्द। बेटी, ओ बेटी, क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हारी इतनी दयनीय दशा कैसे?
2: माँ, मेरे साथ भी वही हुआ माँ, जो हर स्त्री के साथ कभी कम और कभी ज्यादा होता आया है। एक स्त्री अपना सर्वस्व अपने परिवार के लिए देती आई है, पूरे परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करती है। स्त्री ही सृजन करती है, पालन करती है, पुरुष को संभालती है माँ। और माँ, पुरुष को इस बात का भान नहीं कि यदि स्त्री अपने स्त्रियोचित गुणों जैसे समर्पण और क्षमाशीलता, नवांकुर देने का कार्य आदि को त्याग दें, तो पुरुष का संसार कैसे बचेगा माँ? पुरुष अपनी आवश्यकता अनुसार स्त्री को उपभोग करता है और उसका महत्व नहीं समझता, यही मेरी पीड़ा है माँ।
1: बेटी, तुम्हारी बात सुनकर मेरा हृदय भी द्रवित हो रहा है, जैसे तुमने मेरी ही पीड़ा का वर्णन किया हो। मैं धरा हूँ, मनुष्य मुझी में जन्मता है, बढ़ता है, खाता है, पीता है, उपभोग करता है, स्खलित होता है, शौच करता है और मर मर कर पुनः मेरी ही मिट्टी में मिल जाता है। वृक्षों को काट काट कर मेरे श्रृंगार को, मेरे आवरण को क्षति पहुंचाता है, अपने स्वार्थ के आगे उसे अपना अनाचार नहीं दिखता। वो ये नहीं सोचता कि इस प्रकार वो मुझे नष्ट करता जा रहा है और मेरे न रहने पर उसका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। उसे कदाचित भी इस बात का भान नहीं है।
2: माँ, पुरुष को ये सोचना ही होगा कि जिस दिन स्त्री ने उसके अतिचार को सहन करने से मना कर दिया, उसे अन्न देने वाली अन्नपूर्णा बनने से मना कर दिया, वो कहाँ जाएगा?
1: हाँ बेटी, मनुष्य को हर हाल में जीवन दायिनी अन्नपूर्णा का संरक्षण तो करना ही होगा। अरे इतनी भीड़, इतना शोर, ये सब कहाँ जा रहे हैं? जरा पूछती हूँ मैं किसी से।
3: अरे ओ भाई, कहाँ जा रहे हो, ये कैसा शोर है?
4: हाँ माई, हम लोग अपने क्षेत्र में साफ सफाई न होने के कारण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे हमारी बात सुनी जाए और हमारा क्षेत्र भी स्वच्छ रहे।
3: अच्छा भैया, आप साफ सफाई के प्रति जागरूक हैं, किंतु इस समूह में भी लोग खा पी कर खाली पैकेट पॉलिथीन इधर उधर बिखरा रहे हैं। आपकी आवाजों से इतना शोर है जिससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। आप सफाई के अधिकार के लिए इतनी गंदगी और इतना प्रदूषण फैला रहे हैं।
5: हाँ, आप सही कह रही हैं। इस तरह तो हम गंदगी व प्रदूषण को और अधिक फैला रहे हैं।
3: इस प्रदर्शन से ज्यादा उचित तो ये होगा कि आप लोग अपने चारों ओर की गंदगी को साफ करके औरों को भी साफ सफाई का संदेश दें, जिससे अन्य लोग आपसे प्रेरणा ले सकें।
5: भाइयों और बहनों, शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। आप सभी से अनुरोध है कि यहाँ फैला कचरा मिलकर साफ करें और सफाई के जरिए स्वच्छता का संदेश सभी तक पहुँचाएं।
3: वो देखिए, वो है प्रसिद्ध पर्यावरण शास्त्री, चलिए आप सभी को उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। महोदय, क्या आप बताएंगे कि पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं?
6: अरे धरती माँ, आप स्वयं को बचाने के लिए यहाँ पर आई हैं? मैं चारों तरफ घूम घूम कर लोगों को यही संदेश पहुँचाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास अधिक समय नहीं है, हमें जागना ही होगा, इस पर्यावरण को

0: हमारी धरती को हमें बचाना होगा। इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है वृक्ष। जितना अधिक से अधिक संभव हो पेड़ लगाए जाएं। जितना हो सके वाहनों का प्रयोग कम ही करें। कम दूरी के लिए साइकिल का प्रयोग करें। कार और दो पहिया वाहन शेयर करके ऑफिस जाएं। पेड़ पौधों की सूखी पत्तियां जलाएं नहीं, उससे खाद बनाएं। राज्य की सरकारें प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को चिन्हित करें, उन पर सख्त कार्रवाई करें। पॉलीथीन का प्रयोग ना करें। वर्षा जल संचयन को गंभीरता पूर्वक किया जाए। देखिए, धरती हमारी माँ है और वो स्वयं हमारे पास आई है, और ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी सुरक्षा करें। तो हम सबको जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए और अपनी धरती माँ को सुंदर बनाना चाहिए।
1: जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो।
2: हम सभी शपथ लेते हैं कि अब स्वयं भी साफ सफाई का ध्यान रखेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे।
1: हाँ मेरे बच्चों, तुम्हें मेरे लिए करना होगा। इस पर्यावरण और प्रकृति के प्रति तुम्हारे कुछ नैतिक कर्तव्य हैं। जिस पर्यावरण में तुम सांस लेते हो उसकी वायु को शुद्ध रखना तुम्हारा ही कर्तव्य है। जिस मिट्टी से तुम्हें अन्न और जिन नदियों से तुम्हें जल मिलता है, उस धरा को और उन नदियों को बचाना ही तुम्हारे लिए एक विकल्प है, जिससे तुम आने वाली पीढ़ियों को फलता फूलता देख सकोगे।
3: घर घर में पेड़ लगाओ,
4: पर्यावरण को स्वयं बचाओ।
3: घर घर में पेड़ लगाओ,
4: पर्यावरण को स्वयं बचाओ।
1: अरे इतने सारे युवा, सभी के हाथों में वृक्षारोपण का सामान, इतनी संख्या में कहाँ जा रहे हैं सब? बच्चों तुम लोग कौन हो, कहाँ जा रहे हो?
5: हम सभी युवा जागृत समूह के सदस्य हैं। आज हम समूह में वृक्षारोपण के कार्य के लिए निकले हैं
6: और अपने शहर के बाहर कई खाली जगहों पर, सड़कों के किनारों पर 1000 वृक्ष लगाने का संकल्प लेकर निकले हैं।
1: क्या सच में तुम सब सच में आने वाले समय को सुरक्षित करने का कार्य कर रहे हो? तुम जैसे जागरूक युवाओं के ही हाथ में धरती और मानव का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। मेरी आशा की किरण तुम ही।

0: भाई वाह, कितना अच्छा रूपक था ना, कितना ज्ञानवर्धक भी था। यदि हम सब ऐसे जागरूक रहेंगे ना, तो हमारी प्रकृति और धरती माँ सदैव मुस्कुराती रहेगी।
1: बिल्कुल, और रूपक का नाम था पुकारती धरा हमें। आलेख था शिवानी श्वेतांबरा श्रीवास्तव का, प्रस्तुति थी ममता उपाध्याय का, और स्वर प्रतिभागी कलाकार के नाम है नूतन वशिष्ठ, सत्यानंद वर्मा, ममता उपाध्याय, नीना सोनकर, कपिल तिलहरी और अन्य स्वर साथी। तो और अब ले लेते हैं छोटा सा अंतराल।
2: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा अपने सभी हितधारकों यथा भविष्य निधि सदस्यों, नियोक्ताओं, पेंशनरों की समस्याओं एवं शिकायतों के निदान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त 12 जिलों में दिनांक 27 मई 2026 को प्रातः 9 बजे से निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
3: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बहराइच,
2: ग्राम्य विकास विभाग, विकास भवन बलिया,
3: बलरामपुर चीनी मिल बलरामपुर,
2: BSA ऑफिस बस्ती,
3: नगर निगम परिषद देवरिया,
2: बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड कुंडर की गोंडा,
3: वरुण बेवरेजेस गीडा गोरखपुर,
2: नगर पालिका परिषद पडरौना कुशीनगर,
3: नवजीवन मिशन स्कूल आनंद नगर महाराजगंज,
2: रैना पेपर मिल खलीलाबाद संत कबीर नगर,
3: ग्राम्य विकास विभाग, विकास भवन श्रावस्ती,
2: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन सिद्धार्थ नगर।
0: सखियों, पुनः स्वागत है आपका कार्यक्रम अपराजिता में।
1: फूलों की मुस्कान बढ़ाने एक फुहार चली आती है, गली कॉलोनी घर आंगन लगे रहे जब बाग बगीचे, तारों की बारात सजाने झिलमिल रात चली आती है, तुम मिल जाते इस जीवन में, सूनी रात फिर खिल जाती है, सूनी रात फिर खिल जाती है।

0: दीदी हमारे आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं, है ना।
1: और देखो जब कोई साधन नहीं था तो रेडियो हम सभी का साथी बना।
0: बिल्कुल,
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को लिए हर दिल की धड़कन बन चुका था ये रेडियो। और कार्यक्रम में ना युवाओं के लिए रोजगार की बात हो या किसानों जवानों की बात हो, समाचार हो या हो भूले बिसरे गीत, जहाँ हम सब छत पर तकिए के पास रखकर रेडियो को लेकर खो जाते थे मीठी मीठी बिसरी बातों में। और हम कभी पकवान बनाने की कला सीखते थे दोपहर में, तो कभी स्वस्थ खाने पीने रहने परस्पर प्यार मिलाप की बातें सुनते थे, कभी होती थी लोकगीत की धुन तो कहीं गजल, तो कभी कव्वाली तो कभी शहनाई की धुन थी। और सुबह सुबह रामायण का गायन आज भी हम सभी को लुभाता है।

0: हाय, आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम है विभा रानी। मैं एक फिल्म और थिएटर एक्टर हूँ और मैथिली और हिंदी के लेखक। आकाशवाणी अपने 90 साल पूरे कर रहा है और यह हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। आप सभी को, रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी हाँ, रेडियो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और मुझे इस बात की खुशी है कि इस अभिन्न हिस्सा का मैं भी एक छोटा सा नन्हा सा हिस्सा रही हूँ। मैं जब स्टूडेंट थी, पढ़ती थी, तो आकाशवाणी दरभंगा में मैंने कैजुअल अनाउंसर और ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में काम किया। मैथिली ड्रामे किए, हिंदी ड्रामे किए और कैजुअल अनाउंसर के रूप में मैं वहाँ अनाउंसमेंट करती थी। लेकिन थोड़े ही समय में आकाशवाणी और रेडियो दरभंगा ने मुझे जो दिया, वो आज तक मेरे लिए एक नेमत की तरह है। परफॉर्मेंस, वॉइस मॉड्यूलेशन, डिक्शन, रवानगी, कैसे किस बात को कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, इन सब की जानकारी मुझे धीरे धीरे धीरे धीरे रेडियो से मिली। और आज मैं जो कुछ भी मुझे देख रहे हैं, जो कुछ भी आप मुझ में पा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इस रेडियो का हिस्सा है, उसका योगदान है, उसका सहयोग है। आप सबको हमारी ओर से फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई। और रेडियो सुनना कभी मत भूलिएगा, चाहे आप विविध भारती सुने या आप आकाशवाणी के अलग अलग जो भी चैनल आपको समझ में आते हैं, पसंद आते हैं, उन्हें सुने। मैंने आकाशवाणी दरभंगा में काम किया, उसके बाद आकाशवाणी पटना में भी मेरी कई प्रस्तुतियां हुई। आकाशवाणी कलकत्ता जब मैं आई तो आकाशवाणी कलकत्ता में मेरी प्रस्तुति थी, ड्रामे किए मैंने वहाँ, दिल्ली में मेरे परफॉर्मेंस हुए, और आज जब मैं मुंबई में हूँ तो यहाँ के नेशनल चैनल और उसके साथ साथ विविध भारती दोनों से मैं जुड़ी हुई हूँ। और हर जगह से मुझे बहुत ही प्रेम और सहयोग मिलता है। ऐसा लगता है जब भी मैं आकाशवाणी के भवन में जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने मायके आई हूँ। तो मेरा यह मायका हमेशा फलता फूलता रहे, क्योंकि माँ है, मायका है, तो बेटी हमेशा खुश रहेगी। एक बार फिर से आप सभी को आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
1: और आचल, हम विभा रानी को धन्यवाद देंगे हमसे जुड़ने के लिए।
2: बिल्कुल।
1: और देखो, कहते हैं ना कि सिंगल यूज प्लास्टिक को हमें ना कहना चाहिए सफर में, अभी हम कर रहे हैं तो।
2: बिल्कुल।
1: तो तुम क्या चाहती हो?
2: बिल्कुल, हम ये कहते हैं दीदी कि जब हम कभी जाएं तो अपने साथ कपड़े के थैले लेकर जाएं, ताकि हम प्लास्टिक को के थैले को, सिंगल यूज प्लास्टिक को अवॉइड कर सकें, है ना। और प्लास्टिक की बॉटल्स को यूज करने के बजाय अपने साथ में हम कांच की बॉटल हो गई, स्टील हो गया, कॉपर की बॉटल सबसे अच्छा है, क्योंकि उसमें पानी रखने से पानी हमारे लिए फायदेमंद भी होता है।
1: बिल्कुल, कूल केज ले जाएं सफर में, यदि हम जा रहे हैं तो कूल केज भी यूज कर सकते हैं और पानी भर लेंगे तो हमारा सफर भी अच्छा रहेगा, बार बार भरना भी नहीं पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
1: और सबसे बड़ी बात कि हम जो है ना, जो स्टील का तुमने कहा, कॉपर का कहा,
2: और इसका भी यूज करें, प्लस जब कहीं पहाड़ों पर जाएं घूमने तो वहां कचरा फैलाने के बजाय अपना कचरा साथ में लाकर नीचे डस्टबिन डाल दें। ये आप करेंगे तो आपके बच्चे भी, हम आप करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे बच्चे भी हमें देखकर सीखेंगे और उनका भविष्य स्वस्थ होगा, है ना।
1: बिल्कुल, आने वाली पीढ़ी को हम बोलकर नहीं बल्कि स्वयं
2: करके दिखाएंगे।
1: बिल्कुल। और आंचल, अब चलने की बेल आ गई है, तो अगले किसी कार्यक्रम में हमारी सखियों से फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपनी सखी सीमा
2: और आंचल को दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी शहरी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम अपराजिता, और अब आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से फौजी भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम जवानों के लिए।

फौजी भाइयों, जय हिंद पत्र और ईमेल पर आधारित इस कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। और ये पहला पत्र मेरे पास आया है जिला सीहोर मध्य प्रदेश से अमर सिंह भारतीय, कोशाभाई भारतीय, लक्ष्मी भारतीय, महेंद्र भारतीय, सचिन भारतीय, तरु भारतीय और योगेश्वर सिंह भारतीय का। आप सभी सुनना चाहते हैं महेंद्र कपूर की आवाज़ में हमराज फिल्म का गीत।

और ये मेल हमारे पास आया है लखन गांव रायबरेली उत्तर प्रदेश से। पंकज देवता दीन मास्टर जी, राजेश कुमार चौहान, बेनी नाई जी, तुलसी राम जी का, और आप सभी सुनना चाहते हैं गौतम गोविंदा फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज़।

और ये मेल हमारे पास आया है धाता खागा जनपद फतेहपुर उत्तर प्रदेश से। सौष्ठव त्रिपाठी एवं समस्त छात्र छात्राएं तथा समस्त विद्यालय परिवार उच्च प्राथमिक विद्यालय उखाथू का, और आप सभी सुनना चाहते हैं पूरब पश्चिम फिल्म का गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में।

ये मेल हमें मिला है नेपानगर मध्य प्रदेश से, प्रभुदयाल शिवदे, शिवा बसंतीबाई और गणेश शिवदे का। इसके साथ ही खंडवा से श्यामाबाई रायकवार, छोटू और नारायण रायकवार। आप सभी सुनना चाहते हैं नदिया के पार फिल्म का गीत, जिसे गाया है हेमलता और सुरेश वाडेकर ने।

मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप और इसके साथ ही कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। आपने अपने मेल में लिखा है कि जय हिंद भारत के

रखवालों, जल सेना, थल सेना, वायुसेना और रक्षा प्रणाली में जुटे हुए सभी जवानों को शत शत नमन। हम सुकून से रह रहे हैं, आप हैं तो हम हैं। फौजी गुरमीत सिंह कोट सदर खान के साथ साथ सभी फौजी भाइयों को ये संगीत समर्पित कर रहे हैं। ये सुनना चाहते हैं कुमार सानू और अलका याज्ञिक की आवाज़ में रंग फिल्म का गीत।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:15 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद

0: उपरांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
1: As democratic nations,
2: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।
0: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार

0: मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे।

0: रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मीना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वॉशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के कल तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अब किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम विज्ञान और किसान। कार्यक्रम में धान की सीधी बुआई तकनीक विषय पर जानकारी दे रहे हैं इंजीनियर मिथिलेश कुमार झा और डॉक्टर साहब से बात और इंजीनियर मिथिलेश कुमार झा से बात कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां खरीफ में धान उत्पादन की योजना बनाए हैं, धान की सीधी बुआई भी कर सकते हैं, ये तकनीक क्या है और इसके फायदे क्या हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के दौर में धान की सीधी बुआई तकनीक कैसे अपनाएं, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र फर्स्ट गोपाल ग्राम गोंडा से वैज्ञानिक कृषि अभियंत्रण इंजीनियर मिथिलेश कुमार झा साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। झा साहब, ये बताएं कि ये धान की सीधी बुआई तकनीक के बारे में क्या कहना चाहेंगे।
2: किसान भाई और बहनों नमस्कार। धान की सीधी बुआई की तकनीक परंपरागत विधि से किसान पहले भी करते आ रहे हैं, लेकिन सीधी बुआई के बाद तकनीकी ज्ञान ना होने की वजह से और उसमें खरपतवार का नियंत्रण सही समय पर ना करने से उत्पादन कम हो रहा था, इसलिए किसान भाई उस पद्धति को छोड़ करके रोपाई विधि पर आ गए और रोपाई विधि में लंबी अवधि होने के कारण उत्पादन घटना शुरू हो गया, साथ ही साथ उसमें लागत का भी वृद्धि हुआ। तो फिर वैज्ञानिकों ने शोध करके हमारे किसान भाई को तकनीकी ज्ञान देते हुए और नई नई जानकारी दे करके उनसे कहा गया कि नए नए कृषि यंत्रों का प्रयोग करके धान की सीधी बुआई करके हम जो है तीन तरह के फायदे ले सकते हैं।
1: जैसे
2: पहला फायदा यह है कि धान की सीधी बुआई से आपका पानी का बचत 30-35% हो सकता है और जो हमारा ग्रीन गैस हाउस का जो उत्सर्जन होता है उसमें 35-40% की कमी होता है, साथ ही साथ लागत और श्रम की बचत होता है और इसमें लागत जो है 4,000 से 5,000 रुपया प्रति एकड़ बच जाता है।

0: है।
1: और जलवायु परिवर्तन के दौर में ये उचित भी है?
0: जलवायु परिवर्तन के दौर में इसलिए उचित है कि ग्रीन हाउस का इफेक्ट बहुत ज़्यादा जलवायु में आ रहा है, तो सीधी बुआई करने से हमारा 30 से 35% उत्सर्जन जो होता है मीथेन गैस का उत्सर्जन कम होने लगता है।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ भी धान की सीधी बुआई करनी है तो सबसे उपयुक्त समय क्या है?
0: अभी नौतपा चल रहा है, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस समय बुआई होने से जमाव में दिक्कत आ सकता है, तो नौतपा बीत जाए और हम जो है धान की सीधी बुआई 1 जून से लेकर के 30 जून तक कर सकते हैं, और इसको अगर हम जुलाई में करेंगे तो उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा।
1: यानी मानसून आने के पहले ही इसको करना है?
0: जी, मानसून आने से पहले ही करना पड़ेगा। अगर खेत में नमी नहीं है तो खेत की सिंचाई करने के उपरांत,
1: यानी पलेवा
0: पलेवा करने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि जो हमारे पास यंत्र है वो जो है सूखे खेत में चलता है।
1: यानी एक हल्की सी सिंचाई कर दे,
0: हल्की सिंचाई करके जिसे उसमें नमी बन जाए, उसके बाद हम सीड ड्रिल मशीन से, मल्टीक्रॉप प्लांटर से हम धान की सीधी बुआई कर सकते हैं।
1: तो जो धान की सीधी बुआई का तरीका है उसके बारे में जरा किसान भाइयों बहनों को समझाएं।
0: धान की सीधी बुआई अगर मशीन के द्वारा करेंगे तो इससे हमें बीज और खाद का बचत होगा और धान की एक लाइन से लाइन की दूरी निश्चित हो जाएगा, खरपतवार में नियंत्रण होगा और उत्पादन बढ़ेगा।
1: तो इसके लिए क्या सीड कम्फर्टी ड्रिल का इस्तेमाल हो सकता है?
0: वैज्ञानिकों ने शोध करके सुपर सीडर, सीड कम्फर्टी ड्रिल और यहाँ तक कि ड्रम सीडर भी उन्होंने बनाया है, लेकिन ड्रम सीडर में दिक्कत आता है कि उसमें पलेवा करना पड़ता है, तो ड्रम सीडर से बुआई हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन सूखे खेत में बोने के लिए सीड ड्रिल और मल्टीक्रॉप प्लांटर, उसमें एक प्लेट लगा होता है जो धान के लिए ही बनाया जाता है
1: जी,
0: और उसमें धान के आकार के हिसाब से प्लेट को सेट करते हैं।
1: अच्छा, ताकि बीज की मात्रा बराबर गिरे।
0: हाँ, जिससे बीज की मात्रा हमारे समुचित ढंग से गिरे।
1: और अंतरण क्या रखेंगे, लाइन से लाइन की दूरी?
0: लाइन से लाइन से दूरी जो है 20 से 22 सेंटीमीटर रखेंगे।
1: और बुआई की गहराई?
0: और बुआई की गहराई पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जिस प्रकार से गेहूं और चना और मटर की बुआई करते हैं उतने गहराई पर अगर इस धान की बुआई हम कर देंगे तो अगर धान का जमाव नहीं हो रहा है या सिंचाई कर देते हैं या बरसात हो जाता है तो धान के बीज सड़ जाएंगे, इसलिए धान की बुआई हमेशा जो मशीन को सेट करेंगे कि 2 से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहराई पर बुआई नहीं होना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, बीज दर क्या होगी धान की सीधी बुआई तकनीक में, और बुआई के पहले क्या बीज शोधन और भूमि शोधन भी करना?
0: हाँ, बुआई से पहले धान के बीज का बीज शोधन कर लेंगे। इसमें एक बताया गया है कि धान के बीज को नमक के घोल में डाल करके उसको भिंगो करके जब छानेंगे तो जो भी बीज जमने लायक नहीं होगा वो तैरने लगेगा, उसको निकाल लेंगे। इसके बाद थीरम से हम उसको ट्रीट करके छाए में सुखा करके उसकी बुआई करेंगे।
1: और जो सामान्य प्रजातियां हैं और जो संकर प्रजातियां हैं उनके बीज की मात्रा किस हिसाब से लगेगी एकड़ में?
0: जैसे संकर प्रजातियां का बीज जो किसान भाई हमारे बोते हैं वो बीज की मात्रा कम होता है, वो प्रति एकड़ 5 से 7 किलो, वो धान के आकार के हिसाब, धान अगर मोटा होता है तो 7 किलो प्रति एकड़ और धान अगर महीन होता है तो 5 किलो प्रति एकड़ बीज का दर होता है।
1: और जो सामान्य प्रजाति हैं?
0: और सामान्य प्रजाति में महीन धान होता है तो वो 10 किलो प्रति एकड़ और अगर मोटा होता है तो 12 से लेकर के 15 किलो प्रति एकड़ तक की बुआई करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, फसल की भूख मिटाने के लिए खाद और उर्वरक का प्रबंधन कैसे हो, कब हो, कितना हो?
0: इसमें खाद का जो प्रयोग है वो अगर DAP डालते हैं तो वह एक दानेदार खाद होता है, तो उसको मशीन के द्वारा हम बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा यूरिया और पोटाश की बुआई हम उससे हम नहीं कर सकते हैं
1: जी,
0: क्योंकि वो मशीन को जाम कर सकता है, तो केवल DAP 50 किलो प्रति एकड़
1: या NPK
0: या NPK अगर करेंगे तो 100 किलो प्रति एकड़
1: का प्रयोग करें। और सीड कम्फर्टी ड्रिल में अलग अलग खाने में रख दें?
0: हाँ, सीड कम्फर्टी ड्रिल में खाद अलग रखें और बीज अलग रखें।
1: तो नीचे खाद और ऊपर बीज?
0: हाँ, नीचे खाद रहेगा ऊपर बीज रहेगा, तो इससे क्या हुआ एक लाइन में उसको पोषक तत्व मिलेगा।
1: डॉक्टर साहब, फिर खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग?
0: हाँ, इसके बाद इसमें क्या है कि धान की सीधी बुआई में खरपतवार का नियंत्रण बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए धान की जब सीधी बुआई करते हैं तो जमने से पहले यानी 2 दिन के अंदर हम पेंडीमिथिलीन 1500 ml प्रति 200 लीटर प्रति एकड़ अगर हम
1: 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से,
0: प्रति एकड़ के हिसाब से 1500 ml पेंडीमिथिलीन का अगर स्प्रे कर देंगे तो जो भी खरपतवार जो धान के साथ जमता है

0: नहीं जमेगा, केवल धान ही जमेगा।
1: फिर आगे?
0: और जब कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो नहीं, पेंडीमेथलिन से कामयाब नहीं होते हैं, तो उसके लिए हम जब सिंचाई करते हैं 21 दिन के बाद, अगर बरसात नहीं होता है तो सिंचाई करने के बाद 20 पैरीबैग वो 150 ml प्रति 200 लीटर में घोल करके 1 एकड़ में हम स्प्रे करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, धान की सीधी बुआई तकनीक जहां अपना रहे हैं किसान भाई बहन, तो फसल की प्यास कैसे बुझाएंगे?
0: अब इसमें धान के साथ जो है जल प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए हम किसान भाई से यह सलाह देंगे कि जब धान की खेती हम करते हैं तो हमारा खेत जो है समतल होना चाहिए। अगर खेत समतल नहीं होगा तो कहीं पानी ज़्यादा रहेगा, कहीं कम रहेगा, तो पूरे समुचित ढंग से सिंचाई करने में हमारा जल का दोहन होगा और जल का जो हम बता दें सीधी धान में बचत होता है वह नहीं हो पाएगा। इसलिए हम खेत तैयारी के समय में लेजर लेवलर से, एक उन्नत कृषि यंत्र आ गया है, खेत को लेवल कर दें, जो 0 ग्रेड पर लेवल हो जाता है, इसके बाद धान की बुआई करेंगे तो हमारा खेत लेवल होगा और जल प्रबंधन होगा। और हमें यह ध्यान देना है कि खेत में कभी भी लबालब पानी भरने की जरूरत नहीं है, खेत हमेशा तर रहना चाहिए, उसमें पर्याप्त नमी होना चाहिए,
1: यानी केवल फसल की प्यास बुझाना है।
0: प्याज बुझाना है, और बरसात नहीं होता है तभी हम सिंचाई करेंगे।
1: झा साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे धान की सीधी बुआई तकनीक के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र गोपाल ग्राम गोंडा आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा मोबाइल नंबर है 94 50 94 87 66, 9450948766, 94 50 94 87 66।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का धान की सीधी बुआई तकनीक के बारे में इंजीनियर साहब?
0: चलते चलते हम किसान भाइयों से यह हम आह्वान करना चाहेंगे कि अगर हम लागत श्रम का बचत करना चाहते हैं तो धान की सीधी बुआई हम अगर समय से कर दें तो लागत बचेगा, उत्पादन बढ़ेगा, पानी का बचत होगा, और जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से उसमें कमी आएगा।
1: इंजीनियर मिथिलेश कुमार झा साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और धान की सीधी बुआई तकनीक क्या है, जहां भी किसान भाई बहन खरीफ में धान उत्पादन की योजना बनाए हैं तो इस तकनीक को कैसे अपनाएं, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि धान की सीधी बुवाई तकनीक पर जो भी जानकारी इंजीनियर मिथिलेश कुमार झा ने दी है उसे आप ध्यान में जरूर रखेंगे। आपसे बात कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय।
3: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा अपने सभी हितधारकों यथा भविष्य निधि सदस्यों, नियोक्ताओं, पेंशनरों की समस्याओं एवं शिकायतों के निदान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त 12 जिलों में दिनांक 27 मई 2026 को प्रातः 9 बजे से निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
4: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बहराइच,
3: ग्राम्य विकास विभाग, विकास भवन बलिया,
4: बलरामपुर चीनी मिल बलरामपुर,
3: DSA ऑफिस बस्ती,
4: नगर निगम परिषद देवरिया,
3: बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड कुंडर की गोंडा,
4: वरुण बेवरेजेस गीडा गोरखपुर,
3: नगर पालिका परिषद पडरौना कुशीनगर,
4: नवजीवन मिशन स्कूल आनंद नगर महाराजगंज,
3: रैना पेपर मिल खलीलाबाद संत कबीर नगर,
4: ग्राम्य विकास विभाग, विकास भवन श्रावस्ती,
3: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन सिद्धार्थनगर।
2: विज्ञान और किसान कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी हम आपको दे दें। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में सुनिएगा वार्ता, सहकारी समितियों का सशक्तिकरण। वार्ताकार होंगी गौरी त्रिवेदी। खेती किसानी कार्यक्रम में शाम 6:50 पर सुनिएगा डॉक्टर दिनेश सिंह से की गई भेंटवार्ता, विषय होगा गन्ने की फसल में समन्वित रोग प्रबंधन। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय।

हिंदी कार्यक्रम में रात्रि 8 बजे सुनिएगा चंद्रशेखर वर्मा की कहानी फूल तोड़ना मना है, वाचन और संपादन सुरेंद्र राजेश्वरी का। रात्रि 8:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आनंद उठाइएगा नितिन मुकेश के गाए भजनों का। रात्रि 10 बजे राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण आकाशवाणी प्रयागराज की प्रस्तुति होगा। रात्रि 11 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा जगदीश प्रसाद का ख्याल गायन। ये कुछ प्रमुख कार्यक्रम हैं हमारी शाम की सभा के।

0: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें, वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: बात सेहत की हो या हुनर को तराशने की, खोजने हो प्रगति की पर, करना हो अपना उद्यम, सरोकार है उन सब से जिससे निखरे आपकी पहचान और मिले आपको एक नई उड़ान। नई उड़ान सुनिए हर शाम 5:45 से मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। मिट्टी की सौंधी महक से महकते लोक संगीत के कार्यक्रम लोक माथुरी में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। कार्यक्रम में आप सुनेंगे पूजा द्विवेदी के गाए अवधि लोकगीत। आरंभ करते हैं दादरा से, आवाज पूजा द्विवेदी की।

लोक संगीत के कार्यक्रम लोक माधुरी में आज आप सुन रहे हैं पूजा द्विवेदी के गाए अवधी लोकगीत, और आइए सुनते हैं इन्हीं के स्वर में सोहर।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं नक्टा स्वर पूजा द्विवेदी का।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय अपराह्न के 3 बजे हैं। हमारी आज की ये सभा समाप्त होती है। अगली सभा शाम 5 बजे से आरंभ होगी। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं।

0: परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एनके बंधानी।
1: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल FM रेनबो।
2: आई एम संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो FM की।
3: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ FM रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताज़ा जानकारियाँ भी देता है। दैट्स व्हाई आई लव FM रेनबो।
2: ये तो सुन रहे हैं FM रेनबो और आप
4: और 3:04 हो गए हैं दोस्तों। और ये जो वक्त होता है थोड़ा सा अलसाया हुआ होता है, क्योंकि शाम दिन जो है वो शाम से मिलने के लिए बिल्कुल बेकरार रहता है। धूप जो है वो थोड़ी सी उसकी जो आँखों की कहते हैं ना बहुत तेज़ आँखें निकालती है वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ कुछ वक्त ऐसे होते हैं जो दिल कहता है कि बहुत ही सॉफ्ट नंबर एन्जॉय किए जाएँ, बहुत ही ऐसे गाने जो बहुत सूदिंग से हों, बहुत सॉफ्ट नंबर हों। और इस घंटे हम आप तक पहुंचाएंगे ऐसे ही कुछ सॉफ्ट नंबर्स जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। फिलहाल सतरंगी दुनिया लेकर हाजिर है सतरंगी चैनल पर तरन्नुम।

जग से कहा ना जाए वो बस मुझसे कहना जी। अक्सर ऐसा होता है, ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम किसी समवन स्पेशल से शेयर करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लम्हे होते हैं जो कोई ख़ास इंसान होता है उसके साथ हम बिताते हैं, गुजारते हैं। और ऐसे ही सीन जब आप देखें कि आप स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, खासकर अगर हम मोबाइल की बात करें, आप मोबाइल पे, यूट्यूब पे या कोई भी आप पिक्चर देख रहे हैं, कोई भी सीन देख रहे हैं बहुत ही रोने का, तो चलो अच्छा है भाई ऐड आ जाते हैं कि आप भी रोना शुरू करते हैं। मतलब हम लोग भी रोना शुरू करते हैं जब आंसू देख लेते हैं। कोई ऐसा सीन होता है जो मार्मिक होता है, बहुत ज़्यादा दिल को छू जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा थ्रिल चल रहा होता है, कोई ऐसी जासूसी या कोई ऐसा सस्पेंस चल रहा होता है सीन, और अचानक से क्या होता है, अचानक से मोबाइल पर सीरीज़ पिक्चर देखने के बीच में ऐड आ जाते हैं। और जब ऐड आने शुरू होते हैं तो बस आते ही चले जाते हैं। अब आप उसको कैसे हटाएं, क्योंकि वो हटते ही नहीं है। ऐसे में क्या करा जाए? ऐसे में मूड जो है ना वो इतना ख़राब होता है, इतना ख़राब होता है कि अक्सर लोग अपने ही मोबाइल को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा लेते हैं। वो अच्छी बात थोड़ी ना है, लेकिन मोबाइल से आप फेंक भी देंगे मोबाइल तो भी जो ऐड है वो अपने टाइम से ही दूर होते हैं। फिलहाल अगर ऐसा है और आपको लग रहा है कि आपका मूड बहुत जल्दी ख़राब जाता है, तो मूड को चेंज करने के लिए थोड़ा सा माइंड लगाते हैं, यानी जो ऐड आते हैं ना बीच बीच में, उससे आप हमेशा के लिए छुटकारा अगर पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है और उसके बाद आपको सर्च करना है प्राइवेट DNS। फिर वहाँ पर कोड आपको डालना है DNS.adguard.com, और बस आपके मोबाइल लाइफ से हमेशा के लिए ऐड जो है वो गायब हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐड ऐसे होते हैं जो बड़े अच्छे लगते हैं, बार बार दिल करता है कि उस ऐड को देखते रहें और सुनते रहें। लेकिन जब इस तरह के कोई सीन होते हैं, इस तरह की कोई चीज़ होती है, तो फिर दिल करता है कि नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। और सिर्फ जैसी पिक्चर चल रही है, जैसे सीरीज चल रही है, जैसे ड्रामा चल रहा है, वो लग

बजकर 25 मिनट हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है सतरंगी दुनिया। और इस दुनिया में इतने सारे कलर्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे लोग हैं कि जिनको शायद ही, कभी कभी ऐसा भी होता है कि शायद ही हम समझ पाते हैं, शायद ही हम सोच पाते हैं, शायद ही हमारा जहन वहाँ तक जा पाता है, लेकिन बाद में जब पता चलता है तो फिर हम लोग कहते हैं अच्छा ऐसा था, ये तो पता ही नहीं था। अब देखिए, जैसे कि स्कूल बस आप देखते हैं, हमेशा आप देखते हैं कि उसका जो रंग होता है वो येलो होता है, पीला होता है। कभी सोचा पीला क्यों होता है? इतना गहरा कलर क्यों करते हैं? बहुत सॉफ्ट सा कलर क्यों नहीं होता है, या कोई बहुत अच्छा सा डार्क कलर क्यों नहीं होता, ब्लैक क्यों नहीं होता, मरूनिश क्यों नहीं होता? ये सारी चीज़ें हमारे और आपके जहन में ज़रूर आती होंगी, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है ये हम आपको बताते हैं। क्योंकि पीला रंग जो है वो हमारी और आपकी आँखों को किसी और रंग के कंपेरिजन में सबसे जल्दी दिख जाता है। ये खासियत है पीले रंग की, और ये रंग अंधेरे में और कोहरे में भी आसानी से दिख जाता है। इसलिए स्कूल बस को हमेशा येलो कलर में ही रखा जाता है, ताकि एक्सीडेंट होने से बचे, कहीं टकराने से बचे, और बच्चे जो हैं बिल्कुल सेफ़ होके घर वापस लौटें, या बच्चे बिल्कुल सेफ़ वापस स्कूल चले जाएँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वॉश बेसिन है। अक्सर लोग कहते हैं वॉश बेसिन है, वॉश बेसिन है, लेकिन सोचिए वॉश

दिल है वो बता देते हैं। 3:36 हो चुके हैं और ये प्रोग्राम चल रहा है सतरंगी दुनिया। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद जाने अनजाने में पता चल जाती हैं या शायद हमें पता ही नहीं चल पाती हैं। अब देखिए, जब आंसू हमारे निकलते हैं, आपके निकलते हैं, तो लोग हमेशा नैपकिन को आगे करते हैं, रुमाल आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि भाई आंसू को पोंछ लो। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि भाई नैपकिन एआई, तो आप कहेंगे कि भाई नैपकिन एआई मतलब इसका क्या मतलब है? तो आपको बता दें कि ये एक स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो एकदम सिंपल से टेस्ट को फौरन क्या करता है, प्रोफेशनल, कस्टमाइजेबल और देखने में काफ़ी अट्रैक्ट, और डायग्राम और जो इंफोग्राफिक्स है उनमें बदल देता है, जिन्हें प्रेजेंटेशन है या डॉक्यूमेंट्स में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें जो लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको यूज़ करना है, मान लीजिए टेस्ट डालना होता है, उसके बाद ये एआई क्या करता है, उस टेस्ट का विश्लेषण करता है, एनालाइज करता है, एनालिसिस करता है, और उसके बाद आइकन, लेआउट और कनेक्टर्स सुझा देता है, वो अपने आप करेगा। और ख़ास तौर पे ये किसके लिए है, ये भाई अगर हम कहें कि हमारे लिए है, तो हम कहेंगे भाई हमारे लिए नहीं है, ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बहुत ही कम वक्त में काफ़ी इफ़ेक्टिव विजुअल कंटेंट बनाना चाहते हैं। और ये टूल जो है वो हाई क्वालिटी के विजुअल्स कम वक्त में तैयार करने की आपको जो है मौका देता है, आपको सुविधा देता है। तो ज़रा सोचिए आपकी क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, नैपकिन एआई आ गया है और बहुत सारी ऐसी टूल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अंदाज़ को और भी खूबसूरत बदल सकते हैं। और अंदाज़ से हमें ध्यान में

सात एफएम रेनबो पर।

0: सच में इश्क और गहरा हो जाता है जब आप उसको अपना हमसफर बना लेते हैं, यानी कि शादी कर लेते हैं और बंधन में आप उसको हमेशा के लिए बांध लेते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ अलग अलग होती है, हर इंसान अलग होता है, इंसान का दिल अलग होता है, दिल में जज्बात अलग होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस दुनिया में अलग अलग हैं। उसी तरह शादियाँ भी अलग अलग तरह की होती हैं, यानी रीति रिवाज जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अब देखिए, अपने अगर हम देश की बात करें तो हर स्टेट में रहने वाली जितनी भी जनजाति की अगर हम बात करें तो उनकी शादियों में कई तरह के ऐसे रिवाज हैं जो बिल्कुल अनोखे होते हैं। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि वहाँ पर इस परंपरा को इतनी ज़्यादा इज्जत दी जाती है, इतने ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और बस्तर ज़िले में पानी को साक्षी मानकर शादी की जाती है। जी हाँ, बिल्कुल, पानी को साक्षी मानकर वो लोग शादी करते हैं। और ये जो अनोखी एक ट्रेडिशन है, प्रथा है, ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर ज़िले में होती है। वहाँ पर जो आदिवासी होते हैं वो हमेशा से जल, जंगल और ज़मीन की पूजा करते रहते हैं। तो बस्तर में जो ज़िले में जो लोग रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, वो पानी को साक्षी मानकर शादी करते हैं। क्योंकि इसलिए मानते हैं वो ऐसा, क्योंकि शादी के नाम होने वाली फिजूल खर्ची से उनको बचना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। और वहाँ के जो धुरवा समाज के आदिवासी हैं वो जल को एक ऐसे देवता के समान मानते हैं जो जीवन देते हैं। शादी में जितनी भी चीज़ें उपयोग होने वाली होती हैं उनमें सबसे बड़ी जो खासियत होती है वो है पानी के पास। और वो बस्तर में बहने वाली कांकेरी नदी का पानी होना चाहिए और इसे समाज में बहुत ही पाक माना जाता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। और यहाँ का कोई भी अगर शुभ काम होता है, शुभ कार्य होता है, तो वो इस पानी के बिना अधूरा रहता है, यानी पानी के बिना पूरा नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर जो ये समाज के पानी के साथ शादी करते हैं तो बात हो गई, पानी को साक्षी मानकर शादी करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब फेरे लिए जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है दूल्हा दुल्हन ही फेरे ले रहे हैं और आप लोग बैठ के देख रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, ऐसा नहीं है। पूरा गाँव फेरे लेता है, मतलब पूरा गाँव जो है वो साथ में फेरे लेता है। इसके अलावा दहेज के नाम पर कुछ भी नहीं लिया जाता है, कुछ भी नहीं दिया जाता है। और अगर कोई इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश करता है तो फिर जुर्माना जो है ना वो बहुत तगड़ा लगता है, जुर्माना लगाया जाता है। फिलहाल अब मेरे ऊपर आप जुर्माना बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे क्योंकि देखते ही देखते 3:52 हो चुके हैं, सर्वेश बिल्कुल तैयार हैं। और सर्वेश भाई, आप कब आए और इतने चुपके से, इतना अच्छा कुर्ता पहने हुए हैं, इतने स्मार्ट लग रहे हैं, क्या बात है।
1: बिल्कुल कुर्ता पहन के मुझे लगा कि आज जो बड़ा मंगल है ना उसको थोड़ा फेल किया
0: अच्छा, फेल किया जाए।
1: जाए।
0: तो कहाँ से आ रहे हैं आप?
1: बस चला आ रहा हूँ, आपकी आवाज़ सुनी चलाया दौड़
0: हमने
1: कर।
0: पुकारा और आप चले आए।
1: जी हाँ, तुमने पुकारा
0: आगे मत गाइएगा, जान हथेली पे नहीं
1: और
0: लाया।
1: हम चले आए रे। नहीं, जान अपनी जगह सुरक्षित है।
0: जान को हथेली पे ना रख के सुरक्षित रखना ही बहुत

0: बात, बहुत सारी चीज़ें हैं, और
1: बहुत सारी चीज़ें
0: यही
1: हैं।
0: तो खूबसूरती है हमारे
1: लखनऊ
0: लखनऊ
1: की
0: की।
1: खूबसूरती है, बड़ा भंगाली
0: सच,
1: उत्सव के तौर पर मनाया जाता है।
0: बिल्कुल सच है। और सारे जितने भी फेस्टिवल हैं ऐसे ही आपसी भाईचारे से अगर मना

सिंह ने आज नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और निर्णायक वैश्विक नेतृत्व से लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के ढांचे के अंतर्गत उपयोगकर्ताओं के अनुकूल सुधारों की पहल की है। इसमें लैपटॉप और अन्य उपकरणों के लिए QR आधारित प्रमाणीकरण, लचीली अल्पकालिक वाईफाई योजनाओं की शुरुआत और आसान पहचान और बेहतर विश्वसनीयता के लिए पीएम वाणी हॉटस्पॉट नामों का मानकीकरण शामिल है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित श्री राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर आज विशेष अनुष्ठान हो रहे हैं। इस अवसर पर भगवान श्री राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र धारण कराकर विशेष श्रृंगार करने के साथ छप्पन भोग लगाए गए। 28 मई को होने वाले ईद उल अजहा पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में मेरठ में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर के धर्मगुरुओं, गणमान्य लोगों के साथ शांति समिति की बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी वीके सिंह ने सभी से अपील की कि पर्व को आपसी भाईचारे, सौहार्द और शांतिपूर्ण वातावरण में मनाया जाए, साथ ही शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने किसी भी नई परंपरा शुरू न करने के भी निर्देश दिए। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से राहत नहीं है। कई जगहों पर तापमान 43 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। बुंदेलखंड सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों में है। लगभग हर जिले में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। बांदा में 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो देश के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। इसी बीच राज्य में बिजली की मांग ने नया रिकॉर्ड बनाया है। कल उत्तर प्रदेश में 31,824 मेगावाट बिजली की अधिकतम मांग दर्ज की गई, जो राज्य के साथ साथ देश में अब तक किसी भी राज्य की सबसे अधिक बिजली आपूर्ति मानी जा रही है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए।

0: स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ एफएम रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। दैट्स व्हाई आई लव एफएम रेनबो।
1: ये तो सुन रहे हैं एफएम रेनबो।

तो होता है युद्धवेव का, और युद्धवेव में आज मंगलवार का दिन है। जी हाँ, बड़े मंगल का पर्व आप मना रहे हैं, लेकिन आज हम युद्धवेव में बात करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में। तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को पास करने के लिए एक सही दृष्टिकोण और रणनीति बहुत ज़रूरी होती है ना। कौन सी है वो रणनीति और कौन सा है वो दृष्टिकोण, बिल्कुल बताएंगे, लेकिन सोचता हूँ

की प्लान बनाएं और स्मार्ट का फुल फॉर्म जानते हैं? जी हाँ, स्पेसिफिक कहते हैं ना, और दूसरा मैनेजेबल और अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड। ये जो आप प्लान बनाएंगे ना, और खुद पर ज़्यादा प्रेशर ना डालें, बस धीरे धीरे इस

बोलते हैं, और यूथ का सबसे बड़ा काम ये होता है कि सबसे पहले ज़िंदगी में रोज़गार हासिल करना। सेल्फ मैनेजमेंट की बात करें कि आप स्मार्ट तरीके से अपनी सारी कोशिशें जारी रखें। कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, और कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बैंक

दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, यूपीपीएससी दे रहे हैं, और कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बैंकिंग का दे रहे हैं, लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सभी की जो प्रिपरेशन आप करते हैं उसमें कुछ बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो सेम होती हैं, और धीरे धीरे करके उन सारी चीज़ों को आपसे शेयर करूँगा। और उम्मीद करूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और कुछ उसमें ऐसी भी चीज़ें होंगी अगर

0: पंजीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब आरंभ हो रही हमारी आज की सायंकालीन सभा। सभा में सबसे पहले आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, बस कुछ ही पलों में।
1: समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
2: As democratic nations,
3: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
2: Will become even more important to the world.
1: क्वाड देशों ने आज नई दिल्ली में अपने विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान गठबंधन के एजेंडे के प्रगति की समीक्षा की और हिंद प्रशांत से जुड़े क्षेत्रीय तथा वैश्विक घटनाक्रम पर चर्चा की। बैठक समाप्त होने के बाद विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चर्चा क्वाड सहयोग के 4 मुख्य स्तंभों पर केंद्रित रही, जिनमें समुद्री और सीमा पार सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, सुरक्षा, महत्वपूर्ण तथा उभरती प्रौद्योगिकियां, मानवीय सहायता और आपदा राहत शामिल है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आतंकवाद रोधी प्रयास क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों तथा अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल BSF की भूमिका की सराहना करते हुए कहा है कि बल ने न केवल सीमा की दृढ़ता से रक्षा की, बल्कि सीमावर्ती जिलों के लोगों का मनोबल भी बढ़ाया है। उन्होंने सीमा को पूरी तरह से अभेद्य बनाने के लिए BSF, सेना, प्रशासन और नागरिकों को मिलकर एक 4-स्तरीय ग्रिड बनाने पर जोर दिया। श्री शाह ने आज राजस्थान के बीकानेर के पास सांचू चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस ग्रिड की मदद से सीमा पर उत्पन्न

0: खतरों का पूरी ताकत से मुकाबला किया जा सकेगा। इससे पहले गृह मंत्री ने सीमा चौकियों पर नवनिर्मित 14 महिला बैरकों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का एक लेख साझा किया है जिसमें सरकार की विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि चूंकि देश अमृतकाल में आगे बढ़ रहा है, उपराष्ट्रपति ने अपने लेख में सरकार की उन पहलों का जिक्र किया है जिनसे देश भर के लोगों को विशेष रूप से नारी शक्ति, युवाओं और किसानों को लाभ पहुंचा है। आईपीएल क्रिकेट में आज पहले क्वालिफायर में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। राज्य स्तरीय प्रसारण में रात 10 बजे सुनिएगा कार्यक्रम खेल दर्पण। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी प्रयागराज की प्रस्तुति होगा। हिंदी कार्यक्रम होगा रात 8 बजे जिसमें आज सुनिएगा कहानी फूल तोड़ना मना है। कहानीकार होंगे चंद्रशेखर वर्मा। युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग शाम 5:10 पर। नई उड़ान कार्यक्रम होगा शाम 5:45 पर जिसमें अपना उद्यम के अंतर्गत सुनिएगा अमिता की ओबी पर आधारित ऑडियो विजुअल क्रिएटिव डिजाइन और प्रोडक्शन कला के बारे में। सहकारी समितियों का सशक्तिकरण गौरी त्रिवेदी की ये वार्ता आप सुनेंगे लोक आयतन कार्यक्रम में शाम 6:30 पर। गन्ने की फसल में समन्वित रोग प्रबंधन पर डॉक्टर दिनेश सिंह से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता प्रसारित होगी खेती किसानी कार्यक्रम में शाम 6:50 पर। नितिन मुकेश के गाए भजनों का आनंद लीजिएगा सुगम संगीत कार्यक्रम में रात 8:10 पर। फिल्म संगीत का फोन इन कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद होगा रात 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में रात 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे पंडित जगदीश प्रसाद का ख्याल गायन। और शाम 7:45 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। ये थी जानकारी हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की। और आइए अब आपको जानकारी देते हैं कल यानी 27 मई 2026 को आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। कल रात 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम चर्चा का विषय है जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। जिले की हलचल आप सुनते हैं हर रोज प्रातः 9:15 पर। उर्दू कार्यक्रम होगा सुबह 9:30 पर जिसमें कल समात फरमाइएगा खसूसी प्रोग्राम दो आलम से करती है बेगाना दिल को। पेशकश आकाशवाणी गोरखपुर की होगी। जायत में ढैंचा उत्पादन पर नगेंद्र सिंह रघुवंशी जानकारी देंगे कृषि चर्चा कार्यक्रम में कल प्रातः 6:05 पर। स्वास्थ्य के लिए गन्ना इसके बारे में नीना सोनकर बताएंगी स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कल प्रातः 7:00। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 7:31 पर और कल रात 10:30 पर। डॉक्टर भक्ति शुक्ला के गाए अवधि लोकगीतों का आनंद लीजिएगा लोक रंग कार्यक्रम में प्रातः 9:50 पर और लोक माधुरी कार्यक्रम में दिन में 2:45 पर। आंगनबाड़ी कार्यक्रम होगा दिन में एक

पिच की 15 मिनट पर, जिसमें कल सुनिएगा माहवारी के दौरान स्वच्छता का रखे खास ध्यान, इन्फेक्शन और बीमारियों से रहेंगी दूर। इस पर डॉक्टर नीरू मित्तल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ से नीना सोनकर की भेंट वार्ता। विज्ञान और किसान कार्यक्रम होगा दिन में 2:30 पर। युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग, हर रोज की तरह शाम 5:10 पर। नई उड़ान का समय होगा कल शाम 5:45 पर, जिसमें कल प्रगति पथ के अंतर्गत सुनिएगा आशीष सोनी की ओबी पर आधारित सफलता के मंत्र, एकीकृत लक्ष्य निर्धारण कैसे। किसानों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान होगा कल शाम 6:30 पर, जिसमें कल खरीफ उत्पादन की उन्नत तकनीक, जायद फसलों में सामयिक कार्य, समन्वित नाशी जीव प्रबंधन और कृषि रक्षा रसायनों का सुरक्षित प्रयोग, इन विषयों पर आपके सवालों के जवाब देंगे डॉक्टर रमेश कुमार मौर्य, अपर कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश। कार्यक्रम की प्रस्तुति एवं संचालन होगा डॉक्टर सुशील कुमार राय का। कानून की बात कार्यक्रम होगा कल शाम 7:31 पर। बातों बातों में ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:45 पर। और हर गोविंद यादव का काव्य पाठ प्रसारित होगा हिंदी कार्यक्रम में कल रात 8:00। बेला सुलाखे के गाए भजन हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत कार्यक्रम में रात 8:10 पर। पुराने फिल्मी नगमों का कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड प्रसारित होगा रात 10:00। ये थी जानकारी हमारे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। युवा साथी सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग।

नमस्ते, मैं हूँ दिव्यांशु और आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम युवा तरंग में। दोस्तों, ढल गया दिन, हो गई शाम, बज गया है 5:10 और शुरू हो चुका है आपका युवा तरंग, जो हर शाम शुरू होता है ठीक इसी वक्त और इसी जगह पर। दोस्तों, आज का हमारा कार्यक्रम बेहद खास और युवाओं से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले बात होगी सोशल मीडिया और ब्यूटी स्टैंडर्ड के बढ़ते प्रेशर की। आज सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन चुका है, लेकिन कई बार दिखावे और परफेक्ट दिखने की होड़ युवाओं के आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। इसी विषय पर आज हम करेंगे बातचीत। इसके बाद बात करेंगे हीट वेव्स यानी तेज गर्मी से बचाव की। गर्मी का मौसम लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में युवाओं के लिए अपनी सेहत और फिटनेस का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो गया है। दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कुछ आसान और जरूरी टिप्स जो इस मौसम में आपको स्वस्थ और सुरक्षित रखने में मदद करेंगे। और फिर दोस्तों, आज के कार्यक्रम में होगी एक खास भेंट वार्ता। तो दोस्तों, जानकारी, जागरूकता और प्रेरणा से भरे आज के युवा तरंग में बने रहिए हमारे साथ। तो फिर देर किस बात की, अब शुरू करते हैं अपने आज के युवा तरंग को इस गाने के साथ।

0: दोस्तों एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ की छात्रा आस्था सिंह, जिन्होंने आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर यूथ आउटरीच इनिशिएटिव आकाशवाणी एट 90 के अंतर्गत आकाशवाणी लखनऊ द्वारा आयोजित प्रश्नोत्तरी एवं संवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं के बीच रेडियो और उसकी उपयोगिता के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं ये खास भेंट वार्ता, जिसमें आस्था सिंह ने युवाओं, शिक्षा और आज के दौर से जुड़े कई विषयों पर अपने विचार साझा किए हैं, जिनसे बात की है हमारी रेडियो दोस्त अनुष्ठा मिश्रा ने।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं युवा तरंग और मैं हूँ आपके साथ अनुष्ठा। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई में इतना समय और मेहनत लगती है कि बाकी चीज़ों के लिए वक्त ही नहीं बचता है, लेकिन कुछ युवा ऐसे भी होते हैं जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी रुचियों और प्रतिभा को भी पूरा समय देते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी ही होनहार युवा प्रतिभा आस्था सिंह, जिन्होंने मेडिकल स्टूडेंट होने के बावजूद रेडियो क्विज प्रतियोगिता में शानदार जीत हासिल की है। आज हम उनसे जानेंगे उनकी इस जर्नी के बारे में, पढ़ाई और पैशन के बैलेंस के बारे में, और ये भी कि आज के डिजिटल दौर में रेडियो को वो किस नजर से देखती हैं। तो सबसे पहले तो आस्था, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम युवा तरंग में।
2: थैंक यू सो मच।
1: आस्था,

0: सबसे पहले ये बताइए कि कैसा लग रहा है आकाशवाणी स्टूडियो में आकर।
1: मुझे बहुत अच्छा और बहुत प्राउड फील हो रहा है यहाँ पे आके, एंड दिस इज समथिंग न्यू जो मैं यहाँ एक्सपीरियंस कर रही हूँ आज यहाँ पे।
0: मेडिकल की पढ़ाई अपने आप में काफी चुनौतीपूर्ण मानी जाती है, ऐसे में पढ़ाई के साथ साथ दूसरी गतिविधियों के लिए आप टाइम कैसे निकाल पाती हैं?
1: हाँ, मेडिकल की पढ़ाई चैलेंजिंग तो होती है, लेकिन मेरा मानना है अगर हम सिर्फ पढ़ाई तक सीमित रहेंगे तो कहीं ना कहीं मेंटली एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा टाइम अपनी रुचियों और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए भी निकालूं। इससे माइंड फ्रेश रहता है एंड पढ़ाई पे भी बेटर फोकस होता है।
0: पढ़ाई, एग्जाम, परिवार और मनोरंजन, इन सब के बीच आप बैलेंस कैसे बना के रखती हैं?
1: मेरी अकॉर्डिंग बैलेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर एक चीज़ को बराबर टाइम दो, बल्कि सही है कि अगर आप प्रायोरिटीज सेट करो कि कब क्या इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स के टाइम आप ऑब्वियसली पढ़ाई को ही ज़्यादा प्रायोरिटाइज करोगे, लेकिन आप फैमिली और थोड़ा टाइम सेल्फ केयर के लिए भी निकालना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर बैलेंस रहेगा तो इंसान मेंटली हेल्दी भी रहेगा और मोटिवेटेड भी रहेगा।
0: आस्था, क्या बचपन में घर में रेडियो सुना या देखा है, और रेडियो से जुड़ी कोई याद जो आज भी आपको याद हो?
1: हाँ, बचपन में हमारे घर पे एक रेडियो था, लाइक जो हमारे सबसे बड़े पापा हैं, वो हम जब सब साथ में बैठते थे शाम की चाय पे, तो वो उस पे पुराने गाने चलते थे। वो गांव वाला जो माहौल होता है वो मुझे हमेशा याद आता है, एंड आई जेन्युइनली मिस माय बिग फादर।
0: आज के दौर में मोबाइल और इंटरनेट हर किसी के पास है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि रेडियो आज भी लोगों के लिए उतना ही भरोसेमंद और मनोरंजक मीडियम है क्या?
1: हाँ, आज भले ही डिजिटल माध्यम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रेडियो की विश्वसनीयता जो है वो आज भी कायम है। रेडियो केवल मनोरंजन के माध्यम नहीं, बल्कि ये लोगों के लिए सही जानकारी और सकारात्मक संवाद पहुंचाने का भी लाइक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये सीधे दिल को जोड़ता है।
0: अगर कभी समय मिले और आप रेडियो सुनना चाहें तो किस तरह के कार्यक्रम सुनना पसंद करेंगी? फिल्मी गीत, एजुकेशनल प्रोग्राम, स्पोर्ट्स या कुछ और?
1: अगर मुझे टाइम मिले, लाइक जैसी मेरी पर्सनालिटी है, मुझे हमेशा लाइक अगर चिल करने के लिए मैं एफएम ऑन करती हूँ, लाइक जब हम कभी कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो मुझे तो पसंद है कि बहुत ऐसे तड़कते भड़कते गाने या फिर अच्छे प्यारे सॉन्ग्स हो।
0: आपकी हॉबीज क्या हैं आस्था? पढ़ाई के अलावा क्या करना आपको सबसे ज्यादा पसंद है?
1: मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है, और मुझे पेंटिंग करना भी पसंद है। ऐसे मेरी बहुत सारी हॉबीज हैं, और मुझे थोड़ा डांस भी पसंद है। बेसिकली बहुत सारी चीजों का ही शौक है मेरी हॉबीज।
0: मेडिकल स्टूडेंट होने के बावजूद आपने रेडियो क्विज प्रतियोगिता में भाग लिया और आप जीत भी गई, तो इसके पीछे आपकी सोच क्या थी?
1: मुझे हमेशा लगता है कि सिर्फ एकेडमिक्स तक लिमिटेड रहना जरूरी नहीं है। जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो आई थॉट व्हाई नॉट ट्राई। ये ऐसा है कि जो थोड़ा डिफरेंट भी है और फन भी है, एंड लकीली इट टर्न आउट रियली वेल।
0: क्या आपको लगता है कि युवाओं को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि अपनी रुचियों को भी समय देना चाहिए?
1: मेडिकल स्टडीज का शेड्यूल जो होता है वो काफी हेक्टिक होता है, बट आई थिंक अगर हम सिर्फ पढ़ाई तक ही रहेंगे तो माइंड एग्जॉस्ट हो जाएगा। मैं बस चीज़ों को प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग मैनेज करना चाहती हूँ, और लोगों को ये एडवाइस भी करना चाहती हूँ कि वो अगर सिर्फ पढ़ाई में ही रहेंगे तो वो बाकी चीज़ें कब एक्सपीरियंस करेंगे। पढ़ाई से आप डिग्री ले सकते हो, बट आपकी पर्सनालिटी बाकी चीज़ों से ही बनेगी।
0: जब पढ़ाई का दबाव ज़्यादा होता है तब खुद को रिलैक्स या मोटिवेट आप कैसे करती हैं?
1: मैं गाने सुनती हूँ, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं चाहती हूँ कि मैं किसी गार्डन में या पार्क में हूँ और मैं बस शांति से कोई म्यूजिक प्ले करके बस बैठी रहूँ, या फिर मैं दोस्तों के साथ बाहर चली जाती हूँ।
0: आपके अनुसार आज के युवाओं के लिए टाइम मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है?
1: एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। बट मेरे अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट का मतलब हर मिनट को शेड्यूल करना नहीं होता है। इट्स मोर अबाउट नोइंग कि आपको किस मोमेंट पे किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। तो अगर आपको ये पता है तो आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव भी हो सकते हो।
0: अगर आपको मौका मिले आप खुद कोई रेडियो शो होस्ट करें तो वो किस टॉपिक पर होगा?
1: प्रॉबेबली म्यूजिक एंड मोटिवेशन का मिक्स टाइप का शो, बिकॉज मुझे लगता है लोगों को पॉजिटिविटी चाहिए और एंटरटेनमेंट भी, तो समथिंग लाइट, रिलेटेबल एंड दैट फील गुड।
0: आपके परिवार और दोस्तों का आपकी इस उपलब्धि पर कोई खास रिएक्शन रहा?
1: हाँ, सब काफ़ी खुश थे, लाइक फैमिली प्राउड फील कर रही थी, एंड मेरे फ्रेंड्स तो वो तो मुझसे भी ज़्यादा ही खुश थे। सबने काफ़ी सपोर्ट किया और एनकरेज भी किया मुझे।
0: आस्था, आपकी नज़र में सक्सेस का मतलब क्या होता है?
1: मेरी अकॉर्डिंग सक्सेस मतलब कि आप जब एक एज पे जाओ और आप पीछे मुड़ के अपने यंगर सेल्फ को देखो, तो आपको क्या सेंस होता है उसको देख के कि क्या आपने वो सब अचीव किया जो वो

0: छोटी बच्ची ने इमेजिन किया था कि आपने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पेरेंट्स के टूवर्ड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने फ्रेंड्स के टूवर्ड्स, लाइक जिनको आप प्यार करते हो, जो आपके क्लोज है, एंड उसके बाद भी अपने आप को भी लेके जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, क्या वो आपने पूरी की? और अगर हाँ आपने पूरी की तो आप सक्सेस है अपने लाइफ में. मेरे लिए सक्सेस मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है.
1: बहुत खूब. आस्था, आगे चलकर खुद को आप कहाँ देखती हैं, एक डॉक्टर के रूप में या फिर कुछ नया भी करना चाहेंगी?
0: एक्चुअली सिर्फ एक डॉक्टर के रूप में तो नहीं देखती हूँ मुझे. मैं अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाना चाहती हूँ कि जो वो हर एक फील्ड में वर्सटाइल हो. डॉक्टर तो मेरा प्रोफेशन है, वो मैं उसको बनना ही चाहती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि मैं बाकी सारी चीज़ें भी इंजॉय करूँ, ताकि मेरे एंड टाइम में मुझे रिग्रेट ना हो कि मैंने ये चीज़ें ट्राई नहीं की.
1: तो आगे जाके आप किस चीज़ की डॉक्टर बनना चाहेंगी?
0: मैं डर्मेटोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ. उसका रीज़न ये है कि ऑब्वियसली लड़की हूँ तो लोग स्किन केयर के बारे में तो ज़्यादा ही सोचते हैं, एंड मेहनत भी बहुत ज़्यादा है डर्मेटोलॉजिस्ट में, और क्रेज़ भी है. इन फ्यूचर इसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा है और डिमांड भी बहुत ज़्यादा है.
1: बिल्कुल, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, और हम बिल्कुल चाहेंगे कि आस्था जो है वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट बनकर फिर से आकाशवाणी के इस मंच पर आएं, कि जब हम अगली बार आपको अपने स्टूडियो में बुलाएं तो आप हमें स्किन, त्वचा से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ दें. आखिर में आस्था, आकाशवाणी और हमारे जो युवा तरंग के लिसनर्स हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगी?
0: मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट खुद को इन्जॉय करना एंड मेंटली हैप्पी रहना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. अपॉर्चुनिटीज से नहीं डरिए, और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है सबको ग्रैब करिए, एंड समटाइम्स ट्राइंग समथिंग न्यू गिव्स यू द बेस्ट एक्सपीरियंस. लाइक आई एम हियर एंड आई एम टेलिंग यू, सो दिस इज पॉसिबल.
1: बहुत अच्छी बात कही आपने, और आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि अगर आप कोई शो होस्ट करें या आप अगर रेडियो सुनती हैं तो आप गाने ज्यादा सुनती हैं, तो अब ये बताइए कि आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी और हम आपको कौन सा गाना सुनाएं और किस गाने की आप फरमाइश करना चाहेंगी?
0: मेरे दिमाग में लाइक बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स, जो रेट्रो सॉन्ग्स होते हैं, मैं सुनना चाहूंगी है अपना दिल तो आवारा बाई हेमंत कुमार.
1: बहुत खूबसूरत सॉन्ग की आपने फरमाइश की है. तो दोस्तों, ये थी आस्था सिंह, जिनकी बातें ये बताती हैं कि अगर इरादे मजबूत हों तो पढ़ाई के साथ आप अपने इंटरेस्ट और पैशन को भी खूबसूरती से आगे बढ़ा सकते हैं. आस्था, युवा तरंग में आने के लिए और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जर्नी हमारे युवा श्रोताओं को बहुत कुछ नया करने और सीखने के लिए आगे प्रेरणा देगी. बहुत बहुत शुक्रिया आस्था हमसे जुड़ने के लिए.
0: थैंक यू.
2: दोस्तों, ये हमारी आज की खास भेंट वार्ता, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी. इसी के साथ ही सुन लेते हैं आस्था सिंह की फरमाइश पर ये खूबसूरत गाना, जिसे गाया है हेमंत कुमार ने, और गाने का नाम है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा. और फिर मिलते हैं आपसे गाने के बाद.

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: Hey guys, आज तो पार्टी चाहिए।
3: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
4: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
2: पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दोस्तों, आप सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया की। तो दोस्तों, आज सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। सुबह उठने से लेकर रात तक हम किसी ना किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहते हैं। सोशल मीडिया ने हमारी जानकारी, मनोरंजन और दुनिया से जुड़ने के माध्यम आसान कर दिए हैं। लेकिन इसके साथ ये सच है कि ज़रूरत से ज़्यादा हम सोशल मीडिया कई बार इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी मानसिक शांति और आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। हर समय दूसरों की जिंदगी को देखकर खुद की तुलना करना युवाओं में तनाव और असंतोष बढ़ा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल समझदारी और संतुलन से किया जाए। और दोस्तों, सोशल मीडिया के साथ एक और बड़ी समस्या सामने आई है, जो कि है ब्यूटी स्टैंडर्ड का प्रेशर। आज कई युवा ये महसूस करने लगे हैं कि अच्छा दिखना मतलब किसी तय मापदंड जैसा दिखना होता है। फिल्टर, एडिटेड फोटो और परफेक्ट दिखने की होड़ कई बार युवाओं को मानसिक दबाव में डाल देती है। लेकिन सच ये है कि हर इंसान अलग है और यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। दोस्तों, खुद को दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी पहचान और अपनी खूबियों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। असली आत्मविश्वास चेहरे से नहीं बल्कि सोच और व्यवहार से आता है। सुनते हैं एक और गाना और बात करते हैं गाने के बाद।

दोस्तों अब बात करते हैं हीट वेव्स से बचाव की। दोस्तों इन दिनों बढ़ती गर्मी और हीट वेव्स भी एक बहुत बड़ी चिंता बनती जा रही है। तेज धूप और गर्म हवाएं शरीर को जल्दी थका सकती हैं और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। इस मौसम में ज़्यादा पानी पीना, हल्का और पौष्टिक भोजन लेना और दोपहर की तेज धूप से बचना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों बाहर निकलते समय सिर को ढकना और शरीर को ठंडा रखने वाली चीज़ें खाते रहना बहुत फायदेमंद होता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों का ध्यान रखना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। सोशल मीडिया का संतुलित उपयोग, खुद को स्वीकार करना और अपनी सेहत का ख्याल रखना, यही एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन की असली पहचान है। तो दोस्तों अब सुन

दोस्तों, ये था हमारा आज का युवा तरंग। उम्मीद है आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ ही दीजिए अपने दोस्त दिव्यांशु को इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। आकाशवाणी लखनऊ से अब आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम नई उड़ान।

दोस्तों आज आपके पसंदीदा कार्यक्रम नई उड़ान में स्वागत करता है आपका दोस्त शोभित। आप सभी को मेरा नमस्कार। जब शब्दों में आग हो, जब कविता अन्याय के खिलाफ आवाज बन जाए, जब संगीत इंसानियत और भाईचारे का संदेश दे, तब जन्म होता है एक ऐसे कलाकार का जिसे समय कभी नहीं भुला पाता। ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे काजी नजरुल इस्लाम। आज उनकी जयंती है। भारत और बांग्लादेश के सांस्कृतिक इतिहास में काजी नजरुल इस्लाम एक ऐसा नाम है जो न केवल क्रांति का प्रतीक है बल्कि प्रेम, मानवता और सांप्रदायिक सद्भाव की एक बुलंद आवाज भी है। उन्हें विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता है। काजी साहब की कविताएं और गीत आज भी अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देते हैं। नजरुल एक ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने कलम को तलवार बनाकर ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया था। 1899 में बंगाल के वर्धमान जिले के चुरुलिया गांव में जन्मे काजी नजरुल इस्लाम ने अपनी रचनाओं से समाज में नई चेतना जगाई। उन्होंने अंग्रेजी शासन, सामाजिक भेदभाव और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ अपनी कलम को हथियार बनाया। उनकी प्रसिद्ध कविता विद्रोही आज भी युवाओं में जोश भर देती है। सिर्फ कविताएं ही नहीं, उन्होंने हजारों गीतों की रचना की जिन्हें नजरुल गीति कहा जाता है। उनके गीतों में प्रेम है, देशभक्ति है, भक्ति है और मानवता का संदेश भी है। काजी नजरुल इस्लाम हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। उनकी रचनाएं हमें यह सिखाती हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। नजरुल इस्लाम ने बंगाली साहित्य और संगीत को नई दिशा दी। उनकी रचनाएं आज भी बंगाल और बांग्लादेश में लोकप्रिय हैं। भारत सरकार ने 1960 में उन्हें देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया था। दोस्तों आज का दिन उनके विचारों को अपनाने का दिन है। जहां इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है, आपसी सौहार्द, प्रेम और भाईचारा ही इस दुनिया को सबसे खूबसूरत बना सकता है। आइए सुनते हैं गीत।

0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा अपने सभी हितधारकों यथा भविष्य निधि सदस्यों, नियोक्ताओं, पेंशनरों की समस्याओं एवं शिकायतों के निदान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त 12 जिलों में दिनांक 27 मई 2026 को प्रातः 9 बजे से निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
1: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, बहराइच,
0: ग्राम्य विकास विभाग, विकास भवन बलिया,
1: बलरामपुर चीनी मिल बलरामपुर,
0: BSA ऑफिस बस्ती,
1: नगर निगम परिषद देवरिया,
0: बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड कुंडर की गोंडा,
1: वरुण बेवरेजेस गीडा गोरखपुर,
0: नगर पालिका परिषद पडरौना कुशीनगर,
1: नवजीवन मिशन स्कूल आनंद नगर महाराजगंज,
0: रैना पेपर मिल खलीलाबाद संत कबीर नगर,
1: ग्राम्य विकास विभाग, विकास भवन श्रावस्ती,
0: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन सिद्धार्थ नगर।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नई उड़ान में। हम लोगों ने बचपन में रामायण और महाभारत की कहानियां अपनी दादी नानी से कई बार सुनी होंगी, लेकिन फिर भी जब जब कभी टीवी या फिल्म के माध्यम से हमें ये प्रसंग देखने या सुनने को मिल जाते हैं तो हम शायद ही कोई मौका कभी छोड़ते हों। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि हम भावनाओं को आवाज़ और दृश्य के मेल से गहराई से महसूस करते हैं। आज हर व्यक्ति अपने विचार, कला और अनुभव को सोशल मीडिया के माध्यम से साझा करता है। यह व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और सामाजिक जुड़ाव का एक नया माध्यम बन चुका है। आज के स्थल रिकॉर्डिंग सेगमेंट में अपना उद्यम श्रृंखला में हम इसी से संबंधित विषय ऑडियो विजुअल क्रिएटिव डिजाइन और प्रोडक्शन कला पर हमारी साथी अमिता चित्रांसी ने कई विशेषज्ञों और आम जनता से बातचीत की है। तो आइए हम सुनते हैं कि क्या है इस विषय पर इन लोगों के विचार।

0: कोई नया ट्यून कर ले जरा फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा।
1: जिस तरह से ये गीत दिल की आवाज को खुलकर दुनिया तक पहुंचाने की बात करता है, ठीक उसी तरह आज का दौर भी क्रिएटिविटी को नई उड़ान देने का दौर बन चुका है। आज सोशल मीडिया हर कलाकार, डिजाइनर और कंटेंट क्रिएटर के मन के रेडियो को एक ऐसा मंच दे रहा है जहां उसकी कला सिर्फ सुनी या देखी ही नहीं जाती, बल्कि उसे पहचान और कमाई दोनों भी मिल रही है। उद्यम श्रृंखला के अंतर्गत हम जानेंगे ऑडियो विजुअल क्रिएटिव डिजाइन और प्रोडक्शन कला के बारे में। आज के दौर में कला सिर्फ मंच और दीवारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सोशल मीडिया ने इसे दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बना दिया है। अब सवाल ये है कि लोग सोशल मीडिया के इस बढ़ते इस्तेमाल को कला और क्रिएटिव प्रोडक्शन के लिए किस नज़र से देखते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर वो करते हैं तो वो उसमें क्या देखते हैं और इसको लेकर उनकी सोच क्या है। चलिए जानते हैं लोगों से उनकी राय।
2: जी, मेरा नाम रतुल है और मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ।
3: तो क्या आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं?
2: मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपना, जब मैं मेकअप करती हूँ तो मैं कुछ वीडियोस बनाती हूँ ताकि उसको सोशल मीडिया पे डाल के अपने काम को लोगों तक पहुँचा सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए अब मैं सोच रही हूँ कि मैं एक ऑडियो वीडियो कंटेंट बना सकूँ, जिसके लिए एक प्रोडक्शन कंपनी ढूंढ रही हूँ जो मेरे काम को और बेहतर तरीके से लोगों तक पहुँचा सके, और इससे मेरी ब्रांड वैल्यू और क्लाइंट का ट्रस्ट भी मजबूत होगा।
4: हाँ, सोनू मिश्रा, हम हाउस वाइफ हैं।
3: अच्छा, आप सोशल मीडिया देखती हैं?
4: जी।
3: क्या देखती हैं?
4: हम रील्स भी देखते हैं और हम खाने की रेसिपी भी देखते हैं, हमें खाना बनाने का बहुत शौक है।
3: अच्छा, आप ये सब देखती हैं तो कभी आपने सोचा कि आप भी

0: रील या ये खाना बनाने की रेसिपी के वीडियोस या कुछ डालें?
1: रील देखते हैं, लेकिन हमें इसका तरीका नहीं पता है कि कैसे ये रील डाली जाती
2: है। मैम, मेरा नाम जीतू सिंह है और मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ।
0: तो आप क्या सोशल मीडिया देखते हैं?
2: हाँ मैम, जनरली मैं सोशल मीडिया का यूज़ करता हूँ। उसमें ज़्यादातर मैं जैसे सरकार की जो पॉलिसीज़ होती हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैम, कभी कभी पढ़ने के बजाय जो है सुन के या देख के जो चीज़ ऑब्जर्व करते हैं या समझते हैं वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, उनका हम यूज़ जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं।
3: साथ ही लोगों की राय सुनकर ये पता चलता है कि सोशल मीडिया सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, बल्कि अपने काम को आगे बढ़ाने का एक प्लेटफॉर्म बन सकता है। वहीं रील्स और वीडियो बनाना और सही ढंग से प्रस्तुत करना सीखना आना भी एक कला है, और ये कला रोजगार की नई संभावनाओं के द्वार को खोलती है। तो आज की अपनी उद्यम श्रृंखला के अंतर्गत इसी आर्ट का इस्तेमाल कर अपनी एक अलग पहचान बना रही है XRJ कंटेंट क्रिएटर और पॉडकास्ट की प्रस्तुति देने वाली हमारी एक साथी, आइए सुनते हैं।
4: सबसे पहले धन्यवाद अमिता जी मुझे मौका देने के लिए। मैं आरजे रफत आरजे रह चुकी हूँ। पिछले 10-12 साल से मैंने आरजे जर्नलिज्म में काम किया। फिलहाल जर्नलिज्म किया मैंने इसलिए सोसाइटी ओरिएंटेड बातें ज्यादा करती आई, और वही मेरे जीन्स में था। तो मैंने जब डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर के तौर पर शुरुआत की तो मैंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जो ऑडियो में पूरी रेडियो की तरह सुबह शाम एंटरटेन करता है पॉजिटिवली, और इसके अलावा मैं इंटरव्यूज करती हूँ, पॉडकास्ट करती हूँ। तो मुझे ऑल ओवर इंडिया तमाम शहरों से इनविटेशन मिलता है, यूनिवर्सिटीज से, मेडिकल कॉलेजेस से, ताकि मैं उनके पॉडकास्ट कर सकूं। तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है? मैं यहाँ बैठी हूँ अपने शहर में, लेकिन मुझे मुंबई से अगर बुलाया जाता है बिना जाने तो वो इसीलिए होता है क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार मैं कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम कर रही हूँ, जिस वजह से मैं सोशल मीडिया पर चारों तरफ रोटेट होती रहती हूँ और मुझे लोग अप्रोच करते हैं, उसके मुझे पैसे देते हैं और बहुत ही अच्छे पैसे मिलते हैं। जितनी अच्छी ग्रोथ होगी उतने अच्छे आपको पैसे मिलेंगे। अब मैं बात करना चाहूंगी जो नए लोग आना चाहते हैं, तो वो कभी भी पहली एडवाइस किसी को कॉपी ना करें, इंस्पायर होइए। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के लिए सबसे बड़ी एडवाइस है कि आप अपनी USP पहचाने, आपके अंदर क्या है। आप अगर बहुत अच्छा गाते हैं तो उसके जरिए आप कुछ पहुंचाइए, आप बहुत अच्छा बोलते हैं उसके जरिए पहुंचाइए, आप कॉमेडी करते हैं, आप किचन में अच्छा काम करते हैं। अब सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट करने के लिए कमी नहीं है, चैलेंजेस सबसे बड़े ये आते हैं कि अगर आपने एथिक्स गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। इसलिए बहुत ही बारीकी से समझकर कि क्या चीज नहीं चलेगी सोशल मीडिया पर और गवर्नमेंट की तरफ से या सोशल मीडिया की तरफ से वो बैन किया जा सकता है, तो आपकी मेहनत, आपका पैसा, वक्त सब कुछ बर्बाद हो सकता है। तो पहले एथिक्स समझ लीजिए और तब शुरू कीजिए। और मीडिया के स्टूडेंट्स अगर सुन रहे हैं तो मैं उनसे ये कहूंगी कि मीडिया स्टूडेंट है, शुरुआत आप जरूर सोशल मीडिया से करिए, क्योंकि आज मीडिया में एंट्री के लिए, करियर बनाने के लिए अपनी प्रोफाइल में एक चीज जरूर देखा जाता है मीडिया संस्थानों के द्वारा कि आप सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव हैं। तो अब एक नया पैमाना हो गया है ऑडिशंस का, सिलेक्शन का, कि आप सोशल मीडिया पर कितने पॉपुलर हैं, उस हिसाब से आपको एंट्रीज मिल रही है मीडिया संस्थानों में भी। इक्विपमेंट्स इसके लिए लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे पास लाइट होना चाहिए, कैमरा अच्छा होना चाहिए, महंगा कैमरा होना चाहिए, ये सब मिथ हैं। आज की डेट में सोशल मीडिया खुद ये गाइडलाइन जारी कर चुका है कि आपका कंटेंट ही इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूं कि पैसा कैसे कमाया जाए तो इंस्टाग्राम पैसा नहीं देता है, फेसबुक पैसा देता है पर 1000 व्यूज पर, वो भी कंसिस्टेंट है तो, और उसमें भी $100 जब आपके हो जाते हैं ऑल ओवर 365 डेज में तो आप वो पैसा निकाल सकते हैं, $100 से पहले नहीं निकाल सकते। तो फेसबुक आपको पैसा देता है, यूट्यूब आपको पैसा देता है, इंस्टाग्राम पैसा नहीं देता है। इंस्टाग्राम आपको कोलैबोरेशन के लिए लोगों से कनेक्ट करवाता है, सबसे इजी माध्यम है, और वो आपसे काम लेते हैं और चार्जेस की कोई लिमिट नहीं। आप जितने पॉपुलर हैं आप 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए भी एक रील का मांग सकते हैं, और कम पॉपुलर हैं तो 2000-2500 से शुरुआत तो मिनिमम होती ही है। स्काई इज द लिमिट, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच अमिता मुझे वक्त देने के लिए।
3: साथियों आज का समय डिजिटल दुनिया का समय है। मोबाइल, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ऑनलाइन विज्ञापन ने क्रिएटिव कामों की दुनिया को तेजी से बदल दिया है, और पारंपरिक कैरियर से हटकर कुछ नया तलाशने की तैयारी कर रहे हमारे युवाओं के लिए आइए जानते हैं प्रोडक्शन हाउस कंपनी को चलाने वाले अपने साथी से किस तरह के काम को वो करते हैं और उसको सीख कर कैसे आगे बढ़ सकते हैं।
5: नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम अखिलेश है और मैं एक प्रोडक्शन हाउस चलाता हूँ। दोस्तों आज का समय जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि

0: मीडिया का समय है, हम हर दिन अपने मोबाइल फोन पर ऐसे ढेर सारे वीडियोस देखते हैं। कभी कोई प्रेरणादायक कहानी, कभी कोई म्यूजिक वीडियो, कभी पॉडकास्ट, तो कभी किसी छोटे व्यवसाय का कोई विज्ञापन हम वगैरह देखते रहते हैं। इन सब के पीछे एक पूरी क्रिएटिव दुनिया काम करती है और उस दुनिया को हम कहते हैं ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन। आप अगर देखेंगे तो ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने मोबाइल से काम की शुरुआत करके एक अच्छा खासा प्रोडक्शन हाउस बना लिया।
1: अभी आपने हाल ही में एक और प्रोडक्शन एजेंसी खोली है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस तरह के काम की शुरुआत कैसे की जा सकती है और क्या इसके लिए किसी रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत पड़ती है?
0: प्रोडक्शन हाउस खोलने के लिए बहुत ही सिंपल, एक आप प्रोप्राइटरशिप में काम शुरू कर सकते हैं जिसके कंप्लायंसेस बहुत कम होते हैं। अगर जीएसटी वाले प्लान में चले जाते हैं, हमको 20 लाख रुपए तक के काम की छूट दे रखी है। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो प्रोप्राइटरशिप से काम शुरू किया जा सकता है और घर से ही काम शुरू किया जा सकता है।
1: आपके हिसाब से तो ये काम टीम वर्क का है, तो इसमें आपको किस तरह के लोगों की जरूरत पड़ती है?
0: इसमें अमिता जी, हमें हर तरीके के लोगों की आवश्यकता पड़ती है। हमें वॉइस ओवर आर्टिस्ट चाहिए होता है, हमें एडिटर चाहिए होता है, हमें एक्टर चाहिए होता है, हमें ग्राफिक का बंदा चाहिए होता है, हमें डायरेक्टर चाहिए होता है, हमें म्यूजिक डायरेक्टर चाहिए होता है, क्योंकि कंप्लीट काम कोई भी हो सकता है। जैसे कि आजकल अमिता जी क्या होता है ना कि बहुत सारी किताबों को ड्रामेटाइज किया जाता है ऑडियो के माध्यम से। जब भी हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए इस तरीके की बुक को नरेट करना होता है तो हमें उसके एक्सपर्ट चाहिए होते हैं, हमें वॉइस ओवर आर्टिस्ट चाहिए होते हैं। इसी तरीके से अगर कोई हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं तो उसके लिए हमें एडिटर चाहिए होता है, एक राइटर चाहिए होता है, उसके लिए एक हमें सिनेमेटोग्राफर चाहिए होता है, उसके लिए हमें एक लाइटमैन चाहिए होता है, उसके लिए हमें ग्राफिक्स वाला बंदा चाहिए होता है जो पूरी चीज को हमें ग्राफिकली टेक्स्ट लिख के दे। तो इसमें बहुत ढेर सारे लोगों को हमें फ्रीलांस में काम देना होता है।
1: कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं तो पैसे उसमें हमें कैसे मिलेंगे, ये भी एक दिमाग में प्रश्न आता है, तो उसमें आप क्या कहेंगे?
0: और इसमें जो पैसे का होता है वो अलग अलग डिवाइड होता है। जैसे एडिटर को हम मंथली पैकेज पर रखते हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट को हम स्क्रिप्ट के हिसाब से पे करते हैं, अगर कोई बुक लिखता है वो बुक राइटिंग में काम आता है कि हम एक बुक राइटिंग में 1.5 रुपए से लेके 2 रुपए से लेके 3 और 5 रुपए पर शब्द के हिसाब से लेते हैं अगर किसी को बुक लिखवानी है अपनी। अदरवाइज तो ये जो वेरिएबल है, पैसे का ग्राफ वेरिएबल होता है लेकिन अच्छा खासा होता है। अगर एक्सपर्टाइज है बंदे की उस क्षेत्र में, अपने काम के प्रति वो डेडिकेटेड है तो अच्छा खासा अर्न कर लेता है।
1: अगर कोई इस काम को घर से भी शुरू करना चाहे तो क्या कर सकता है?
0: हाँ, डेफिनेटली कर सकता है, काम घर से ही शुरू होते हैं। मैंने भी एक टाइम पर काम घर से ही शुरू किया था।
1: अगर हम इसी प्रोडक्शन एजेंसी को खोलना चाहते हैं तो हमें किस तरह की चीजों की जरूरत पड़ती है?
0: देखिए, दोनों चीजें अलग अलग हैं। अगर आप घर से काम शुरू करना चाहते हैं तो आप अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से चीजों को शुरू कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं आप। आजकल तो सोशल मीडिया पर रील्स और पॉडकास्ट, जो अपने मोबाइल से ही काम करते हैं, अपने कंटेंट को उससे शो करते हैं और अपने चैनल को मोनेटाइज करवाने के बाद में लाखों लाखों रुपए कमा रहे हैं अपने मोबाइल के माध्यम से ही। और बाकी अगर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो वही धीमे धीमे करके अपना प्रोडक्शन हाउस में चेंज कर लेते हैं, फिर उनके साथ में एक लंबी चौड़ी टीम होती है जो काम करती है। तो शुरुआत में तो अगर आपके पास में आपका एक अगर मोबाइल है और आपके पास थॉट है, आपके पास कंटेंट अच्छा है, तो आप घर से भी काम शुरू कर सकते हैं।
1: अगर इस काम को हम शुरू किया जाए तो इससे हम अपनी जीविका चला सकते हैं।
0: डेफिनेटली अमिता जी, मैं अपने श्रोताओं से, युवाओं से यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके भीतर कहानियां हैं, भावनाएं हैं और कुछ नया कर दिखाने की इच्छा है तो ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन आपके लिए केवल एक करियर नहीं बल्कि आपकी अपनी पहचान बनाने का एक शानदार माध्यम बन सकता है। और हमेशा याद रखिए, हर बड़ा कैमरा कभी ना कभी किसी छोटे सपने का हिस्सा था और हर सफल जो प्रोडक्शन हाउस होता है उसकी शुरुआत कभी ना कभी एक छोटे कमरे और एक बड़े हौसले से होती है।

साथियों, आज के समय में ऑडियो विजुअल मीडिया सिर्फ इंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं रहा, बल्कि ये क्रिएटिव कम्युनिकेशन और करियर अपॉर्चुनिटी का भी एक पावरफुल प्लेटफॉर्म बन चुका है। ऐसे में इस विषय में अगर आपकी रुचि है तो चलिए आपको मिलवाते हैं उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के मीडिया सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर सीमा मोदी जी हैं हमारे साथ। आइए जानते हैं कि यहाँ किस तरह के कोर्स चलाए जाते हैं, इनकी क्या अवधि होती है, क्या क्या इसमें सिखाया जाता है और कैरियर की क्या संभावनाएं हैं।

0: इन सभी प्रश्नों के साथ स्वागत है सीमा मैम आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: थैंक यू सो मच चित्रांशु जी।
2: उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की जो इन शॉर्ट कोर्सेज हैं, ड्रामा वर्कशॉप हो या रेडियो जॉकी के वर्कशॉप हो, कि उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट उसमें काम आती है, वॉइस मॉड्यूलेशन का काम आता है या एडिटिंग का काम होता है, सिखाया जाता है ताकि उसको आप अपने यूट्यूब चैनल चलाना चाहें या किसी भी सोशल मीडिया पे करना चाहें काम, तो कर सकते हैं, आसानी से कर सकते। इसमें पहली बात तो इसमें एज लिमिट नहीं है, 16+ के बच्चे और महिलाएं, हाउसवाइफ हो, बिजनेसमैन हो, अभी हमारे साथ सारे लोग जुड़े।
3: और साथ ही इसी तरह के शॉर्ट टर्म कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स, डिग्री कोर्सेज को कई सारे सरकारी और निजी संस्थानों द्वारा कराया जाता है, जिसे कर आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। और इसी के साथ आपको बताते चले कि आज कई क्रिएटर्स को सरकारी विभाग और संस्थाओं के प्रचार प्रसार से जुड़े प्रोजेक्ट्स में काम भी मिलने लगे हैं।
4: तो साथियों हमारे साथ है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रभारी डिजिटल मीडिया अशोक कुमार सिंह जी। उनसे जानते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया पर जो लोग एक्टिव हैं, उनके लिए आपके विभाग में क्या पॉलिसी है या उनके लिए रोजगार की संभावनाओं की बात करें तो वो क्या है।
5: जी अंकल जी, हमारे यहाँ सोशल मीडिया पॉलिसी, जिसको हम लोग डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 में प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई है। हम अपने यहाँ शासनादेश के तहत डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म यथा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर को उनके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर के आधार पर 4 श्रेणियों में सूचीबद्ध करते हैं।
4: तो सर आपने जैसे कहा कि कैटेगरी वाइज उनको काम दिया जाता है, तो क्या चीज आप देखते हैं और उनको श्रेणीबद्ध करते हैं?
5: हमारे यहाँ जैसे मैम मान लीजिए अगर यूट्यूब है, यूट्यूब को हम 4 श्रेणी में करते हैं। अगर उनके सब्सक्राइबर 10 लाख हैं तो हम उनको ए श्रेणी में करते हैं। अगर उनके सब्सक्राइबर 5 लाख हैं तो बी में सूचीबद्ध करते हैं। अगर उनके सब्सक्राइबर 2 लाख हैं तो हम उनको सी में करते हैं, और 1 लाख हैं तो हम उनको डी में करते हैं। मतलब मिनिमम 1 लाख होना चाहिए। इसी तरह यूट्यूब में जो है, अगर ए श्रेणी में है तो उनको मैं उस इन्फ्लुएंसर्स को मैं 8 लाख तक का पर मंथ काम दे सकता हूँ। बी श्रेणी में अगर हमारे यहाँ सूचीबद्ध हो रहा है तो उसकी और प्रक्रिया है, महत्वपूर्ण यही प्रक्रिया है। अगर बी श्रेणी में तो उनको हम 7 लाख रुपए महीने का काम दे सकते हैं। सी श्रेणी में अगर हमारे यहाँ सूचीबद्ध होता है तो 6 लाख का हम काम दे सकते हैं, और डी में आता है तो उनको 4 लाख का काम दे सकते हैं। इसी तरह फेसबुक में अगर 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, इंस्टाग्राम में भी दोनों, तो उनको हम ए श्रेणी में सूचीबद्ध करते हैं, उनको 5 लाख तक का महीना उन इन्फ्लुएंसर्स को दे सकते हैं। अगर 5 लाख सब्सक्राइबर है तो उनको हम बी श्रेणी में सूचीबद्ध करके 1 महीने में 4 लाख तक का हम काम देते हैं, और अगर वो 2 लाख फॉलोअर्स हैं सब्सक्राइबर तो उनको 3 लाख तक का काम दे सकते हैं, और अगर वो 1 लाख तक ही उनका सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स हैं तो हम उनको 2 लाख तक का पर मंथ काम, हमारी नियमावली के तहत ये व्यवस्था प्रावधानित है।
3: तो साथियों आज की अपने उद्यम श्रृंखला में हमने ऑडियो विजुअल क्रिएटिव डिजाइन और प्रोडक्शन कला के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से जाना। हमने समझा कि आज के डिजिटल युग में ये क्षेत्र केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजगार, स्वरोजगार और सरकारी अफसरों का भी एक मजबूत माध्यम बन चुका है। बस सही प्रशिक्षण, मेहनत और रचनात्मकता के बल पर इस क्षेत्र में उज्जवल भविष्य बनाया जा सकता है।

दोस्तों, कार्यक्रम में अब समय है आपको आज के विकास समाचार के बारे में बताने का। तो केंद्र सरकार ने देश भर में 100 नए औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस योजना के लिए 33,660 करोड़ का निवेश तय किया गया है। इन पार्कों में पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत सड़क, रेल और लॉजिस्टिक्स से जोड़ा जाएगा। भारत 114 मल्टी रोल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए फ्रांस को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजने के अंतिम चरण में है। इस डील के तहत लगभग 90 विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। हम सभी भारतीयों के लिए विकास के क्षेत्र से जुड़ी एक खुशी की खबर है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार भारत

का डेटा सेंटर सेक्टर तेजी से विस्तार कर रहा है, जिसके 2030 तक 6.5 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। इस विस्तार से एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और स्मार्ट ग्रिड जैसे क्षेत्रों में लगभग 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां पैदा होने का अनुमान है। भारत ने अपने 2000 किलोमीटर के सुरक्षित क्वांटम संचार नेटवर्क का आधा लक्ष्य समय से पहले ही पूरा कर लिया है। तो दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम हमें यहीं समाप्त करना होगा और उम्मीद है कि विकास की नई योजनाएं, समाज में हो रहे सकारात्मक बदलावों से जुड़ी ये जानकारी आपके लिए उपयोगी और प्रेरणादायक रही होगी। आगे आपसे कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।

लक्ष्य समय से पहले ही पूरा कर लिया है। तो दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम हमें यहीं समाप्त करना होगा और उम्मीद है कि विकास की नई योजनाएं, समाज में हो रहे सकारात्मक बदलावों से जुड़ी ये जानकारी आपके लिए उपयोगी और प्रेरणादायक रही होगी। आगे आपसे कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।

0: अभी आप हमारा कार्यक्रम नई उड़ान सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
3: तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया।
2: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
5: 8700001-4242।
6: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए।
7: फिल्मी दुनिया का एक बेहद चमकीला स्टार
6: विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, FM पर। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
9: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
10: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
11: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

0: आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य प्ले ऑफ क्रीडायाः क्वालिफायर वन क्रीडायाम् गुजरात टाइटन्स दलम् गत विजेता राज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलम् धर्मशालायाम् सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्ध सप्तवादने भविष्यति इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम लोकायतन और खेती किसानी।

0: पंचो जय हिंद।
1: राजेश भैया।
2: हाँ राजू भैया।
1: भैया हम पंच देखो यू चाहिए थे कि हमारे सबकी जिंदगी बढ़िया चले और खास तौर से हमारे जो आजीविका है वह बढ़िया रहा है और हाथ में जो भी काम है उसका अच्छे से कर पाई।
2: बिल्कुल भैया सही कहो। जो इसके लिए अपन जो कहा जाती है सरकार जो है हर जगह से तत्पर रहा था कि अपन जो पंच है उसका अच्छे से लाभ ले सके।
1: सही बात है। और यह क्रम में यहाँ एक योजना भी एक मिशन भी चलावत है हमारे केंद्र सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जी का उद्देश्य यह होते कि हर मनई के हाथ का काम मिले जिसे कि उनका कुछ न कुछ आमदनी होता रहे और उनके जो जिंदगी के लिए रोज के लिए जरूरतें हैं वो पूरी होती रहे।
2: बिल्कुल भैया सही कहो। काहे से जब ये चीज़ें अगर मिलत रही हैं तो हमका इधर उधर भागे की नहीं पड़ी है और दूसरे के लिए हाथ मतलब के सामने फैलावे की नहीं पड़ी है, तब हमका और भी अच्छा रहा थे। यानी कि स्वरोजगार जो अपने पर निर्भर हो सके।
1: सही बात है। और ग्रामीण स्तर पर देखी थे हम पंच बहुत जने का होते कि नौकरी ढूंढे के लिए खातिर या कोनो काम पावे के लिए खातिर अपने घर से छोड़ के यहाँ दूसरे शहर चले गए या दूर जाए पर जाते, तो वही सब चीजनों से ने बचावे के लिए भी सरकार ग्रामीण स्तर पर ही आजीविका के नए नए साधन स्वरोजगार स्थापित करे के मौका ये सब बनावे का प्रयास करत है।
2: बिल्कुल भैया सही कहो। काहे से अगर ये चीजें होती रहती हैं चाहे अपने पुरुष वर्ग में हो या महिला वर्ग में हो तो उसके लिए वही मतलब चीजन से उनका लाभ मिलत है। अब जैसे महिलाएं हैं बहुत सारी तो वो काहे 10-20 लोग मिलके एक स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बना सकते हैं, अपना अच्छा लाभ ले सकते हैं।
1: सही कह रहे हो भैया। और सशक्तिकरण केर अगर बात करी जाए चाहे वो महिला सशक्तिकरण केर बात हो या फिर हमरे अपने सशक्तिकरण केर भैया केरे सशक्तिकरण केर बात हो, कहे से कि जब मनई घरमा हो अब वो कमाए ना पाए रहा हो तो उका अपने अंदर से कमजोरी लागे।
2: बिल्कुल भैया सही।
1: तो जो हमारी कमाई है वह हमारी पूंजी होते हमारी ताकत होते और उका बनाए रखे के लिए जो सरकार के ग्रामीण आजीविका मिशन है इके माध्यम से हम पंच प्रयास करी अपने हुनर के हिसाब से काम कर चुनाव करी और अपने गांव में रह कर या आसपास के क्षेत्र में रह कर ही अपन आजीविका के साधन का आगे बढ़ाई।
2: बिल्कुल भैया यही लिए कहा जाता है कि अपन कोई भी व्यवसाय जैसे कि डेयरी व्यवसाय होगा या सिलाई कढ़ाई है या अगरबत्ती बनाना है या मशरूम जैसे मतलब तमाम चीज़ें हैं जिनसे अपन प्रशिक्षण लेके अच्छा काम किया जा सकता है।
1: सही कह रहे हो भैया। इमा तमाम और भी चीज़ें हैं जो हम पंच प्रशिक्षण जैसे कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से तमाम चीज़न में प्रशिक्षण दिया जाते तो वह अगर हम प्रशिक्षण ले ली थे और अपन काम करी थे तो निश्चित रूप से ने हम और बेहतर तरीके से वो काम कर पाई थे। अगर पहले से कोई काम कर रहे हैं तो उनका निखारे में अभी हम ये प्रशिक्षण के यार इस्तेमाल कर सके थे तो ये हिसाब से हमका करेक चाहिए। और दूसरी चीज़ यह देखे चाहिए कि हम पंच अगर किसी धंधा क्या शुरू करे के लिए कोई ऋण की जरूरत है तो उनके लिए भी सरकार हमका सहयोग दे थे और कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करावे कर व्यवस्था करा थे।
2: बिल्कुल भैया सही कहो। तब हमका कहा है आगे बढ़े के और अवसर मिल जाते हैं जब सरकार अपन मतलब कि ऋण के माध्यम से जब मतलब कि प्रोत्साहन कर रहे थे तो और भी अच्छा रहा।
1: सही कहा। तो भैया तो देखो आजीविका के बहुत सारे तरीका हैं और उनके खाते सरकार के बहुत सारे कदम हैं बहुत सारी उनकी गतिविधियाँ हैं उन पर अब है चर्चा जरूर हुई मूल तनिक अंतराल के बाद।
2: बिल्कुल भैया।
3: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा अपने सभी हितधारकों यथा भविष्य निधि सदस्यों नियोक्ताओं पेंशनरों की समस्याओं एवं शिकायतों के निदान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त 12 जिलों में दिनांक 27 मई 2026 को प्रातः 9 बजे से निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
4: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बहराइच
3: ग्राम्य विकास विभाग विकास भवन बलिया
4: बलरामपुर चीनी मिल बलरामपुर
3: DSA ऑफिस बस्ती
4: नगर निगम परिषद देवरिया
3: बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड कुंडर की गोंडा
4: वरुण बेवरेजेस गीडा गोरखपुर
3: नगर पालिका परिषद पडरौना कुशीनगर
4: नवजीवन मिशन स्कूल आनंद नगर महाराजगंज
3: रैना पेपर मिल खलीलाबाद संत कबीर नगर
4: ग्राम्य विकास विभाग विकास भवन श्रावस्ती
3: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन सिद्धार्थ।

0: राजेश भैया।
1: हाँ राजू भैया,
0: हम पंच अभय बात कर रहे हैं अपनी आजीविका के यहाँ बेहतर करे के लिए। तो इमा तमाम तरह की जो गतिविधियाँ होती हैं, उमा सने एक यह है कि तमाम तरह की समितियाँ बनाई गई रहें जो कि हमारे लिए काम करती रहें, या समिति जैसे अभय बताओ कि स्वयं सहायता समूह।
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो आजकल हम पंच स्वयं सहायता समूह पर काम करे थे, लेकिन ई का जो
1: पहले सहकारी
0: हाँ
1: समिति
0: ई के पहला रूप जो है, ई का पुरान रूप जो है, वो सहकारी समिति के रूप में रहा है। तो आज के समय में है, जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि जो भी काम हम पहले कर रहे रहन वो चल तो आज हो रहा है,
1: हाँ,
0: लेकिन
1: बदलाव हो जाते
0: हाँ
1: हैं।
0: उमा आज नई तकनीक क्या इस्तेमाल हो रहा है, नए तरीके से उका और बढ़िया उका रूप दिया जा रहा है, वह हाल हमारी सहकारी समिति में भी हो रहा है, उनका भी सशक्तिकरण हो रहा है।
1: बिल्कुल भैया, जब सशक्तिकरण हो रहा है तो इसके आगे और बढ़ाई के मौका मिल जाते हैं अपन
0: हाँ
1: गांव के लोगन के, गांव के जो जितने मतलब कि शहरी क्षेत्र हो या मतलब ग्रामीण क्षेत्र हो या अपने प्रदेश स्तर के कोई हो, तो उनमें पूरी तरीके से पूरे अपने भारत सरकार ध्यान दे करते हैं।
0: भैया, तो जब इतना ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और समितियां आगे बढ़ रही हैं, तो वे कैसे हमारे रोजमर्रा के जीवन के यहाँ प्रभावित कर रही हैं और कैसे हम पंच उसे लाभ ले सके थे, ये बातन के यहाँ देखो अपनी एक बात में समेटत भाई अपने साथ हैं गौरी त्रिवेदी बहनी, जो कि बता रही हैं कि सहकारी समितिन का सशक्तिकरण कैसे हुआ है और ये हमारे लिए कैसे फायदेमंद है,
1: बिल्कुल भैया,
0: आओ सुना जाए।
2: भारत गांवों का देश है। आज भी देश की बड़ी आबादी गांवों में रहती है और खेती किसानी से जुड़ी हुई है। किसान दिन रात मेहनत करके खेतों में फसल उगाता है और पूरे देश का पेट भरता है। लेकिन कई बार यही किसान अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए परेशान हो जाता है। खेती के लिए ऋण लेना हो, खाद और बीज खरीदना हो, फसल के लिए आर्थिक सहायता चाहिए हो, या किसी योजना की जानकारी लेनी हो, इसके लिए किसानों को कई जगह चक्कर लगाने पड़ते थे। ऐसे समय में गांवों में सहकारी समितियां किसानों के सबसे बड़े सहारे के रूप में काम करती हैं। श्रोताओं, सहकारिता का मतलब ही होता है मिलजुल कर आगे बढ़ना। यही भावना गांवों को जोड़ती है और किसानों को ताकत देती है। वर्षों पहले जब किसानों को साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर पैसा लेना पड़ता था, तब सहकारी समितियों ने उन्हें राहत देने का काम शुरू किया। गांवों में प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां यानी पैक्स किसानों के लिए सबसे नजदीकी संस्था बन गई। किसान यहां से खेती के लिए ऋण लेते हैं, खाद बीज खरीदते हैं और जरूरत पड़ने पर आर्थिक सहायता भी प्राप्त करते हैं। अब सरकार इन समितियों को और मजबूत बनाने यानी कि इनके सशक्तिकरण की दिशा में तेजी से काम कर रही है। लंबे समय तक सहकारी समितियों में पूरा काम कागजों और रजिस्टरों पर चलता रहा। किसी किसान ने कितना ऋण लिया, कितना पैसा जमा किया और कितना बाकी है, यह सब मोटे रजिस्टरों में लिखा जाता था। रिकॉर्ड ढूंढने में काफी समय लगता था। कई बार कागज खराब हो जाते थे या सही जानकारी समय पर नहीं मिल पाती थी। किसानों को बार बार समिति के चक्कर लगाने पड़ते थे। ऋण मंजूर होने में भी देरी होती थी। इससे किसानों का समय भी खराब होता था और परेशानी भी बढ़ती थी। अब समय बदल रहा है। सरकार सहकारी समितियों को आधुनिक तकनीकी से जोड़ रही है। पैक्स समितियों में कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर और डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। किसानों का रिकॉर्ड अब कंप्यूटर में सुरक्षित रखा जा रहा है। इससे काम की गति तेज हुई है और पारदर्शिता भी बढ़ी है। पहले जिस काम में घंटों या कई दिन लग जाते थे, अब वही काम कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाता है। लेकिन श्रोताओं, सहकारी समितियों का सशक्तिकरण केवल कंप्यूटर लगाने तक सीमित नहीं है। इसका असली उद्देश्य गांवों और किसानों को मजबूत बनाना है। सरकार चाहती है कि गांव का किसान आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने और उसे समय पर हर जरूरी सुविधा मिले। जब सहकारी समितियां मजबूत होंगी, तब किसानों को समय पर ऋण मिलेगा, खेती का काम आसान होगा और गांवों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। खेती पूरी तरह समय पर निर्भर करती है। अगर किसान को सही समय पर ऋण, खाद या बीज ना मिले तो उसकी पूरी फसल प्रभावित हो सकती है। पहले कई बार ऋण प्रक्रिया धीमी होने के कारण किसानों को काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब डिजिटल रिकॉर्ड और नई व्यवस्था की वजह से ऋण प्रक्रिया तेज हो रही है। किसान जल्दी आवेदन कर पा रहे हैं और उनका रिकॉर्ड तुरंत देखा जा सकता है। इससे समय पर सहायता मिलने लगी है और किसानों का भरोसा भी बढ़ा है। सहकारी

समितियों के सशक्तिकरण का सबसे बड़ा फायदा पारदर्शिता के रूप में सामने आ रहा है। अब हर लेन देन का रिकॉर्ड डिजिटल तरीके से दर्ज हो रहा है। इससे गड़बड़ी और गलतियों की संभावना भी कम हो रही है। किसान आसानी से जान सकते हैं कि उनके खाते में कितना पैसा है, कितना ऋण बाकी है और भुगतान कब करना है। इससे विवाद कम हो रहे हैं और लोगों का विश्वास मजबूत हो रहा है। आज सरकार चाहती है कि पैक्स केवल ऋण लेने वाली संस्था बनकर ना रहे, बल्कि गांवों में बहुसेवा केंद्र के रूप में विकसित हो। आने वाले समय में यहां बैंकिंग सेवाएं, बीमा, सरकारी योजनाओं की जानकारी, बिजली बिल जमा करने की सुविधा और अन्य डिजिटल सेवाएं भी उपलब्ध हो सकती हैं। यानी गांव के लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, गांव में ही कई सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी। श्रोताओं, सहकारी समितियां गांवों में रोजगार बढ़ाने का माध्यम भी बन रही हैं। अब गांवों में कंप्यूटर और डिजिटल काम बढ़ने से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। गांव के पढ़े लिखे युवक और युवतियां तकनीकी और प्रशासनिक कामों से जुड़ सकते हैं। इससे गांवों में रोजगार बढ़ेगा, युवाओं का शहरों की ओर पलायन कम होगा। श्रोताओं, महिलाओं के लिए भी सहकारी समितियों का सशक्तिकरण काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गांवों में बड़ी संख्या में महिलाएं स्वयं सहायता समूहों और छोटे व्यवसायों से जुड़ी हुई हैं। यदि उन्हें गांव के पास ही आर्थिक सहायता और डिजिटल सुविधा मिलेगी तो वे अपने काम को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकेंगी। महिलाएं अगर आर्थिक रूप से मजबूत होंगी तो परिवार और समाज दोनों मजबूत होंगे। यही कारण है कि सरकार महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत सरकार गांवों तक इंटरनेट और तकनीकी पहुंचाने पर लगातार काम कर रही है। अन्य योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल ढांचा मजबूत किया जा रहा है। सहकारी समितियों को आधुनिक बनाने का उद्देश्य ही यही है कि गांव का किसान भी उसी तरह सुविधा प्राप्त कर सके जैसे शहरों में रहने वाले लोग। हालांकि इस दिशा में अभी भी कुछ चुनौतियां हैं। कई गांवों में इंटरनेट और बिजली की समस्या है। कुछ कर्मचारियों और किसानों को नई तकनीकी समझने में समय लग जाता है। शुरुआत में लोगों को डर भी था कि कंप्यूटर से काम करना मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे प्रशिक्षण और जागरूकता के माध्यम से लोग इस नई व्यवस्था को अपना रहे हैं। अब गांवों में भी लोग डिजिटल सुविधाओं को समझने लगे हैं, रुझान बढ़ा है। श्रोताओं, सहकारिता केवल आर्थिक व्यवस्था नहीं है, यह आपसी सहयोग, विश्वास और साझेदारी की ताकत है। जब गांव के लोग मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं तब विकास की रफ्तार भी तेज होती है। यही कारण है कि सहकारी समितियों को ग्रामीण विकास की रीढ़ माना जाता है। आज देश में आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है। आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी पूरा होगा जब गांव आत्मनिर्भर बनेंगे, किसान मजबूत होंगे। सहकारी समितियों का सशक्तिकरण इसी दिशा में बड़ा कदम है। इससे किसानों को समय पर सुविधा मिलेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा और गांवों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सहकारी समितियों के मजबूत होने से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। यदि किसानों को समय पर ऋण, खाद और बीज मिलेंगे तो खेती बेहतर होगी, उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही डिजिटल व्यवस्था आने से किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी भी जल्दी मिल सकेगी। इससे योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच पाएगा। भविष्य में सहकारी समितियां गांवों की नई पहचान बन सकती हैं। ये केवल ऋण देने वाली संस्था नहीं रहेंगी, बल्कि गांवों में विकास, सुविधा और भरोसे का बड़ा केंद्र बनेंगी। यहां किसानों को आर्थिक सहायता के साथ साथ डिजिटल सेवाएं, सरकारी जानकारी और कई जरूरी सुविधाएं एक साथ एक जगह पर मिल सकेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यह बदलाव गांवों की तस्वीर बदलने की ताकत रखता है। पहले गांवों में सरकारी और बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच सीमित थी, लेकिन अब धीरे धीरे डिजिटल सुविधा गांवों तक पहुंच रही है। इससे काम तेज हो रहा है, पारदर्शिता बढ़ रही है और लोगों का भरोसा मजबूत हो रहा है। कुल मिलाकर सहकारी समितियों का सशक्तिकरण केवल तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि गांवों और किसानों को मजबूत बनाने की दिशा में

0: बड़ा कदम है। यह बदलाव किसानों के जीवन को आसान बना रहा है, युवाओं को रोजगार दे रहा है और गांवों में विकास की नई राह खोल रहा है। आने वाले समय में मजबूत सहकारी समितियां आत्मनिर्भर गांव और मजबूत भारत की पहचान बन सकती हैं।
1: आत्म प्रकाश भैया।
2: हाँ भैया राजेश,
1: देखो कितनी अच्छी जो वार्ता रही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर, जो कि नहीं सर माफ करिएगा, जो कि रही सहकारी समितियों का सशक्तिकरण, जिनकी वार्ताकार जो बहनी रही गौरी त्रिवेदी बहनी, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद भैया। और भैया देखो, जब सशक्तिकरण की बात होते है तो रोज के जीवन में भी हमका अपनी शक्ति कहाँ बचाए चले होते है। अब जैसे इस समय मौसम बहुत खतरनाक स्थिति लिए हुए है और अगर हम चूकें तो हमारी शक्ति जरूर छीण हो जाए, यानी कहीं ना कहीं कमजोरी आ जाए या किसी तरह के स्वास्थ्य समस्या पैदा हो सकते हैं।
1: बिल्कुल भैया, ये लिए कहा जाता है कि अपना जो है सुबह निकलो, अगर काम जो भी निपटावे है वो सुबह 6 बजे लेके 10 बजे लेकर निपटा लो, फिर कहीं 4 बजे से मतलब शाम का कह लो, दोपहर में तो बिल्कुल ही ना निकलो, अगर निकलो तो समझ लो अपन मतलब बहुत ही जरूरी हुई तब ही निकलो, वरना वह ना निकलो।
2: बिल्कुल भैया, अगर घर में बैठ के यहाँ करे वाला कोई काम है या ऐसा है कि बहुत है जाहे कहाँ है, तो फिर अपने कहाँ सिर ढक के निकलना है, सूती गमछा रख के ओढ़ के हैं एकदम, और छाता लेके निकले के है, या फिर संभव हो तो भैया जैसा आप बताओ कि बाहर निकले वाले काम सुबह सुबह कर लो या फिर शाम कहाँ देर में करो, बीच के अर्जु 11 बजे से 4 बजे तक का समय है, इमा तो धूप से बिल्कुल ही बचाव करना।
1: बिल्कुल भैया सही कहो, जब बचाव हुई है तब अपन शरीर अपना परिवार अपन जो कहा जाते हैं खर्चा, यानी कि बीमार हो गए तो वही से बचे खे, तो यही लिए हम अपन ख्याल रखेगा हमका सबका तो बहुत जरूरी रहते भैया।
2: और भैया के साथ साथ जो हमारे घर में कमजोर मनई है, कमजोर का मतलब कि जैसे जो बच्चा होते हैं या जो बुजुर्ग होते हैं, तो इनकी क्षमता शरीर के वैसन कम होते हैं,
1: बिल्कुल रोग प्रतिरोधक क्षमता
2: ज्यादा होती है, तो जब मौसम बहुत ज्यादा तीव्रता लिए होते हैं, चाहे वो गर्मी क्या हो चाहे सर्दी क्या हो, तो ऐसे में इन पर खास ध्यान रखे होते हैं। जो उन घर में कोई ऐसा मनई है जो बीमार है पहले से कमजोर है किसी चीज से, तो ऐसे लोगन के यहाँ जरूर ध्यान रखे के यहाँ समय समय पर पानी पियत रहा है कहीं है, और अगर कोई के यहाँ गर्मी से संबंधित कोई लक्षण दिखाते हैं या अचानक से घबराहट हो रही है, हाँ पसीना आना बंद हो गया है, चक्कर आ रहे हैं, तो फिर ऐसे में हाँ जो चिकित्सक हो आपके नज़दीक में उनका जरूर दिखाओ जी।
1: बिल्कुल भैया सही कहो, काहे से तब ही अपन बचाव हो सका था, अगर कोनो लक्षण दिख रहे हैं तो। अब फिलहाल अपन जो बताए आप ना कि पानी अत्य टाइम अगर पीत रहा तो बहुत ही अच्छा है,
2: तो भैया यह है। और जो बूढ़े बुजुर्ग बच्चा होते हैं ना घर में, तो ये एक तरह से घर की जान भी होते हैं, अगर वे प्रसन्न है तो हम पंच भी प्रसन्न रहे थे। अब बच्चन का प्रसन्न रखने के लिए हम पंच देखो कितना कितना इंतजाम करी थे, जब बच्चा छोटा सा होते कुछ ना जाने वाला होते तो उसकी खातिर कुछ ना कैसे कि तो एक पालना डार दी।
1: बिल्कुल भैया सही कहो,
2: और पालना अगर झूल रहा हो उसके साथ में गीतों बज रहा हो पालना के,
1: बिल्कुल भैया
2: तो बड़ा आनंद आ जाते। तो भैया देखो हम जान रहे हैं आप प्रसन्न बहुत हो, पालना गीत लेके आए हो, यही के लिए कह रहे हो कि अब उका बजावे के देर ना करे चाहिए।
1: बिल्कुल भैया, तो रेणु शर्मा बहन की आवाज में सुन लीजिए पालना गीत।
2: हाँ भैया सुना जाए।

0: राजेश भैया
1: हाँ राजू
0: बड़ा
1: भैया,
0: नीक गौन सुनायो भाई, और पालना झूलत झूलत बिल्कुल झूमे लाग रहा है मन मूल। अब फिर मन का संहार के अपनी खेती बाड़ी में लगावे के है, कहे से कि खेती बाड़ी पर जब ध्यान दो तब है फिर और व्यवस्था कर मिलत है।
1: बिल्कुल भैया सही कहो, काहे से देखो अतना अपने जो पंच है ना
0: हाँ
1: वो खरीफ की जो फसल आगे मतलब तैयारी करे है, जैसे कि मान लो अतना धान की नर्सरी डाल रहे हैं बहुत लोग, हम तो भैया डाल दिए हैं एक सप्ताह हो गए, काहे से आगे लगावे कहीं है।
0: हाँ
1: और रही बात जो अपन कुछ पंच मक्का लगावत हैं कहीं पर, कहीं
0: हाँ
1: पर उर्द लगावत हैं, बहुत सारी जो अपनी खरीफ की फसलें हैं उनका लगावे के लिए तैयारी में, तो भैया अपन ध्यान रखें समय से। मुला अगर नर्सरी डाल रहे हैं तो पानी जम जो है मतलब ज़्यादा ना भरें, सुबह
0: सही
1: शाम की
0: बात
1: मतलब
0: है
1: पानी जो है निकाल दें भैया।
0: भैया, यह तो बात बिल्कुल है सही है। और साथ ही साथ यहो हम पंच जानी थे कि खेती में एक साथ कईयों चीजें चला करती हैं।
1: बिल्कुल भैया सही कहो।
0: अब एक तरफ तो खरीफ की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो जायद की फसलें अभी खेत में हैं, खास तौर से सब्जी वाली फसलें जो नहीं है,
1: हाँ हाँ
0: हाँ तोरई लौकी तरबूज खरबूजा ये सब लगे हैं खेत में,
1: बिल्कुल भैया
0: रोज टूट रहे हैं,
1: हाँ
0: तो इनका बिल्कुल सख्त निगरानी के साथ रखे के यहाँ है कि तनिको अगर याको दोपहरी जो चूक ही गयो
1: हाँ
0: तो सवेरे मुरझान मिली हैं।
1: बिल्कुल भैया सही
0: तो
1: कहा तुम।
0: इसलिए जब धूप कम होए सवेरे सांझ इनका पानी दे के यहाँ है, और समय समय पर जौन भी अपन बतिया पूर हो गए है तो उनका तोड़ ले के यहाँ है,
1: बिल्कुल भैया
0: क्योंकि
1: सही
0: समय से ज्यादा अगर विरोम लाग रही तो हुआ बेकार हो जी।
1: बिल्कुल भैया सही कहो, कहा से पानी की जब बात आवत है तो पानी हमका चटावे है, कोई भी
0: हाँ
1: फसल है अगर जैसे नानकुन बच्चा होता है उसका दूध जैसे स्तनपान करावा जाए, तो वही तरीके से अपनी फसल जो होता है वही को भी हमका करेंगे, कहे ज़्यादा भर दिए तो ये गर्मी में अगर भरा रहा 2-4-5 घंटा पानी तो फसल जो है नुकसान हो
0: हाँ
1: जाएगा।
0: वो पानी भी गर्म हो जाते हैं उनके साथ में, फिर उसे मिले वाले फायदा कम हो जाते हैं, तो यूं हमका पंचन ध्यान रखेगा। अच्छा एक बात और है भैया,
1: का
0: जब भी हम अपन सिंचाई केर बात करी थे तो यूं जानी थे कि धरती मैया के अंदर जो पानी है
1: हाँ हाँ
0: वो निश्चित है सीमित है,
1: बिल्कुल भैया
0: और लगातार जैसे जैसे खेती बाड़ी बढ़ रही है
1: हाँ
0: सिंचाई के साधन बढ़ रहे हैं
1: तो
0: तो
1: पानी का
0: खूब
1: दोहन
0: वो
1: हो रहा
0: पानी निकारा जा रहा है,
1: बिल्कुल सही कहा
0: तो
1: तुम।
0: बहुत जगह तो ऐसी हैं जहां पर अमर जो बोरिंग है उके खाले चला गया जलस्तर तो पानी आए नहीं रहा बोरिंग में, तो ऐसी स्थितियां हमरे सबके तिर ना पैदा हो जाए, इसी खातिर हम पंच बड़े एहतियात सने
1: कि पानी
0: पानी के
1: बचावा
0: यार
1: जा सके।
0: कम खर्चा करके सिंचाई के यार पूरा फायदा ली, ऐसी तकनीकन के यार इस्तेमाल करी थे।
1: बिल्कुल भैया वही तो ये कहा जाता है कि जैसे कि बौछारी सिंचाई की जा सके
0: हाँ
1: तो वही ते बड़ा फायदा हुआ है कि जहाँ उटक पटाक जमीन जैसे है खाला

0: ठीक है, तो वहां पे अपन करके तो जो पानी की बचत है वो किन जा सके,
1: हाँ
0: मतलब
1: बिल्कुल,
0: क्या
1: बरसात वाले पानी के यार सुख
0: संचय
1: मिलत है पौधन के यहाँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हाँ एक समान पूरी तरह से ने पानी मिल जाते। और दूसर चीज यह है कि
0: हाँ
1: हम पंच इमा ज्यादा मेहनतों ना करे पड़ते, पता लगा अगर हम नाली वाली विधि से पानी भेज रहे हैं तो एक तो पानी ज्यादा लागत है और दूसरे कहूँ नाली फूट गए तो दौड़ो बांधो का।
0: अरे हम देखे तो
1: हाँ
0: रहे, हमारे जो ओम प्रकाश भैया हैं कभी कभी ऐसे ही पानी काट चले आवते हैं, तो भैया
1: अरे
0: वो ऐसा नहीं करे
1: वो
0: चाहिए।
1: तो फिर अलग बात हो गई ना कि हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं 10 रुपया और खर्च हो रहे हैं 100 रुपया।
0: तो समझ लो पानी की तो बर्बादी है, तो वही तो बचे गए। और जेलिए कहा जाता है भैया कि जो एक और सिंचाई पद्धति रहा था जो
1: हाँ
0: हो रहे बौछारी सिंचाई, यानी बौछारी हो, बौछारी बाद में आवा था टपक सिंचाई, यानी
1: हाँ
0: बूंद बूंद पानी जो रहा था वो।
1: बिल्कुल सही कहे हो। तो टपक सिंचाई में खास तौर से जो ही छोटे जो कमजोर पौधा हैं
0: हाँ
1: लता
0: हाँ
1: वर्गीय हैं या जिनका थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए होते हैं, जैसे मैं बताया ना कि भरा ना रहे पानी, तो बढ़िया उनका तनिक तनिक पानी उनकी जड़ में देते रहते हैं, एक एक बूंद टपका करते हैं और उसे वहाँ नमी बनी रहते हैं, पौधा की जरूरत भर का मिलत है, ज्यादा पानी भी ना होते नुकसानों ना होते।
0: अरे भैया खरपतवारों नहीं उगत है चारों तरफ,
1: हाँ
0: बहुत अच्छे तरह
1: बढ़िया
0: फसल रहा
1: बढ़िया
0: था,
1: है।
0: मतलब कुल मिलाए के फायदा ही फायदा है। तो हमका ऐसी जो पद्धतियां हैं सिंचाई के माध्यम से, जो अपनी बौछारी सिंचाई हुई, टपक सिंचाई हुई, तो इनका अपने जो खेती पाती में है हमेशा इस्तेमाल करे चाहिए भैया।
1: सही बात है। अच्छा जो उन बात करो ना कि जब यू टपक सिंचाई के माध्यम से केवल जड़मा पानी जा रहा है दूर तक ना जा रहा है तो दूर के जो उन घास फूस खरपतवार हैं वे बढ़े ना पावत हैं,
0: बिल्कुल भैया,
1: तो हमारे
0: अब
1: फसल जो
0: पोषण
1: है
0: जो है वहाँ मिल जाते हैं अपनी
1: हमारे
0: फसल
1: फसल
0: का।
1: बढ़िया होते हैं। ऐसे जैसे खरपतवार हमारी फसल के यहाँ नुकसान पहुँचावत हैं, एहत का कुछ रोग भी होते हैं जो हमारी हर फसल में कहूँ ना कहूँ आए जाते हैं, उनसे हमका बचाव के व्यवस्था करे के जरूरत होते हैं। अब जैसे गन्ना के फसल इस समय लगी है अपने
0: बिल्कुल
1: खेत
0: भैया,
1: में और उमा तमाम तरह के रोग आवे के संभावना बनी रहते हैं अगर हम तनिको चूक जाई, तो हम पंच देखो इसे चूकी ना इके खातिर जरूरी है
0: कहीं
1: कि सही
0: जानकारी
1: समय
0: मिले।
1: पर जानकारी ले ली।
0: बिल्कुल भैया, तो यही लिए आज देखो एक जानकारी लाए हैं, गन्ने की फसल में समन्वित रोग प्रबंधन, जिनके वार्ताकार हैं डॉक्टर दिनेश सिंह और जिनसे भेंट किए हैं डॉक्टर सुशील कुमार राजी,
1: तो
0: तो
1: भैया
0: मिलके आओ
1: दोनों
0: सुना
1: पंचन की
0: जाए।
1: बात सुनी जाए और लाभ उठावा जाए।
0: बिल्कुल भैया,
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां मिठास की फसल इस समय आपके खेत में है तो उसमें जो बीमारियां लगती हैं उनके प्रबंधन के लिए समन्वित रोग प्रबंधन कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से अध्यक्ष फसल सुरक्षा प्रभाग डॉक्टर दिनेश सिंह साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इस समय गन्ने की फसल खेत में है, कौन कौन से रोग लगने की संभावना है?
3: नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया अभी आप लोगों के खेत में गन्ने की फसल खड़ी हुई है, उसमें पोका बोई की प्रॉब्लम भी आना शुरू होगी, उसके बाद उसमें रेड राट, लाल सड़न रोग, विल्ट, म्लान रोग के संभावना बढ़ जाती है। जैसे ही आपके बरसात होगा इसमें ये बीमारियां ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगी।
2: डॉक्टर साहब जहाँ पोका बोइंग बीमारी लगती है तो उसके लक्षण कैसे पहचाने किसान भाई बहन?
3: कि पोका बोइंग के लिए उसके जो ऊपर की पत्तियां होती हैं वो पीली और मुड़ी हुई हो जाती हैं, तो उसमें उसके ऊपर वाला पोर्शन जो होता है वो सड़ने लगता है, और लास्ट जो अंतिम उसका लक्षण होता है उसमें एक कट का निशान आ जाता है, जिससे कि आसानी से किसान भाई उसको पहचान सकते
2: क्या
3: हैं।
2: खेत के नजदीक जाने पर बदबू भी आती है?
3: इसमें बदबू नहीं आती लेकिन उसमें सड़न होती है जो उसमें कर सकते हैं, लेकिन लाल सड़न रोग होगा तो उसमें बदबू आती है, उसमें सिरा का जैसे महक आती है, या अनानास का अगर होता है पोरी रोग होता है उसमें भी सड़न आती है अनानास का
2: तो
3: अगर।
2: जहां पोका बोइंग के लक्षण दिख रहे हैं तो इसका प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन?
3: जैसे कवकनाशी है डाइथेन 45 का, उसमें स्प्रे कर सकते हैं,
2: यानी
3: कॉपर
2: मैंकोजेब।
3: मैंकोजेब, और उसमें है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर सकते हैं 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, तो उसी हिसाब से 200 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आप करेंगे तो उसका घोल बना करके उसमें आप स्प्रे कर सकते हैं।
2: कुछ
3: और
2: जैविक उपाय भी हैं क्या?
3: पोका बोइंग के लिए तो उतना नहीं है लेकिन फिर भी उसमें अगर आप किसान भाई करना चाहते हैं तो जैसे उसमें है ट्राइकोडर्मा का स्प्रे कर सकते
2: यानी
3: हैं,
2: 10 ग्राम
3: या
2: प्रति लीटर
3: 10 ग्राम, 5 से 10 ग्राम, जैसे अभी
2: यानी
3: आपका
2: माचिस
3: कट
2: की एक डिबिया 1 लीटर पानी का
3: पानी में
2: हिसाब,
3: घोल से कर सकते
2: तो
3: हैं।
2: उससे क्या पत्तियों पर छिड़काव करें?
3: मतलब हवा के द्वारा रोग फैलता है पोका बोइंग, तो इसमें आपको पत्तियों पर ही छिड़काव करना पड़ेगा, और लक्षण अगर जैसे शुरू हो रहे हैं उसके पहले तो आप कर सकते हैं।
2: और डॉक्टर साहब जहाँ कंडुआ की समस्या आती है तो इसके लक्षण क्या होते हैं?
3: कंडुआ रोग के लक्षण

0: है कि इसमें जो मेन उसका सूट होता है ऊपर वाला पोर्शन, वहां से काले से
1: निशान
0: मतलब उसमें डंठल जो बनती है वो
1: वो काली हो जाती
0: काली
1: है
0: हो जाती है, ऊपर जाके वो मुड़ जाती है
1: जी।
0: करीब वो आधा मीटर के लगभग कुछ में, मतलब उसमें 30 सेंटीमीटर के आसपास उसमें बन जाता है। तो उससे आसानी से किसान भाई उसको पहचान सकते हैं। उसका है कि आपको अगर खेत में है तो उसको आप निकाल करके उसको नष्ट कर दें, खेत से तुरंत निकाल दीजिए, नहीं तो वो दूसरे पौधों पे भी जा करके उसमें हवा के द्वारा फैल करके कर सकता है। और ये बीमारी बीज के द्वारा फैलती है, बीज के द्वारा फैलने वाली बीमारी ये कंडुआ है, साथ साथ रेड राट का भी है, विल्ट का जो लाल सड़न रोग, मलानी रोग जो है, ये सब के द्वारा बीज के द्वारा फैलते हैं। तो बीज का उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है।
1: लेकिन इस समय चूंकि फसल खेत में है और कंडुआ के अगर लक्षण हैं तो काट करके आप नष्ट कर दें, ड्रेंचिंग भी करनी है।
0: नहीं, कंडुआ के लिए तो ड्रेंचिंग नहीं होता है, लेकिन लाल सड़न रोग के लिए आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। अगर आपका वो क्लम्प जो उसका थान जो बोलते हैं उसमें अगर संक्रमित है तो उसको उखाड़ दीजिए, कि जैसे कार्बेंडाजिम 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल बना दीजिए
1: और ड्रेंच
0: और
1: कर
0: उसको
1: दीजिए
0: ड्रेंच कर दीजिए पूरा, उसको भिगो दीजिए, जिससे कि जो उसके साथ स्पोर्स या बीजाणु होंगे उसके कवक के पैथोजन के वो नष्ट हो जाएंगे, फिर वो फैलेंगे नहीं दूसरे में।
1: डॉक्टर साहब। लाल सड़न रोग जो है वो गन्ने का एक तरह का कैंसर है, तो वैसे तो नई नई प्रजातियां आ गई हैं, लेकिन अभी भी जहां पुरानी प्रजातियां लगा रहे हैं किसान भाई बहन, तो लाल सड़न की पहचान कैसे करें?
0: लाल सड़न का पहचान है जो ऊपर की 3-4 पत्तियां होती हैं वो पीली होने लगती हैं, फिर उसको अगर आप बाद में वो पूरा पौधा पीला हो जाएगा, फिर अगर उसको आप फाड़ के देखेंगे तो उसमें उसके लाल से रंग के साथ साथ बीच बीच में सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, जिससे कि आप पहचान सकते हैं। और इसमें मलानी का जो उसमें है, दोनों में कभी कभी आपको
1: उकठा
0: उकठा
1: रोग
0: रोग है और उसमें कभी कभी लाल सड़न रोग है, या मलानी या उकठा रोग है, तो उसको पहचानने के लिए है कि उसमें आपको खोखला हो जाता है मलानी रोग में, लाल सड़न रोग में केवल लाल हो जाएगा साथ साथ बीच बीच में धब्बे सफ़ेद से दिखे, तो इससे पहचान सकते हैं आसानी से।
1: तो खड़ी फसल में लाल सड़न रोग का कोई प्रबंधन कर सकते हैं?
0: खड़ी फसल में बड़ा मुश्किल होता है उसको प्रबंधन करना, लेकिन उसके साथ साथ आपको सबसे है कि आपको जैसे ही पता चले आप खेत से आप निकाल दीजिए उसको,
1: और
0: उसका
1: वहां
0: वहाँ
1: कार्बेंडाजिम की
0: पर
1: ड्रेंचिंग
0: कार्बेंडाजिम का ड्रेंचिंग कर दीजिए, जिससे पूरा उसको भीग जाए। साथ साथ कभी कभी क्या कि एयर के द्वारा फैलता है, हवा के द्वारा भी सेकेंडरी वो संक्रमण होता है इसका लाल सड़न का, तो उसमें आप एस्टोबीन जो दवा आती है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं,
1: एकड़
0: एक
1: में कितना,
0: एक ml पर लीटर के हिसाब से,
1: यानी
0: उसी
1: दो
0: दो
1: सौ
0: सौ
1: लीटर
0: एम एल
1: पर
0: 250 ml के लगभग आता है, 1 एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। उससे जो आपका स्प्रेड होगा, जो ऊपर से इन्फेक्शन होता है वो नहीं होगा।
1: डॉक्टर साहब। जहाँ उकठा की समस्या है तो इसके लक्षण क्या हैं?
0: उकठा के लिए है कि पूरा पौधा सूख जाता है, उसमें पहले पीला होगा हल्का, फिर पूरा पौधा सूख जाएगा, और जैसा कि हमने पहले ही बताया कि उसको आप फाड़ के देखेंगे तो इसमें खोखला हो जाता है, और
1: अच्छा, अंदर
0: हाँ
1: अंदर
0: हाँ
1: खोखला।
0: पूरा खोखला हो जाएगा, अंदर से सूख जाता है, और साथ साथ उसमें कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा उसमें जो कवक के जो जाल होते हैं, कवक जाल होते हैं वो दिखाई देते हैं, उससे आप पहचान सकते हैं आराम
1: तो
0: से।
1: इसका प्रबंधन संभव है?
0: इसका प्रबंधन आपको शुरू से ही करना है, बीज का चुनाव करना है, बीज जो संक्रमित नहीं होना चाहिए, साथ साथ उसमें आप बायोलॉजिकल कंट्रोल में है, ट्राइकोडर्मा हार्जियनम का है, उसका आपको गोबर की
1: ड्रेंचिंग करनी होगी।
0: नहीं नहीं गोबर की खाद के साथ मिला करके, ये जैसे 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा का है उसमें 50 किलोग्राम या 100 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई गोबर की खाद में आप मिक्स कर लिए, 10 दिन उसको आप छाए में रख के मिलाते रहिए, जब उसमें ग्रोथ इस ट्राइकोडर्मा का आ जाए फिर आप उसमें उसको खेत में कूड़ के साथ आप दे दीजिए, तो फिर पानी लगा दीजिएगा, फिर आप उसके प्लांटिंग करिए, जिससे कि वो जो कवक है जो रूट के पास रहेगा, जिससे कि उसको जो पैथोजन है, चूंकि कवक जो है सॉयल बॉर्न है, मृदा के द्वारा फैलता है, मृदा में पाया जाता है, तो उससे आपको उसको बचाएगा। साथ साथ ट्राइकोडर्मा का एक बहुत बड़ा फायदा किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये रोग के साथ साथ उसमें पौधों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है, तो
1: यानी ग्रोथ
0: उसमें हाँ इसको
1: रेगुलेटर
0: है
1: भी है।
0: ग्रोथ रेगुलेटर भी है। इसके साथ आप एक हैबिट बनाना चाहिए कि ट्राइकोडर्मा हो या सूडोमोनास हो या बेसिलस है, सूडोमोनास बेसिलस जैविक है वो,
1: मित्र
0: इसको
1: फफूंद है,
0: हाँ
1: मित्र
0: फफूंद
1: जीवाणु
0: भी,
1: है।
0: हाँ जीवाणु भी है और फफूंद भी है, तो इससे आपको खेत में बचा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, कहीं कहीं पूरी बिगलन की भी समस्या आती है गन्ने की फसल में।
0: पौरी विकलन का मेन उसमें होता है कि जो इसका जो आता है ज़्यादातर तो वाटर लॉगिंग जहाँ होती है पानी के जहाँ
1: जहाँ
0: जमाव ज़्यादा,
1: जलमग्न इलाका
0: हाँ
1: है
0: जलमग्न होता है उसमें, अगर पानी ज़्यादा दिन तक 10 से 15 दिन से ज़्यादा अगर उसमें रुकता है तब इसका होने का चांस बढ़ जाता है।

0: इसमें लक्षण?
1: इसके लक्षण है कि उसका जो पोर के पास काला पहले होगा, सड़ना शुरू हो जाता है, और इसमें अनानास का जैसे महक आती है उसी तरह से इसमें आ जाती है, तो इससे हम इसको पहचान सकते हैं। अब इसका भी प्रबंधन यही है कि आप जहाँ पे जलमग्न आपका क्षेत्र है वहाँ पे गन्ना मत लगाइए, और ज़्यादातर उसमें जैसे हमने देखा है कि जब उधर 201 का अगर लेट प्लांटिंग करते हैं तो उसमें भी आपको उसमें प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए बचना चाहिए कि उस लेट प्लांटिंग नहीं करें।
0: डॉक्टर साहब, कभी कभी मिठास की फसल में ग्रासी शूट यानी घासी प्ररोह रोग भी लगता है।
1: ये भी बीज के द्वारा ही फैलता है, एक फाइटोप्लाज्मा होता है जिसको हम लैब में कल्चर नहीं कर सकते।
0: जी
1: लक्षण में है कि इसका आपका जो जो पूरा थान होगा वो घास की तरह हो जाएगा।
0: घास की
1: हाँ,
0: तरह।
1: उसमें पूरा जो आपका स्टेम बनता है, गन्ना जो इसको बोलते हैं केन बनते हैं, वो नहीं बनता है। कि अगर मान लीजिए आप एक खेत में 10% है, मतलब कि आपका जितना गन्ना है 10% अगर है तो टोटल लॉस ही होता है।
0: तो
1: तो इसके
0: इसका प्रबंधन
1: हाँ, इसका प्रबंधन दो तरह से कर सकते हैं। इसमें तो हमारे पास वो केमिकल्स नहीं है जिसको हम आप करें। हॉट वाटर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको आधे घंटे तक या कभी कभी 2 घंटे तक आप कर सकते हैं, 2 घंटे तक ही करना चाहिए। 54 पे मॉइस्ट एयर जैसे हमारे इंस्टीट्यूट ने, शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया हुआ है, तो
0: यानी
1: ऐसे
0: चौवन
1: तो
0: डिग्री
1: मस्ट
0: पर
1: 54 डिग्री पर 2.5 घंटे तक उसको रखना है,
0: अगर
1: तो
0: उपचार
1: उससे
0: करते हैं
1: हाँ
0: तो ये बीमारी
1: ये
0: नहीं होती।
1: बीमारी नहीं फैलेगी।
0: डॉक्टर साहब, जहाँ भी गन्ने की फसल खेत में है तो रोग दोख न लगे, इसके लिए किसान भाई बहन नियमित रूप से क्या कर सकते हैं इस समय?
1: बीज का चुनाव ऐसे खेत से मत करें जहां आपके पिछले साल उस खेत में बीमारी लगी हो, उसका खेत का चुनाव नहीं करेंगे। साथ में आप जहां पे जलमग्न एरिया है वहां पर ऐसी मतलब वैरायटी का चुनाव नहीं करें कि जो वो उसके से ससेप्टेबल है या रोगग्राही है।
0: लेकिन डॉक्टर साहब, इस समय जब फसल खेत में है तो रोग दोख न लगे तो कौन कौन से जैविक उपाय आसानी से अपना सकते हैं?
1: जैविक के लिए तो जो हमारे बताया पहले भी कि ट्राइकोडर्मा हार्जियनम का है, और भी स्पीसीज हैं उसको कर सकते हैं। सुडोमोनास का है, सुडोमोनास फ्लोरेसेंस एंड बेसिलस सबटिलिस, इसको जैविक नियंत्रक है कवकनाशी की जगह पर इसको कर सकते हैं। और दूसरा फायदा यह है कि आपको जैसे ये जैविक नियंत्रक है, कोई भी अगर चाहे वो जीवाणु के द्वारा होता बीमारी, चाहे कवक के द्वारा बीमारी होती हो या फाइटोप्लाज्मा के,
0: यानी बीच बीच में ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास या बेसिलस।
1: कर सकते हैं इसको। बीच बीच में क्या इसमें मेन होता है कि एक तो जब आप प्लांटिंग करते हैं उस समय करिए, उसके बाद कम से कम जुलाई के आसपास उस समय आप करिए। अब ध्यान वो रखिए कि जब उसमें आप ज़्यादा टेम्परेचर हो उस समय नहीं करना है,
0: सुबह शाम में
1: सुबह
0: करें।
1: शाम में करेंगे।
0: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे गन्ने की फसल में समन्वित रोग प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: मोबाइल नंबर किसान भाई नोट करें, 9968246428, 9968246428, 9968244628।
0: डॉक्टर दिनेश सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और जहाँ भी मिठास की फसल इस समय खेत में है तो किसान भाई बहन समन्वित रोग प्रबंधन कैसे करें, यानी नियमित रूप से खेत की निगरानी करते रहें और जो भी रोग के लक्षण हैं उनके हिसाब से
1: ऐसे
0: जैविक उपायों को
1: मुकाबला
0: ज़्यादा अपनाएं। अगर नुकसान का स्तर अधिक है तो जो सुरक्षित रसायन है उनका यानी फफूंदी नाशक है उनका प्रयोग करें। आज कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
2: राजेश भैया,
0: हाँ आत्म प्रकाश भैया,
2: भैया बड़ी नीक बतकही सुनन हम पंच, और इसे बहुत ज्यादा लाभ मिला है हमका पंचन के यहाँ, खास तौर से गन्ना के फसल जो उन्हें वह अब बिल्कुल बढ़े बढ़वार के स्थिति में यहाँ है, और आगे बरसात के जो समय आवत है तो उमा बहुत सतर्क रहा के जरूरत होते, सचेत रहा के जरूरत होते। तो ऐसे मौके पर हमका पहले हैं से अति बढ़िया जानकारी मिल गए है। जानकारी दीन है डॉक्टर दिनेश सिंह भैया, और इनसे बतकही कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। विषय रहा है गन्ने की फसल में सामयिक रोग प्रबंधन,
0: तो इनका दोनों लोगों
2: तो
0: ने बहुत बहुत धन्यवाद
2: इतनी
0: दिया।
2: बढ़िया जानकारी खातिर दोनों पंचन का बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया जब इतनी बढ़िया जानकारी हमका पंचन के यहाँ मिली गए है तो निश्चित रूप से ने हमरे पंचन के रे अब गन्ना केरी फसल पर कोनो असर ना पड़ी और बढ़िया उत्पादन हुई।
0: बिल्कुल, यानी कि चारों तरफ झूमी।

0: हैं लोग।
1: हाँ, और गन्ना के फसल हमारे नगदी फसल है, तो जब गन्ने की फसल बढ़िया हुई तो नगदी से जेब अपन भरी रही।
0: बिल्कुल भैया।
1: और जब नगदी से जेब भरी रही तो हम पंच अपने घर परिवार के जो भी सदस्य हैं
0: पालन पोषण
1: उनसे तरह तरह के वादा कर पीबा कि भाई हमारी बात मान जाओ और देखो आवे वाले समय में हम तुमका फलानी चीज दिवाई दीबा।
0: बिल्कुल भैया सही कहो।
1: देखो ऐसा बत कही अब जो अपन गौनई है उमा दीपक सिंह भैया अपने घरेतिन से कह रहे हैं, तो आओ सुना जाए कि का वादा कर रहे हैं का देवई है इनका।
0: बिल्कुल भैया।

0: हम यो कर पेबा या जोन हमार योजना होते आगे केर खासतौर से खेती से जुड़ी भी जोन योजना होते वह बहुत कुछ निर्भर करते हैं कि कल है और आज मौसम कैसे
1: अरे
0: होगी।
1: भैया बतावे आपके, हमारे बबलू भैया हैं, विजयपाल भैया हैं,
0: हाँ
1: वही कहा है अपनी घरेतीन के लिए जुलनिया मंगावे के लिए व्यवस्था बनाई ली है। हाँ तब ही कहा नहीं तो भैया, तो हमको चलो गन्ना जो भी है अपन लगाओ, अच्छे से पैदावार करो, है कि नहीं?
0: सही बात है। तो देखो जो हमारी फसलन की पैदावार होते वो मौसम पर निर्भर करते हैं।
1: बिल्कुल भैया।
0: जब अब जैसे हम सोच ली कि काल है हम उर्वरक डरीबा यूरिया डरीबा खेत में, लेकिन रात के यहाँ ज़्यादा बारिश होए लागे तो फिर

0: लगभग मौसम शुष्क रही, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की बौछार पड़े की संभावना है आज और कल, लेकिन परसों और उके अगले दिन थोड़ा ज़्यादा जगहन पर बारिश होए की संभावना है पश्चिमी और पूर्वी दोनों उत्तर प्रदेश वाले हिस्से में है, और उके अगले दिन और ज़्यादा संभावना है कि कहीं कहीं पर बारिश हो सकत है।
1: बिल्कुल भैया सही
0: तो
1: कह
0: हमका
1: रहे।
0: पंचन के यहाँ अपनी खेती से जुड़ी भई जो योजनाएं हैं यही के अनुसार बनावे के यहाँ है, लेकिन भैया इका यो मतलब ना है कि हम पंच यू सोच ली कि काल तो बारिश हुई तो हम पंच अब दोपहरी केर चिंता न करी, काहे से कि बीच बीच में है कहूँ कहूँ लू चले केर भी आसार हैं। तो हमका पंचन के यहाँ दोनों स्थितिन के लिए मन से और शरीर से तैयार होकर बाहर निकले के यहाँ
1: बिल्कुल सही, क्योंकि कहे से भैया जो भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जो मौसम की जानकारी मिली रहे वो आप बताओ।
0: हाँ बिल्कुल भैया। अब देखो भैया अपने कार्यक्रम में काल का खास है वो जान ली जाए। काल देखो होते हेलो किसान, किसानन खातिर सजीव फोन इन कार्यक्रम। तो कल बात करे खातिर विषय है खरीफ उत्पादन के उन्नत तकनीक, जायद फसलन में सामयिक कार्य, समन्वित नाशी जीव प्रबंधन और कृषि रक्षा रसायन का सुरक्षित उपयोग कैसे की जाए, ये सब बातन पर जानकारी दें डॉक्टर रमेश कुमार मौर्य अपर कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, और कार्यक्रम के प्रस्तुति और संचालन करी हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया।
1: तो भैया इसके लिए जाना, तो अपन जो पंच हैं वो फोन जो है वो एक जादुई नंबर है अपन आकाशवाणी लखनऊ का, वो कब
0: हाँ
1: मिलाए के सीधे मतलब डॉक्टर से अपनी समस्या का समाधान जो
0: तो
1: कर ले
0: भैया
1: ही
0: वो
1: सकते हैं।
0: नंबर है 0522-2238-825।
1: यानी कि नंबर एक बार फिर से लिख लें,
0: हाँ
1: 0522 जो लखनऊ का स्टडी कोड है, और फिर उसके बाद 2238-825 यो नंबर मिलाए के डॉक्टर से कल यानी बुधवार के दिन अपने शाम के यहाँ 6 बजे से लेके 6:30 बजे से लेके 7:20 तक अपना फोन मिला के बातचीत कर सकते
0: और
1: हैं।
0: भैया अगर बात ना हो पावे तो पाती भेजे खातिर पता लिख लें जल्दी से, लोकायतन खेती किसानी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड है 226001। और अब बैठकी से हम पंचन का देव अनुमति।
1: जय
0: जय हिंद।
1: हिंद।

0: खेती किसानी कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आज 12 वर्ष पूरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित है दौर। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज

0: आप अगले 6 महीने तक मौजूदा प्रधान ही बने रहेंगे प्रशासक। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, डबल इंजन सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों को माना परिवार। और प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 10 की मौत, मुख्यमंत्री ने जताया दुर्घटना पर शोक। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन वर्ष 2014 में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर इसे सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित गौरवशाली 12 वर्ष बताया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इन वर्षों में गरीब कल्याण शासन की प्राथमिकता बना, अंत्योदय आत्मनिर्भरता की शक्ति में बदला और जन भागीदारी ने विकास को जन आंदोलन का रूप दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल, डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी की त्रिवेणी विकसित भारत 2047 की दिशा को नई गति दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि 26 मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और एक नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
0: प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान कल से पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 साल का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने नगर निगम में महापौर के कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनता का पैसा जनहित में ही खर्च होगा, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, प्रेरणा है। श्री योगी ने कहा कि स्वच्छता रैंकिंग में लखनऊ नगर निगम को देश में 3रा स्थान मिला, इसे पहले स्थान पर लाना है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों और नगर निगम ने पूरे क्षेत्र को अपना परिवार माना।
3: 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है और नगर निगम लखनऊ ने कहा कि पूरा नगर निगम ही हमारा परिवार है, इसलिए बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना है। आज उसका लाभ मिल रहा है, हर स्तर पर मिल रहा है। जब अच्छा करते हैं लोग उसको एप्रिशिएट करते हैं, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, विकास का लाभ हर स्तर पर चलता हुआ दिखाई देता है और आज हम सबको ये सारी चीजें देखने को मिलती है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में नगर निगम में आयोजित मेयर के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने नगर निगम के नए सदन हॉल का लोकार्पण किया, साथ ही नगर निगम के नए लोगों का अनावरण और पिछले 3 वर्षों में हुए विकास कार्यों पर आधारित विशेष पुस्तिका का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभागों की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का लाभ सीधे आम आदमी को मिलना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी अस्पतालों में इलाज, जांच, दवाओं और आपात सेवाओं की गुणवत्ता लगातार बेहतर होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य केवल संस्थान बढ़ाना नहीं बल्कि प्रदेश को प्रशिक्षित चिकित्सक, विशेषज्ञ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध कराना है। उन्होंने मेडिकल संस्थानों में आधुनिक उपकरणों,

0: विशेषज्ञ फैकल्टी और रिसर्च गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में आयुष पद्धतियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में और कमी लाने के लिए संस्थागत और सुरक्षित प्रसव व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज गोंडा से नकहा जंगल गोंडा डालीगंज पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन नकहा जंगल से डालीगंज लखनऊ तक चलेगी। वहीं पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के मांग पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर पीलीभीत पैसेंजर ट्रेन का विस्तार शाहजहांपुर तक कर दिया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के कई जिलों में आज चौथे बड़े मंगल के अवसर पर हनुमान मंदिरों में भक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं। कई जगहों पर भंडारों का आयोजन भी किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बड़े मंगलवार के अवसर पर लखनऊ स्थित हजरतगंज के प्राचीन दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर के निकट आयोजित भंडारे में पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान जी की पूजा अर्चना की। अलीगंज के पुराने हनुमान मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्त दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में भी श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित श्रीराम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर आज विशेष अनुष्ठान हो रहे हैं। इस अवसर पर भगवान श्रीराम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र धारण कराकर विशेष श्रृंगार करने के साथ ही 56 भोग लगाए गए। प्रदेश में आगामी बकरीद पर्व को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी क्रम में मेरठ में पर्व को लेकर प्रशासन ने व्यापक कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी वीके सिंह ने सभी से अपील की है कि शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए।
2: हम लोग जो परंपरा विगत वर्ष थी उसी का अनुपालन करेंगे और शांति समिति की बैठक में हम लोगों ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है। बाकी जो नागरिक सुविधाएं हैं, चाहे ड्रिंकिंग वाटर हो, सफाई की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, फायर की व्यवस्था हो, ये सब व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। विद्युत की आपूर्ति भी हमने विद्युत विभाग को कहा है कि प्रातः सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक अनुरत विद्युत की सप्लाई हो। और
1: प्रदेश में आज लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे पर शोक व्यक्त किया है। वहीं एक अन्य घटना बारामती जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से राहत नहीं है। कई जगहों पर तापमान 43 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। बुंदेलखंड सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में है। बांदा में 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो प्रदेश के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी भाग में आ रही गर्म और शुष्क पछुआ हवाओं के कारण प्रदेश में आज और कल लू की चेतावनी जारी की है। विभाग ने बताया है कि इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के चलते 28 मई से आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आज 12 वर्ष पूरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित है दौर। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त। अगले 6 महीने तक मौजूदा प्रधान ही बने रहेंगे प्रशासक। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, डबल इंजन सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों को माना परिवार। और प्रदेश में दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 की मौत। मुख्यमंत्री ने जताया दुर्घटना पर शोक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं।

0: इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

अभी आपने अनुराधा पौडवाल और एमजी श्री कुमार की आवाज़ में ये गीत सुना, डोली सजा के रखना फिल्म से। इस गीत को लिखा था महबूब ने और संगीत दिया था एआर रहमान ने।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: फिल्म संगीत कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्याम राज का लिखा गीत उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज में। दहक फिल्म के इस गाने को संगीत से सवारा है आदेश श्रीवास्तव ने।
2: देखा सनम

0: बाबुल सुप्रियो और अनुराधा पौडवाल के गाए ढाई अक्षर प्रेम के फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम।
1: नमस्कार, मैं एना कर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं कार्यक्रम उड़ान में। उड़ान हौसलों की, उड़ान कुछ नए सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की और जो बाहें फैलाकर बेताबी से आपका इंतजार कर रही हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम उड़ान। जी हां श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू करने से पहले

0: अब हमारा नंबर लिख लें। तो श्रोताओं, हमारा फोन नंबर है 8 8 6 0 0 8 8 8 2 7। जी हाँ, 8 8 6 0 0 8 8 8 2 7।
1: दोस्तों, आपके लगातार आते फोन कॉल हम सभी के लिए सराहनीय हैं और यही हमें उत्साहित भी करते हैं कि आप इस पड़ाव और पल में हमारे साथ हैं। सच में हमें बेहद अच्छा लगता है आप हमारा कार्यक्रम बड़े चाव से सुनते हैं, हमें फोन करते हैं, हमें पत्र भी लिखते हैं और आपके सुझाव और विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं आगे भी आप इसी तरह हमें प्रोत्साहित करते रहेंगे। तो बढ़ते हैं आगे की ओर, जिसका शीर्षक है अंधेरे से उजाले की ओर।

0: दोस्तों, नशा एक ऐसा धीमा जहर है जो इंसान के शरीर से पहले उसके सपनों को मार देता है। नशा केवल एक इंसान को नहीं, पूरे परिवार को सजा देता है। घर की हंसी कब रोने में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। आज की ये कहानी उन लोगों की है जिन्होंने नशे के अंधेरे में अपनों को खोया और फिर उसी अंधेरे को हरा कर उजाले का रास्ता चुना। आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आए हैं जो आपके आसपास, आपके पड़ोस, शायद आप ही के घर में घट रही हो, जो इंसान से उसका विवेक और परिवार से उसकी मुस्कान छीन लेता है। नशे की आवाज घर की शांति को चीर देती है। सुबह की शुरुआत भी चिंता के साथ होती है जब घर में खुशियों से ज्यादा समस्याएं बोलती हैं।
1: मोहन, फिर शराब पीकर आ गए हो। बच्चों की फीस बाकी है, घर पे राशन नहीं है।
2: बस बस, मुझे मत सिखाओ, मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहे करूं।
1: राधा, आज सब्जी मत बनाना, नमक रोटी ही से काम चला लेंगे।
3: दीदी, कब तक ऐसे जिएंगे हम, हर दिन समझौता, हर रात डर।
1: मजबूरी है राधा, जब घर का मुखिया ही रास्ता भटक जाए तो।
3: दीदी, हर दिन यही होता है, ये नशा हमें खत्म कर देगा। कभी कभी लगता है दीदी, हम भी उसी नशे में डूब रहे हैं बिना पिए।
1: राधा, आज फिर चावल कम पड़ गए।
3: दीदी, महीने भर का बजट बिगड़ गया है।
2: खाना मिलेगा या नहीं?
1: मोहन, बच्चों के सामने तो मत चिल्लाओ।
2: अरे, आज खाना ठंडा है क्या?
1: रोज शराब, गर्म रहती है मोहन, घर का चूल्हा ठंडा पड़ गया है।
2: ताना मत मारो, मैं बार मर मर के कमाता हूँ।
3: जीजा जी, कमाई से ज्यादा तो शराब की बोतल दिखती है।
2: मेरी जिंदगी है, तुम लोग कौन होते हो रोकने वाले?
1: हम तुम्हारे अपने हैं मोहन, और अपने ही सबसे ज्यादा दर्द सहते हैं।

0: नमस्ते बहन जी, आज गांव में नशा मुक्ति अभियान की बैठक है। गांव में नशा मुक्ति शिविर लगने वाला है। सरकार मुफ्त इलाज और काउंसलिंग दे रही है।
1: मुफ्त? हमें तो लगा ये सब बड़े शहरों के लिए होता है। सच? क्या कोई रास्ता है इस अंधेरे से बाहर निकलने का?
0: दीदी, जिला नशा मुक्ति केंद्र में दवा, काउंसलिंग सब फ्री है। और हाँ दीदी, अगर चाह हो तो आज नहीं रुकें, कल तो बहुत देर हो जाएगी।
2: और अगर कमाई रुक जाए तो?
0: मनरेगा योजना है ना, रोजगार मिलेगा, बच्चों के लिए सरकारी छात्रवृत्ति भी।
1: मतलब सरकार भी हमारे साथ खड़ी है?
0: हाँ दीदी बिल्कुल, बस पहला कदम हमें ही उठाना पड़ेगा।
3: काउंसलिंग के

0: बाद मोहन बदला हुआ दिखता है।
1: सब मुझसे क्यों दूर हो रहे हैं? क्या सच में मेरी गलती है? मैं क्या बन गया हूँ? मेरे कारण मेरे अपने मुझसे डरते हैं? क्या यही मर्दानगी है? मैं कहाँ गलत हो गया? अगर आज भी नहीं सुधरा तो कल मुझे माफ करने वाला भी कोई नहीं होगा।
0: जब इंसान खुद से बात करने लगे तो समझो बदलाव की शुरुआत हो चुकी है।
1: मैं बदलना चाहता हूँ।
2: ये मेरी सबसे बड़ी जीत है।
0: काउंसलिंग के बाद मोहन,
1: सीमा मुझे माफ कर दो, मैंने नशे में अपना वर्तमान भी खोया और भविष्य भी।
2: गलती मान लेना ही सबसे बड़ी जीत है मोहन।
3: आज मेरा भाई फिर से जिंदा हो गया।

0: आज फिर मन कर रहा है।
1: एक घूंट ने आपको यहाँ तक पहुँचाया था, अब एक फैसला आपको बचा सकता है जीजा जी। अगर मन डगमगाए तो याद कर लेना।
2: मोहन, आज अगर रुके तो हमारे बच्चे एक नई सुबह को देखेंगे।
0: हर दिन एक युद्ध है राधा, लेकिन आज हार मान ली तो सब खत्म हो जाएगा। नहीं, अब नहीं।
2: हम तुम्हारे साथ हैं मोहन, इस बार सच में।

0: माह बाद मोहन काम पर जाने को तैयार, आशा पढ़ाई में व्यस्त।
1: आज मैंने समाज सेवा का कोर्स ज्वाइन किया है, मैं दूसरों को भी नशे से बचाऊंगी।
2: अगर मेरी कहानी किसी को बचा सके तो मेरा संघर्ष सफल हो जाएगा।
1: मैं समाज सेवा में जाना चाहती हूँ
2: ताकि कोई और मेरी तरह ना गिरे।
3: मोहन, आज मनरेगा का काम कैसा रहा?
2: मेहनत की कमाई है सीमा, और सुकून भी।
4: बच्चों की छात्रवृत्ति का फॉर्म भी भर दिया गया है।
1: और दीदी, आज आंगनवाड़ी मीटिंग में नशा विरोधी अभियान की तारीख तय हुई है।
2: अगर सहारा ना मिलता तो शायद मैं आज भी अंधेरे में होता।
0: श्रोताओ, नशा कोई स्टाइल नहीं, ये एक धीमी मौत है, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो हर अंधेरा रोशनी में बदला जा सकता है। आज नहीं तो कभी नहीं, नशे को ना कहें, जीवन को हाँ कहें। हर अंधेरे में एक दिया होता है, बस जरूरत है उसे जलाने की। रेडियो पर ना सुनाई देने वाला संघर्ष असल जिंदगी में बहुत शोर मचाता है। जब परिवार साथ खड़ा हो तो सबसे बड़ी लत भी हार जाती है। श्रोतो, जिला नशा मुक्ति केंद्र और मनरेगा के बारे में मैं आपको थोड़ी सी विस्तृत जानकारी दे देती हूँ। जिला नशा मुक्ति केंद्र, आप सभी जानना चाहेंगे कि ये क्या है। ये भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे सरकारी नशा मुक्ति केंद्र हैं, जो जिले स्तर पर होते हैं। यहाँ पर मुफ्त इलाज, डॉक्टर द्वारा जांच, काउंसलिंग, जिसे आप लोग मानसिक सलाह के रूप में जानते हैं, जहां पर मुफ्त दवाइयां वे परिवार को मुफ्त सलाह भी दी जाती है। कुछ जगहों पर कुछ दिन रहने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। अब सवाल आता है कि वहां कैसे जाएं? इसके लिए आप अपने जिले के सरकारी

0: अस्पताल जाएं, वहां पर आप पूछ सकते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र कहां है। वहां आप अपना आधार कार्ड या कोई भी पहचान पत्र साथ ले जाएं। डॉक्टर या काउंसलर से मिलकर वहां पर इलाज आपका शुरू किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि पूरे भारत में एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, जिसे 1446 के नाम से जानते हैं। ये सरकारी टोल फ्री नंबर है। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 1446, जिसे हमारी भाषा में हम बोल सकते हैं 1446। यहाँ से आपको आपके जिले के नशा मुक्ति केंद्र की जानकारी मिलती है, जहाँ इलाज, दवा और सलाह सब कुछ मुफ्त मिलता है। दूसरा, आपने मनरेगा योजना के बारे में सुना होगा। अब आप जानना चाहेंगे कि ये क्या है, मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ी विस्तृत जानकारी दे देती हूँ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम से इसे जाना जाता है, जिसमें ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन का काम मिलने की गारंटी दी जाती है। और इसमें किसे काम मिलता है वो भी मैं बता देती हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला वयस्क व्यक्ति, जिसमें पुरुष या महिला दोनों हो सकते हैं, नशा छोड़ने के बाद काम पाने का बेहतरीन साधन है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि काम कैसे मिलेगा। इसमें पहला स्टेप होता है, आपका एक कार्ड बनवाया जाएगा, जो ग्राम पंचायत सरपंच के माध्यम से बनता है। उसके बाद वह सचिव के पास जाता है, जिसमें आपका आधार कार्ड और आपकी एक फोटो होती है। जब मनरेगा कार्ड बनता है, उसके बाद काम की मांग कर सकते हैं। आप पंचायत में जाके बोलिए कि मुझे मनरेगा में काम चाहिए। 15 दिन के अंदर काम देना अनिवार्य होता है। किस प्रकार के काम इसमें होते हैं, जैसे सड़क का निर्माण, तालाब की खुदाई, नाली या मिट्टी भराई, वृक्षारोपण, आपके आसपास के स्कूल या आंगनबाड़ी से जुड़े काम। मजदूरी का भुगतान सीधा आपके बैंक से खाते में आता है। श्रोता, ये सरकार के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं हैं, जो हम जानते हुए भी जिनका लाभ हम नहीं उठा पाते। तो श्रोता, मैं आशा करती हूँ आज की इस कहानी ने आपको जरूर जागरूक किया होगा।
1: हमें उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस कार्यक्रम को सुनकर आपके मन में कोई सवाल, कोई विचार या कोई अनुभव जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं, तो हमें जरूर बताएं। हमारा पता है, कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 01। जी हाँ, कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 110001। और हमारा फोन नंबर है 8860088827। जी हाँ, 8860088827। श्रोताओं, आपके पत्र और आपके विचार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और एक नई प्रेरणा के साथ, इसी दिन इसी समय पर। तब तक मुझे दीजिए अनुमति, खुश रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। लीजिए आप सुनिए हिंदी कार्यक्रम।
1: हिंदी कार्यक्रम के आज के संक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। श्रोताओ, आज के संक में आपको एक कहानी सुनवाते हैं।

0: इसका शीर्षक है फूल तोड़ना मना है। कहानीकार हैं श्री चंद्रशेखर वर्मा।
1: डॉक्टर समीउल्लाह पर्यावरण प्रेमी पहले थे और प्रोफेसर बाद में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बॉटनी में एमएससी करने के बाद उन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रिसर्च फेलोशिप मिल गई थी। डॉक्टरेट करने के बाद वो जेएनयू में ही प्रोफेसर नियुक्त हो गए। पर्यावरण पर डॉक्टर समीउल्लाह की पकड़ कमाल की थी। देश विदेश की संस्थाओं और सरकारों द्वारा उन्हें व्याख्यान देने के लिए बुलाया जाता था। दुनिया भर में कम से कम 30 विश्वविद्यालयों में उनकी लिखी हुई पुस्तकें पढ़ाई जाती थीं। एक दिन उनके केबिन में उन्हीं के विभाग के डॉक्टर देवव्रत मिश्रा आए। समीउल्लाह साहब, अपने घर में सत्य नारायण की कथा करवा रहा हूँ, हालांकि आप आएंगे नहीं लेकिन फिर भी बुलाई लेता हूँ। देवव्रत मिश्रा ने ये बात डॉक्टर समीउल्लाह के धर्म को मद्देनजर रखते हुए कही थी। ये आपने कैसे सोच लिया कि मैं नहीं आऊंगा? काशी में बचपन गुजरा है साहब, जहां हर गली नुक्कड़ पर मंदिर देखे हैं। मेरी आस्था इस्लाम में है लेकिन श्रद्धा मैं हर धर्म के प्रति रखता हूँ। डॉक्टर समीउल्लाह ने देवव्रत मिश्र को निशब्द कर दिया। अगले दिन नियत समय पर डॉक्टर समीउल्लाह नहा धोकर प्रोफेसर देवव्रत के घर पहुंच गए और उन्होंने पूरी श्रद्धा से कथा सुनी। कथावाचक एक नौजवान पंडित थे। कथा के बाद विधिवत रूप से हवन हुआ और उसके पश्चात पंडित जी ने सभी को फूल देकर शालिग्राम जी पर चढ़ाने को कहा। आमतौर पर ऐसे में लोग अपने स्थान पर बैठे बैठे ही पूजा की चौकी की ओर फूल उछाल देते हैं और प्रोफेसर देवव्रत के यहाँ भी ऐसा ही हुआ। जाहिर सी बात है, सभी फूल पूजा की चौकी तक नहीं पहुंचे और उनमें से कुछ इधर उधर गिर गए। इसी प्रक्रिया में दो चार फूल हवन कुंड में भी गिर गए। ये देखकर डॉक्टर समीउल्लाह तुरंत उठे और उन्होंने अपने हाथों के जलने की परवाह न करते हुए फूलों को जलने से बचा लिया। डॉक्टर समीउल्लाह की इस हरकत से प्रोफेसर देवव्रत, कथा सुनने आए सभी लोग और तो और पंडित जी भी चौंक गए। फूल ईश्वर का उपहार है, इनको जलना नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूँ मैंने आप लोगों की पूजा में कोई व्यवधान नहीं डाला होगा। आपने एकदम ठीक किया, ये बात तो मुझे बोलनी चाहिए थी जो आपने कह दी, पंडित जी झेपते हुए बोले। फूलों को कभी भी जलना नहीं चाहिए। डॉक्टर समीउल्लाह का फूलों से विशेष लगाव था और उनका मानना था कि जीवित इंसान को फूल माला पहनाना तो फूलों का अपमान है। डॉक्टर समीउल्लाह के केबिन में माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा एक बड़े फ्रेम में जड़ित होकर टंगी हुई थी। कुल मिलाकर समीउल्लाह साहब जितने ज्ञानी थे उतने ही सनकी भी, लेकिन उनकी सनक में इंसानियत थी जो आज के जमाने में बिरले ही देखने को मिलती है। एक दिन डॉक्टर समीउल्लाह जब क्लास पढ़ाकर निकले तो उन्होंने देखा कि उनके फोन पर एक अनजान नंबर से कई सारी मिस्ड कॉल्स थीं। डॉक्टर समीउल्लाह अपने क्लास के दौरान आई प्रत्येक कॉल का जवाब अवश्य देते थे। उन्होंने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया जिससे उन्हें कई सारी कॉल्स आई थीं। उधर से फोन उठते ही वो बोले, जेएनयू से डॉक्टर समीउल्लाह बोल रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा क्लास में व्यस्त होने के कारण आपकी कॉल नहीं ले सका। कोई बात नहीं, उधर से आवाज आई, मैं प्रधानमंत्री कार्यालय से बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं, मैं आपको कनेक्ट करता हूँ। जी जरूर, डॉक्टर समीउल्लाह कौतूहल छुपाते हुए बोले। आखिर भारत का प्रधानमंत्री उनसे क्या बात करना चाहता है? जितनी देर में उनकी कॉल प्रधानमंत्री से कनेक्ट होती उतनी देर में डॉक्टर समीउल्लाह ने हर संभावना पर विचार किया। तभी लाइन पर प्रधानमंत्री आ गए। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपके आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूँ, पर्यावरण पर आपके चिंतन मनन से बहुत प्रभावित हूँ। आपका बड़प्पन है सर, आपसे थोड़ी मदद चाहिए, मना मत करिएगा, प्रधानमंत्री प्रार्थना के स्वर में बोले। डॉक्टर समीउल्लाह की वाणी की मिठास सामने वाले के स्वर में भी घुलने लगती थी। हुक्म करें सर, डॉक्टर समीउल्लाह बोले। दो दिन बाद मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहा हूँ और पर्यावरण मंत्रालय के लिए आपसे बेहतर व्यक्ति मेरी नजर में नहीं है। अरे नहीं सर, मैं तो एक अदना सा प्रोफेसर हूँ, इतने बड़े पद के लायक कहाँ हूँ। डॉक्टर समीउल्लाह सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि प्रधानमंत्री उन्हें इस आशय से फोन करेंगे। मैं आदमी को पहचानने में कभी गलती नहीं करता, आप मेरी इस काबिलियत पर शक मत करिए। डॉक्टर समीउल्लाह के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। दो दिन बाद डॉक्टर समीउल्लाह ने देश के कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ले ली। आमतौर पर सरकार के हर कदम की आलोचना करने वाली मीडिया ने सरकार के इस निर्णय की सराहना की। डॉक्टर समीउल्लाह ने वैज्ञानिक सोच के साथ पर्यावरण में सुधार लेने वाले निर्णय लेने शुरू किए। उन्होंने संबंधित मंत्रालयों जैसे खनन, पशुपालन और स्वास्थ्य के साथ कई साझा कार्यक्रम बनाए और उनकी पहल का असर कुछ ही दिन में दिखने लगा। काशी डॉक्टर समीउल्लाह का जन्म स्थान था और जितना समीउल्लाह काशी को अपना मानते थे उससे अधिक

0: प्रत्याशी समीउल्लाह पर अपना हक समझता था। पर्यावरण मंत्री बनने के तुरंत बाद ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति ने डॉक्टर साहब को न्योता दे दिया। आप हमारे भी गौरव हैं डॉक्टर साहब, हमें आपको सम्मानित करने का मौका मिलना ही चाहिए। BHU के कुलपति के प्यार भरे इसरार को समीउल्लाह साहब टाल नहीं पाए। मैं सोमवार को पहुंचता हूं बनारस, डॉक्टर समीउल्लाह ने अपनी स्वीकृति दे दी। काशी के एयरपोर्ट पर डॉक्टर समीउल्लाह के भव्य स्वागत की तैयारी थी। बैंड बाजा और ढोल सुबह से ही पहुंच गए थे। उनके कटआउट और तस्वीर वाले बैनर पूरे हवाई अड्डे पर लगे हुए थे। सत्तारूढ़ पार्टी के लोकल कार्यकर्ता भी बहती गंगा में हाथ धोने चले आए थे। मीडिया कर्मियों की फौज भी अपने कैमरामैन के साथ जुटी हुई थी। डॉक्टर समीउल्लाह का प्रसिद्धि और ख्याति से ये पहला साक्षात्कार था। संकोची स्वभाव के डॉक्टर समीउल्लाह इतना सब देख के थोड़ा घबरा भी गए। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। रेहाना जी ने अपने पति से शेर की मार्फत एक चुटकी ली। तभी समीउल्लाह साहब ने देखा कि एयरपोर्ट के आगमन गेट के बाहर कई सारे छोटे छोटे बच्चे उनका स्वागत करने को आतुर हैं। यूं तो बच्चे ये स्कूल यूनिफॉर्म में थे, लेकिन यूनिफॉर्म का साइज और बच्चों की असहजता को देखकर ये साफ लग रहा था यूनिफॉर्म उन्हें जबरदस्ती पहनाई गई है। डॉक्टर समीउल्लाह को देखते ही उन बच्चों के साथ आए सज्जन ने बच्चों को इशारा किया और बच्चे अपनी तोतली आवाज में जोर जोर से नारा लगाने लगे, काशी का सपूत है, पर्यावरण का दूत है। डॉक्टर समीउल्लाह को इस तरह के महिमा मंडन की न तो आदत थी और न ही ये सब उनके उसूलों पर खरा उतरता था, लेकिन उनके सब्र का बांध तब ढह गया जब स्कूली बच्चे उनकी तरफ माला लेकर आगे बढ़े। बच्चों के हाथ में फूल माला देखकर डॉक्टर समीउल्लाह की पत्नी रेहाना जी मुस्कुराई। उन्हें फूलों के प्रति डॉक्टर समीउल्लाह के भाव मालूम थे, लेकिन इस स्थिति में पति कैसे निपटेंगे ये वो देखना चाहती थी। मुझे माला मत पहनाओ, डॉक्टर समीउल्लाह बच्चों से बोले। बच्चों पर समीउल्लाह साहब की बात का कोई असर नहीं पड़ा और वो आगे बढ़ते गए। अब डॉक्टर समीउल्लाह ने अपने हाथ जोड़ लिए, बच्चों मैं माला नहीं पहनता। इतनी देर में बच्चों ने उन्हें घेर लिया। समीउल्लाह साहब वहां से हटकर थोड़ा तेज चलने लगे, लेकिन ये बच्चे भी कहां मानने वाले थे, वो भी तेजी में आ गए। काशी एयरपोर्ट पर उपस्थित लोगों को अजीब दृश्य देखने को मिल रहा था। आगे आगे देश के कैबिनेट मिनिस्टर और उनके पीछे हाथ में फूल मालाएं लिए बहुत से बच्चे। भागते भागते डॉक्टर समीउल्लाह अपने सुरक्षा घेरे से बहुत दूर निकल आए थे। वो थोड़ा झिक कर बोले, अजीब मुसीबत है, कह दिया ना मैं माला वगैरह नहीं पहनता। बच्चे डांट खाकर थोड़ा सकते में आ गए। तभी एक बच्चे ने उनको झुकने का इशारा किया। डॉक्टर समीउल्लाह जैसे ही झुके, उस बच्चे ने कान में कुछ फुसफुसाया और उसके बाद जो हुआ उसको देखकर रेहाना जी चौंक गई। समीउल्लाह साहब जमीन पर बैठ गए थे और सभी बच्चे बारी बारी से उन्हें माला पहना रहे थे। डॉक्टर समीउल्लाह की पत्नी आश्चर्यचकित थी। थोड़ी देर में ही डॉक्टर समीउल्लाह और रेहाना जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस पहुंच गए। सम्मान समारोह शुरू होने में अभी 1 घंटा है, आप लोग तब तक तैयार हो जाइए, मैं बाहर ही हूँ, कुलपति के ड्राइवर ने सामान रखते हुए कहा। आज आपने अपने असूल तोड़कर माला पहनी ही ली, ड्राइवर के जाते ही रेहाना जी बोली। वो कब से एकांत मिलने का इंतजार कर रही थी। राजनीति जो ना करवाए। हाँ, राजनीति जो ना करवाए, मैं कतई भी माला नहीं पहनता अगर उस लड़के ने मेरे कान में ये शब्द ना बोले होते। डॉक्टर समीउल्लाह की आंखें थोड़ा सा भर आई थीं। रेहाना जी अपने पति की आंखों में हुई हलचल से अनभिज्ञ थी। उसने बोला, अंकल किसी को बोलिएगा मत, पर हमसे कहा गया है कि आपको माला पहनाने पर हमको 10 रुपया और साथ में केला और शरबत मिलेगा। आप अगर माला नहीं पहनेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग सुबह से भूखे प्यासे इसी उम्मीद में खड़े हैं। अब तुम ही बताओ रेहाना, मैं क्या करता। रेहाना जी ने बरसों बाद अपने पति को गले लगा ली।
1: फूल तोड़ना मना है, ये कहानी अभी आप सुन रहे थे। कहानीकार थे श्री चंद्रशेखर वर्मा। इसके साथ ही आज का हिंदी कार्यक्रम का ये अंक अब यही संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है, सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में आनंद लीजिए नितिन मुकेश के गाए भजनों का।

अभी आप नितिन मुकेश की आवाज़ में कबीर दास की ये रचना सुन रहे थे। अब आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

चित्रपट से कार्यक्रम में लीजिए, आप सुनिए जीना तेरी गली में इस फिल्म का गीत। इस गीत में अनुराधा पौडवाल का साथ दिया है नितिन मुकेश ने।

0: अभी आपने लता मंगेशकर को सुना यादों की कसम फिल्म में। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और तर्ज बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

कुमार सानू और साधना सरगम के गाए दम लगा के हिस्सा फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से अब समाप्त होता है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल

0: 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचो सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
4: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
0: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
6: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ।
7: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।

0: terrorist entities, finances and sponsors.
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बतूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन

0: नामांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्रमोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Center constitutes high-level committee to address challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. Home Minister Amit Shah says anti-drone systems will be installed within 6 months. Quad nations launch inter-Pacific maritime surveillance collaboration, condemn terrorism in all its forms and manifestations. Government revises minimum assured procurement price of onion stocks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal.

1580 रुपए फी क्विंटल कर दिया है। खेलकूद के वजीर मनसुख मांडविया ने मुस्तकबिल के ओलंपिक गेम्स में योग आसन को शामिल करने पर जोर दिया है। अहमदाबाद अगले महीने पहले आलमी योग आसन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्रमोहन ने वियतनाम में मर्दों के फ्री स्टाइल मुकाबले में तलाई तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। मरकज ने दरअंदाजी और

0: आज बताया कि इस कमेटी की सदारत सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस प्रकाश भाग प्रभाकर नौलेकर करेंगे। मर्दमशुमारी के कमिश्नर के साथ साथ साबिक आईएएस अफसर दुर्गा प्रसाद मिश्रा, साबिक आईपीएस अफसर बालाजी श्रीवास्तव और माहिर माशियात डॉक्टर शमिका रवि को कमेटी के रुकन की हैसियत से मुकर्रर किया गया है। वजारत दाखिला में ज्वाइंट सेक्रेटरी गैर मुल्की एक कमेटी में मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। जनाब शाह ने कहा कि दरअंदाजी और दिगर वजूहात गैर कुदरती आबादियाती तब्दीली का बाइस बन रहे हैं, जो कि किसी भी मुल्क के हाल और मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गए हैं। उन्होंने कहा कि आबादियाती तब्दीली एक संजीदा मामला है जो न सिर्फ इकतदार आला बल्कि कौमी सलामती, अमन कानून, समाजी ढांचे में बड़ी तब्दीली और कबायली माशरे के तहफ़ के लिए भी एक संजीदा मामला है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ये आला सतही कमेटी पूरे भारत में होने वाली आबादियाती तब्दीली का जामे तौर पर जायज़ा लेगी, जो गैर कानूनी इमिग्रेशन और दीगर गैर फितरी वजूहात के बायस हो रही है। ये कमेटी मजहब और समाजी कम्युनिटीज़ की सतहों पर होने वाली गैर मामूली आबादी की मुंतकली के तौर तरीक़ों का भी जायज़ा लेगी और इसके लिए एक मनसूबाबंद और मुकर्रर वक्त में हासिल होने वाले हल पेश करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता साल लाल किले से यौम आज़ादी की अपनी तकरीर में आबादियाती तब्दीली से मुतालिक आला सतही कमेटी के बारे में ऐलान किया था।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: ये कमेटी एक साल के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अगर जरूरी हुआ तो इस कमेटी की मुद्दतकार में 6 महीने तक की तौसी की जा सकती है। आकाशवाणी से विष्णु की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि हुकूमत ड्रोन्स के जरिए मनशियात और हथियारों की स्मगलिंग को ख़त्म करने की गरज से आइंदा 6 महीनों के अंदर अंदर एंटी ड्रोन निज़ाम नसब कर रही है। राजस्थान के बीकानेर ज़िले में सांचू सरहदी चौकी पर सरहदी हिफाजती फोर्स के अमले से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि सरहद पार से उभरने वाले खतरात तो अहमियत के हामिल हैं ही, अलबत्ता मुल्क के अंदर इस तरह के खतरात की मदद करने वाले अंदरूनी अनासिर पर भी इतनी ही तवज्जो मरकूज़ की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो इस तरह के मामलात में मुलविस हों उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरहदी हिफाजती फोर्स बीएसएफ के रोल की आज ये कहते हुए सताइश की है कि फोर्स ने न सिर्फ मजबूती के साथ सरहद की हिफाजत की है बल्कि सरहदी अजला में रहने वाले लोगों के हौसले भी बुलंद किए हैं। उन्होंने सरहदी सलामती को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने की खातिर बीएसएफ, फौज, इंतजामिया और मुस्तैद शहरियों पर मुश्तमिल एक 4 सतही ग्रिड कायम करने पर जोर दिया। जनाब शाह आज राजस्थान के बीकानेर के नज़दीक बीएसएफ की सांचू पोस्ट पर प्रहारी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस 4 सतही ग्रिड से सरहदी हिस्से में दरपेश खतरात से पूरी ताकत के साथ निपटा जा सकेगा। क्वाड के वज़राए खारजा की मीटिंग के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि क्वाड ममालिक ने मगरबी एशिया की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया और खित्ते में देरपा अमन कायम करने के सिलसिले में जारी सिफारती कोशिशों की हिमायत करने का इरादा किया। क्वाड ममालिक ने आबनाए हुरमुज और बहर अहमर के रास्ते जहाज रानी के हकूक, आज़ादी, सलामती और आलमी तजारत के बिला रुकावट जारी रहने के ताल्लुक से बैन अलाक़वामी कवानीन की पाबंदी की अहमियत को दोहराया, जिसकी अक्कासी अक़वामे मुत्तहिदा के समंदर के कानून से मुतालिक कन्वेंशन में होती है। मीटिंग के अख्ताम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजारत खारजा में एडिशनल सेक्रेटरी के नागराज नायडू ने कहा कि मीटिंग में आज़ाद और

0: खुले भारत बहरुल काहिल के सिलसिले में क्वाड के अहद को दोहराया गया है। आज क्वाड ममालिक ने भारत बहरुल काहिल बहरी निगरानी के सिलसिले में इश्तराक का भी आगाज़ किया, जिसका मकसद बहरी सलामती के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करना है। जनाब नायडू ने कहा कि वज़राए खारजा ने सरहद पार दहशतगर्दी समेत हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मुश्तरका बयान में पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 रोज़ा दौरे पर आज सिक्किम पहुंची हैं। उन्होंने तैप्तोलोगी के ऑर्किडोरियम और नामग्याल इदारे का दौरा किया। गवर्नर ओम प्रकाश माथुर, वज़ीर-आला प्रेम सिंह तमांग और दिगर सरकर्दा शख्सियात ने सदर जमहूरिया का खैरमकदम किया। कल सदर जमहूरिया नाथुला पास जाएंगी और सिक्किम यूनिवर्सिटी के जलसे तकसीम असनाद में भी शिरकत करेंगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने प्याज की कम अज़ कम यकीनी ख़रीदारी की कीमत MAPP को 1,270 रुपये फ़ी क्विंटल से बढ़ाकर 1,580 रुपये फ़ी क्विंटल कर दिया है। नज़रसानी शुदा MAPP रियासी सरकारों की दरख्वास्त पर की गई है। इसका इतलाक आज से होगा। इस सिलसिले में सार्फीन के उमूर, खुराक और अवामी निज़ाम तकसीम के वज़ीर प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में सार्फीन के उमूर के महकमे और भारत की कौमी ज़रई कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड नेफेड और भारत की कौमी कोऑपरेटिव सार्फीन की फेडरेशन NCCF के हुक्काम के साथ एक मीटिंग की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब जोशी ने कहा कि ये मीटिंग मियारी प्याज के ज़खीरों की मुआसिर ख़रीदारी की राह हमवार करने और किसानों को बेहतर आमदनी हासिल करने को यकीनी बनाने के लिए की गई थी। शाहराहों और नकलो हमल के वज़ीर नितिन गडकरी ने मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए हासिल शुदा रिपोर्टों पर मबनी कौमी शाहराहों के प्रोजेक्टों के मेयार और देख रेख की पेशरफ्त का जायज़ा लिया, जिसमें पंजाब में 4,000 किलोमीटर से ज़्यादा और दिल्ली और हरियाणा में 3,000 किलोमीटर से ज़्यादा शाहराहों का अहाता किया गया है। नई दिल्ली में एक जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब गडकरी ने हाईवे प्रोजेक्टों के ज़मीनी कामकाज को तेज़ करने की ज़रूरत और काम को वक्त पर मुकम्मल करने को यकीनी बनाने पर जोर दिया। वज़ीर मौसूफ ने तमाम प्रोजेक्टों वाले हिस्सों पर मानसून की पेशगी तैयारी के इकदाम करने के लिए भी हुक्काम को हिदायत दी। नौजवानों की उम्र और खेलों के महकमे के वज़ीर मनसुख मांडविया ने आज कहा है कि 2036 तक खेलों की मेज़बानी की भारत की दावेदारी को जहन में रखते हुए आइंदा ओलंपिक्स खेलों में योगा आसन को शामिल किए जाने पर जोर दिया जाएगा। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मांडविया ने कहा कि आइंदा माह की 4 से 8 तारीख तक अहमदाबाद पहली आलमी योगा आसन चैम्पियनशिप की मेज़बानी करेगा, जो मुल्क के सेहत के सिलसिले में इस रवायती तरीक़ेकार को खेलों के आलमी डिसिप्लिन के तौर पर कायम करने की जानिब एक अहम कदम होगा। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि योगा आसन से मुल्क की सॉफ्ट पावर की अक्कासी होती है और यह दुनिया भर में जिस्मानी तंदुरुस्ती, जहनी सेहत और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग देने के एक अहम वसीले के तौर पर उभर रहा है।
1: 4 जून से 8 जून तक फर्स्ट वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप का आयोजन भारत में अहमदाबाद में हो रहा है। 75 से अधिक देश के 500 से अधिक एथलीट्स उसमें पार्टिसिपेशन करेंगे। अभी प्रारंभ भारत से कर रहे हैं और सारी दुनिया के अलग अलग कंट्री में उसको भविष्य में करा जाएगा। भारत में कॉमनवेल्थ का जब आयोजन करा जाएगा तब उसमें स्वदेशी स्पोर्ट्स के रूप में योगासना को भी स्थान दिया जाएगा।
0: उन्होंने कहा कि तकरीबन 75 मुल्कों ने योगा आसन चैंपियनशिप के लिए इंदराज कराया है और दुनिया भर से 5,000 से ज़्यादा शुरका के हिस्से में हिस्सा लेने का इम्कान है। तकरीब के दौरान वज़ीर मौसूफ ने पहली आलमी योगा आसन चैंपियनशिप 2026 के लिए मास्कट, जर्सी और चैंपियनशिप फिल्म का भी आगाज़ किया। भारत समेत दुनिया भर के लाखों आज़मीन हज अहम तरीन मनासिक हज की अदायगी के लिए आज सऊदी अरब के मैदान अरफात में जमा हुए। तमाम आज़मीन हज सफ़ेद अहराम बांधे हुए थे, जिन्होंने खुतबे हज की समात की और मस्जिद निबरा में एक साथ जुहर और असर की नमाज अदा की। अब तमाम हुज्जाज कराम मुज़दलिफा के लिए रवाना होंगे और एक साथ मगरिब और ईशा की नमाज अदा करेंगे। हुज्जाज कराम रमी जमरात के लिए कंकरियाँ भी इकट्ठा करेंगे। वो मुज़दलिफा में खुले आसमान के नीचे रात गुजारेंगे। इसके बाद वो कल सुबह मीना वापस पहुंचेंगे, जहां वो कुर्बानी का फरीजा अंजाम देंगे और रमी जमरात करेंगे। इस साल 1,75,000 से

0: भारतीय हुजाज कराम फरीज हज अदा कर रहे हैं। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में शदीद से बहुत शदीद गर्मी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, साहली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान गर्मी में तेजी आने की भी पेशगोई की है। भारत ने चीन और पाकिस्तान के मुश्तरका बयान में जम्मू कश्मीर के मरकज के जेर इंतजाम इलाके से मुतालिक बेबुनियाद हवालों को वाज़े तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इन बेबुनियाद हवालों से मुतालिक मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि मुतालिका फरीकैन के लिए भारत का मौकफ कतई, वाजह और अच्छी तरह जाना पहचाना है। उन्होंने कहा कि मरकज़ के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अटूट हिस्से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तर्जुमान ने कहा कि सूरत हाल पर तबसरा करने का किसी भी दूसरे मुल्क को कोई हक नहीं है। आज वियतनाम के दनांग में 23 साल तक की उम्र की कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती खिलाड़ियों ने अपनी शानदार कारकर्दगी का सिलसिला बरकरार रखा और मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के 2, चांदी के 2 और कांसे का 1 तमगा जीता। 65 किलोग्राम जुमरे में मोहित कुमार ने किर्गिस्तान के खिलाड़ी को 12-4 से हराकर सोने का तमगा जीता। 79 किलोग्राम के जुमरे में चंद्रमोहन ने भी कजाकिस्तान के कुश्ती खिलाड़ी के साथ एक सनसनीखेज मुकाबले में उसे 7-6 से शिकस्त दी। इस दौरान 92 किलोग्राम के जुमरे में पुनीत कुमार ने चांदी का तमगा जीता। 125 किलोग्राम के जुमरे में भी भारत को चांदी का तमगा मिला। बैडमिंटन में आज ओलंपिक में 2 बार तमगा हासिल करने वाली पीवी सिंधु और भारतीय मर्दों की डबल की जोड़ी सत्विक साईराज, रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन के 16वें राउंड में पहुंच गए हैं। खवातीन के सिंगल्स मुकाबले में सिंधु ने इंडोनेशिया की पुत्री कुसुमा वारदानी को 21-17 और 21-18 से हराकर टूर्नामेंट के 2रे राउंड में पहुंच गई हैं। आखिर में खास खास खबरें एक बार और। मरकज ने दरअंदाजी और दिगर वजूहत के बायस होने वाली आबादियाती तब्दीली के चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि एंटी ड्रोन निज़ाम 6 महीने के अंदर अंदर नसब कर दिए जाएंगे। क्वाड मुल्कों ने भारत बहरुल समंदरी निगरानी ताउन का आगाज किया है। उन्होंने हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत की है। हुकूमत ने प्याज की कम अज कम यकीनी खरीदारी की कीमत MAPP को 1,270 रुपये फी क्विंटल से बढ़ाकर 1,580 रुपये फी क्विंटल कर दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुनिए फिल्म संगीत का फोन इन कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद।

दिल की बात कहनी हो या कोई गीत सुनाना हो, किसी को याद करना हो या दिल हल्का बनाना हो, लाइनों में नहीं अब आवाज़ से जुड़ते हैं रिश्ते। फ़ोन उठाइए और हमारे साथ बांटिए अपने जज्बात के किस्से। आज के हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आपका रेडियो साथी पंकज शुक्ला, आप सभी को मेरा नमस्कार।

दोस्तों, अब बारी है आपकी पसंद के नगमे की। वो कौन सा गीत है जो आपके दिल के सबसे करीब है? जल्दी से फोन उठाइए और हमें बताइए। हमारा फोन नंबर है 0522-223-8825। जी हाँ, फोन नंबर वही 0522-223-8825। और आइए बात करते हैं हमारे आज के पहले श्रोता से, जो हमारे साथ फोन

0: लाइन पर जुड़ गए हैं। हेलो,
1: हेलो पंकज जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना परिचय बताएं।
1: सत्यम बात कर रहा हूँ, कानपुर से। हाँ,
0: सत्यम जी, बहुत बहुत स्वागत है, और आज आप हमारे पहले कॉलर हैं हेलो मेरी पसंद
1: मैं
0: कार्यक्रम
1: अभी
0: में।
1: प्रोग्राम सुन रहे थे रेडियो पे, अभी बात भी कर रहा हूँ लाइव, और रेडियो भी चल रहा है आकाशवाणी लखनऊ मीडियम एंड पे, तो
0: जी
1: बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि गर्मी का मौसम आया है, तो गर्मी के मौसम में सर जी कहना चाहता हूँ, ये टिप्स बताना चाहता हूँ। गर्मी के मौसम में जैसे सिकंजी का सिकंजी है, जैसे नींबू पानी है, उसके साथ सेवन करना
0: बिल्कुल
1: चाहिए।
0: सही बात है
1: पानी
0: कि
1: पानी ज़्यादा पीना पीना चाहिए।
0: हमें
1: अभी तो
0: पानी,
1: मौसमी फल चल रहे हैं, तब खीरा है, ककड़ी है, खरबूजा है, कलिंगे हैं, तो ये चीज़ इनका सेवन करना
0: जी
1: चाहिए।
0: सही
1: ज़्यादा
0: बात है सत्यम
1: ज़्यादा
0: जी,
1: पानी पीना चाहिए, और जैसे पक्षी अच्छी हो तो उनको पानी रखना चाहिए, और भैंस भैंस जानवर हैं तो उनको चारा पानी ख्याल से
0: जी
1: खाना चाहिए, ये कहना चाहता
0: चलिए
1: हूँ।
0: चलिए, उम्मीद करते हैं कि
1: और
0: सत्यम जी आपकी
1: गर्मी का
0: बात को
1: मौसम
0: जो है
1: तो ऐसे
0: हमारे
1: ही है,
0: सभी
1: कहीं
0: श्रोता जो है
1: तापमान ज्यादा है, कहीं कम
0: ध्यान
1: है,
0: रखेंगे।
1: तो
0: और
1: दिक्कत होती है
0: सत्यम जी,
1: गर्मी
0: आज
1: में।
0: इस कार्यक्रम में कौन सा गाना सुनना चाह रहे हैं?
1: गाना सुनवा दीजिए सर जी, फिल्म का नाम है विश्वात्मा, गाने बस सात समंदर पार, तेरे पीछे तीन नखलों के पीछे पीछे आ गए, कि पंकज शुक्ला
0: चलिए
1: ये आवाज़
0: बिल्कुल
1: इतनी मिठास है, आप पता ना क्या खाते हो सर जी, आपकी आवाज़ में क्या
0: सत्यम
1: जादू
0: जी,
1: है,
0: जो
1: श्रोता खींच चले जाते हैं आपकी आवाज़ में।
0: चलिए सत्यम जी, आपने हमें कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत, विश्वात्मा फिल्म से सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई।

0: अभी आपने विश्वात्मा फिल्म का ये गीत सुना जिसकी फरमाइश हम तक भेजी थी सत्यम जी ने, और अब देखते हैं हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे कौन श्रोता जुड़े हुए हैं। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना परिचय बताएं।
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश।
0: राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं और लगातार आपका कॉल लगता रहता है और आप हमसे बात करते रहते हैं, कार्यक्रम में जुड़ते रहते हैं, चाहे वो।
1: जी, मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपका नियमित श्रोता भी हूँ, लेकिन मैं सिर्फ मेरे लिए हेलो फरमाइश सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है जितना जो हमारे लिए जो जो किसानों के लिए जो जानकारी आती है, जो बुधवार को 6:30 बजे आती जो हमारे जो जो सुशील कुमार राय पेश करते हैं, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करता रहता हूँ।
0: जी, लेकिन आपसे जो है हमारी बात जो है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें कार्यक्रम में भी होती रहती है, और
1: जी,
0: आज
1: जी,
0: आपने
1: जी,
0: जो है हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में भी
1: लगती रहती है, और आपका जो लखनऊ विविध भारती उसमें मैं जो आकाशवाणी में इतना शौक है मुझे आकाशवाणी से जुड़ना, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गाने तो हम YouTube पे अब की डेट में सुनते हैं, लेकिन जब आकाशवाणी में जब अपनी आवाज पहुंचती है तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ लखनऊ के जो आज नहीं
0: बात है,
1: पूरा देश जो है AIRF के माध्यम से और DTH के माध्यम से सभी सुन रहे, तो बहुत अच्छा लगता है कि
0: चलिए राकेश जी
1: के सामने रख रहे।
0: हाँ, आप जो है हमारे साथ जुड़े रहते हैं और खेती किसानी वाले कार्यक्रमों में जो आपको जो है जानकारी मिलती है उससे आप लाभान्वित होते हैं, ये जान के बहुत अच्छा लग रहा है। और आज इस कार्यक्रम में आप कौन सा गाना सुनना चाह रहे हैं?
1: आज गाना सुना है, फिल्म का नाम है साजन के भाव में, तो गाने के बोल हैं क्योंकि हम आप लखनऊ के करीब रहते हैं, तो ये गाना सुनना चाहूंगा, आपके करीब हम रहते हैं।
0: बिल्कुल, जाहिर सी बात है राकेश जी, हम भी आपके करीब रहते हैं, आपके दिल में रहते हैं, और आपकी पसंद का ये गीत आप तक पहुंचा रहे हैं जो आ रहा है अब आपके रेडियो सेट पर। एंजॉय करिए आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी, धन्यवाद
0: कॉल करने के लिए शुक्रिया।

0: आकाशवाणी लखनऊ से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का फोन इन कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। जो श्रोता इस कार्यक्रम में हमसे अभी अभी जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि इस कार्यक्रम में हमसे बातें करने और अपनी पसंद का फिल्मी गाना सुनने के लिए आपको मिलाना है हमारा फोन नंबर 0522-223-8825। तो जल्दी से मिलाइए हमें फोन इस नंबर पर, हमें आपके फोन का इंतजार है। और देखिए नंबर बताते ही हमारे आज के अगले कॉलर हमसे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, तो उनसे बातें करते हैं। हेलो।
1: हेलो, नमस्ते सर।
0: नमस्ते, अपना परिचय बताएं।
1: मैं कृष्णपाल परमार, छाइन मीना, सोनपुर तहसील देवा जिला मध्य प्रदेश से।
0: कृष्णपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका।
1: सर पहली बार लगाया फोन इस कार्यक्रम में, काफी दिन से प्रयास कर रहे थे।
0: चलिए तो देखिए, आपने प्रयास किया और आपका प्रयास जो है सार्थक हो गया, आपका मेहनत रंग लाई है।
1: उसमें आपसे बात हुई एक आध दो
0: जी। हाँ, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें कार्यक्रम में आपसे हमारी बात हो गई है, लेकिन हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में आज आपका पहली बार कॉल लगा, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई।
1: सर आज गाना सुनवा दीजिए, एक फूल दो माली पिक्चर का गाना है
0: जी। कौन सा गाना आप सुनना चाह रहे हैं?
1: पर्दा हटा दो, ये मुकड़ा दिखा दो।
0: चलिए पर्दा भी हटा देते हैं और आप जो गाना सुनना चाह रहे हैं वो गाना भी आपको सुनवा देते हैं। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में आप तक ये गाना पहुँच रहा है, आप एंजॉय करिए आपकी पसंद का ये गीत जिसकी फरमाइश आपने हम तक भेजी है। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और सुनिए अब आपकी पसंद का ये गीत, एक फूल दो माली फिल्म का ये गीत है।

हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अब समय है हमारे आज के अगले कॉलर से बात करने का। हेलो, लग रहा है उनसे हमारा संपर्क कट गया है। चलिए कोई बात नहीं है, जब तक हमारे अगले कॉलर हमसे लाइन पर जुड़ते हैं तब तक आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: आकाशवाणी लखनऊ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद, और आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर जो हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं वो कौन हैं और कहां से उन्होंने हमें कॉल किया है। हेलो।
1: हेलो,
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। अपना परिचय बताएं।
1: सर, मैं जिला मुरादाबाद ग्राम मिलक भूजपुरा सा बड़ी मस्जिद के पास से राजा हुसैन बोले सर जी।
0: रजा हुसैन जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आज आपका पहली बार इस कार्यक्रम में कॉल लगा है?
1: नहीं सर, पीछे भी एक आध दो महीना पहले लगा था कॉल।
0: चलिए, मतलब आप जो है दूसरे लोगों को मौका देने के लिए थोड़ा सा जो है रुक जाते हैं और दूसरे लोगों को जो है मौका देते हैं कि कार्यक्रम में उनका भी कॉल लगे, ये बहुत अच्छी बात है आपकी। रजा हुसैन जी, आज इस
1: कर श्रोताओं से ये कहूँगा दो महीने का गैप ले लिया कर
0: जी। बिल्कुल, हम भी अपने सभी श्रोताओं से कहते हैं कि जिनका कॉल आज लग गया है वो कुछ दिन जो है बाद हमें दोबारा कॉल करें, ताकि हमारे नए श्रोताओं को भी जो है इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने और हमसे बात करने का मौका मिले।
1: जी बिल्कुल सर जी।
0: चलिए रजा हुसैन जी, आज इस कार्यक्रम में हम आपको कौन सा गाना सुनवाएं?
1: गाने के बोल रहेंगे मैं दिल का आलम मैं क्या तो बताऊं तुझे।
0: चलिए, कुमार सानू की आवाज़ में ये
1: नाम बोलूं सर जी?
0: जल्दी से बोल लीजिए
1: जी। ये नजमा से बिश्नोई अग्रवाल है, मकसूद हुसैन है, लाल मोहम्मद अंसारी है, दोस्त आप और हम।
0: चलिए ठीक है, बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें कॉल किया। और अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत, आशिकी फिल्म से है कुमार सानू की आवाज़ में। इंजॉय करिए आपकी पसंद का ये गीत जो आ रहा है अब आपके रेडियो सेट पर।

0: बातों बातों में कब वक्त गुजर गया, बातों बातों में कब वक्त गुजर गया, हर जज्बा हर गाना दिल में उतर गया। आपकी आवाज़ से आज महक उठा ये जहां, जैसे रेडियो पर बज उठी दिल की दास्तां। तो दोस्तों, आज के इस खूबसूरत सफ़र को यहीं देते हैं विराम, लेकिन इस वादे के साथ अगली बार फिर जुड़ेंगे आपकी आवाज़ और आपकी पसंद के नगमों के साथ। तब तक मुस्कुराइए, गुनगुनाइए और सुनते रहिए आकाशवाणी लखनऊ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी लखनऊ है। राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम खेल दर्पण। प्रस्तुति आकाशवाणी प्रयागराज की है।
1: खेल दर्पण, खेल दर्पण, खेल दर्पण।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं अभय कांत तिवारी स्वागत करता हूं आपका कार्यक्रम खेल दर्पण में। आज के अंक में आप सुनेंगे अर्जुन पुरस्कार विजेता जिमनास्ट आशीष कुमार से सुंदरम तिवारी की भेंटवार्ता और हैमर थ्रो खेल चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित हैमर थ्रो खिलाड़ी चंद्रोदय नारायण सिंह से भूपेंद्र मिश्र की बातचीत और अंत में सुनेंगे इस सप्ताह के खेल समाचार।
3: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं सुंदरम तिवारी और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने न केवल प्रयागराज बल्कि भारत को भी स्वयं पर गर्व करने के कई अवसर दिए हैं। प्रयागराज के जाने माने अर्जुन अवार्डी जिमनास्ट श्री आशीष कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्टूडियो में।
4: धन्यवाद।
3: आशीष जी, एक बड़ी प्रचलित कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। एक जो आम माता पिता है वो अपने बच्चों से ये बात कहते हैं एक उम्र में, लेकिन आपको देखकर लगता है कि आपने इस कहावत को झुठला दिया।

0: कितना मुश्किल था ये डिसाइड करना, या कितना आसान था आपको अपने माता पिता को कन्विंस करना कि मैं एक खेल को अपने प्रोफेशन के तौर पे चुनूंगा? कैसे आपने कन्विंस किया था अपने माता पिता को?
1: देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर खेल का अपना अलग नेचर होता है, अपनी अलग प्रतिक्रिया होती है। जहाँ तक बात है जिम्नास्टिक की, तो जिम्नास्टिक्स में क्या है कि बच्चों की जो प्रशिक्षण है वो बहुत कम उम्र से स्टार्ट होती है। तो बच्चों का जो ट्रेनिंग है, जो एक्चुअल एज है जिम्नास्टिक में, वो 4 साल मानी गई है। अच्छा, उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि हमारे गेम में क्या है, स्ट्रेंथ के साथ साथ आपके शरीर का लचीलापन, जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। 50% स्ट्रेंथ, 50% फ्लेक्सिबिलिटी, ये होना बहुत जरूरी है।
0: अच्छा,
1: तो जब बच्चा छोटा होता है, आप कभी भी ऑब्जर्व करिएगा, छोटे बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी
0: बहुत होती है,
1: क्योंकि अभी उनकी शरीर विकसित हो रही है, हड्डियां लचीली हैं। आपने देखा होगा कि मटका होता है, जब बनता है, तो वो आपके हाथ में होता है, आप उसको जिस शेप में ढालेंगे वो ढल जाएगा। तो जिम्नास्टिक को मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स इसीलिए कहा जाता है कि जिम्नास्टिक्स में जो बच्चा ढल जाता है, वो कोई भी गेम हो, वो अच्छा ही करेगा। इसीलिए आप देखिए, कई ऐसी कंट्रीज है, स्पेशली चाइना, जहाँ पे जिम्नास्टिक कंपलसरी है कि बच्चों को पहले 5 साल जिम्नास्टिक करानी ही करानी है।
0: आपके केस में किसने निर्णय लिया? आपने निर्णय लिया कि मुझे खेलना है, या आपके फादर मदर, जो आपके पेरेंट्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में भेजूंगा?
1: ऐसा था कि मैं 4 साल का था, मेरे फादर रेलवेज में थे, वो गाजियाबाद पोस्टेड थे।
0: अच्छा।
1: उनको तो पता भी नहीं था कि मेरा एडमिशन हुआ है। 1992 में नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी जिम्नास्टिक का सेंटर, जो बॉयज के अंदर है, वो खुला, तो वहां से ये शुरुआत हुई। मेरे भाई ने मेरा एडमिशन कराया जिम्नास्टिक हॉल में
0: जी,
1: और मेरे फादर को नहीं पता था। मेरे फादर को बहुत बाद में पता चला कि मैं जिम्नास्टिक जाता हूँ। तो इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई जिम्नास्टिक की।
0: क्या बात है। जिम्नास्टिक में आपने जैसे बताया कि मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स कहा जाता है, लचीलापन, फुर्ती जरूरी होती हैं। 2006 सूरत, जो पहला पदक शायद आपको मिला
1: जी,
0: पहली सफलता, जब किसी न्यूज़पेपर ने आपका नाम शायद पहली बार छापा, एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, थोड़ा सा उस मोमेंट के बारे में हमें बताएं, जब पहली बार आपको लगा कि आप आशीष कुमार से एक सेलिब्रिटी आशीष कुमार के रूप में परिवर्तित हो गए।
1: ये 2006 मेरा सीनियर का पहला कॉम्पिटिशन था।
0: अच्छा।
1: और बहुत लोगों को पता ही नहीं कि जो मैंने 2006 में खेला था, एक्चुअल में मेरी जो एज थी
0: जी,
1: उस टाइम पे जूनियर की थी।
0: अच्छा।
1: बट मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, बेटर थी, इम्प्रूव्ड थी, तो मुझे सीनियर खिलाया गया। और 2006 एशियन चैंपियनशिप से मेरा पहला सीनियर में जो कंपटीशन था, वो कॉमनवेल्थ गेम्स का था।
0: अच्छा।
1: वहां से मुझे एक एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि क्या होता है, जब आप खेलते हैं तो आपको पता चलता है, अरे ये इतना बड़े लेवल का कंपटीशन है। फिर 2006 एशियाई चैंपियनशिप जो सूरत में हुई थी
0: जी,
1: भारत के पास इससे पहले सीनियर एशियन कैटेगरी में कोई भी मेडल नहीं था। हम वहां गए, ट्रेनिंग की, और आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि वहां पे फ्लोर एक्सरसाइज, जिसपे मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था, 2006 में ये हुआ, और 2008 ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट भी आया हुआ था, जिसने 2008 में गोल्ड लिया है फ्लोर पे।
0: अच्छा।
1: तो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था, बट सबसे अच्छी चीज, नर्वस नहीं था, एक एंजाइटी थी, डर था। और जब मैं फाइनल में पहुंचा, इंडिया से अकेले मैं ही फाइनल में पहुंचा था
0: जी,
1: और फ्लोर इवेंट मेरा बेस्ट इवेंट है उस पे था, इंडिया क्राउड, मैंने पहली बार देखा कि इंडिया में जिम्नास्टिक का कॉम्पिटिशन हो रहा है, और मोर देन आई थिंक 3,000 to 4,000 पब्लिक उस स्टेडियम में थी, और बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट था इंडिया में। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था इंडिया में इतना बड़ा कंपटीशन खेलने का।
0: अच्छा।
1: जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की एंग्जाइटी को कंट्रोल करके, और जब मेरा मेडल आया तो वो मतलब बड़ा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला मेरे लिए एक्सपीरियंस था। एज कम थी तो मुझे इन सब चीज़ों का मतलब नहीं पता था कि पहला मेडल जो जीतता है तो कैसा फील होता है। बस मेरे लिए था कि मैंने मेडल जीत लिया, मैं बहुत खुश था, क्योंकि कम एज में बच्चों का माइंड दूसरे तरीके से काम करता है।
0: बिल्कुल।
1: अब मैं सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार, कंट्री का पहला मेडल एशियन चैंपियनशिप में सीनियर में, एक बहुत बड़ी बात होती है।
0: निश्चित रूप से बड़ी बात होती है। 2010 राष्ट्रमंडल खेल, फिर 2010 का ही ज्वांग खेल, 2011 का ढाका दक्षिण मध्य एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, और फिर 2011 में भारत का जो सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जब मिला आपको, वो क्षण कैसा था?
1: देखिए, अर्जुन पुरस्कार जिस समय मिला, अब उसको मेरा बैड लक कह लीजिए, जिस टाइम पे अर्जुन पुरस्कार मिलना था, उस समय हम लोग लंदन में कैंप कर रहे थे।
0: अच्छा।
1: क्योंकि उसी साल ओलंपिक से क्वालिफिकेशन होने थे जापान में, और सेम टाइम पे ही, क्योंकि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं, राष्ट्रपति भवन में मिलता है, तो मेरे लिए एक बड़ा ही चैलेंज उस समय आया, क्योंकि मेरी पूरी टिकट्स बुक थी इंडिया आने की। अब मेरे सामने

0: दुविधा ये थी कि जिस डेट में ये पुरस्कार वितरण होने थे उसी डेट के एक दो दिन गैप में वर्ल्ड कप होने थे बेल्जियम
1: अच्छा
0: में। मेरे लिए चैलेंज ये था कि अगर मैं इंडिया ट्रैवल करता हूँ तो देखिए आप इतनी दूर से इंडिया ट्रैवल करेंगे, एक दिन आपको लेने में लगेगा और फिर सेम डे आपको वहीं से डायरेक्ट बेल्जियम जाना पड़ता, तो मेरा बीच का जो ट्रेनिंग था वो छूटता,
1: अच्छा
0: आपको वहाँ पर ट्रेनिंग करने का टाइम नहीं मिल पाता।
1: जी
0: तो उस टाइम पे मैंने कंपटीशन को सेलेक्ट किया क्योंकि मेरे लिए उस समय वो ज़रूरी था, वो मेरा एक सेक्रीफाइस था जिसको मैं मिस करता हूँ, क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ऑनर लेना अपने आप में एक ऑनर की बात है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: लेकिन जैसा मैंने बोला उस टाइम पे मैं एज अ प्लेयर, तो मेरे लिए डिसीजन ये था कि ये कॉम्पिटिशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से जाके हमारा आगे के ओलंपिक्स के रास्ते खुलेंगे, तो वहाँ पे मैं उसमें नहीं गया था। फिर इंडिया आने के बाद उस समय जो आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे अजय माकन, उनके थ्रू मैंने अपना अवार्ड लिया, बट उनसे भी वो अवार्ड लेना मेरे लिए बड़ा प्रेस्टिजियस था क्योंकि
1: जी
0: जब छोटा था तो मैं सुनता था कॉमनवेल्थ मेडल, अर्जुन अवार्ड, मतलब लगता था कि ये वाकई बहुत बड़ी चीज है। क्या होता है जब आपके पास कुछ नहीं और सामने वाले के पास बहुत उपलब्धियां हैं, तो आप जब उसको देखते हैं ना, तो कई बार अगर आपको लगता है मैं कैपेबल हूं तो आप उस चीज को फील कर पाते हैं कि जब वो
1: बिल्कुल
0: चीज हमारे नाम से जुड़ती है तो आपको वो 100 करोड़ जनता से ना अलग कर देती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अर्जुन अवार्ड मिलने के बाद जब आप प्रयागराज आए, जो मित्र थे, माता पिता, उनकी प्रतिक्रियाएं कैसी रहीं?
0: क्या होता है नॉर्मली अपने जिम्नास्टिक में जब कोई मेडल लेता है तो लोग जाते हैं,
1: जी
0: एक नॉर्मल भीड़ होती है। हम ट्रेन से आ रहे थे, मैं थे, मेरे फादर, मदर और डॉक्टर यूके मिश्रा,
1: जी
0: हम सब साथ में ही ट्रेन से वापसी कर रहे थे और मुझे लगा कि बड़ा मेडल है, लोग होंगे, बट लिटरली जब ट्रेन जंक्शन पे लगने लगी, आप सोचिए मुझे 300 मीटर दूर से ही ना ढोल नगाड़े की आवाज़ आने लगे,
1: क्या बात है।
0: तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट हुआ, मुझे लग रहा लोग आए हैं, बट लिटरली जब मैंने इंटर किया मुझे इतना क्राउड दिखा, इतना क्राउड, मुझे लगा यार ये तो कुछ ज्यादा ही भीड़ है, मतलब एक्सेप्शनल क्राउड, पूरा स्टेशन भरा हुआ था।
1: जी
0: मैं अपना पैर स्टेशन पे रख ही नहीं पाया, निकलते ही गोदी में लेके मुझे मिश्रा सर को, जो मेरे कोच थे, डीके राठौर, माले पे माला, और कोई भीड़ से निकल के कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, यंग्स बच्चे जो नए ज्वाइन किए हुए थे, और स्टेशन पे बाकी लोग, क्योंकि बहुत से लोग ट्रेन पकड़ने आते हैं उनको नहीं पता, लेकिन जब उनको भी पता चल रहा था तो वो भी क्राउड में सम्मिलित हो रहे थे,
1: जी
0: वो भी देखना चाह रहे थे कि भाई पहला मेडल जिसने लिया है कौन है। तो वो मेरे लिए मेरे लाइफ टाइम का एक बड़ा मेमोरेबल मोमेंट है।
1: आपकी इस अचीवमेंट से हटके अब आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। एक खिलाड़ी होने के नाते आपका जो ज्यादातर समय होगा वो निश्चित रूप से आप अपनी प्रैक्टिस पे देते होंगे। एकेडमिक्स, जो आपकी एजुकेशन थी, वो कैसे आप उसमें एजुकेशन और अपनी प्रैक्टिस में बैलेंस बनाते थे?
0: जिम्नास्टिक्स में जैसे मैंने बताया मैं नर्सरी में था जिस समय मैंने ज्वाइन किया, मैं 4 साल का था,
1: अच्छा
0: तो क्या होता है नर्सरी प्रेप ये फिर भी मैनेजेबल होती है स्टडी।
1: हाँ
0: जब 2013 में मैंने अपना पहला इंटरनेशनल खेला टूलिट पीटर कप हंगरी बुडापेस्ट में,
1: अच्छा
0: उसको खेलने के बाद क्या होता है अंडर 14 जब आप खेलने लगते हैं तो आपका ट्रेनिंग बर्डन बढ़ने लगता है, और जिम्नास्टिक्स में हम लोगों की सुबह की ट्रेनिंग 4 बजे से होती है,
1: अच्छा
0: शाम को भी, मतलब एक दिन में 7 से 8 घंटे ट्रेनिंग होती थी। 2013 के बाद मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मैं कई बार ऐसा भी होता था कि हफ्ते में 2 दिन ही स्कूल जाता था,
1: अच्छा
0: बट इंटरनेशनल खेलने के बाद मैं आपको बताऊं मैं नर्सरी से लेके 8 तक राजापुर में एक स्कूल है वहाँ की प्रिंसिपल ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया उस टाइम
1: अच्छा
0: पे। और फिर देखिए 2013 अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बैक की बात है, फिर स्कूल्स को क्या रहता है ना उनको एक्सपेक्टेशंस कम होती है कि स्कूल से कोई बच्चा निकल के यहाँ तक जा सकता है, वो भी जिम्नास्टिक जैसे स्पोर्ट्स में, क्योंकि जिम्नास्टिक्स को उस समय उतनी वो नाम नहीं मिला
1: हाँ
0: था,
1: उतनी पॉपुलरिटी
0: हाँ
1: नहीं थी इंडिया
0: पॉपुलरिटी
1: में।
0: नहीं थी, लेकिन जब मैं खेल के आया वहाँ से मैंने लगभग 5 मेडल जीते थे, तो स्कूल्स वाले काफी सपोर्ट करते थे और
1: कुल मिला के तालमेल बन गया
0: तालमेल बन
1: बन
0: गया।
1: गया। आशीष जी, एक सीनियर प्लेयर के रूप में आप उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो बच्चे स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं?
0: जो यंग बच्चे हैं
1: जी
0: स्पेशली 4 से लेके 10 साल 12 साल तक के
1: जी
0: बच्चे, उनको डेफिनेटली स्पोर्ट्स में आना चाहिए, क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रहा है।
1: अच्छा
0: अभी गवर्नमेंट ने, अब देखिए खेलो इंडिया स्कीम्स है,
1: जी मैं ये बात पूछना ही चाह रहा था कि जो बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए क्या संभावनाएं हैं, और सरकार की तरफ से जो छोटे शहर हैं, बड़े शहरों में तो जो व्यावसायिक तौर पे जो प्रोफेशनल स्टेडियम भी हैं, लेकिन जो छोटे शहर हैं वहां पर तो संभवतः हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो गवर्नमेंट से ही होती हैं,
0: हाँ
1: तो उनके लिए क्या सुविधाएं हैं ये भी मैं
0: देखिए
1: पूछना चाह रहा
0: मैं
1: था।
0: उनके लिए स्पेशली आपको बताना चाहूंगा जो मेरा ऑब्जर्व रहा है, बड़े शहरों की उपेक्षा छोटे शहरों में टैलेंट बहुत ज्यादा है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरत है पेरेंट्स को अवेयर होने की।
1: अच्छा
0: देखिए क्या होता है बच्चा छोटा है, 4 साल का

0: बच्चा, उसको क्या पता क्या करना है। आपको पता है बच्चे को स्कूल भेजना है तो उसे वो पता है, लेकिन अब पेरेंट्स को भी अवेयर होना है कि नहीं, बच्चे को मुझे एटलीस्ट एक स्पोर्ट्स में डालना है, जिमनास्टिक में डाल दीजिए, बैडमिंटन में डाल दीजिए।
1: तो ये बेसिकली माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो डिसाइड करे कि बच्चे को किस दिशा में भेजना है।
0: जरूर
1: चलते चलते बस एक सवाल ये कि सफलता के क्षण तो सभी शेयर करते हैं, सभी इंजॉय करते हैं, सफलता के क्षण शायद एक स्पोर्ट्समैन के जीवन में कम ही होते हैं, असफलताएं और दबाव ज्यादा होते हैं, उनसे कैसे आप निपटते थे? और एक सवाल और कि जो युवा इस समय स्पोर्ट्स में हैं उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहें?
0: देखिए जहां तक सवाल है असफलता का, तो स्पोर्ट्स का शब्द ही यही है कि आपको गिरना, खड़े होना
1: जी,
0: ये स्पोर्ट्स सिखाता है, ये आपको कोई और नहीं सिखा सकता। और शायद यही एक कारण है कि एक स्पोर्ट्समैन जब गिरता है, सफलता है, तो वो उसको मेंटली टफ बनाता है, और जो प्लेयर उससे जूझ के आगे निकलता है तो वो या तो इतिहास रचता है या तो अपना एक नाम बनाता है
1: जी,
0: और अच्छी जगह पे सेटल होता है। और युवाओं को मैं एक बड़ी छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ जो मेरे सीनियर्स डॉक्टर यूके मिश्रा जी ने मुझे बताया था
1: जी,
0: और वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं, लोगों की थिंकिंग है कि मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, जो मेन चीज है वो है समय। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 4 साल से लेके 18 साल तक ये आपका समय है काम करने का, चाहे आप स्टडी में करिए चाहे स्पोर्ट्स में करिए। जिसने अपने आप को इन 18 साल में जी तोड़ मेहनत कर दी किसी भी फील्ड में, मैं स्पोर्ट्स की भी बात नहीं कर रहा हूं, चाहे पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स में तो है ही है, अगर इस समय आपने अपने आप को मेहनत करके ढाल दिया तो ये आप मान के चलिए आपका आने वाला समय आरामदायक होगा। लेकिन अगर इस समय आपने आराम कर लिया तो आगे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा
1: निश्चित रूप से। आशीष जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण और रुचिकर बातें की हमसे, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आइए अब सुनते हैं हैमर थ्रो खेल चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित हैमर थ्रो खिलाड़ी चंद्रोदय नारायण सिंह से भूपेंद्र मिश्र की बातचीत।
3: खेल से शारीरिक व्यायाम तो होता ही है, मानसिक महत्व भी इसका कम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जीवन में जो चुनौतियां आती हैं खेल के दौरान मैदान में आपको अक्सर देखने को मिलती है, तो चुनौतियों का सामना करने में खेल का कितना महत्व है उससे हमें कुछ सीख मिलती है। आज हम हैमर थ्रो एक खेल है उस पर बात करेंगे और उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या संभावनाएं हैं, भारत में इस खेल की लोकप्रियता क्या है और उसके समक्ष आने वाली जो चुनौतियां हैं उसके बारे में हम बातें करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हैमर थ्रो खिलाड़ी चंद्रोदय नारायण सिंह जी। चंद्रोदय जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: चंद्रोदय जी, आप हमारे श्रोताओं को अपने विषय में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दें।
4: मेरा नाम चंद्रोदय नारायण सिंह है
3: जी,
4: मैं अंतर्राष्ट्रीय हैमर थ्रोअर हूँ, प्रोफेशन से मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मौजूदा समय पर मैं इंडियन ऑयल में प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ यहीं प्रयागराज में।
3: आपके कोच और रुस्तम खान जी रहे हैं, आप लक्ष्मण अवार्ड 2012 के विजेता भी रहे हैं और जैसा कि हम सभी लोगों को ज्ञात है कि आप 9 बार इस खेल के नेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2014 के फाइनलिस्ट भी आप रहे हैं, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2013 जो कि पुणे में हुआ था उसके भी आप रजत पदक विजेता रहे हैं, तो आपका जो एक खेल यात्रा है उसको किस रूप में देखते हैं?
4: मैं अपने खेल यात्रा को ऐसे देखता हूँ जैसे मैंने अपनी लाइफ को बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके आज जो मैं पाया हूँ, वो एक हर आदमी चाहता है कि ऐसी लाइफ होनी चाहिए
3: जी। हैमर थ्रो जो खेल है इसको आपने करियर के रूप में चुना है, आपने कब चुना और इस खेल को चुनने के लिए जो प्रेरणा इसके पीछे होती है वो क्या है?
4: इस खेल को चुनने की प्रेरणा मुझे मेरे मदर फादर से मिली थी। मेरे फादर खुद इंटरनेशनल हैमर थ्रो और डिस्कस थ्रो थे
3: जी,
4: मेरी मदर भी नेशनल हॉकी टीम की खिलाड़ी रही हैं, तो मुझे अपने परिवार की तरफ से पूरा सपोर्ट था स्पोर्ट्स करने के लिए
3: जी।
4: और मेरे गुरु भी जिनका आप नाम ले रहे मोहम्मद रुस्तम खान साहब, ये इंडिया के सबसे बड़े हैमर थ्रोअर कोच कहे जाते हैं।
3: अगर भारत की बात करें तो क्रिकेट महत्वपूर्ण खेल है, लोकप्रिय भी है, उसके बाद बैडमिंटन वगैरह का नाम आता है। आजकल जो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं जो चल रही हैं उसमें जो स्थानीय लोकल जो खिलाड़ी हैं उनको भी बढ़ावा मिल रहा है, तो इससे कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हैमर थ्रो जो खेल है चूंकि ये भारत में इतना लोकप्रिय नहीं है अन्य देशों की तुलना में, इसको आप किस रूप में देखते हैं, भारत में इसकी क्या संभावनाएं हैं या इसकी चुनौतियां क्या हैं?
4: हैमर थ्रो जो है ये यूरोपियन गेम्स है
3: जी,
4: एथलेटिक्स में एक गेम होता है थ्रो में जैसे 4 थ्रो होते हैं जेवलिन डिस्कस हैमर शॉटपुट, तो उस थ्रो में एक कैटेगरी होती है हैमर थ्रो, ये यूरोप से आया था, इसको कहा जाता है वर्ल्ड का मोस्ट टेक्निकल गेम

0: टेक्निकल की बात करते हैं तो वर्ल्ड का मोस्ट टेक्निकल गेम दो होते हैं, एक पोल वॉल्ट होता है, एक हैमर थ्रो है, जिसको वर्ल्ड ने खुद सर्टिफाइड किया है कि मोस्ट टेक्निकल गेम। और इस गेम का सरकार ने जितना बढ़ावा दिया है समय, कि मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। हैमर थ्रो एक ऐसा खेल है कि गांव से जो बच्चे आते हैं वो इसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, वो इसको
1: जी
0: ज़्यादा महत्व समझते हैं शहर के मुकाबले, क्योंकि उनको मालूम है कि हैमर में समय देना पड़ता है, आपको 8 साल की प्रैक्टिस देनी पड़ेगी तब आपकी परफॉर्मेंस आएगी। तो ज़रा टाइम टेकिंग है ये, मतलब आपकी स्टार्टिंग में तो आपको 5 साल, 7 साल, 8 साल तो प्रैक्टिस करेंगे जब आप, तब आप उसमें परफेक्ट होंगे। एक कहावत कही जाती है ना, प्रैक्टिस में मेक परफेक्शन, तो
1: जी
0: हम हैमर को इस रूप में देखते हैं।
1: आपने जो हैमर थ्रो खेल चुना उसकी भारत में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि लोकप्रियता कम है, तो इसको अगर कोई एक जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का खिलाड़ी है या शहरी पृष्ठभूमि का है, वो अगर इसका चुनाव करता है तो उसके लिए क्या क्या कठिनाइयाँ सामने आती हैं, और साथ ही साथ भारत में क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं सरकार द्वारा या निजी प्रयासों के द्वारा?
0: हैमर एक ऐसा गेम है जो इस टाइम हमारे गांव में बहुत ज़्यादा एडवांस है, गांव के बच्चों को उसको खेलने में मज़ा आता है, उनको देखने में भी उतना अच्छा लगता है कि उसको

0: आपको मालूम है कि हैमर में समय देना पड़ता है, आपको 8 साल की प्रैक्टिस देनी पड़ेगी तब आपकी परफॉर्मेंस आएगी। तो सर टाइम टेकिंग है ये, मतलब आपकी स्टार्टिंग में तो आपको 5 साल 7 साल 8 साल तो प्रैक्टिस करेंगे जब आप, तब आप उसमें परफेक्ट होंगे। एक कहावत कही जाती है ना, प्रैक्टिस में मेक परफेक्शन
1: जी।
0: तो हम हैमर को इस रूप में देखते हैं।
1: आपने जो हैमर थ्रो खेल चुना उसकी भारत में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि लोकप्रियता कम है, तो इसको अगर कोई एक जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का खिलाड़ी है या शहरी पृष्ठभूमि का है वो अगर इसका चुनाव करता है तो उसके लिए क्या क्या कठिनाइयाँ सामने आती हैं, और साथ ही साथ भारत में क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं सरकार द्वारा या निजी प्रयासों के द्वारा?
0: हैमर एक ऐसा गेम है जो इस टाइम हमारे गांव में बहुत ज़्यादा एडवांस है। गांव के बच्चों को उसको खेलने में मज़ा आता है, उनको देखने में भी उतना अच्छा लगता है कि वो सोचते हैं कि इसको करने के लिए। इसके साथ कठिनाई ये है कि ये आपको देखिए नॉर्मल खिलाड़ियों के लिए तो ठीक है, लेकिन एक प्रोफेशनल हैमर थ्रो बनने के लिए आपको डाइट, उसके बाद रेस्ट आपकी कितनी है, कितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसके साथ मेहनत कर सकते हैं।
1: आपने मेहनत की बात की, लेकिन मेहनत के साथ साथ जब सुविधाएं मिलती हैं, यानी तकनीक जिसे आज के समय में हम कह सकते हैं, तकनीक का इस खेल में कितना योगदान है?
0: तकनीक का तो इसमें इस खेल में इतना योगदान है कि ये वर्ल्ड का विश्व का सबसे कठिन गेम कहा गया है। जो इसकी टेक्निक कही जाती है, जिस तरीके से इसको फेंका जाता है, वो एक तरह से मतलब कि बहुत चैलेंजिंग होता है एक आदमी के लिए। एक आदमी जब स्पोर्ट्स करने आता है तो हैमर जब उठाता है तो स्टार्टिंग मतलब देखने में तो अच्छा लगेगा कि ऐसे टर्न कर सकते हैं हम, लेकिन जब आप 7.5 किलो का हैमर उठाते हैं, उसको स्विंग करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि इस गेम में हम जितनी टेक्निक, जितना हम नेचर से, जितना हम फिजिक्स से, बायोलॉजी जो हम जान रहे हैं उसका यूज़ करते हैं तो उसका हमको रिजल्ट मिलता है। अगर हम उसका रिजल्ट उसका यूज़ नहीं करेंगे तो उसके डिसएडवांटेज भी हैं कि परफॉर्मेंस नहीं बढ़ना, मीटर चेज नहीं होना, जो टारगेट मिला वो टारगेट चेज नहीं हो पाते हैं।
1: आज भी ये खेल, जैसा कि आपने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गाँव के पृष्ठभूमि के लड़के हैं या खिलाड़ी हैं वो इसको सहज रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अगर हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों की बात करें तो इस खेल में भारत के जो खिलाड़ी हैं उतना प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, क्या कारण है इसका?
0: थोड़ा सा भारत में थोड़ा सा टेम्परेचर की बात होती है, क्योंकि ये यूरोप से आया है तो यूरोप आप जान रहे हैं कि ठंडा राज्य रहा है
1: जी।
0: भारत में आप गर्मी का तो उससे थोड़ी सी दिक्कत होती है खिलाड़ियों को, लेकिन आप हैमर का जहाँ तक हम देख रहे हैं कि ये 8-10 साल बाद, जैसे आज हमारे देश में नीरज चोपड़ा जी हैं जिन्होंने जेवलिन में नाम रोशन किया, नहीं अभी तक कोई जेवलिन भी नहीं जानता था
1: जी जी जी,
0: लेकिन धीरे धीरे उस बच्चे ने ऐसा करके दिखाया कि लोग आज एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो को यूज कर रहे हैं। तो वैसे ही एक समय आएगा, जैसे डिस्कस थ्रो था, विकास गौड़ा जी थे हमारे, कई ऐसे खिलाड़ी थे, अनिल कुमार जी थे, जिन्होंने उस खेल को बढ़ावा दिया और जिससे लोग प्रिय खेल हुआ। तो ऐसे अब हैमर का भी समय आएगा, हैमर को 7-8 साल लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा ओलंपिक में प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत को।
1: किसी भी खेल के पीछे प्रशिक्षण की, ट्रेनिंग की एक महती भूमिका होती है
0: जी।
1: तो इस खेल के लिए भारत में जो ट्रेनिंग की स्थिति है और उसकी क्या चुनौतियाँ हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: चुनौतियाँ तो बहुत हैं
1: जी।
0: पहली चीज़ तो स्पोर्ट्स पर्सन डिसिप्लिन में होना चाहिए, ज़्यादातर उसको कोशिश करना चाहिए कि वो नॉर्मल आम जनता में नहीं समझे अपने आप को, क्योंकि वो एक खास चीज़ करने जा रहा है तो उसको अपने आप को खास मानना पड़ेगा इस स्पोर्ट्स को करने के लिए
1: जी। चंद्रोदय जी, आपका एक लंबा खेल अनुभव रहा है, एक लंबा करियर रहा है, वर्तमान में आप सरकारी जॉब में हैं, तो कोई ऐसा यादगार अनुभव हो जिसे आप श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहें?
0: मेरा यादगार लम्हा रहा है जब मैंने विश्व के सबसे बड़े हैमर थ्रो से मुलाकात की थी, जिन्होंने 1986 में 86 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिनको शायद ही लोग नाम सुने होंगे, यूरी सैदिक नाम था उनका
1: जी,
0: यूरोपियन थ्रोअर थे वो। एक ऐसे खिलाड़ी थे, जब मैं उनके पास ट्रेनिंग कर रहा था तो उन्होंने मुझसे बताया कि जिस साल उन्होंने ओलंपिक मेडल लिया था, उनके जो कोच थे बंदर चुक साहब
1: जी,
0: वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे ओलंपिक में, कोच भी और उनकी ट्रेनिंग भी, कोच थर्ड था और उनके ट्रेनिंग फर्स्ट सेकंड थे। तो ये ऐसा यादगार पल था जिसको हमने कभी सुना था, जिनको हम मोबाइल पे और वीडियोस देख के सीखते थे, उनसे जाके सीखना का एक एक्सपीरियंस, जो हमको सरकार ने मौका दिया, फेडरेशन ने, साई ने, ओलंपिक संघ ने हमको जो मौका दिया
1: जी।
0: वो जिंदगी में सबसे यादगार पल है हमारा।
1: और कोई अनुभव?
0: अनुभव तो बहुत अच्छे अच्छे रहे हैं, अच्छे भी रहे हैं, खराब भी रहे हैं
1: जी जी।
0: अच्छे अनुभव ऐसे ऐसे रहे हैं कि जहाँ उम्मीद भी नहीं थी वहाँ पर हम अपना बेस्ट करके गए। कई खिलाड़ियों ने मतलब कि उम्मीद नहीं की थी कि हम बेस्ट हो सकता है, वहाँ बेस्ट हुए। कई जगह अनुभव ऐसे भी थे कि जहाँ हम पहले से तैयार थे कि ये क्वालिफाई भी करेंगे हम और हम खेलने भी जाएंगे, लेकिन वहाँ पे कहते हैं ना कि खिलाड़ी का दिन होता है, वो दिन हमारे नहीं थे, हम नहीं क्वालिफाई कर पाए। कई बार अफसोस भी हुआ, दिल भी टूटा, बहुत कुछ होते हैं, खिलाड़ी की ज़िंदगी बड़ी ऊपर नीचे चलती है
1: जी। चंद्रोदय जी, जब कोई खिलाड़ी एक मैदान पर प्रैक्टिस करता है और जब कंपटीशन के मैदान पर प्रैक्टिस करता है,

0: नेतृत्व करता है देश का। तो उस वक्त कई बार ऐसा होता है कि हम प्रयास करते हैं, असफल हो जाते हैं, और कई बार हम सफल भी हो जाते हैं। तो सफल और असफल होने के बीच की किन-किन चीजों की भूमिका होती है, क्या-क्या चुनौतियां आती हैं जब हम नेतृत्व करते हैं, और उसे हम कैसे टैकल कर सकते हैं?
1: देखिए, खिलाड़ी के लिए सफल असफल तो ये आम बात है,
0: जी
1: क्योंकि जितनी वो मेहनत करता है कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन सफल असफलता खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है।
0: जी
1: आज असफल हुए हैं, कल न कल सफल होंगे ही। हम प्रैक्टिस इसीलिए करते हैं, कभी ना कभी तो हम सफल होंगे।
0: क्योंकि आप एक हैमर थ्रो खिलाड़ी भी रहे हैं और एक आपका लंबा अनुभव रहा है, तो एक सफल हैमर थ्रो खिलाड़ी बनने के लिए किस प्रकार की अनुशासन और दिनचर्या की आवश्यकता होती है?
1: एक हैमर थ्रो खिलाड़ी बनने के लिए आपको बहुत डेडिकेशन देना पड़ेगा।
0: जी
1: अगर ट्रेनिंग नॉर्मल रूटीन बताया जाए तो सवेरे 5 बजे उठना, 5 बजे से 10 बजे तक प्रैक्टिस करना, फिर अपने रिकवरी में चले जाना, फिर शाम में 2 बजे 3 बजे प्रैक्टिस पर उतरना, 9 बजे तक 8:30 बजे तक प्रैक्टिस करना, तो उसकी एक लाइफ बंधी हो जाती है कि दोस्त यार नहीं रहते हैं। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है नहीं, उस टाइम सोशल मीडिया भी नहीं था,
0: जी
1: तो एक दिनचर्या ये हो गई थी, मतलब कि हमको अपने आप को सफल बनाना है बस।
0: आपने डाइट की बात की कि एक अच्छी डाइट होनी चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए,
1: अच्छे इक्विपमेंट होने चाहिए।
0: अच्छे इक्विपमेंट होने चाहिए। जैसे डाइट की आपने बात की, तो डाइट में किस प्रकार की डाइट होनी चाहिए, इस पर थोड़ी सी बात करें।
1: देखिए, डाइट तो प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स जितना चाहिए
0: जी
1: वो उतनी पूर्ण करना चाहिए उस खिलाड़ी को,
0: जी
1: क्योंकि एक खिलाड़ी अपने शरीर का दिन भर में प्रैक्टिस के टाइम कम से कम 10 से 12 लीटर पसीना बहाता है,
0: जी
1: तो उस पसीने को रिकवरी करने के लिए आप पानी से तो कर नहीं पाएंगे, तो
0: जी
1: आपके लिए उसको हिसाब से डाइट देनी पड़ेगी।
0: जी भारत में इस खेल की संभावनाओं और जो युवा इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: भारत में इस खेल की संभावना मुझे बहुत अच्छी दिखती है,
0: जी
1: और मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप मोबाइल छोड़िए, आप रियल वर्ल्ड में आइए, आप चुनौतियों से देखिए, तब आपको बहुत मज़ा आएगा।
0: चंद्रोदा जी, आप स्टूडियो में आए और इतना महत्वपूर्ण समय आपने दिया, हमें उम्मीद है कि जो हमारे श्रोता हैं उनको लाभ अवश्य मिलेगा।
2: अब सुनते हैं इस सप्ताह के खेल समाचार। आईपीएल 2026 के प्ले ऑफ राउंड में सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स ने बनाई अपनी जगह। एथलेटिक्स में पोल वाल्टर, देव मीना और कुलदीप कुमार ने एक ही दिन में 2 बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर सुर्खियां बटोरी। और गुरिंदर वीर सिंह ने रांची में आयोजित फेडरेशन कप में 10.09 सेकंड समय के साथ 100 मीटर दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया, और इसके साथ ही 10.10 सेकंड से कम समय में दौड़ पूरी करने वाले वो पहले भारतीय बन गए। आज के अंक में इतना ही, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी समय इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।
3: खेल दर्पण,
4: खेल दर्पण, खेल दर्पण।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल दर्पण। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी प्रयागराज की प्रस्तुति था, जिसे आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
6: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
7: घर आंगन में है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान

0: संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: बदल रहा है भारत तेज है रफ्तार,
2: जुड़ रहा है हर कोना, हर दिल में पल रहा मंजिलों का ख्वाब,
1: एक ऐसा कार्यक्रम
2: जहां मिलती है सरकारी योजनाओं की सीधी जानकारी,
1: विकास की बातें, संगीत की मिठास
2: और एक नए भारत की आवाज़।
1: जुड़िए हर शाम 5:45 पर,
2: सुनिए बदलते भारत की धड़कन नई उड़ान के साथ आकाशवाणी लखनऊ के विशेष कार्यक्रम में।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए।
4: फिल्मी दुनिया का एक बेहद चमकीला स्टार
3: विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, FM पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
5: सुनो ना,
6: हाँ?
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
6: तो रोका किसने है, हाँ?
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
6: मुझसे?
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
5: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
6: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
5: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
9: हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं, शास्त्रीय संगीत आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित जगदीश प्रसाद का राग आभोगी में ख्याल गायन। आपके साथ तबले पर संगत की है अनीस प्रधान ने और सारंगी पर हैं लियाकत अली खान।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप पंडित जगदीश प्रसाद का राग अभोगी में ख्याल गायन सुन रहे थे। संगत कलाकार थे तबले पर अनीस प्रधान और सारंगी पर लियाकत अली खान। अब आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये बात कही।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए।

0: और देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। NIA के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के CCTV फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। The Center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Nilokar. Census Commissioner, along with the former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1, in the Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in a process of installing anti-drone system within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sanshu border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said, while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country.
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार,
3: द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू रोल आउट एंटी ड्रोन सिस्टम फॉर ड्रोन्स एंड सिमिलर एरियल थ्रेट विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ। हाउएवर सिंस